0: रानी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: विशाल त्रिवेदी, वही जाना पहचाना नाम। अब विशाल ही से लीजिए कमर्शियल इंश्योरेंस अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी पर। मोटेल एंड होटल, एनी फ्रेंचाइज शॉप, फूड रेस्टोरेंट, कन्वीनियंस स्टोर्स, हेल्थ एंड डेंटल क्लिनिक, फार्मेसीज, फ्लीट ट्रकिंग एंड वेयर हाउसेज, गैस स्टेशन, स्ट्रिप प्लाजा एंड मोर। फॉर अमेजिंग डिस्काउंट विद प्रॉपर लाइबिलिटी एंड इंश्योरेंस कवरेज, कॉल विशाल त्रिवेदी 6477679852, 6477679852, दैट्स 6477679852.
3: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
4: अपने मकान की next month closing है, कुछ सोचा है TV और appliances कहाँ से लेने हैं?
5: हाँ, Brampton TV and appliances, जहाँ special sale चल रही है, TV, fridge, washer, dryer, kitchen range, microwave, सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
4: सेल तो अब चल रही है, पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
5: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
4: दैट्स वंडरफुल।
5: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा।
4: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
5: ऑन बोवे हेड, जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलिन। टेलीफोन 9054502828 और विजिट brampton appliances.ca।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM। हमारे स्टूडियो में रابطे के नंबर 4165930003। जनाब, इत्तलात हैं कि सऊदी अरब पहली मरतबा T20 लीग की मेजबानी करेगा। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब पहली मरतबा T20 लीग की मेजबानी करने जा रहा है। डेमन्स लीग T20 में रिटायर्ड खिलाड़ियों की शिरकत भी मुतवक्के है। इस लीग को सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन ने मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लीग में हाल ही में रिटायर होने वाले क्रिकेटर्स शिरकत करेंगे। 6 टीमों पर मुश्तमिल यह लीग अक्टूबर में होने का इम्कान है और मैचेस ताइफ में खेले जाएंगे। इस हवाले से मजीद बताया गया है कि लीग में खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा $1,00,000 तक मिलने का इम्कान है। 416-593-0003, रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM। मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूं।

0: 7321-7444.
1: The views expressed here during discussions, debates, and other programs are strictly that of the participants and not of the management of Radio Pakistan Toronto and CMR. Similarly, Radio Pakistan Toronto is not liable for any false, misleading messages from our advertisers. An advertiser is solely responsible for claims and litigation that may arise from airing of such ads.
2: प्रोग्राम का यह हिस्सा टीम भट्टी के ताबुन से पेश किया जा रहा है फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 647-295-7861 647-295-7861
3: रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम मैं हूं आपकी होस्ट दुआ अरशद सर को किसी काम से स्टूडियो से बाहर जाना पड़ा है तो लाइव शो हम कंडक्ट करेंगे बिलाल साहब आपका बहुत बहुत स्वागत हो
4: क्या हाल चाल है आपका दुआ कैसी हैं आप
3: मैं एकदम ठीक हूँ आप कैसे हैं
4: जी जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक
3: बिलाल सर तो हम अभी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और उसके बाद अजान मगरब के बाद फिर हम लाइव कॉल्स लेंगे इंशाल्लाह तो मेरा पहला सवाल आपसे होगा गल्फ कंट्रीज खास तौर पर सऊदी अरेबिया कतर और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इस वक्त किसी भी बड़ी जंग के हक में नहीं नजर आती क्योंकि सबसे ज्यादा माशी और सिक्योरिटी नुकसान उन्हीं को हो सकता है अगर वाकई उन्होंने वाशिंगटन पर प्रेशर डाला के तो ये वक्ती तौर पर मौसर हो सकता है लेकिन अगर लेकिन आगे सब कुछ खत्ते की सिचुएशन ईरान और इसराइल की इकदाम और अमेरिका मफादात पर डिपेंड करेगा प्रेशर बरकरार रह सकता है मगर पूरी गारंटी नहीं दी जा सकती आपका क्या कहना है
4: जी आपने सही कहा देखिए जो ये गल्फ कंट्रीज हैं कतर हो गया बहरीन हो गया ये जंग के अंदर इन्होंने सबसे ज्यादा सफर किया अमेरिका को क्या नुकसान हुआ पैसों का नुकसान हुआ मतलब ये कि उनका जो है ना वो डॉलर्स खर्च हुए लेकिन उसके एवज ऑब्वियसली ये इन्हीं जो है ना वो ममालिक जिनका नुकसान हुआ है सऊदी अरब कतर ओमान बहरीन वगैरह इन्हीं को जो है ना वो उन्होंने पैसे और साजो सामान जो जंगी साजो सामान होता है मिसाइल सिस्टम और ये वो देके तो अमेरिका तो अपने खर्चे पूरे कर लेगा आपको याद होगा कि अमेरिकी सदर जो है डोनाल्ड ट्रंप वो ईरान जंग से पहले कुछ अरसा पहले वजीर अपना सदर बनने के बाद इन्होंने एक जो है ना वो खलीजी ममालिक का दौरा किया था और वो दौरा बकौल ट्रंप के बड़ा कामयाब जो है ना वो रहा था कि उसके अंदर उन्होंने कहा था कि जी अरबों डॉलर के जो है ना मैं मुआहदे करके आया हूँ तो वो अमरीका जो है ना मतलब कौन से मुआहदे करके आता है वो ये दिफाई मुआहदे होते हैं जी इतना आपको जो है ना वो देंगे इतने जहाज देंगे इतने रॉकेट देंगे इतने मिसाइल देंगे इतने ड्रोन देंगे तो ये फिर मतलब ये कि वो नुकसान तो असल में जो है ना वो इन ममालिक का होता है मौशी तौर पर वो हिट होते हैं तो उन्होंने अपना दबाव जो है वो अमरीका के ऊपर डाला और आपको याद होगा जो हमारे लिसनर्स हैं उनको याद होगा कि जब ये हम जंग के ऊपर कुकर उतारना कि हमारी कॉमेंट्री होती थी तो मैंने भी यही जो है ना वो अर्ज किया था कि जब तक ये ममालिक जो असल में जिनका नुकसान हुआ है ये अमेरिका के ऊपर जो है ना वो प्रेशर नहीं डालेंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके जो यूरोपीय ममालिक है जिनका जो है ना वो रोजाना के बुनियाद के ऊपर तेल का नुकसान हो रहा है प्राइसेस वहां पे भी इंक्रीज हो रही हैं ये सब मिलके अमेरिका के ऊपर जो है ना वो प्रेशर नहीं डालेंगे तब तक जो है ना वो अमेरिका इतनी आसानी से जो है ना वो हार मानने वाला नहीं है तो अब देख लेंगे इसराइल के प्रेशर जंग के प्रेशर के बावजूद जो है वो अमरीका को अगर किसी ने जंग करने से और हमला करने से बाज रखा है तो वो यही प्रेशर है तो मेरे ख्याल से अगर ये प्रेशर जो है वो बरकरार रहता है तो डेफिनेटली जो है ना वो बल्कि बरकरार रहता है कि बरकरार रहना चाहिए इन ममालिक को चाहिए कि अपना प्रेशर जो है वो अमेरिका के ऊपर रखें
3: अच्छा जी और पिंकी केस अगर वाकई काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट तक पहुंच गया है और अहलकारों के राबतों की तहकीकात हो रही है तो इससे इदारों के अंदर मौजूद कमजोरियां और मुमकिन अंदरूनी नेटवर्क सामने आ सकते हैं तहम माजी के तर्जुबात यही बताते हैं कि ऐसे केसेस में अक्सर इब्तदाई शोर ज्यादा होता है और नतीजा महदूद निकलता है असल सवाल ये होगा क्या तहकीकात शफाक और मंतकी अंजाम तक पहुंचती है या नहीं
4: जी देखिए माजी की अगर हम मिसालें देखें तो कुछ केसेस हमारे सामने ऐसे आते हैं कि जो बिल्कुल ओपन एंड शट केसेस थे और उसके अंदर भी एक अगर मैं एक बड़ी एग्जांपल आपको दूं तो वो सानिया मॉडल टाउन की थी कि सानिया मॉडल टाउन के अंदर जिस तरीके से पुलिस ब्रुटैलिटी की गई और निहत्ते शहरियों को गोलियां मारी गई उस वक्त जो अवामी तहरीक थी डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की, उसके जो है ना मतलब ये कि जो कारकुनान थे उनको ये गोलियां लगी और उनमें से जो है ना वो कुछ लोगों की शहादत भी हुई।

0: तो कितना मतलब एक अरसा वो केस चला, कितने लोगों के नाम उसके अंदर आए, कितने पुलिस वालों के नाम उसके अंदर, सियासतदानों के, उनके खिलाफ केस भी चला और सब कुछ जो है ना वो हुआ। तो लेकिन अंजाम के तौर पर हमने देखा कि क्या किसी को सजा दी गई, बल्कि आज इसी दौरे हुकूमत के अंदर उन्हीं अफराद को जो कि डायरेक्टली मॉडल टाउन के वाकये के अंदर मुलव्वस थे, ना सिर्फ उनको बहाल किया गया, उनको तरक्की दी गई। और ये उस दौर में कनाडा, यूएसए और जो है ना यूरोपीय ममालिक, ऐसे ममालिक इनको जो है ना फरार करवा दिया गया था। और अब हुकूमत के अंदर उनको वापस बुला के ना सिर्फ जो है ना वो ओहदे दिए गए हैं, बल्कि उनको नवाजा गया है। तो अभी जो हमें लग रहा है कि पिंकी केस के अंदर बड़े लोगों के नाम आ गए, बड़ा कुछ जो है ना वो सामने आ गया, ये काली भेड़े जो है ना वो निकल के जो है ना वो सामने आ रही है इदारों की। लेकिन अभी आप देखिएगा डाउन द लेन, हो सकता है चंद सालों का अरसा गुजरे और हम जिस तरह जो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर जो हमारे जो है ना विलन हैं मुस्तफा कुरैशी, उन्होंने कराची में जो है ना वो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तंजिया तौर पर जो है ना ये जुमला उन्होंने कसा है कि हो सकता है आने वाले वक्तों में हम देखें कि सेनेट का टिकट जो है वो पिंकी को जो है ना वो दिया जा रहा है, और पिंकी जो है वो सेनेटर बन गई है, या इलेक्शन लड़के जो है ना वो MNA MPA बन के जो है ना वो कौमी असम्बली में पहुंच गया। तो कहते हैं पाकिस्तान के सिस्टम से कोई जो है ना बईद जो है ना वो नहीं रखी जा सकती।
1: जी, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की शरायत के तहत डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन से एक तरफ परफॉर्मेंस रिकवरी और लाइन लॉसेस में बेहतरी आ सकती है, लेकिन दूसरी तरफ यूजर्स के लिए बिजली मजीद महंगी होने का खतरा भी मौजूद है। अगर सख्त रेगुलेटरी निगरानी ना हुई तो प्राइवेट कंपनी मुनाफे को प्रायोरिटी देंगी। बेहतरी तभी आएगी जब निज़ाम में एहतसाब, इन्वेस्टमेंट और बेहतर मैनेजमेंट के साथ साथ हो। आप क्या कहना चाहोगे उस पर?
0: ये देखें, जो लोग इस सिस्टम के अंदर गुजारा कर रहे हैं उनको अंदाजा होगा कि जो सरकारी जो महकमे जब तक ये सरकारी तहवील में हैं और उसमें काम कर रहे हैं, तो इनको मैनिपुलेट करना कितना मतलब कि आसान है, और कितना आसानी से लोग, यानी कि बुनियादी तौर पे अगर आप लाइन लॉसेस कम कर लें, आप एरियाज के अंदर रिकवरी बेहतर कर लें, आप अपना जो जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसको आप बेहतर कर लें, तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो जो डिस्कोस हैं उनकी प्रायोरिटी हो जाएगी प्राइवेटाइज होने के बाद। पैसा कमाना, पैसा जो उन्होंने लगाया है उसको जो है ना वो रिकवर करना, ये उनकी प्रायोरिटी हो जाएगा। लेकिन बहरहाल उसके तहत एक बेहतरी जो है ना वो जरूर आएगी कि जो इदारों से करप्शन है वो खत्म हो जाएगी, जो लाइन लॉसेज हैं उसके अंदर जो है ना अगर बेहतरी आ जाती है, और ये जो हमारे यहाँ पे कुंडा सिस्टम है कि लोग कुंडे लगा के जो है ना वो गर्मियों के अंदर अपने AC वगैरह चला लेते हैं, फिर जो लाइनमैन होते हैं उनके साथ मिलीभगत करके आपके जो है ना मतलब ये कि बिल कम आ जाते हैं, फिर जो आपके मीटर रीडर हैं उनके साथ जो है ना वो सेटिंग करके गर्मियों के महीने के अंदर कम रीडिंग जो है ना वो करवा देते हैं, सर्दियों के महीनों के अंदर ज्यादा हो जाती है। मैं खुद विटनेस हूँ, खुद गवाह हूँ कि ऐसी कई घरों के अंदर जो है वो ये वाले मामला लोगों ने किए हुए हैं, और लाइनमैन के साथ जिनकी दोस्ती है, सेटिंग है मीटर रीडर के साथ, तो जारी बात है वो भी किसी मोहल्ले के हैं, किसी के रिश्तेदार हैं, किसी का कोई ना कोई मामला है, तो वो ये बेनिफिट जो है ना वो उठाते हैं। तो प्राइवेटाइज होने से कम ये वाली अगर रिकवरियां और ये वाली चीजें भी अगर बेहतर हो जाए, तो ओवरऑल सारे सार्फीन को जो है ना उसका जो डायरेक्ट बेनिफिट है वो किसी ना किसी हद तक पहुंचाया जा सकता है।
1: जी, सैन डिएगो में इस्लामिक सेंटर पर हमला इंतहाई अफसोसनाक और काबिले उजम्मत है। दुनिया में बढ़ता हुआ इस्लामोफोबिया सोशल मीडिया, सियासी बयान और इंतहा पसंद सोच की वजह से मजीद खतरनाक शक्ल इख्तियार कर रहा है। ऐसे वाकयात साबित कर रहे हैं कि मजहबी नफरत सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। बिलाल साहब,
0: जी, बिल्कुल। देखें, इस्लामोफोबिया एक हकीकत है, और बेसिकली क्या है कि इस्लाम का डर और खौफ, लेकिन इस्लाम जो है वो अमन का मजहब है, और कहीं पे भी जो है वो पुरतशद्दुद रवैयों को जो है ना फरोग नहीं देता, बल्कि हम देख रहे हैं कि उसके रिएक्शन के तौर पे वो मजाहिब जो अपने आप को कंपेरेटिवली जो है ना वो कहते हैं कि बहुत इत्तेदाल वाले हैं, वहां से जो है ना ये निकल के वाकयात जो है ना वो सामने आ रहे हैं। कहीं पे चाकू और छुरियों के जो है ना वार किए जा रहे हैं कहीं पे, और ये आपको याद होगा कि साल 2019 के अंदर ये न्यूजीलैंड के अंदर जो वाकया पेश आया था, जहाँ पे एक ऑस्ट्रेलियाई शहरी जो है उसने मस्जिद के अंदर घुस के जो है ना फायरिंग की थी, जिसके नतीजे में काफी मुसलमान जो है ना वो शहीद हो गए थे। तो उसके बाद हमने देखा कि दुनिया ने इसके ऊपर जो है ना वो बड़ी तवज्जो दी, और यहाँ पे क्रेडिट देना पड़ेगा कि इमरान खान साहब की जो उस वक्त की हुकूमत थी PTI की, उन्होंने करारदाद जो है वो जनरल असेंबली के अंदर पेश की, और फिर उसके नतीजे में 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ अब जो है वो इंटरनेशनली दिन मनाया जाता है। तो मेरे ख्याल से इसको मजीद उजागर करने की اور مزید اس کو فروغ دینے کی جو ہے نا وہ ضرورت ہے. اور ہر جگہ پہ ہماری ایز اے کمیونٹی مسلمانوں کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اسلام و فوبیا کے خلاف ایک بلند جو ہے نا وہ آواز بھی بنیں اور اپنی کمیونٹی کے اندر اس بات کو ثابت کریں کہ ہم ایک اچھے مسلمان بھی ہیں اور جو مذہب ہے وہ مطلب کسی بھی طور سے جو ہے نا اس کا رسپانسبل نہیں ہے ہمارے ایکشنز کا.
1: جی آپ کو پتہ ہے اذان مغرب ہمارے پروگرام میں آ گئی ہے, تو ابھی اذان کا ٹائم ہے, تو اذان کے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اذان کے بعد پھر سے کنٹینیو کریں گے.
0: جی
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو ایف ایم 101.3 اسٹوڈیوز میں, رابطے کے نمبر 4165930003. ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. دوسرے علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی نظام الاوقات کے مطابق مغرب کی نماز ادا کریں. ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں اذان مغرب. اللہ

0: Radio Pakistan Toronto CMR 101.3 FM. Bilal sir, welcome back. Bilal sir, aapko meri awaaz aa rahi hai? मुझे लगता है बिलाल सर को हमारी आवाज़ नहीं आ रही है. बिलाल सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर हम वापस आएंगे बिलाल सर से इतना मैं कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं.
1: जी जी बोले
0: जी, अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
1: जी जी बिल्कुल आ रही है.
0: जी मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा, टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए 121 रन बनाना और सिर्फ 3 विकेट्स बाकी होना सिचुएशन के को इंतहाई मुश्किल बनाता है. पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम अगर लोअर ऑर्डर गैर मामूली मजाहत देखे तो मुकाबला बन सकता है, लेकिन मौजूदा हालात में बांग्लादेश नेशनल क्रिकेट टीम जीत के ज़्यादा करीब दिखाई दे रही है. हिस्टोरिकल कमबैक मुमकिन है, मगर एक और मायूस कुन शिकस्त का खतरा भी मौजूद है.
1: जी देखें, पहले टेस्ट मैच के बाद जो सिचुएशन थी, देखें ना, साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है आपके ऊपर. अगर आप एक अच्छी सिचुएशन से निकल के आ रहे हो, आपके अंदर जो है ना फाइटिंग स्पिरिट हो, जो कि हमने देखा है कि हमेशा से पाकिस्तान की टीम के अंदर बड़ा लैक करता है, और फिर प्लेयर्स के ऊपर भी बड़ा डिपेंड करता है कि आपके जो टेल एंडर्स हैं उसके अंदर कैसा टैलेंट मौजूद है. आपको याद होगा एक जमाने में वसीम अकरम और वकार यूनस की जोड़ी जो है वो बड़ी डेडली, ये मैं स्पेशली टेस्ट के हवाले से बात कर रहा हूँ, जिन लोगों ने उस जमाने के टेस्ट मैचेस देखे हुए उनको याद होगा कि मेरे ख्याल से एक बड़ा रिकॉर्ड जो है वो भी इस जोड़ी के नाम है कि बड़ी जो है ना वो एंड पे बहुत बड़ी पार्टनरशिप जो है वो इन्होंने क्रिएट की थी. तो ऐसी कोई जोड़ी हमें नजर नहीं आती कि जो एंड के ऊपर रजाक एक जमाने में जो है बहुत अच्छा खेलते थे टेल एंडर्स के अंदर, हालांकि फास्ट बॉलर थे. तो ऐसी मतलब कि कोई जोड़ी अगर आपके पास हो जो कि मतलब कि आखिर के अंदर भी खेल के और अगर पूरा दिन गुजार सके कि टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाए, ये भी बड़ी बात है. और अगर जो है ना वो 120 121 रन का कोई ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, तो अगर आखिरी दो प्लेयर्स जो है ना वो भी अड़ जाएं तो ये स्कोर जो है वो पूरे दिन के अंदर बड़ा इजीली जो है ना वो बना सकते हैं. लेकिन मैंने इस तरह कहा ना कि साइकोलॉजिकल एक ये कि आप ऑलरेडी टेस्ट मैच जो है ना वो हार के आ रहे हैं, और दूसरे नंबर पे कि इस तरह के प्लेयर्स के हमने देखा नहीं है कि रिसेंट पास्ट के अंदर कहीं पे किसी जोड़ी ने कोई बहुत अच्छी जो है ना कारकर्दगी की थी. हमारा जो शुरू के जो प्लेयर्स थे वो मतलब एक रेत की दीवार जो है वो साबित हुए और ढेर हो गए, तो उसके बाद टेल एंडर्स ने जो है ना वो उसको सहारा दिया और उन्होंने बड़ा स्कोर कर लिया. शाहीन शाह अफरीदी जो है वो एक अच्छा बैट जो है ना साबित होते हैं, लेकिन हमने देखा है कि उनके साथ दूसरी एंड के ऊपर जो है ना कोई भी प्लेयर ज्यादा अरसे तक ज्यादा देर तक जो है ना साथ जो है ना वो नहीं दे सकता. तो देखते हैं कि क्या आउटकम जो है ना वो निकलती है, लेकिन ज्यादा चांसेस यही हैं कि अगर जो है ना वो डे के स्टार्ट होती है, क्योंकि पिच भी जो है वो चेंज हो रही होती है, तो वो जो शुरू का टाइम पीरियड हमने देखा है कि इस टेस्ट मैच के अंदर जो शुरू के 15 ओवर्स हैं वो निकालने जो है ना बड़े मुश्किल हैं बैट्समैन के लिए, उसमें स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो टेल एंडर्स के लिए तो और भी ज्यादा जो है ना मुश्किल होगा. तो देखते हैं अगर वो 15 ओवर्स जो है ना वो निकाल जाते हैं ये जो हमारे प्लेयर्स हैं, तो फिर कुछ उम्मीद जो है वो पैदा हो जाएगी.
0: ठीक है, कॉल्स की तरफ चलते हैं. हमारे साथ पहले कॉलर है 7997. आप ऑन एयर हैं? 7997 जी, आप ऑन एयर
2: हैं. कैसे हैं आप? ठीक है
0: जी, अल्हम्दुलिल्लाह
2: जी. जनाब मैं बिलाल साहब और आपका मैडम, मैं आपका नाम नहीं याद मुझे क्या है.
0: दुआ.
2: अच्छा जी, तो बस मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत पहले मैंने एक मिसाल दी थी और उसके लोग नाराज भी हुए, बहुत लोगों के अपने अपने थॉट है. मैंने ये कहा था कि जैसे क्रिकेट, हमारे पाकिस्तानी बहुत ज्यादा क्रिकेट में इन्वॉल्व है, हालांकि इनको ये नहीं समझ आती कि गुलामी की वो निशानी है जो अंग्रेज हमारे सर पे थोप के गए हैं. बहरहाल खेले और गुलामी की इस निशानी को याद रखे और इसी को अपनाते रहे, अपना तशख्स ना लाए सामने. तो बात यह है जैसे क्रिकेट के मैच में एक बॉल कर रहा है, दूसरा बैट कर रहा है, एक ईरान है और दूसरा है अमरीका, और दो चार दस बंदे हैं, कोई ढोल बजा रहा है, कोई बाजा बजा रहा है, वो भाग भाग दौड़ कर रहे हो, कह रहे यार छक्का लगा, उसको कह रहे कैच पकड़ ले, वो स्लो बॉल कर, वो अपनी नहीं मुश्किल नहीं सुन रहे, वो अपनी कर रहे. तो ये ईरान और अमेरिका की जंग में ये हो रहा है. ये जितने लोग बाहर बैठ के बातें कर रहे हैं ना कि हम वो करा रहे हैं, सालसी करा रहे, ये कर सालसी में इस तरह से नहीं होता भाई, आप पैगाम पहुंचा रहे हो. सालसी का मतलब यह है कि आपसे पूछा जाए और आपकी बात को सुना जाए, थोड़ा बहुत सुन लिया, वो भी ट्रंप साहब के कौन एतबार करते. हाँ, अगर पाकिस्तान के जो जनरल साहब है अब वजीर आजम है वो उनको पूरा एतबार करते हैं तो ठीक है करते रहे भाई, लेकिन दुनिया समझ ट्रंप की बात पे कोई एतबार नहीं करती। दूसरी बात आप कह रहे हो अगर ऐसा हो जाए अगर वैसा हो जाए अगर इलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिसिटी का ये कर ले यू कर ले, भाई साहब अगर बगर कुछ नहीं होगा क्योंकि आवा का आवा बिगड़ा हुआ है और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हुआ ऊपर से और अभी तक ऊपर का ही प्रॉब्लम है। कोई अदालत में इंसाफ नहीं है, कोई औरतों की और बच्चों की कोई जान माल इज्जत आबरू की कोई हिफाजत नहीं है। पाकिस्तान पाकिस्तान हम करते हैं, पाकिस्तान में अपने लोग महफूज नहीं है और इकोनॉमिकली बाहर से जब तक बाहर से लोग पैसे आके नहीं डालेंगे पाकिस्तानी तब तक आप समझ लेंगे पाकिस्तान सही राह पे नहीं है। ये जितने भी लोग कहानियां सुना रहे हैं ना तरक्की हो रही है और यूं पहुंच जाएंगे यूं कर लेंगे ये सिर्फ कहानियां हैं, होना हाना कुछ नहीं। इकोनॉमी दिन ब दिन सिंक हो रही है
1: और ये ऑयल की बात और बाकी कॉलर्स का भी टाइम आ सके।
2: ठीक है जी, ऑयल की बात और सिंक हो गई और आगे देखे क्या बनता है।
0: जी हम नेक्स्ट कॉल की तरफ चलेंगे। 8156 8156।
3: हेलो जी, थैंक यू जी। देखिए ये आजम नजीर टार्गेट ने जो 28वीं तरमीम की बात की है मुशावरत करेंगे तो पहले 26 और 27 में कौन सी की थी मुशावरा, तो आखिरी वक्त में जीएचक्यू से बन के आ गया था, पार्लियामेंट ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन ये 28वीं से पहले ये मार्केट में बातें छोड़ी जाती हैं। कमल दिलचाद साहब को हर चैनल पे बिठाया गया, बहुत सी बातें छोड़ी गई कि जी जरदारी को हटा के आसिफ मुनीर को एजेंट बना दिया जाएगा, तो पीपल पार्टी का रिएक्शन है। और ये जो अलमोल क्या नाम है इसका पिंक थी ये जो लॉन्च की गई है ये भी इसकी एक कड़ी है। गिरफ्तारी पकड़ी गई पंजाब से, गिरफ्तारी डाली गई कराची से सिंध से, इसका भी एक पॉलिटिकली एंगल है, एक एक जो है पार्टी के सदरा पे प्रेशर डालने का एक हरबा है। और इससे पहले अयान अली थी उसको क्या हुआ सांप बच गई थी, $5 लाख पकड़ते हुए इस्लामाबाद से रेड हैंड पकड़ी गई थी, बेचारे ईमानदार कस्टम ऑफिसर ने जिसने पकड़ा था उसका क्या आश्चर्य हुआ था, 24 घंटे में उसको कत्ल कर दिया गया था, उसके बच्चे यतीम हो गए और वो साहिबा जो है बिल्कुल साफ दूध में से मक्की का निकाल के उसको कानूनी तौर पे ले गया, कुछ नहीं हुआ, तो अभी भी इसका भी कुछ नहीं हुआ।
1: सर देखिए मैं थोड़ा सा अर्ज करूँ कि देखिए आपने आपने मिसाल दी है ना आजम नजीर तारड़ की और आपने कहा कि ये जो 27वीं के बारे में कहा इन्होंने जो है ना मुशावरत कर ली, तो देखें तब 27वीं और 26वीं की बारी कम से कम कुछ चीजों के ऊपर उन्होंने रेजिस्ट किया और उसको जो है ना वो रोक लिया था, पीपल्स पार्टी ने भी रोक लिया था, तो जरूरी नहीं कि कमर दिलशाद साहब को बिठाने वाली एस्टेब्लिशमेंट ही हो। ये हो सकता है कि सियासतदान खुद से मतलब उसके पीछे पीपल्स पार्टी हो सकती है, नून लीग हो सकती है, कि ये बातें मार्केट में ला के पहले से ही जो है ना वो उस इदारे को इतना कॉन्शियस जो है ना वो कर दिया जाए कि वो इस तरह की चीज के बारे में जो है ना वो ना सोचे। और अभी हमने देखा कि साइफर की कॉपी जो है ना वो आई है मार्केट के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर, ड्रॉप साइट ने जो जारी की है उसके अंदर भी उन्होंने वो वाली कॉपी जारी की है जो एस्टेब्लिशमेंट से जो है ना वो लीक हुई है। तो ये दोनों तरफ की पावर्स जो है वो अपने अपने कार्ड जो है ना वो खेल रही होती हैं, लेकिन बहरहाल हमने देखा यही है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बहरहाल अपने उसमें कामयाब जो है ना वो हो जाती है। तो देखते हैं कि 28वीं के बारे में जो है ना वो क्या बनता है।
0: जी हम नेक्स्ट कॉल की तरफ चलेंगे। मेरे पास आपका नंबर नहीं आ रहा है तो मुझे आपका नाम अनाउंस करना पड़ेगा। खालिद सुलेमान आप ऑन एयर हैं। खालिद सुलेमान 6536। मुझे लगता है हमें नेक्स्ट कॉल की तरफ जाना पड़ेगा। 5794 सर आप ऑन एयर हैं।
4: अस्सलाम वालेकुम जी।
0: वालेकुम अस्सलाम।
4: दुआ मेरी बहन ये मेरा सलाम आपको भी पहुंच गया और पूरा जिस तरह आप कहती हैं पाकिस्तान को भी पहुंच गया।
0: जी
4: देखिए बिलाल भाई जिस तरह आप कह रहे हैं ना 28वीं तरमीम मेरे ख्याल में इसमें कुछ बातें जो है ना वो अभी मेरा ख्याल है बजट आएगा बजट पे बजट पास हो जाएगा ये बातें बजट के बाद होंगी। कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है मेरे ख्याल में वो सूबे जो है वो एक ऐसा फार्मूला तैयार कर लेंगे कि जिससे अब ज्यादातर हमारा डिफेंस اور تعلیم اور وہ معاملات جو آ رہے ہیں ان پہ وہ کہنے ہیں کہ مالیات اور تھوڑا بہت ٹیکس کلیکشن فار دا ٹائم بینگ. 18ویں ترمیم کو کوئی نہیں اتنا چھیڑا جائے گا, لیکن ایک ایسا عمل لے لیا جائے گا جس سے کہ تھوڑا بہت وفاق کو سکھ کا سانس مل جائے, ٹیکس کلیکشن بھی ہو سکتا ہے ان کو فار دا ٹائم بینگ دے دی جائے تاکہ وفاق کو تھوڑا سا ہلکا ہو جائے اور اس کو ڈیفینس اور دوسرے معاملات میں تھوڑا سا معاملہ آسان ہو جائے. تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل ہوگی, ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا. باتیں یہ تو سب کرتے ہیں, یا تو کوئی سٹینڈ نہیں, بلکہ ابھی تو سامنے آ ہی نہیں رہا کہ وہ چاہتے کیا ہے. ایک باتیں نہیں, 10 باتیں آنی ہیں کو 25 سال سے کام کر دو, یہ سب باتیں ابھی ہو رہی ہیں. ابھی میرا خیال ہے یہ عید کے بعد پتا چلے گا کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں. باقی رہ گئی بات جنگ کی, اور جو آپ نے ڈراپ سائڈ کا بات کی ہے, دیکھیں اب ان لوگوں نے جو ساشر وہاں پیش کیا ہے الٹیمیٹلی وہ کسی نے تو اس کو پروائیڈ کیا ہے نا. اور یہ ہاں صاحب نے برمیرا اپنے انٹرویو میں کہا تھا, یس میں اپنے گھر لے کر گیا تھا اور مجھ سے گم ہو گیا ہے. دیکھیں یہ سیدھا راز بات نہیں ہے, آپ افیشیل کوئی بھی بلال بھائی ڈاکومنٹ اپنے گھر لے جانے کے متحمل نہیں ہو سکتے, یہ خلاف قانون ہے, اس پہ بہت بڑا یہ جرم ہے. اور یہ کاپی کہہ رہے ہیں کہ یہ وہاں سے ہی ادھر گئی ہے, باقی پتہ چل جائے گا جب یہ عدالتوں میں معاملہ جائے گا. تو چلیں دیکھتے ہیں, آج بتی صاحب نہیں ہے تو اور لوگوں کو دوستوں کو تو معاملہ, تو انشاءاللہ کل بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ.
1: معذرت کے ساتھ میں یہ جو ہے نا وہ بات ایڈ کر دوں کہ آپ کے پاس ٹھیک ہے, لیکن اس سائفر کیس میں عمران خان صاحب کو 10 سال کی سزا اسی بات پر ہو چکی ہے کہ آپ وہ نہیں لے کر جا سکتے تھے اور وہ جو کاپی گم گئی تھی وہ سارے معاملے کے اوپر کیس سن کے تو سزا ہو چکی ہوئی ہے. یہ کاپی جو ہے یہ بہرحال وہاں یہ وہ والی کاپی نہیں ہے, کیونکہ اس کے اوپر جو ڈاکیومینٹس اور جو سگنیچر ہیں وہ ملٹری والی سائڈ کے ہی ہیں. تو بہرحال جس طرح آپ نے بھی کہا کہ آگے چل کے پتا چل جائے گا کہ معاملہ جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے.
0: جی ہمارے پاس نیکسٹ کالر ہے 5666, آپ آن ایئر ہیں 5666.
5: جی السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
5: جی دیکھیں بہن میری کی بات یہ ہے کہ آج بلال صاحب کو چلو کوئی تو بات ملی, انہوں نے کہا جی کہ کریڈٹ جاتا ہے خان صاحب کو کہ وہ جنرل اسمبلی میں اسلاموفوبیا کے خلاف لے کے گئے قرارداد. چلو شکر الحمدللہ کوئی چیز تو ملی آپ کو, لیکن اب یہ دیکھیے کہ اسلاموفوبیا کی وہ جو قرارداد لے کے گئے تھے ان کو جن جن ملکوں نے اس کی سپورٹ کی تھی سب کو ناراض کر دیا انہوں نے. یہ سب سے بڑی بات آپ نے نہیں بتائی آخر پہ کہ سب ناراض. سعودی عرب نے اپنا جہاز واپس منگوا لیا, ایران, رشیا, مطلب ویئر ایور ہی ہیز اے کانٹیکٹ وہ سب ملک ہم سے ناراض ہو گئے تھے. تو یہ تو ایک بات ہو گئی, باقی تو لوگوں نے بتا دیا. دیکھیے 18ویں ترمیم میرے خیال میں بہت جلدی میں پیش کی گئی تھی, اس میں بڑے رکھنے ہیں, اس میں بہت سی ایشوز ہیں. اس طرح سے معاملات نہیں چلتے کہ آپ صوبوں کو سارے پیسے لے لیں, صوبے امیر ہو جائیں اور وفا غریب ہو جائے, جو کہ اکائی ہے ساروں کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے, ایسے کیسے چلتا ہے. ابھی صوبے چلے الٹیمیٹلی تو عوام تک جانا چاہیے نا سارا, چاہے وہ فیڈرل کے پاس ہو چاہے وہ صوبوں کے پاس ہو. کس صوبے نے لگائے ہیں پیسے آج تک سوائے پنجاب کے؟ ایک سندھ سب سے زیادہ بڑا بینیفیشری ہے, ایک ٹکا نہیں لگتا نظر آ رہا. کراچی ہے, ساری سڑکیں کھلی پڑ رہی ہیں, آپ یونین کونسل تک آپ پیسے نہیں دے رہے, سارے روتے ہیں. بات صرف یہ ہے دیکھیے ایمانداری کے ساتھ بات کرنی چاہیے. کچھ لوگ تو یہاں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ دل کرتا ہے ان کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے, شاید وہی پاکستان کو آگے لے جائیں. اس طرح سے آپ کریٹیسائز کرنا بہت آسان ہوتا ہے. دیکھیں چیزیں اپنی بہتری کی طرف جا رہی ہیں, آہستہ آہستہ جا رہی ہیں. 18ویں ترمیم کے جہاں
1: جی 18ویں
5: جی جی میں بس بالکل 18ویں ترمیم کے جہاں بینیفٹس ہیں وہاں نقصانات بھی ہیں. 28ویں ترمیم ان نقصانات کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ پاس ہو. السلام علیکم.
0: میرے پاس پھر سے نیکسٹ نمبر شو نہیں ہو رہا ہے, تو میں آپ کا نام ہے عبد الکریم محسن, آپ آنے رہیں گے 6530. ٹھیک ہے ہم نیکسٹ کال کی طرف چلیں گے 4336, آپ آنے رہے 4336.
6: جی جی میری آواز آ رہی ہے
0: جی.
6: ہلو جی بلال
1: جی سر بولیے گا اور تھوڑا شارٹ رکھیے گا, ٹائم ختم ہونے والا.
6: بالکل میں تو بالکل شارٹ رکھتا ہوں ہمیشہ. صرف اتنا بتا دیں کہ اتنا جو جمع خفیر سیاست دانوں کا ہے اور جو نام نہاد جمہوریت ہے اس کا پاکستان کو اور عوام کو کیا فائدہ ہو رہا ہے, بس اتنا بتا دیں. بہت شکریہ
1: جی. لانگ رن کے اندر ہم نے دیکھا ہے جو بھی حکومت جو بھی سیاستدان جس طریقے سے بھی آئے ہیں, عوام وہیں کی وہیں ہے, مہنگائی وہیں کی وہیں ہے, گردشی قرضہ اور ملک کا قرضہ بھی وہیں کا وہیں ہے. ابھی آئی ایم ایف کو پلان پیش کیا گیا ہے جو ہے نا 2035 تک کا, تو چلیں اس پہ بھی ہم کل بات کریں گے. لیکن آپ کی بات درست ہے کہ کہیں بھی عوام کے حالات بہتر نہیں ہوئے.
0: میں لاسٹ کال لوں گی 9295 لاسٹ کال.
7: جی تھینک یو سو مچ. جی تھینک یو فار پوٹنگ می آن ایئر. السلام علیکم ٹو ایوری باڈی. دیکھیں 28ویں ترمیم کی جہاں تک بات ہے تو وہ ایک چودھری صاحب آتے ہیں نا, انہوں نے بڑے ٹھیک کہا کہ پیپلز پارٹی بھی شامل ہو جائے گی, کیونکہ یہ چور اکٹھے ہی رہیں گے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے, یہ کبھی بھی الگ نہیں ہو سکتے, یہ ایک دوسرے کو کھلاتے رہیں گی, رشوتیں چلتی رہیں گی, بدماشیاں عروج پر رہیں گی, اور یہ دونوں پارٹیاں ایسی اس ملک کو جو 50 سال سے لوٹ پھوٹ کے کھا رہی ہیں لوٹ پھوٹ کے کھاتی رہیں گی. جہاں تک رہ گیا سوال آپ کا,
0: ٹائم ختم ہو گیا ایک دم ایگزیکٹ. اچھا شکریہ, تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ بلال سر آپ کا.

சோறு கிடைத்தால் தன் உயிரை விற்கும் மந்தை இரண்டு

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm. The Lovey Dovey Show, driving you home. A melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto, Canada. Monday to Friday.
2: क्या आप सुन रहे हैं?
3: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
3: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवर्टाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए।
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
4: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।

A very good morning. Namaskar. Assalamu alaikum. Sat Sri Akal. Khush Aamdeed. Main hoon Shivani. Mere saath hain Aamir aur Aamir aur Shivani ke saath. Shuru ho chuka hai Lovey Ravi Show on CMR FM 101.3. Humse raabte ka number hai, baatcheet ka number hai, kisi bhi jaankari ka number hai. 416-303-3639. बड़ा खूबसूरत सा दिन चढ़ा है, बड़ी खूबसूरत सी धूप आई है और बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आई है और साथ में लेकर आई है आपका साथ जो बना रहेगा 11 बजे तक. लेकिन आपका हमारा साथ 11 बजे के बाद भी बना रहता है जब आप हमसे बातचीत करते हैं शो के बारे में, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के बारे में, डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन कोर्स के बारे में या कोई भी जानकारी के लिए. नंबर टू रीच 416-303-3639. बहुत सारी बेस्ट विशेस आपके लिए. आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे, हर एक लम्हा हर एक मोमेंट आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा प्यार, अपनों का बहुत सारा साथ, बहुत सारी खुशियां और बहुत सारी सेहत लेकर आए, ऐसी हम कामना करते हैं. भाई देखिए, देखते देखते ये महीना भी बस कुछ दो हफ्ते भर का मेहमान है, उसके बाद जून के जिम्मेदारी पर छोड़ के हमें ये महीना भी चल देगा, है ना. ऐसी ज़िंदगी खुड़ा लगा कर उड़ती रहती है, पल लम्हे मोमेंट्स जो हैं वो अपनी रफ्तार से आगे बढ़ते रहते हैं. हमें भी उन्हीं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होता है और हर एक स्ट्रगल, हर एक परेशानियाँ, खुशी हो गम हो, उसको साथ लेकर ये सफ़र बढ़ता है. ये ज़िंदगी की सड़क है, आराम से अपनों के साथ पार होती है. हौसला रखिए, हिम्मत रखिए, सुनते रहिए लवी डवी शो.

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
4: लवी रवि शो, आप है आमिर और शिवानी के साथ। आमिर कहते हैं, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो।
5: ओहो।
4: हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो।
5: वाह, क्या कहने, बहुत
4: इंसान
5: अच्छा।
4: हारे क्यों, मतलब अच्छा नहीं हारना चाहिए।
5: नहीं, मुझे लगता है जहाँ मामला मोहब्बत का हो वहाँ हार जाना चाहिए।
4: अच्छा अच्छा लगता है ना।
5: हाँ, देखिये मेरी गुफ्तगू का आगाज भी मोहब्बत से होता है।
4: फ्लक्चुएट टॉपिक के हिसाब से
5: कहीं कहीं बंदा हार के जीत जाता है, और कहीं कहीं जीत के भी जीत नहीं पाता। शिवानी, आप इन बातों को नहीं समझ पाएंगे।
4: देखिए, कहते हैं ना कि ऊपर वाले के सामने जब हम प्रेयर करते हैं,
5: हाँ,
4: तो हम हारते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है।
5: हाँ हाँ बिल्कुल,
4: क्योंकि हमें पता है जितना हारेंगे वो उतना हमें उठाएगा।
5: हाँ हाँ हाँ बिल्कुल।
4: बच्चे हैं छोटे, उनके सामने कितना अच्छा लगता है हारना।
5: yes.
4: वो क्लैप करते हैं कि हमने पेरेंट्स को हरा दिया, उन्हें गिरा दिया, उनके ऊपर हम चढ़ के बैठ गए, और हम दिखाते हैं कि मतलब वी हैव अ हेल्पलेस, यू नो, वी लॉस्ट इट, यू वन द बैटल। तो यू नो, डिपेंड करता है कि, और कभी कभी ऐसे मजबूती से खड़े हो जाते हैं कि कर लो जो हमें, जो करना है हमारे लिए, है ना।
5: चलिए, आप भी क्या याद करेंगी, आपके लिए ये बात पेश करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि झूठ होता है तो सच की पहचान रहती है, हार है तो जीत अपना वजूद रखती है। अगर हार खत्म हो जाए दुनिया में से, हार को मिटा दिया जाए कि हार जैसी कोई कैफियत दुनिया में मौजूद नहीं है, तो जीत का मजा बेमानी हो जाएगा।
4: बेमानी हो जाता है, सही।
5: तो मुझे लगता है कि कभी कभी जिंदगी में हारना भी जरूरी है। और अगर आपने वाकई किसी कामयाब इंसान से जिंदगी में मिलना है, तो ऐसे शख्स से मिलिए जिसने जिंदगी का उतार भी देखा हो और चढ़ाव भी।
4: बहुत सही।
5: कोई ऐसा शख्स जिसने सिर्फ चढ़ाव ही देखा है, वो जिंदगी के मानी को नहीं जानता, उसके जुल्म को नहीं जानता, उसकी ज्यादती को नहीं जानता, उसके असल चेहरे को नहीं पहचानता। मुझे लगता है कि इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। हारना कभी कभी बहुत जरूरी है। जैसे सुबह सुबह जल्दी आना हो, ट्रैफिक के सिग्नल से हार गए आप, किसी बहुत बड़े ट्रक से हार गए आप, किसी खूबसूरत चेहरा देखते देखते हार गए आप। सो ये हारना, छोटी छोटी हारें भी बंदे को हार के तौर पर तस्लीम करनी चाहिए। एक पहलू और भी है कि कुछ लोग हार जाते हैं लेकिन हार तस्लीम ही नहीं करते। ये बहुत ज्यादती है भाई। भाई मान जाओ भाई, हार गए, जैसे मैं हमेशा ही मान जाता हूँ। ना भी हारूं तो मैं मान ही जाता हूँ।
4: अब देखिए ना, कनाडा में जो हम लोग

0: चार महीने एटलीस्ट ठंड जो रहती है, उससे पहले फॉल में भी ठंड शुरू हो जाती है, स्प्रिंग में भी ठंड होती है, अभी तक थोड़े दिन पहले तक हमें ठंडी मिली थी। तो हमें एक समर के ये तीन महीने हमें लगता है कि पता नहीं जिंदगी जी लें इन तीन महीने।
1: वाह वाह, तो
0: बिल्कुल सही कहा आप, कल ये जो रात थी वो इसलिए कुछ लोगों की गुजरी होगी कि ऐसा दिन हमें
1: बिल्कुल मिलेगा। वो परवीन शाकिर का एक शेर मुझे याद आ रहा है, आप शेर की जुबान में ज्यादा बात समझती हैं और जानती हैं और पसंद करती हैं, तो कभी कभी शेर भी मेरे जहन में आ ही जाता है।
0: कभी कभी आप तो रोज उधार चुकता उसी दिन कर देते हैं, कर्ज रखते ही नहीं।
1: इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। यानी वो हारना ही नहीं चाहती प्यार के मामले में, वो कहती हैं कि जीतूं या हारूं रहूंगे मैं तुम्हारी।
0: वो है ना छाप तिलक वाला गाना, कि जो मैं हारी तो मैं तुम्हारी, जीते तो तुम मेरे, तो बेनिफिशियरी मैं ही हूँ।
1: बिल बेनिफिशियरी मैं ही हूँ। ये मुझे लगता है कि इस गाने में मेरा ही जिक्र हो रहा है। आप भी घड़ियों से घड़ियां मिला लीजिए, दिलों से दिल तो मिल ही गए हैं। 9:14 हुए आपका हमारा साथ रहेगा लवी डवी शो के तवसुत से आज 11 बजे तक, और आप के गोश गुजार करते चले जाएं कि डिजिटल मीडिया की क्लासेस 23 को शुरू हो रही हैं, ये 2-3 दिन ही बाकी रह गए, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। इस हवाले से हम मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ भी नशर करेंगे आपकी खदमत में, ज़रूर समाप्त फरमाइएगा। स्टे ट्यून्ड, दिस इज लवी डवी शो।
2: क्या आप सुन रहे हैं? इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
3: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
4: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा, कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
5: मम्मा, व्हाई डोंट यू गो टू वर्क नाउ?
6: बेटा तुझे क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी ही रुक गई है, एक महीने से काम पर नहीं गई और अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर रही है।
7: जिंदगी रुकती नहीं, बस रास्ता बदलना पड़ता है। कॉल सैयद एम रजा, आर कम्युनिटी इंजरी लॉयर, इंजरी लॉ के एक्सपर्ट लॉयर।
6: क्या वो मदद करेंगे?
7: मदद करेंगे, उन्होंने एक क्लाइंट को $2 मिलियन की एग्रीगेट सेटलमेंट दिलवाई, तुम्हारे लिए भी लड़ेंगे। इनके पास 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है एंड नो फी अंटिल विक्ट्री।
8: कार एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल, डोंट कॉल एनी थर्ड पार्टी एजेंट, डायरेक्टली कॉल सैयद एम रजा ऑफ सैयद लॉ, सैयद लॉ से सैयद एम रजा,
7: जहां सिर्फ वादे नहीं रिजल्ट मिले।
8: कॉल सैयद एम रजा 416-937-5046, दैट इज 416-937-5046।
9: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर,
10: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
9: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
11: सिर्फ मॉर्गेजेस, दैट्स राजीव तलवार द मॉर्गेज सुपरस्टार। मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल, फॉर कस्टमाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस चूज राजीव तलवार। मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो, लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो, राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा। तो याद रखिए, मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं, बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं। कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 9058191001, 9058191001, license number 12374।

0: राजधानी राजधानी
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: लविटा विशु, आप हैं आमिर और शिवानी के साथ। डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन कोर्स 23 मई से शुरू हो रहा है और इसी सैटरडे आमिर।
1: यस, दिस सैटरडे आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू बी ऑनेस्ट विद यू।
0: 3 डेज टू गो। वेंसडे को आज छोड़ दिया जाएगा, थर्सडे फ्राइडे दो दिन है।
1: जी, दो ही दिन रह गए हैं और द सूनर द बेटर। बहुत कम सीट्स होती हैं, आखिरी कोई 3 सीट्स रह गई हैं। मैं चाहता हूं कि वो भी चली जाएं एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू डिलीवर दिस कोर्स। ये हमारा 8वां बैच होगा। 7 बैचेस में कोई तकरीबन 80 के करीब लोग हम ट्रेन कर चुके हैं और दे आर सक्सेसफुली रनिंग देयर ओन मार्केटिंग कैंपेन्स, बिजनेस कैंपेन्स। अपना काम वो खुद कर रहे हैं, किसी की उनको ज़रूरत नहीं है, इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। फिनोमिनल इसके रिजल्ट्स रहे हैं। को तकरीबन 1.5 साल हुआ हमें ये कोर्स शुरू किए हुए एंड वी नेवर लुक बैक। कमाल का कोर्स चल रहा है। लोग जब ट्रेन होके मार्केट में आते हैं और अपना काम खुद कर रहे होते हैं तो यकीन माने दिल को एक खुशी होती है कि पीपल हैव रिड्यूस देयर मार्केटिंग बजट। अगर वो साल का $50,000 लगाते हैं अपने बजट पे मार्केटिंग पे तो वो कम होके 20,000 ही रह जाता है। और करना है सिर्फ 1 महीने का कोर्स, उसमें 8 क्लासेस हैं टोटल। तो आप भी इनरोल कराइए 416-303-3639। 23 तारीख को ये कोर्स शुरू हो रहा है, हफ्ते के दिन यानी सैटरडे को ये कोर्स शुरू हो रहा है यहाँ ब्रैम्पटन में। कॉल कीजिए, रजिस्टर कराइए और सारी जिंदगी के लिए डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन और मार्केटिंग की प्रैक्टिकल स्किल सीखिए। नंबर अगेन 416-303-3639। शिवानी, आप मौसम देख के कपड़े पहनती हैं या मतलब मौसम बाहर कैसा भी हो तो बस आपने जो पहले से डिसाइड किया होता वो पहन लेती हैं?
0: जी, मौसम कैसा भी हो, जो पहले से डिसाइड कर लिया मैं वो पहन लेती हूँ।
1: नहीं तो अगर मौसम अचानक ऐसा बिगड़ जाए कि आपके जो पहने हुए कपड़े हैं वो आपको लगे कि नामौजू हैं तो उसका तो कोई हल भी नहीं है।
0: नहीं, उसका हल ये होता है कि उसके ऊपर एक मेरे पास बहुत बड़ा चोगा टाइप का है। प्रीस्ट पहना करते थे ब्लेस करने से पहले लोगों को।
1: वो पुरानी फिल्मों में जो विलन पहनते थे, मतलब बड़ा लंबा सा।
0: वही तो, वो पूरा कवर हो जाता है ऊपर से नीचे तक। अच्छा, जो चोगा अच्छा। उसको पहन के कार में ही बैठना है, कार से ऑफिस आना है। तो एक्चुअली मैं एक कंफर्ट जोन टाइप की लड़की हूँ, नंबर 1 की आलसी।
1: ओह माय गॉड,
0: लेजी नंबर 1। बस मुझे एक चीज अच्छी लगती है, आई कैन टॉक ऑन फोन आवर्स एंड आवर्स।
1: यस,
0: फिजिकली मुझे गाड़ी चला के जाना बिल्कुल बेयर मिनिमम, अगर बिल्कुल जरूरत हो तभी मैं।
1: किसकी गाड़ी? यानी अपनी गाड़ी?
0: जी अपनी।
1: अच्छा अच्छा, मतलब किसी की नहीं चला सकती गाड़ी आप?
0: नहीं, इतनी ज्यादा सोशल सर्विस मैंने कभी नहीं की।
1: नहीं, मैं सोचा अगर किसी की चला सकती हैं तो आज मैं आपसे गुजारिश कर लेता हूँ थोड़ी बहुत के मतलब।
0: नहीं, सॉरी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये इतनी मैं लेजीनेस मेरी बहुत तगड़ी है और बहुत लॉयल है मेरे साथ मेरी लेजीनेस। और मेरी कार जो है वो कभी कभी, हमेशा से ये प्रॉब्लम रही है। जब मैं नई डीलरशिप से भी कार लेकर आती हूँ,
1: अच्छा,
0: वो कार बंद होने के बाद कभी कभी स्टार्ट नहीं होती।
1: नई कार भी स्टार्ट नहीं होती?
0: जी, चलती का नाम गाड़ी मूवी देखी थी?
1: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा।
0: तो 5 रुपया 12 आने वाली, तो वो गाड़ी मेरी जो है वो चलती बीच में रुक जाती है।
1: अच्छा।
0: कोई स्ट्रीट टोरंटो की ऐसी नहीं है जहाँ कम से कम रोज 5 लोगों ने मुझे हॉन्क ना किया हो।
1: तो नहीं तो आप ढंग से सीखी क्यों नहीं लेती है बार, मतलब गाड़ी?
0: बहुत कोशिश की, मैं हमेशा से बहुत ब्राइट स्टूडेंट रही हूँ।
1: अच्छा, गाड़ियों के मामले में हिम्मत हार गई?
0: हाँ, मतलब मुझे मैथ में मेरे पूरे नंबर आते थे और साइंस में पूरे नंबर आते थे और पॉलिटिकल साइंस में पूरे नंबर आते थे, डिबेट में नंबर आते थे, गाने और डांस में नंबर आते थे,
1: लेकिन गाड़ी चलाने में आप हिम्मत हार गई।
0: क्या हो गया? मतलब
1: कैसी भी गाड़ी हो, बड़ी हो या छोटी हो, आपको दिक्कत पेश आती है गाड़ी चलाने में?
0: जी, दिक्कत पेश।
1: अच्छा, वो किस्तों की गाड़ी हो या नकद भी लेके आई हो, कोई उसमें कोई
0: उधार की हो, इनाम की हो?
1: इनाम की हो, लेकिन
0: मुझे पसंद ही नहीं।
1: लेकिन बात चूंकि लिबास की हुई थी तो आपने आज एक बड़ा ही खूबसूरत सा हार जेब तन किया हुआ है और इस पर मैं देख रहा हूँ बड़े मुख्तलिफ रंगों के पत्थर लगे हुए हैं। ये कोई जेमस्टोन्स हैं? आपको किसी ने बताया है कि भाई ये जेमस्टोन्स पहने तो वारे न्यारे हो जाएंगे आप?
0: जी, वैसे जो लोग जेम्स में बिलीव करते हैं, वो जो रिंग्स पहनते हैं या फिर कुछ गले में पहनते हैं, दे स्ट्रांगली बिलीव इन दैट और इट वर्क्स फॉर देम.
1: वैसे तो यू आर एन एब्सोल्यूट जेम बाय योरसेल्फ, लेकिन आपने भी जेम्स पहन रखे हैं. और
0: लिसनर्स 4163033639, अगर आपको अपनी तारीफ करानी हो, लग रहा हो कि बहुत दिनों से आपकी प्रेज नहीं हुई है, कोई आपको अपलिफ्ट करे, कोई बहुत
1: सही अच्छी तारीफ कर रहा हो, तो, सही वाली,
0: तो वेंसडे के दिन 9:23 के आसपास हमारे स्टूडियोज में कॉल कीजिए.
1: यकीन नहीं आया ना कि मैं सही वाली कर रहा हूँ. आई एम गिविंग यू अ जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट.
0: ये माला है, इसको
1: अच्छा, माला कहते हैं. अच्छा, सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम
0: है, इसमें कोई किसी की सांसें नहीं है. ये दुकान से फेक वाली माला है जो मेरे इस टॉप के साथ बहुत अच्छी जाती है.
1: वो इसीलिए मैं तारीफ कर रहा था कि यूं लगता है कि जैसे ये जो आपने लिबास पहन रखा है उसकी मुताबिकत से बड़ी खूबसूरत सजी है, ये जची है आप पर ये माला.
0: ये बीट्स मोतियों की है, लेकिन ये जेम्स नहीं है.
1: अच्छा, जेम्स नहीं, जाली है ये.
0: जाली.
1: अच्छा, ओ माय गॉडनेस, में
0: फ्रॉडी टाइप.
1: आप सुन रहे हैं लवी डबी शो. आपका हमारा ये ताल्लुक जुड़ा रहेगा आज 11 बजे तक. स्टे ट्यून्ड.

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
4: शगन का दिन चढ़ेगा, सजना घर आएंगे, टोली लेकर जाएंगे, दुल्हन सजेगी, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी। शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।
5: Nikki Gandhi of Home Life Miracle Realty brings you brand new freehold townhomes in Brampton. Mavis Road and Ray Lawson Boulevard ke Asan se intersection par Rollingwood Towns launching June 1st. Starting price just from $600,000. 3 se 5 bedroom options available. Approximately 1300 se 1900 square feet ke layouts available. Extended deposit structure, extended closing available and great incentives for first time home buyers. Early launch pricing or limited release ke liye exclusively call Nikki Gandhi at 416-456-3815. That's 416-456-3815. Your trusted listing agent for Rollingwood Towns for VIP access, pricing and floor plans. Don't miss this opportunity.
6: जी साहब, कुछ opportunities miss करने वाली नहीं होती, वो जाया हो गई तो समझ लीजिए ना सिर्फ साल, दो साल, तीन साल जाया हो जाएंगे, बल्कि प्रॉफिट की बात करें, इंसेंटिव की बात करें, एसेट्स बनाने की बात करें, ग्रोथ की बात करें, प्रोग्रेस की बात करें या मनी मेकिंग की बात करें, ये सब सिलसिले फौरन रुक जाते हैं, क्योंकि हम एक बड़ी और बड़ी लुक्रेटिव ऑफर को या तो जाया कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं या मिस कर देते हैं। इसलिए जरूरी है कि आज की ये गुफ्तगू बहुत ध्यान से सुनिएगा। कमाल का प्रोजेक्ट आया है और ये प्रोजेक्ट लॉन्च होगा 1 जून से मेविस रोड एंड रे लॉसन बॉलीवुड पर। ब्रैंड न्यू फ्री होल्ड टाउन होम्स हैं और स्टार्टिंग फ्रॉम 600,000। और ये कहा जाता है कि आज के दौर में अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, प्रोजेक्ट खरीदना है, घर खरीदना है, कॉन्डोज खरीदने, आज का टाइम बेहतरीन टाइम है, क्योंकि बायर्स मार्केट है। नाउ इज द टाइम टू बाय एंड बाय फ्रॉम वन एंड ओनली निकी गांधी जी, जो कहती हैं कि बहुत आसान डिपॉजिट स्ट्रक्चर आपको लेके देंगी। वेलकम करते हैं मैडम आपको।
7: जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फॉर पुटिंग मी ऑन एयर, और सभी लिसनर्स को मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग।
6: बहुत बहुत शुक्रिया।
7: बहुत सही कहा आपने कि बहुत ही राइट टाइम अपॉर्चुनिटी है, और वो भी और कहीं नहीं, हमारे शहर ब्रैम्पटन में आ रहा है। बहुत ही एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है और हम बात कर रहे हैं रोलिंग वुड्स टाउन की। आज के मार्केट में सबसे बड़ा हमारा एडवांटेज क्या है कि बिल्डर्स जो है वो हमें अमेजिंग इंसेंटिव दे दे, राइट? तो रोलिंग वुड्स टाउन जो है वो बायर्स के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो रहा है सिर्फ और सिर्फ 600 में, जिसकी क्लोजिंग भी आपको मिलेगी 2028 अर्ली में। जो बायर्स को एक्सटेंडेड डिपॉजिट स्ट्रक्चर और प्लानिंग की फ्लेक्सिबिलिटी बेसिकली दे रहा है, राइट? मतलब कि आपको एक कंफर्टेबल और स्मार्ट वे में इन्वेस्ट करने का बहुत ही बढ़िया मौका, अच्छा मौका मिल रहा है, राइट? और सबसे एक्साइटिंग बात इसमें लोकेशन, सो ये जो है वो मेविस एंड रेलोसन बॉलीवुड के प्राइम लोकेशन पर है, जो कि ब्रैम्पटन और मिसिसागा की बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक है। ये जो ब्यूटीफुली टाउन हाउसेस जो है वो आजकल के मार्केट में बहुत ही ज्यादा हाई डिमांड में है, और रियल एस्टेट में हमेशा कहा जाता है, राइट, कि लोकेशन लोकेशन लोकेशन। सो ये जो रोलिंगवुड टाउन्स उस पॉइंट पर बहुत ही परफेक्टली फिट बैठ रहा है आमिर जी. मेजर हाईवेज जैसे कि 401, 407, स्कूल, शॉपिंग, ट्रांजिट, डेली अम्यूनिटीज की जितनी भी चीजें सभी के सभी इतनी नजदीक है. शेरिडन कॉलेज से सिर्फ 3 मिनट के डिस्टेंस पर है. हार्टलैंड टाउन सेंटर, शॉपर्स वर्ल्ड, कॉस्को, वॉलमार्ट, रेस्टोरेंट, ग्रोसरी, सब कुछ बहुत ही कन्वीनियंटली लोकेटेड पे है. सो जो भी फैमिलीज और इन्वेस्टर दोनों के लिए बेसिकली ये एक स्ट्रांग लोकेशन है, राइट?
6: जी.
7: और एक और खास बात बता दूं इस लोकेशन की कि ये जो पॉकेट है ना, इसके 4 से 5 किलोमीटर के रेडियस में आज तक बहुत काफी टाइम से कोई भी नया प्री कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट नहीं आया है.
6: नहीं आया.
7: तो और हम देख भी नहीं रहे नियर फ्यूचर में कि इस रेडियस में कोई और प्रोजेक्ट आया. सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. सो गाइज प्लीज डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे 1300 से 1900 स्क्वायर फीटेज के हर तरीके के 3 से 5 बेडरूम तक के मॉडल्स अवेलेबल होंगे. सो अगर आप इन्वेस्टर हो, अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ रह रहे हो, आपके लिए हर तरीके का फ्लोर प्लान हमारे पास मौजूद है गाइज. और इसके साथ साथ एक खास बात आमिर जी, आपको पता ही होगा कि अभी जो चल रहा है जीएसटी एचएसटी रिबेट, जिसपे बायर्स जो है अप टू 130,000 तक के बेनिफिट ले सकते हैं न्यू घर, जो भी नए घर ऑन्टारियो में बन रहा है, राइट?
6: बिल्कुल ठीक.
7: तो इस वजह से प्री कंस्ट्रक्शन की मार्केट है और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बन गई है, उसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है. और ये जो अप टू 130,000 का जो रिबेट मिल रहा है, ना सिर्फ फर्स्ट टाइम होम बायर के नहीं पर इन्वेस्टर के लिए भी बन रहा है.
6: बिल्कुल.
7: तो दोनों के लिए ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रही है. सो दोस्तों मैं यही कहूंगी कि मार्केट जो है वो धीरे धीरे ओपन अप हो रही है, इंटरेस्ट रेट जो है वो भी स्टेबलाइज हो रहा है, बायर्स का कॉन्फिडेंस भी वापस आ रहा है. जो लोग वेट कर रहे थे ना, उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है अगर आपने मार्केट में इन होना है, राइट? सो अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो, अगर आप इन्वेस्टर हो, अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर रखना चाहते हो, रोलिंगवुड टाउन डेफिनेटली एक स्ट्रांग अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आ रहा है. और आमिर जी मैं एक और बात बता देती हूँ कि हम जो है विद द होम लाइफ मिरेकल, आई एम निकी गांधी, मैं बिल्डर के साथ लिस्टिंग एजेंट हूँ. सो इवन सभी रियल्टर, सभी मेरे भाइयों बहनों, ब्रोकर, सभी को भी अगर किसी को भी आना है, दे आर मोर देन वेलकम. कॉल मी एट 416-456-3815. हमारा जो ब्रोकर लॉन्च, ये प्रोजेक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं सभी ब्रोकर के लिए, वो है June 1st को. सो ऑल दी ब्रोकर्स, ऑल दी रियल्टर्स आर मोर देन वेलकम टू ज्वाइन दिस वन. फील फ्री टू कॉल मी एट 416-456-3815. और अगर और ज्यादा जानकारी चाहिए, प्राइजिंग, फ्लोर प्लान, इंसेंटिव, सो गिव मी कॉल एट 416-456-3815. Right now, guys, this is the project you need to invest, Rolling Woods Town. Give me call right away, 416-456-3815. और अभी एक और बात बताना चाहती हूँ, मेविस एंड रिलोसन बुलेवर्ड के बिल्कुल इंटरसेक्शन पे एक मस्जिद भी आ रहा है, राइट?
6: बिल्कुल
7: इसके सामने बन रहा है. बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी गाइज. जो कुछ भी चाहिए, आपको वर्शिप की जगह चाहिए, आपको शॉपिंग चाहिए, आपको ग्रोसरी लेनी हो, कुछ भी लेना हो, एवरीथिंग इज क्लोज बाय गाइज. डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. कॉल करें अभी 416-456-3815.
6: और साहब 3 से 5 बेडरूम के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 1300 से 1900 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल है, ये एक्सटेंडेड डिपॉजिट स्ट्रक्चर है और क्लोजिंग 2028 में होगी, बहुत सस्ता और ऑन टॉप ऑफ दैट बहुत आसानी से खरीदा जाने वाला, यानी इतनी छोटी छोटी किस्तें हो कि आपको महसूस भी ना हो और घर आपका हो जाए. कमाल का प्रोजेक्ट लाई है और वो भी यहां ब्रैम्पटन में. कॉल जरूर कीजिए, बात कीजिए, मशवरा कीजिए, इंफॉर्मेशन लीजिए. इंफॉर्मेशन लेने में कुछ जाता नहीं है, आपको कुछ मिलेगा ही, आपका कुछ जाएगा नहीं. ये नंबर मिला है आप 416-456-3815. नंबर दोबारा बता रहे हैं आपको 416-456-3815. बहुत शुक्रिया निकी जी, थैंक यू वेरी मच.
7: शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे.
0: The Lovey Dovey Show, driving you home, a melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto, Canada, Monday to Friday.
8: लवी डवी शो, आप हैं आमिर और शिवानी के साथ 416-303-3639 और आमिर आपकी पसंद का गाना है आओगे जब तुम।
6: ये आपने कहाँ से निकाला है आज गाना?
8: ये
6: मैंने फरमाइश पर चला रही हैं ये आप गाना?
8: आपकी फरमाइश पर, लोगों ने फरमाइश की आपके लिए।
6: कुछ गाने ऐसे होते हैं ना कि जिनको सुनने के बाद एक पूरा जमाना आपकी आंखों के सामने ताजा हो जाता है।
8: जी बिल्कुल,
6: you know?
8: बिल्कुल। गुलजार साहब कहते हैं बहुत अच्छी बात कि परेशान है वो इस बात पर कि कोई उन्हें समझ नहीं पाया।
6: ओह,
8: जरा सोच के देखिए कि तुमने कितनों को समझ लिया।
6: चलिए इसी नौहियत की एक बात मैं भी आपको सुना देता हूँ। ये खूबसूरत सी एक नज्म है परवीन शाकिर की। वो कहती हैं, अपने फोन पे अपना नंबर डायल करके मैं ये सोचती हूँ ना जाने वो घंटों किससे बातें करता है।
8: क्या बात है, अमेजिंग।
6: उस वक्त में शेर की थोड़ी बहुत तशरीह करने की इजाजत है। उस दौर में जब लैंडलाइंस हुआ करते थे और चोरी चोरी हम एक दूसरे को फोन किया करते थे, तो अगर अगले बंदे के लिए बात करना मुमकिन नहीं होता था तो बिजी की टोन आ रही होती थी, यू नो, बिजी की टोन आती थी। लेकिन अगर आप अपने नंबर पे अपना नंबर ही डायल करेंगे तो तब भी बिजी की ही टोन आएगी, बिजी की टोन आती
8: जी।
6: है। तो वो कहती है कि अपने फोन पे अपना नंबर डायल करके मैं ये सोचती हूँ ना जाने वो घंटों किससे बातें करता।
8: व्हाट अ डीप थॉट है ना। क्या बहुत, किसी ने कहा है कि आजकल सब परेशान हैं अमर, सब जिंदगी से परेशान होते हैं, कभी कभी हालात से परेशान होते हैं, वक्त से परेशान होते हैं, और ज़िंदगी में कई लोग भरोसा भी खो देते हैं। तो किसी ने बहुत खूबसूरत सा लिखा है कि क्यों ना आप वो रीज़न बने कि इंसान वापस अपना भरोसा ज़िंदगी में अलाइव कर पाए। बी द रीज़न समवन बिलीव्स अगेन इन जेंटल हार्ट्स, इन गुड एनर्जी, इन क्वाइट काइंडनेस एंड लाइफ। बी द रीज़न होप फील्स पॉसिबल, and be the reason life feels worth embracing once again. Be the reason someone chooses softer thoughts, dares to keep dreaming, and remember that not everything beautiful is lost. Sometimes just being who you are is already enough to light the way.
6: Zindagi bahut khoobsurat, anmol aur nayab tohfa hai. Kabhi kabhi insaan kuch manazar dekhkar, kuch logon se milkar, कुछ वाकयात को देखकर अंगुष्ट बदंदा हो जाता है। इंसान को यकीन नहीं आता, इंसान शशदर रह जाता है। इंसान को ये लगता है कि ये हकीकत नहीं है, लेकिन ऊपर वाला कभी कभी ऐसे मोजज़े दिखाता है, ऐसी ऐसी करामात होती हैं कि इंसान के लिए वो आँखों का धोखा, जिसे शराब कहते हैं, इसे कहते हैं शराब, आँखों का धोखा, शराब सी जिंदगी महसूस होती है, इल्यूजन जिसे हम कहते हैं। तो अगर आप भी जिंदगी का हकीकी मजा लेना चाहते हैं, लुत्फानंदोज होना चाहते हैं, तो एक काम कीजिए, आज मेरी बात मान लीजिए, जिंदगी को सादा कर लीजिए।
8: क्या बात,
6: जिंदगी जितनी सादा होगी उतनी खूबसूरत हो जाएगी। ख्वाहिशों के अंबार ने आरजुओं तमन्नाओं के एक ना खत्म होने वाले अनमिट सिलसिले ने हमारी जिंदगियों को बहुत पेचीदा कर दिया। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है, खास तौर पर शिवानी की खूबसूरत आवाज सुने तो और भी खूबसूरत हो जाती।
8: फिर ये नंबर देना चाहूंगी, वेंसडे के दिन अगर आपको अपनी तारीफ करानी है 416-303-3639 पे राइट अवे कॉल कर लीजिए।
6: नहीं तो थर्सडे को कोई और नंबर है तारीफ कराने का,
8: वो हम कल बताएंगे। हम चाहते हैं लिसनर्स कल भी जुड़े हमारे साथ।
6: स्टे ट्यून्ड, दिस इज लवी डवी शो।

0: और साहब ऐसा खूबसूरत सा गीत हो, सर पर पूरे बाल हो और इस तरह का शानदार मौसम हो बाहर, शिवानी आप जैसी आवाज़ हो और यहाँ नवीन जी हो जो हमें मशवरे दे रहे हों, तो मुझे लगता है और किसी चीज़ की गुंजाइश यहाँ रहती नहीं है।
1: मतलब लाइफ में क्या मतलब बचा?
0: बिल्कुल लाइफ में उसके बाद फिर सिर्फ वाइफ ही बच जाती
1: नहीं, और हेयर फॉल जैसी कोई डेफिनेशन दुनिया से इरेडिकेट हो गई।
0: आज हम आपकी बात करवा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने ये बेड़ा उठाया है, अपनी मेहनत से अपना सिक्का जमाया है और ये आपका इलाज करती हैं, आपके सर के बाल वापस लाती हैं। और इनका ये कहना है कि तीन ही सेशंस के बाद शिवानी जितने भी बाल गिरे हुए हों, कोई किसी की नजरों से ना गिरा हो बाल, जा चाहे जितनी भी मर्जी गिरे हों, वो वापस जरूर लाएंगे, 100% ये इनकी गारंटी है।
1: और बस ये थोड़ा सा है कि बिल्कुल ऐसा ना हो कि आपके बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है उस स्टेज पे आप पहुंचे, लेकिन अगर आपके थोड़े से भी हेयर हैं और कुछ भी गुंजाइश है, स्कोप है हेयर ग्रोथ की, तो ये मिरेकल नवीन जी करके देंगे।
0: और बाल चाहे किसी भी वजह से झड़े हो, ये भी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट,
1: टेंशन हो, स्ट्रेस हो, उसके अलावा कौन सी वजह बता रहे हैं, आई डोंट नो, और कोई भी गॉड फॉरबिड्स कोई इलनेस हो उसकी वजह से गिरे हो, तो
0: ये तो आप मजलूम हस्बैंड से पूछिए कि और क्या वजह हो सकती है बाल गिरने की। शामिल करते हैं नवीन जी, वेलकम है आपका।
2: थैंक यू सो मच आमिर जी।
0: आप बहुत से बाल उगा चुकी हैं, तो रात को ख्वाब में सोते हुए भी आपको बाल ही दिखाई देते होंगे या मतलब वो सर दिखाई देते होंगे जिनमें बाल नहीं है, तो आपको कैसा महसूस करती हैं?
2: मैं वो फोन जो है ना मेरा, उसमें पिक्चर्स हैं ही सारी, तो वो इट्स एंबैरसिंग कि अगर वो किसी के सामने खुल जाए तो वो बिफोर एंड आफ्टर की जो पिक्चर्स है वो अच्छी नहीं नजर आती। लेकिन खैर जिनको फायदा पहुंचता है उनके लिए तो बहुत खुशी की खबर है।
0: अच्छा।
2: कि उनकी पिक्चर जो है बिफोर एंड आफ्टर की भी मेरे फोन में आए कि अगर उनके बाल नहीं हैं तो उनके बाल हम उगा देंगे।
0: तो कहीं कहीं जब आप देखती हैं गाड़ी चला रही हैं, जा रही हैं, रास्ते में आपको कोई ऐसा शख्स दिख गया जो गाड़ी चला रहा है उसके सर पे पूरे बाल नहीं है, तो आपको अपना गाहक गाहक नजर आता होगा बीच में, कोई क्लाइंट क्लाइंट टाइप है?
2: वो गाड़ी वालों से तो मैं नहीं अप्रोच कर सकती, हाँ, लेकिन वैसे अगर कहीं किसी शॉप में वॉलमार्ट में नजर आए तो दिल जरूर करता है कार्ड पकड़ा दूं।
0: अच्छा।
2: स्पेशली लेडीज, उनको मेरा दिल करता है कि मैं हेल्प करूं क्योंकि वो ज्यादा कॉन्शियस होती हैं रादर देन मेन।
1: नवीन आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आमिर, आई 100% मैं रिलेट कर रही हूँ। कभी कभी कोई प्रोफेशन में होता है और इतनी डीपली इन्वॉल्व होता है अपने काम में, ऐसा लगता है कि इसको नॉट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर इसको ये सर्विसेज की जरूरत है, क्यों ये सफर कर रहे हैं, मतलब
0: बिल्कुल,
1: जब बाल आ सकते हैं।
0: आज की डेट में बुध का दिन है, यानी वेंसडे का रोज है, खूबसूरत मौसम है, कमाल की कंपनी है, तो मैं ये चाहता हूं कि जितने भी रिकॉर्ड आज तक बने हैं डिस्काउंट के, नवीन वो सारे तोड़ दें आज।
1: अच्छा।
0: आज कोई ऐसा डिस्काउंट दें कि जिसके सर पे उसके लगता है कि आज चार बाल भी कम हो गए तो वो भी इनके पास पहुंच जाए बाल दोबारा उगाने के लिए।
1: जी बिल्कुल, और जो ग्रुप के जो ग्रुप डिस्काउंट है नवीन वो भी देती हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: जो लेकर आता है उनको भी देती है रेफरल वाला, और जिनकी सर्विसेज जो सर्विसेज ले रहा होता है उनको भी डिस्काउंट होता है। इसलिए आप जो सुन रहे हैं, आपके जितने भी जान पहचान वाले हैं, बी द फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स या फिर अक्विंटेंस, उनको लेकर आइए और इस समय में अच्छे खूबसूरत से बालों का जो सपना है ना वो पूरा कर ही लीजिए।
0: अच्छा, ये जो शायरी है या फिल्मों में जो गाने वगैरह गाए जाते हैं नवीन, उसमें जुल्फों को बड़ी अहमियत हासिल है, तुम्हारी जुल्फें बड़ी घनेरी हैं, बड़ी काली हैं, बड़ी घनी हैं, बादलों की तरह हैं, घटाओं की तरह हैं, सुरमई बादलों की तरह हैं, तो ये सब ख्वाब अगर सच्चे करने हों तो उसके लिए कितने सेशंस लग जाते हैं? थिक एंड फास्टर ग्रोथ ऑफ द हेयर,
2: थ्री सेशंस आर रिकमेंडेड, वो तो आपको करवाने ही करवाने हैं।
0: अच्छा।
2: अगर आप अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, और 3 वीक्स के गैप से हम एक सेशन करते हैं, सो इट्स लाइक वंस अ मंथ, बहुत रीजनेबल है, पेनलेस है, और स्कैल्प माइक्रो नीडलिंग है, इससे हम आपके जो है हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करते हैं। अगर हेयर फॉल हो रही है, हेयर फॉल से आपके काफी बाल गिर गए हैं, तो प्लीज कॉन्टेक्ट कीजिए और माइक्रो नीडलिंग से फायदा उठाइए, और इट्स रियली यू नो वेरी इकोनॉमिकल।
0: आजकल किस तरह के क्लाइंट्स आपको मिल रहे हैं, नौजवान मेरे जैसे बिल्कुल बूढ़े 60 साल से ऊपर, 65, खैर अब तो मेरी 65 ही हो गई है, सो 65 ईयर प्लस ज़्यादा मिलते हैं आपको, नौजवान 17-18 साल के मिलते हैं, 45 साल के मिलते हैं, या शिवानी जैसे 19-20 साल की लड़कियां मिलती हैं आपको, कैसे लोग मिलते हैं ज़्यादा?
2: सब जो आपने सब रेंज बताई है एज की, वो सब आते हैं
1: रेंज
2: रेंज जो है ना, ये जो आपने एज की बताई है,
1: आई लव योर सेंस ऑफ ह्यूमर.
2: सो स्टार्टिंग फ्रॉम 17 इयर्स, अनफॉर्चुनेटली सुन के बिल्कुल बहुत दुख होता है, बच्चे जो बाल,
0: शुक्र है शिवानी भी बीच में आ गई, वरना आप अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे हो जाती तो ये मतलब बीच में से निकल जाती उस रेंज में से निकल जाती.
2: हाँ, उस रेंज में से निकल जाती, लेकिन हम दुआ करते हैं कि शिवानी को जरूरत ना पड़े. लेकिन जिसको है जरूरत वो उसके लिए जो है ना कोई एज लिमिट नहीं है, उसको स्टार्टिंग आफ्टर 16. अच्छा. पहले हम कोशिश करते हैं हम ना करें, लेकिन अगर बिल्कुल अल्टीमेट जरूरत है तो देन वी कैन. लेकिन सेफ है ये, मतलब इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है.
1: जी बिल्कुल.
2: पेन भी नहीं है, इकोनॉमिकल भी है, सो फायदा ही फायदा है अगर ये ट्रीटमेंट करवाई जाए.
0: मुझे एक साहब ने पूछा कि भाई मैं मूछें रखना चाहता हूँ, बड़ी मोटी और घनी और बड़ी जबरदस्त मूछें, ताव दे के मूछें रखना चाहता हूँ, लेकिन कहीं कहीं मूछों में बाल मेरे गायब हैं, और इसी तरह दाढ़ी में भी कहीं कहीं बीच बीच में से छोटे छोटे पैचेस आ गए हैं, वो भी गायब हैं. आजकल नहीं ये छोटी छोटी दाढ़ी रखी हुई लड़कों ने और अपने आप को बड़ा हीरो समझते हैं, तो वो यानी उसका कोई तरीका है, उस वो भी आप माइक्रो नीडलिंग कर देती?
2: बिल्कुल बिल्कुल. लोग फेस पे भी करवाते हैं क्योंकि फेस के लिए वैसे फायदेमंद है, फॉर रिंकल्स, फाइन लाइंस, मलाजमा, सब चीजों का इलाज है माइक्रो नीडलिंग में. तो फेस पे मतलब दाढ़ी के लिए भी करवाते हैं लोग, मूंछों के लिए ऑफकोर्स हेयर ग्रोथ सीरम हम यूज करते हैं.
0: अच्छा
2: जी जी.
0: ये सीरम क्या होता है?
2: ये हेयर ग्रोथ सीरम है जी, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का बना हुआ है, ये बहुत अमेजिंग सीरम है जो हम लगाते हैं और साथ माइक्रो नीडलिंग करते हैं, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ होती है.
1: जी. और आमिर, अभी आपने मुस्टैशेस की और बियर्ड की बात की, लेकिन ये फैक्ट है कि बिकॉज बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमन, हम मेरी जो जितनी फ्रेंड्स हैं, हम लोग जब एक साथ कभी कहीं जाते हैं, सबके बैग में हेयर ब्रश होता है टचअप करने के लिए, तो इट्स सो सैड टू सी, मतलब सभी के लिए ऐसा है, मतलब ऐसा नहीं है कि आजकल हम चूज करें, कई तो इतनी ज्यादा हेयर फॉल होते हैं कि बस एक स्ट्रोक के बाद उनका बहुत बड़ा बंच
0: खवातीन में.
1: यस, इट्स मतलब देख के बड़ा दुख होता है और फिर कहते हैं कि क्या करें, मतलब यू नो, अब
0: मतलब उनके हस्बैंड उनकी तारीफ भी नहीं कर सकते कि तुम्हारी जुल्फें बड़ी घनेरी हैं और गहरे बादलों की तरह
1: दुखी, दुखी देख के कर देते हैं, लेकिन
0: अच्छा अच्छा कर देते हैं,
1: लेकिन असलियत तो नहीं बदल जाती,
0: मतलब जाली तारीफ हो सकती है वो.
1: तो वो हेयर स्प्रे लगा के, वो वॉल्यूम मूव्स लगा के उसको अपने बालों को थोड़ा सा सेट करती है कि उस पार्टी के टाइम तक सेट रहे 2-3 घंटे, लेकिन क्या ही अच्छा हो अगर ये ट्रीटमेंट हो जाए जिससे.
0: जी बिल्कुल, परमानेंट सोल्यूशन हो जाए. बिल्कुल सही कहा आपने. ये नंबर आपको दे रहे हैं, ये नंबर मिलाइए, नवीन का नंबर है. 3 ही सेशन के बाद क्लियर फर्क आपको पता चलेगा, मॉडर्न तरीका है इलाज का और कमाल के रिजल्ट्स हैं. 100% पॉजिटिव फीडबैक है, पूरी कंसल्टेंसी करती हैं इलाज से पहले, पूरा प्रोसेस आपको बताएंगी, समझाएंगी और उसके बाद फिर आपकी ट्रीटमेंट करेंगी. ये रहा नंबर 6479608097. नंबर दोबारा बता रहे हैं आपको, नोट कर लीजिए 6479608097. बहुत शुक्रिया नवीन आपके टाइम के.
2: थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर हैविंग मी.

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
4: क्या आप अपनी बढ़ती मॉर्गेज पेमेंट से परेशान हैं और आपको मॉर्गेज पेमेंट के लिए फाइनेंशियल हेल्प चाहिए? तो गौर से सुनिए, मॉर्गेज रिलीफ प्रोग्राम में एनरोल कीजिए। आप हर माह $500 से $1500 तक की फाइनेंशियल एड हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 50 साल से 65 साल है, अच्छा क्रेडिट स्कोर है और पिछले 5 सालों में आपने अपना घर रीफाइनेंस नहीं कराया है और आपको मॉर्गेज पेमेंट में वाकई मुश्किल हो रही है, तो ये प्रोग्राम आप ही के लिए है। आज ही हमारे लोकल प्रोग्राम काउंसलर राज से बात कीजिए। राज 416-605-2584, 416-605-2584।
5: आप रिश्ते को चलाना चाहते हैं या फिर घर बसाना चाहते हैं? लेना है कोई बहुत बड़ा फैसला या करना है कारोबार? स्ट्रेस और एंजाइटी ने जिंदगी को हिला के रख दिया है या फिर शादीशुदा लाइफ में बहुत सी परेशानियों का सामना है, तो ये सब सितारों की वजह से भी हो सकता है। आप सबसे बात करके डिसअपॉइंट हो गए हैं तो अब घबराने की जरूरत नहीं। बात कीजिए फिफ्थ जनरेशन एस्ट्रोलॉजर मास्टर धनिक महाराज से। 437-829-6023। इट्स 437-829-6023। मास्टर धनिक महाराज।
6: The Lovey Dovey Show, driving you home, a melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto Canada, Monday to Friday.
7: लवी डवी शो, आप हैं आमिर और शिवानी के साथ। और आमिर, 23 मई से 23rd ऑफ मई से डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन का कोर्स शुरू हो रहा है, नया बैच शुरू होने जा रहा है और बहुत लिमिटेड एक या दो सीट्स बची हैं क्योंकि स्मॉल साइज क्लासरूम में ही पढ़ाया जाता है। और लेकिन एक महीने में आप एक ऐसा स्किल सेट के साथ प्रोफेशनल बन जाते हैं, होल लाइफ का आपके पास एक हुनर आ जाता है। एक स्मॉल अमाउंट कर आपको जिंदगी भर में किसी और की के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, किसी और के ऊपर एक फाइनेंशियली या फिर इमोशनली या फिजिकली या फिर किसी भी तरीके से आप अपने मास्टर खुद होते हैं, अपना प्रमोशन खुद करते हैं। कैसे हमें ये कर पाते हैं हमारे लिसनर्स, कैसे आप पढ़ाते हैं, क्या उसमें सिस्टम रहता है, क्या क्या मॉड्यूल्स कवर रहते हैं?
8: सबसे पहले तो शिवानी, ये सवाल पूछने के लिए बहुत शुक्रिया। और आपको बता दें कि 23 मई ये सैटरडे का दिन बनता है, अभी चंद ही रोज़ बाकी रह गए हैं। आप रजिस्टर करवाइए डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग के इस कोर्स में। आपको बता दें शिवानी कि ये वाहिद कोर्स है
7: जी
8: पूरे कनाडा में जो हम करवा रहे हैं। हमारे अलावा ये कोर्स इस नौयत का, इस नेचर का, इस टाइप का कोई नहीं करवा रहा
7: जी,
8: है
7: जी।
8: 40 घंटे की ट्रेनिंग है, 40 घंटे की ट्रेनिंग ले लेंगे, अपनी मार्केटिंग खुद कर सकेंगे
7: जी,
8: अपनी सेल्स खुद कर सकेंगे, अपनी प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट खुद कर सकेंगे, कंटेंट खुद प्रोड्यूस कर सकेंगे, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और इस तरह के जितने भी डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर अपना कंटेंट खुद प्रोड्यूस करके खुद प्रमोट कर सकेंगे। और ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप इंडिपेंडेंट कंटेंट प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं तो यूट्यूब पे चैनल बनाना आपको सिखाएंगे
7: जी,
8: उस पर कंटेंट कैसे डालना है, उसको प्रमोट कैसे करना है, ये सब इस कोर्स का हिस्सा है। कॉन्टैक्ट कीजिए, इनरोल कराइए 416-303-3639। रजिस्टर कराने के लिए 416-303-3639।
7: 416-303-3639 पर आप कॉल कर सकते हैं, 416-303-3639. आमिर, आपसे जानना चाहते हैं कि ये एक महीने में सिर्फ 8 दिन हमारे जो लिसनर्स हैं जो एनरोल करेंगे उनको आना है 1 बजे से 6 बजे तक. बड़ा कन्वीनियंट टाइम है, जल्दी भी नहीं उठना, वीकेंड पे सब अपने आराम से उठते हैं, थोड़ी मसरूफियत दूसरी रहती है, और 6 बजे का आप फ्री भी हो जाएंगे टू इंजॉय द इवनिंग विद योर फैमिली एंड विद योर लव्ड वंस. तो बड़ा कन्वीनियंटली ये रखा गया है टाइमिंग भी आपने 2 दिन का, सैटरडे एंड संडे. तो इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन लोग इसका हिस्सा बन सकते हैं, बेसिक क्वालिफिकेशन?
8: बहुत अच्छा सवाल है शिवानी, मैं आपको बता दूं इसका कोई प्री रेक्विजिट नहीं है. प्री रेक्विजिट किसी ऐसे कोर्स को कहते हैं जो अगला कोर्स करने के लिए जरूरी हो. आप बैक होम से 10वीं जमात पास हैं, यानी आपने मैट्रिक किया है, आप प्लस टू हैं, आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कंप्यूटर ऑपरेट करना जानते हैं. मुझे इतनी इंक्वायरीज आ रही हैं शिवानी, मैनी पीपल आर इंक्वायरिंग अस, क्योंकि डिजिटल मीडिया पे भी हमारी इसकी प्रमोशन चल रही है, हम रेडियो पे भी अक्सर इसकी बात करते हैं. डे इन एंड डे आउट पीपल आर कॉलिंग मी एंड आस्किंग अबाउट द कोर्स. मैं आपको बता दूं कि इसके लिए कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है. अगर आपको कंप्यूटर चलाना आता है तो हम आपको इस कोर्स पर एनरोल कर सकते हैं. और शिवानी, इससे भी अच्छी बात यह है कि अगर महीने भर का ये कोर्स करें, उसके बाद हम आपको 1 साल के कोर्स पर चढ़ा देंगे, जिसमें आप फंडिंग के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं.
7: वाह, ये फंडिंग क्या होती है और कैसे मिलती है?
8: गवर्नमेंट फंडिंग. 1 साल का कोर्स इसके बाद आप करें अगर, तो आपको वो पैसा मिलेगा जो आपको लौटाना नहीं है. और वो पैसा कितना हो सकता है, 45,000-55,000 तक भी आपको मिल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम. सो पहले आप ये कोर्स कीजिए, डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग, जो कि 1 महीने का होगा, यानी 8 दिन आपको आना है, 1 से 6 बजे के बीच में, सैटरडे एंड संडे. उसके बाद एक ऑनलाइन कोर्स होगा, वो 1 साल का होगा ऑनलाइन कोर्स, और उस पर आपको भारी भरकम किस्म की फंडिंग मिल सकती है. मान लीजिए साल का अगर 50,000 मिला तो वो तकरीबन कमोबेश महीने के $4,000 बनते हैं, विच इज अ लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसा है ये. आप कॉन्टेक्ट कीजिए, बात कीजिए और रजिस्टर कराइए. 416-303-3639.
7: जी, और आमिर, ये हम अपने जो हमारे इस वक्त क्लाइंट हैं, रियल्टर्स हैं, या फिर ब्रोकरेज के ओनर्स हैं, या फिर ऑफिस के कोई स्टाफ को अपने ये कोर्स करवाना चाहते हैं, तो उसमें भी एक ग्रुप जो कोर्स है वो भी हम इसका हिस्सा बन सकते हैं. यानी कि अपने स्टाफ मेंबर्स को, या फिर ब्रोकरेज में अपने रियल्टर्स जो टीम है उनको आप ये एज अ ग्रुप ये कोर्स करवा सकते हैं, जिससे कि सब लोग अपने हिसाब से. इस ब्रोकरेज के लिए भी बहुत अच्छा है कि सब लोग प्रोफिशिएंट हैं, एफिशिएंट हैं और प्रोफेशनल बन चुके हैं अपना अपने अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, अपनी लिस्टिंग्स को प्रमोट करने के लिए, अपना वर्चुअल टूर को प्रमोट करने के लिए. तो इन सब के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं 416-303-3639. इस सैटरडे से कॉल शुरू होने जा रहा है और जल्द से जल्द कॉल कीजिए, और जो लास्ट कुछ सीट्स बची हैं उनमें अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं. 416-303-3639.

0: भाई दर्द को भी और गम को भी कभी मेहमान बना लेना चाहिए।
1: बिल्कुल बनाना
0: किसी
1: चाहिए।
0: ने कहा है कि उससे पहले बता दें ये लवी रवि शो है, आप हैं आमिर और शिवानी के साथ 416-303-3।

0: बहुत ही कन्वीनियंट टाइम है, 1 to 6 PM सैटरडे एंड 1 to 6 PM संडे।
1: बिल्कुल।
0: किसी ने गालिब से पूछा कैसे हो, किसी ने गालिब से पूछा कि कैसे हो, तो गालिब ने हंस के कहा, जिंदगी में गम है, गम में दर्द है, दर्द में मजा है और मजे में हम हैं।
1: मजे में हम हैं। यह गालिब कहते हैं कि इश्क में तबीयत ने जीस्त का मजा पाया, दर्द की दवा पाई, दर्द बेदवा पाया। गालिब को बर्रे सगीर का सबसे बड़ा शायर माना जाता है। बहुत से शौरा आए, आप फैज़ की बात करें, फराज की बात करें, इकबाल का जिक्र करें, गुलजार की बात करें, बहुत से जावेद अख्तर की बात करें शायरी में, नसर में, पोइट्री में, लेकिन गालिब फॉर्मली पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ऐसे पाए का शेर कहते थे कि उसकी तशरीह लोगों के लिए तकरीबन नामुमकिन हो जाती।
0: जी बिल्कुल। और कहते हैं कि तड़प है, कसक है, खलिश है, सजा है, कौन कमबख्त कहता है इश्क बेमजा है।
1: वाह वाह। और इस पे शेर यह है कि ये कहाँ की दोस्ती है
0: जी,
1: के हुए हैं दोस्त नासे। नासे कहते हैं नसीहत करने वाले
0: जी
1: को। ये कहाँ की दोस्ती है के हुए हैं दोस्त नासे, कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता।
0: क्या बात है।
1: यानी दोस्तों को नसीहत वाला नहीं होना चाहिए, उनको पार्टनर इन क्राइम होना चाहिए।
0: और कहते हैं कि उम्र का मोड कोई भी हो, बस धड़कनों में नशा जिंदगी जीने का होना चाहिए।
1: वाह वाह। यस, एज हैज गॉट नथिंग टू डू विद हाउ यू कैन फील। मैंने देखा यूरोप में आप जाइए, 100-100 साल की उम्र रसीदा खवातीन, किसी भी खातून को उम्र रसीदा कहना सबसे पहले तो बहुत बड़ा गुनाह है, ये बहुत बड़ा जुर्म है। चाहे वो 100 साल की भी हो तो आप उसको उम्र रसीदा नहीं कह सकते।
0: नहीं,
1: ठीक है,
0: 100 ईयर यंग।
1: हाँ, 100 ईयर यंग भी कह सकते हैं। और दूसरा, आप उसे ये भी कह सकते हैं कि आप खातून नहीं लग रही हैं।
0: अच्छा।
1: आप इस उम्र में भी लड़की लग रही
0: हैं।
1: आप यकीन मानिए, दुनिया में जितनी भी खवातीन से आप मिलेंगे, आप उनमें खातून का लफ्ज निकाल दें, लड़की का डाल दें, तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली, मुझे लगता है। सो आप वेस्टर्न वर्ल्ड में देखिए जाके, वो 100 साल में भी उतना ही इंजॉय करती हैं जितना हमारे बैक होम में 40 साल की खवातीन करती हैं। तो बैक होम में तो यही मामला है ना कि 40-50 के बाद वो पसपाई इख्तियार कर जाती हैं, सरेंडर कर देती हैं।
0: जी, 40 के बाद वो ऐसा कहती हैं कि उनसे कहा जाए कि आपने बहुत अच्छे लिबास पहने हैं, कब खरीदा आपने, कहाँ से खरीदा। तो ज्यादातर आजकल टाइम चेंज हो गया, मैं पहले थोड़ा सा पहले की बात करी हूँ, तो कहती थी कि नहीं नहीं आप कहाँ, ये तो वंस अपॉन ए टाइम खरीदा था।
1: आप कहाँ। यस यस यस,
0: है ना।
1: और
0: यहाँ पे कहते हैं कि 50 साल के बाद, 55 ईयर के बाद, कि अभी तो काम में लगे थे, अब लाइफ शुरू हुई है, अब हमने शॉपिंग करना शुरू किया है।
1: और तारीफ का भी एक अलग ही जाविया है कि आप यहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड में किसी की तारीफ करें, किसी खातून की, और उनसे ये कहें कि आपकी आंखें बड़ी कमाल की चमकदार रोशन आंखें हैं, और क्या खूबसूरत कुशादा पेशानी है आपकी, क्या गुलाबी गाल हैं आपके, और क्या पंखड़ियों के से होंठ हैं आपके, तो वो आपका थैंक यू करेंगी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आपने मेरी इतनी तारीफ की है, थैंक यू वेरी मच। तो अगर यही तारीफ आप बैक होम किसी की कर दें तो वो कहेंगे शर्म नहीं आती तुम्हें, यू नो, तारीफ कर। तो ये कल्चर का एक बहुत बड़ा फर्क है। या अगर वो तारीफ सुन भी लेंगी और अगर वो उसको कबूल भी कर लेंगी तो पूरी तरह से कबूल या एक्नॉलेज नहीं करेंगी,
0: और खुशी भी हो रही होगी अंदर से।
1: हाँ, लेकिन वो कहेंगी कि जी अब कहाँ रह गई वो बातें, ये कह देंगी, या अब तो जवानी ढल गई, अब तो सबसे खूबसूरत जो दिन थे वो देख लिए। तो जो हम ये माजी के सीगे में बात करते हैं, चाहे वो खवातीन हो या मर्द हजरात हो, तो मुझे लगता है अगर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है तो कॉम्प्लीमेंट लेना चाहिए, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए और उसको इंजॉय करना चाहिए, रादर देन कि आप उसको रद्द कर दें, नज़रअंदाज कर दें, पसे पुश डाल दें और माजी के किसी तारीख लम्हे को ढूंढना शुरू कर दें। दैट्स नॉट द राइट अप्रोच।
0: اور اچھی جو خوبصورتی کی آپ نے بات کی اس میں نیند اچھی کی بڑی ضرورت ہے. اچھی نیند سے اسکن اچھی ہوتی ہے.
1: غفلت کی نیند یا صحیح والی نیند؟
0: صحیح والی نیند.
1: اچھا صحیح والی
0: ہے نا. تو اس میں کہا جاتا ہے گلزار صاحب کی نیند آ جائے تو سو بھی جایا کرو. یوں راتوں میں جاگنے سے محبوب

0: नहीं करते।
1: बड़ी खूबसूरत बात है। हाँ जी, नींद बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है शिवानी के आपको सोने के लिए भी कोई तकरीबन 25-30 मिनट लगते होंगे। मतलब आपकी आंखें मोटी हैं, बड़ी हैं, तो इनको बंद होते होते भी टाइम ही लगता होगा।
0: नहीं, ये मतलब मैं एक्सेप्ट करती हूँ ऑन एयर, सच में। मतलब आपको कोई नुस्खा बताना हो तो मुझे ज़रूर बताइए, कि मैं मतलब मुझे और ज़्यादा सोना चाहिए। मुझे स्लीप डिसऑर्डर की थोड़ी प्रॉब्लम है। आई डोंट स्लीप मोर देन 5 आवर्स, 5.5 आवर्स। आई डोंट नो व्हाई।
1: मैं यही कह रहा हूँ ना, चूंकि आपकी आंखें बड़ी हैं, मोटी हैं, रोशन हैं, बड़ी बोलती हुई आंखें हैं आपकी, तो इनको बंद होते होते बड़ा टाइम लग जाता होगा।
0: देखिए क्या होता है कि जब कोई डिप्राइव होता है ना, जैसे आपने देखा होगा किसी के पास खाने को नहीं होता, तो वो एक रोटी में 10 रोटियां देखता है। तो मेरी जो आंखें हैं वो उन्होंने मेरे ऊपर गिव अप कर दिया है कि इससे तो आराम मिलने से रहा हमें। तो अपने आप ही बेचारी मोटी छोटी लंबी चौड़ी होकर अपना काम चला लेती है।
1: नहीं नहीं, यू हैव गॉट परफेक्ट आईज, ब्यूटीफुल आईज। ये मैं आपको ऑन एयर ये एक खूबसूरत सा कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ। और देखा ना, आपने बड़ा अच्छा काम किया, इस पे थैंक यू किया, यू नो यू एक्नॉलेज दिस। इसका मतलब ये हुआ
0: कि मैंने आपसे सीखा।
1: नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि आपको पता है कि आपकी आंखें खूबसूरत हैं। अगर कोई झूठा कॉम्प्लीमेंट होता तो शायद आप कहती कि आमिर सोचिए एक बार फिर से, मुझे मालूम है मेरी आंखें कितनी।
0: वैसे मैं मान चुकी हूं कि अच्छी हैं।
1: आप सुन रहे हैं लवी डवी शो, सिलसिला चलता रहेगा आज 11 बजे तक। स्टे ट्यून।
2: क्या आप सुन रहे हैं?
3: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
3: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
4: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
5: ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ।
6: ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ, ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ, ਗੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ।
5: ਫੋਰ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਨਗਲਾਸਿਸ, ਵਿਜ਼ਿਟ kandaoptical.com ਔਰ ਕਾਲ 416-922-5263। ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ, ਦਾ ਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਸਟ।
7: मम्मा, why don't you go to work now?
8: बेटा, तुझे क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी ही रुक गई है। एक महीने से काम पर नहीं गई और अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर रही है।
9: जिंदगी रुकती नहीं, बस रास्ता बदलना पड़ता है। कॉल सैयद एम रजा, आर कम्युनिटी इंजरी लॉयर, इंजरी लॉ के एक्सपर्ट लॉयर।
8: क्या वो मदद करेंगे?
9: मदद करेंगे, उन्होंने एक क्लाइंट को $2 मिलियन की एग्रीगेट सेटलमेंट दिलवाई। तुम्हारे लिए भी लड़ेंगे, इनके पास 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, एंड नो फी अंटिल विक्ट्री।
10: कार एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल, डोंट कॉल एनी थर्ड पार्टी एजेंट, डायरेक्टली कॉल सैयद एम रजा ऑफ सैयद लॉ। सैयद लॉ से सैयद एम रजा,
9: जहां सिर्फ वादे नहीं रिजल्ट मिले।
10: कॉल सैयद एम रजा 416-937-5046, दैट इज 416-937-5046।
11: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। 7 दिने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर।
12: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
11: 1 easy stop फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।

0: रानी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: सिर्फ मॉर्गेजेस, दैट्स राजीव तलवार द मॉर्गेज सुपरस्टार। मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल, फॉर कस्टमाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस चूज राजीव तलवार। मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो, लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो, राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा। तो याद रखिए, मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं, बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं। कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 9058191001 9058191001. License number 12374.
3: The Lovey Dovey Show, driving you home, a melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto Canada, Monday to Friday.
4: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
5: लवी डवी शो, आप हैं आमिर और शिवानी के साथ। आमिर, 23 मई से शुरू होने जा रहा है डिजिटल मीडिया कोर्स और हम सभी बहुत एक्साइटेड हैं, और क्योंकि इतने ही जो पास्ट बैच के जो स्टूडेंट्स हैं अभी अपने करियर फ्लरिशिंग करियर बना चुके हैं और अपना बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं और हायर करने की किसी को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं हमसे बेहतर कोई नहीं जानता।
6: जी बिल्कुल।
5: और अगर वही चीज़ हम जो दिल में है वो प्रोड्यूस करते हैं और हम कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और आपने इतना आसान बना दिया है इसको, जो कोर्स करने से पहले लोगों को एक बहुत बड़ी बात लगती थी कि ये तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसके लिए एक टीम को हायर करना पड़ता है, वो काम करती है हमारे लिए, उसके बाद भी हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते, ये हम खुद ही एज ए इंडिविजुअल एंटिटी हम ये काम कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि डिजिटल मीडिया किसको कहते हैं और कौन कौन से प्लेटफॉर्म इसके अंतर्गत आते हैं और कैसे ये प्रमोट होता है।
6: देखिए, जब बात करते हैं डिजिटल और सोशल मीडिया की, माजत खाऊं, तो उसमें आज का जो ज़माना है, आज का जो दौर है, एक टाइम होता था न्यूज़पेपर्स वर वेरी पॉपुलर, लोग न्यूज़पेपर में इश्तिहार देते थे, एडवर्टाइज करते थे, उनको रिस्पांस आता था, सब कहानी चलती थी, प्रिंट मीडिया वाज बूमिंग। फिर एक टाइम आया लोगों ने रेडियो सुनना शुरू किया, फिर एक टाइम आया टेलीविजन का, विजुअल मीडिया, लोगों ने टीवी देखने शुरू किए, और 1960s से, बल्कि इससे भी जरा सा पहले जब टेलीविजन का दौर शुरू हुआ तो इट वाज ओवरनाइट सेंसेशन ब्लैक एंड व्हाइट ट्रांसमिशन से, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कलर हुई, और उसके बाद फिर टेलीविजन का बूम आया, और उसके बाद फिर टेलीविजन खत्म हो गया। मोस्ट रिसेंट टाइम्स टेलीविजन वॉज डिक्लाइनिंग, इट्स स्टिल गोइंग डाउन नाउ व्यूअरशिप वाइज। उसके बाद फिर अब जो दौर है वो डिजिटल मीडिया का दौर है। वो लोग जो आती हुई टेक्नोलॉजी से फायदा नहीं लेते, जैसे जिन लोगों ने टेलीविजन से फायदा लिया, उन्होंने इतना फायदा लिया कि मिलियंस के बिजनेस बनाए, टेलीविजन सीख के, टेलीविजन करके, टेलीविजन पे बिजनेसेस को प्रमोट करके मिलियंस ऑफ डॉलर्स लोगों ने बनाए। इसी तरह आज का दौर डिजिटल मीडिया का दौर है, जो इसमें आ जाएगा मिलियंस बनाएगा ही बनाएगा, चाहे वो अपनी मीडिया एजेंसी चलाए, चाहे वो अपना कारोबार प्रमोट करे, चाहे वो कंटेंट क्रिएटर हो। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, YouTube पे चैनल बनाना और उसको मोनेटाइज कराना, उसके लिए कंटेंट प्रोड्यूस कराना, सिर्फ इसी सेक्टर में, सिर्फ YouTube में लोग लाखों डॉलर इंडिविजुअली बना रहे हैं, इंडिविजुअली बना रहे हैं। आपने देखा भी होगा, आपने सुना भी होगा, हम लोगों को सिखाते हैं यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है, उसको मोनेटाइज कैसे कराना है, उसकी सब्सक्रिप्शन कैसे बढ़ानी है, उसकी फॉलोइंग कैसे बढ़ानी है, उसके लिए यूट्यूब के लिए अलग से, डिजिटल मीडिया के लिए कैसे कॉन्टेंट प्रोड्यूस किया जाता है। इसी तरह से इंस्टाग्रामर है जो इंस्टाग्राम से पैसा बना रहे हैं, इसी तरह टिकटॉक से लोग पैसा बना रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको इसका मैकेनिज्म समझना होगा, यही करवाते हैं हम।
5: जी,
6: पहले तो आपको डिजिटल मीडिया के लिए प्रोडक्शन सिखाते हैं कि हाउ टू प्रोड्यूस कंटेंट, और फिर उसके बाद बताते हैं हाउ टू इनकॉर्पोरेट कंटेंट इनटू दीज वेबसाइट्स टू प्रोड्यूस द बेस्ट रिजल्ट्स एंड टू मेक मनी. ये नंबर है, ये मिलाइए और आप भी इस कोर्स का हिस्सा बन जाइए. सिर्फ 40 घंटे की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है. यू विल एंजॉय द कोर्स. 416-303-3639
5: पे बहुत ही कम सीट्स बची हैं, बामुश्किल 3 सीटें बची हैं. जल्द से जल्द कॉल कर लीजिए और आज ही मैं अपने आप को इनरोल कराइए, जिससे इस 2 दिन बाद सैटरडे को आप इस कोर्स का हिस्सा बन सकें. और बहुत प्यारा सा गाना, फरमाइशी सॉन्ग है ये, फ्रॉम द मूवी शोले, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे. और आमिर कहते हैं कि गुनगुनाना तो तकदीर में लिखा कर लाए थे, खिलखिलाना दोस्तों से तोहफे में मिला.
6: वाह,
5: है ना. कुछ लोग बिना किसी रिश्ते के रिश्ते निभाते हैं, शायद वही लोग दोस्त कहलाते हैं.
6: दोस्त कहलाते हैं, वाह वाह.
5: और कहते हैं कि 4 दोस्त, 2 साइकिलें, खाली जेब और पूरा शहर.
6: और पूरा शहर,
5: एक खूबसूरत दौर ये भी था हमारी नवाब वाली जिंदगी का. सोचिए, दोस्त साथ होते थे ना, तो कुछ भी नहीं हो फिर भी लगता था कि हम एक तरीके से बादशाह हैं, एम्परर हैं, किसी का खौफ नहीं, किसी का डर नहीं, रोड पे चले जा रहे हैं. राइट,
6: इस शहर बेचराग में
5: जी
6: जाएगी तू कहाँ, इस शहर बेचराग में जाएगी तू कहाँ, आ शबे फिराक तुझे घर ही ले जाए.
5: क्या बात है.
6: स्टे ट्यून्ड.

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। It's 416-303-3639।
4: क्या आप अपनी बढ़ती मॉर्गेज पेमेंट से परेशान हैं और आपको मॉर्गेज पेमेंट के लिए फाइनेंशियल हेल्प चाहिए? तो गौर से सुनिए, मॉर्गेज रिलीफ प्रोग्राम में एनरोल कीजिए। आप हर माह $500 से $1500 तक की फाइनेंशियल एड हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 50 साल से 65 साल है, अच्छा क्रेडिट स्कोर है और पिछले 5 सालों में आपने अपना घर रीफाइनेंस नहीं कराया है और आपको मॉर्गेज पेमेंट में वाकई मुश्किल हो रही है, तो ये प्रोग्राम आप ही के लिए है। आज ही हमारे लोकल प्रोग्राम काउंसलर राज से बात कीजिए। राज 416-605-2584, 416-605-2584।
5: आप रिश्ते को चलाना चाहते हैं या फिर घर बसाना चाहते हैं? लेना है कोई बहुत बड़ा फैसला या करना है कारोबार? स्ट्रेस और एंजाइटी ने जिंदगी को हिला के रख दिया है या फिर शादीशुदा लाइफ में बहुत सी परेशानियों का सामना है, तो ये सब सितारों की वजह से भी हो सकता है। आप सबसे बात करके डिसअपॉइंट हो गए हैं तो अब घबराने की जरूरत नहीं। बात कीजिए फिफ्थ जनरेशन एस्ट्रोलॉजर मास्टर धनिक महाराज से। 437-829-6023। इट्स 437-829-6023। मास्टर धनिक महाराज।
6: शगन का दिन चढ़ेगा, सजना घर आएंगे, टोली लेकर जाएंगे, दुल्हन सजेगी, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी। शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।
1: और साहब, कारोबार करना हम सबकी ख्वाहिश है, तमन्ना है, आरजू है। पेरेंट्स को छोड़ा, भाई बहन को छोड़ा, यार दोस्त सखियां सहेलियां, वो ढलती शामें, ये खूबसूरत पुरनूर सुबह छोड़ी हमने अपने देश की, मुल्क की, वतन की। इसलिए छोड़ी थी कि यहां आके पैसा बनाए, प्रोग्रेस करें, तरक्की करें, हमारे बच्चों को आने वाले वक्त में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। लेकिन अगर आप यहां आके भी कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं, बस गुजारा ही चल रहा है, यू आर ओनली मेकिंग बोथ एंड्स मीट, तो फिर आपने कभी सोचा है कि यहां आने का फायदा क्या है? जो मामला वहां चल रहा था, बैक होम कोई लाख दो लाख रुपया बना रहे थे आप, सिलसिले चल रहे थे, शायद उसी तर्ज की जिंदगी यहां पे भी गुजार रहे हैं। यहां आने का मकसद और मतलब सिर्फ एक ही है कि आप ग्रोथ ओरिएंटेड हो, आपका जहन, आपकी सोच, आपकी अप्रोच, आपकी थॉट्स एक ही महवर के गिर्द घूम रही हो कि आपने इस मुल्क में आके तरक्की करनी है। याद रखिए, इस मुल्क में आ जाना ही सिर्फ तरक्की नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि बस कनाडा आ गए बस काफी है, दैट इज इनफ। नो, इट इज नॉट। आप यहां आके क्या अचीव किए, आपने क्या बिजनेस किए, उन बिजनेस में से क्या एसेट्स बनाए, कितनी तरक्की की, दैट्स व्हाट मैटर्स। और आपको बिजनेस करवाने का बेड़ा उठाया है जीटीए में, अगर उंगलियों पे गिने आप कारोबार के हवाले से, कमर्शियल रियल एस्टेट के हवाले से, तो इनका नाम पहले 4-5 नामों में ही आता है। कमाल की शख्सियत है, हमारे बड़े प्यारे अच्छे दोस्त और मित्र हैं, हसीब शेख। वेलकम करते हैं सर आपको।
7: थैंक यू,
0: बहुत मेहरबानी सर, थैंक यू वेरी मच। ये आपने वर्ड बोला था सखियां और
1: सहेलियां,
0: वो सहेलियां छोड़ी
1: ये खवातीन के लिए कहा था शेख साहब, खवातीन के लिए कहा था
7: हसीब साहब। ये आमिर आमिर अपने आपको आपका बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं, तो मैंने ये अज्यूम किया था कि इनकी बातचीत में सखियां सहेलियां ये सब आएगा और आप उसको बड़े नेचुरल तरीके से लेंगे।
0: ये शुक्र करो इन्होंने तितलियां और गुलाब जो फूल और पंखियां नहीं कह दी, गुलाब बहुत आगे निकल जाती।
7: नहीं नहीं, ये टर्मिनोलॉजी उन्होंने आप जैसे दोस्तों के साथ पर्सनल गुफ्तगु के लिए रखी है शायद।
1: शेख साहब,
0: मैं तो ये सोच रहा था, मैंने कहा ये बहाव में कहीं नाम ही ना निकलने शुरू हो जाए।
1: शेख साहब, अब आप राज की बातें तो ऑन एयर ना करें आप। अब आपको क्या कहते हैं कि पुराना दोस्त बड़ा खतरनाक होता है अगर राज खोलने पे आ जाए।
7: देखिए, ये आमिर के पास एमफिल की डिग्री है, यू नो एक गोल्ड मेडलिस्ट है ये अपनी अपने हुनर में, अपने ब्रॉडकास्ट मीडिया में, लेकिन एहतियात को कन्फाइंड और सीरियस रखने की डिग्री में ये डिलीट किया है इनके पास, ये मैंने इनको बिना सोचे समझे ही दे दिया ये।
1: शेख साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आज सीधे सीधे सवाल मुझे आपसे करने हैं। कारोबार करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है आज मुझे आपने कम से कम तीन चीजें ऐसी जरूर बतानी है कारोबार करने के लिए, उन तीन चीजों की जरूरत रहे, वो कौन सी तीन है?
0: पहले नंबर पे तो है हौसला। आपने काम करना है तो ये शॉर्ट टर्म नहीं होता, लोग आते हैं जॉब मेंटेलिटी के साथ, जब मैं जाऊँ मैंने 8 घंटे लगाए हैं तो मैं अगर जॉब कर रहा होता तो मुझे तो जी ये $160 बन जाने थे। तो मुझे तो अभी पता ही नहीं है कि मेरे पास कोई ग्राहक आया कि नहीं आया या क्या होगा। तो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, इसे फार्मिंग टूल कहते हैं। जैसे एक फार्मर जो होता है वो फार्मिंग करता है लेकिन उसको फसल मिलती बहुत प्यारी है लेकिन वक्त लगता है। तो ये फार्मिंग होती है जिसमें ये जॉब नहीं है, हौसला चाहिए, सेकेंड है पैसा चाहिए, और थर्ड नंबर पे है ऐसे लोगों से बचे जो आपको लेग पुलिंग कर रहे होते हैं।
1: वेरी
0: जो
1: nice.
0: आपको ये कह रही हो तू नहीं कर सकता, उन्हें भी नहीं किया सी तू भी नहीं कर सकता, ऐसे दोस्तों से बचे, क्योंकि नेगेटिविटी जो है ना वो हंसा खेलता डरों को उजाड़ देती है, नेगेटिविटी है अच्छे दोस्तों भी दोस्तियों को खत्म कर देती है।
1: प्यारी बात,
0: नेगेटिविटी से बचना है आपने।
1: कैन एवरीबडी डू बिजनेस?
0: एवरीवन बोर्न एज ए सेलमैन। जब आप एक डिग्री लेते हैं ना, अभी इन्होंने बताया कि आपने गोल्ड मेडल लिया हुआ है, तो आप अपनी ये जो है डिग्री और अपनी क्वालिफिकेशन अपनी स्किल को सेल आउट करते हैं टू गेट बिजनेस और टू गेट द जॉब। एक बंदे ने आईटी किया, एक बंदे ने इंजीनियरिंग किया, वो क्या करेगा अपने रेज्यूम में अपना सीवी बनाता है, ही इज अ सेलमैन टू सेल हिज एबिलिटीज एट लीस्ट टू समवन। और यही अगर आप अपना इसी बिजनेस को अगर करते हैं तो आप अपनी जनरेशन के लिए एक एम्पायर बिल्ड करते हैं।
1: बिल्कुल ठीक, सही। यहाँ शेख साहब का नंबर दे रहा हूँ और साथ में ये गुजारिश कर रहा हूँ कि शेख साहब से गपशप जरूर लगाएं, बात करें। बिजनेस लेना ना लेना, करना ना करना, उसको फॉर द टाइम बीइंग एक तरफ रख दें। जब हम कामयाब लोगों से मिलते हैं और ख़ासतौर पर ऐसे लोगों से मिलते हैं जिन्होंने बहुत सी फैमिलीज़ की हेल्प की हो बिज़नेस सेटअप करने में, बिज़नेस को चलाने में, एक मकाम तक पहुंचाने में, तो दिल को एक खुशी ज़रूर महसूस होती है कि हमारी कम्युनिटी में ऐसे लोग मौजूद हैं जो हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। शेख साहब का खासा ये है, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप इनको सुबह 7 बजे फ़ोन करेंगे तब भी उठाएंगे, इनको शाम 5 बजे फोन करेंगे तब भी उठाएंगे, रात 11 बजे करेंगे तब भी उठाएंगे, 11 बजे के बाद की कोई गारंटी नहीं है लेकिन 11 बजे तक तो उठाएंगे। तो और मदद के लिए, हेल्प के लिए ऑल द टाइम, एवरी टाइम, बगैर किसी गरज और मफाद के ये तैयार रहते हैं। यहां नंबर दे रहा हूं शेख साहब का, 6479884449। नंबर दोबारा दे रहे हैं, किसी भी तरह का कारोबार करना है, काम करना है, बिजनेस करना है, कारोबार करना है, तो हसीब शेख को फोन करना है, 6479884449। 4-9। शिक्षक साहब, मैं आपसे कुछ अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात कर लूं। आजकल क्या है मार्केट में, रेस्टोरेंट, गैस स्टेशन, ग्रोसरी स्टोर, व्हाट डू यू हैव अवेलेबल?
0: सर जी, मार्केट में हर चीज है, यानी दिल मांगे मोर वाली बात है। हम जो भी लेके आते हैं, लोग नई चीज की डिमांड कर देते हैं और हम लोग उसी मेहनत में लगे हुए हैं। जैसे रेस्टोरेंट्स है, मैकेनिकल वर्कशॉप है, कन्वीनियंस स्टोर्स हैं, डॉलर स्टोर हैं, इस तरह के बिजनेस जो है ये लो प्रोफाइल बॉल में आ जाते हैं, जो कि अगर आपके पास 100-150,000 डॉलर के करीब हैं तो डेफिनेटली आप इस बिजनेस में आ सकते हैं। और अगर आपने हायर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, विच इज मोर देन 500,000 डॉलर, मिलियन और 2 मिलियन डॉलर, तो फिर हमारे पास गैस स्टेशन है, मोटर्स हैं, होटल्स हैं, कमर्शियल यूनिट्स हैं। हम लोग फिर अकॉर्डिंग टू योर बजट, अकॉर्डिंग योर योर रिस्क, अकॉर्डिंग टू योर प्लान के किस तरह का आप काम करना चाहते हो, उसके हिसाब से फिर आपको सजेशंस भी दे सकते हैं और आपको जो है गाइड कर सकते हैं कि कहाँ पे आपका रिस्क फैक्टर मिनिमम हो, मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो, मैक्सिमम आप बैंक से लोन लेके अपना बिजनेस चला सकें।
1: बिल्कुल सही।
0: इस वक्त हमारे पास, जैसे भी आपने कहा, कुछ मैं इन्वेंट्री की बात कर देता हूँ। हमारे पास ब्रैम्पटन में एक शवरमा जो है फ्रेंचाइज है, जिसका तकरीबन $90,000 पर मंथ सेल है एंड नेट सेल अबाउट $75,000 पर मंथ है, विद अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ $15,000 पर मंथ नेट आफ्टर पेइंग ऑल द सैलरीज एंड एवरीथिंग।
1: वेरी नाइस,
0: विच इज वेरी गुड इनकम। और एक हमारे पास नॉन ब्रेडेड रेस्टोरेंट है, जो कि प्योरली इस वक्त वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, वहाँ पर इस वक्त आफ्टर पेइंग ईच एंड एवरी एक्सपेंस नेट प्रॉफिट आफ्टर पेइंग द सैलरीज इज अबाउट $10,000 प्लस।
1: वेरी नाइस।
0: तो डेफिनेटली लोग ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हैं। और एक जो है राजो महाराजों टाइप एक रेस्टोरेंट है हमारे पास मिसेस आगामी, जिसमें 400 बंदों के बैठने की जगह है, जिसका मंथली सेल प्लस $250,000 है, जिसकी एनुअल सेल $3.3 मिलियन है, जिसका मंथली प्रॉफिट प्लस $50,000 है, जिसका एनुअल प्रॉफिट जो है प्लस $500,000 है।
1: वेरी नाइस।
0: तो डेफिनेटली हर बंदा चाह रहा है कि ऐसा बिजनेस लिया जाए। और इसके साथ साथ जब हम देखते हैं, हमारे पास एक बहुत लो इन्वेस्टमेंट के साथ $5,000 पर मंथ बनाने वाला नेट नेट नेट प्रॉफिट बनाने वाला बिजनेस है, वो है वेप्स एंड बॉन्ग और इसका
1: कैनबिस
0: का है स्टोर, जिसमें वेप्स एंड शीशा वगैरह है। ये मिसिसागा में है, इसमें रेंट बहुत थोड़ा है। इसमें एक बंदा रिटायर्ड आदमी जो कहता है कि मैं रिटायर होना चाह रहा हूँ और मैं पार्ट टाइम कुछ काम करूँ और $4,000-5,000 मेरे पास आता रहे और मेरा जो है वो मैं बिजी रहूँ, तो दिस इज द बेस्ट बिजनेस और सिर्फ $1,00,000 में है। तो इसको भी लेना चाहे तो कोई भी बंदा आके ले सकता है, एनी वन, इट्स ईजी डूएबल, इसमें कोई टेक्निकलिटीज नहीं चाहिए। तो नाम तो हमारे पास बहुत से बिजनेस है, जैसे अमर भाई की मेहरबानी है, शिवानी जी की मेहरबानी है कि ये हम लोगों को आपसे कॉन्टेक्ट करवा देते हैं, अपना टाइम निकाल के। आगे फैसले आप लोगों ने करने हैं।
1: बिल्कुल।
0: अगर आप रियली अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं और ये आप सिक एंड टायर्ड हो गए हैं इस जॉब वाली लाइफ से, दे लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटीज हैं लेकिन हिडन है।
1: सही कह रहे हैं।
0: अगर आपको मौका मिलता है तो उस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं है। हाँ, एंड पे एक क्वेश्चन, ये जवाब जरूर दूंगा आपको ऑप्शन, आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हो आप मुझसे फ्री कंसल्टेंसी ले सकते हैं।
1: वेरी नाइस।
0: आपका मुकद्दर, आपका नसीब, शेख नसीब, शेख नसीब।
1: और ये रहा नंबर इनका, 647-988-4449, 647-988-4449. बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके टाइम के लिए।
0: थैंक यू सर।
4: Lovey Dovey Song of the Day is brought to you by Ruhani College. आँखों में बसा है डॉक्टर बनने का सपना या सोच रहे हैं मसाज थेरेपिस्ट का शानदार करियर हो अपना, तो बस आपको है रूहानी कॉलेज ही चुनना। बेहतरीन पढ़ाई से शानदार कमाई वाले करियर के सफर में आपका हम सफर रूहानी कॉलेज। रूहानी कॉलेज, यहाँ सपने सच में सच होते हैं। 905-731-2555 905-731-2555 रूहानी कॉलेज।

0: जो उनकी आंखों से बयां होते हैं वो लफ्ज़ किताबों में कहाँ होते हैं,
1: वाह
0: है ना।
1: वाह वाह। और आंखों की बात करें तो ऊपर वाले ने तोहफा दिया हो और आप उसकी हिफाजत ना करें
0: जी,
1: उसको प्रोटेक्ट ना करें, उसको सेफ एंड सिक्योर ना करें, गर्दो आलूद से बचाएं ना, तुंदो तेज रोशनी और धूप से ना बचाएं, तो ये तोहफे की नाशुक्री है।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आमिर। और आजकल की मसरूफियत के दौर में लोगों को नजर ही नहीं आता, कभी कभी भूल ही जाते हैं कि हम खूबसूरत हैं, हमारे ऊपर वाले ने हमें आंखें दी हैं और इतनी इतना कुछ करती हैं आंखें हमारे लिए। जब तक अपने भी दिखने बंद हो जाते हैं, धुंधले धुंधले नजर आने लगते हैं, अपनों को कोई दूसरा समझ लेता है, तो तब तक हम आई टेस्ट पे भी नहीं जाते, लगता है काम चल रहा है, चलने देते हैं। और इतने अच्छे अच्छे आई वेयर अगर हमें मिलते हैं जिसमें हमारी आंखें महफूज रहती हैं, प्रोटेक्टेड रहती हैं, अच्छी बनी रहती हैं, आंखों की हेल्थ अच्छी रहती है, और जब हमारे साथ ऐसे लोग जुड़ते हैं, और एक मैं नाम लूंगी एक ऐसी शख्सियत का जब वो जुड़ती है हमारे साथ जिन्होंने अरसे से कम्युनिटी को सर्व किया है एक सेवा भावना के साथ, बिजनेस बहुत तगड़े बिजनेसमैन है लेकिन उससे भी बड़े वो एक सेवा वाली भावना रखते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ खास लेकर आते हैं, हमेशा लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आते हैं, और जो बात करते हैं रेडियो पे तो आप समझ जाएंगे कि वो मुस्कुरा के ही बात कर रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अश्विनी जी वेलकम करेंगे, अश्विनी कांडा जी का जाना पहचाना नाम है, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। अश्विनी जी वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप?
2: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपका, अमीर जी का बहुत ही प्यारे ढंग से आपने इंट्रोडक्शन दी। कई बार तो मुझे अपने आप पे शक हो जाता कि इतना अच्छा हूँ मैं।
1: ये भी आपका बड़ा पन है सर, बहुत बड़ा पन है सर, थैंक यू।
2: तो बहुत अच्छे हैं आप, बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, यू डूइंग ए ग्रेट जॉब, वी आर सो प्राउड ऑफ बोथ ऑफ यू,
1: थैंक यू।
2: इट्स ए ग्रेट टीम एंड सुबह सुबह जब आपका प्रोग्राम सुनते हैं तो सारा दिन अच्छा निकलता है, वी फील ग्रेट एंड अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है, म्यूजिक मिलता है, और आप दोनों का जो ढंग है बोलने का दैट इज एन अमेजिंग, दैट्स ट्रू जो ब्रॉडकास्टर होते हैं, तो इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि यू नो वी आर पार्ट ऑफ योर टीम,
0: थैंक यू,
2: वी आर टूगेदर। तो देखिए पहले तो अपनी कम्युनिटी का बहुत शुक्रिया क्योंकि हमें बहुत सपोर्ट करते हैं एंड वी आल्सो इन रिटर्न मेक श्योर दे गेट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड हमारे पास लोकेशंस हैं, कई बार फोन आते हैं कि विच इज गोइंग टू बी क्लोजेस्ट टू अस। मैं थोड़ा सा बता दूं कि ब्रैम्पटन में it we have 6 locations where you can go either you can go to Trinity Common Plaza, Brisdale Plaza and Cotrell Business Center भी है, चांदनी चौक भी है, Mayfield Arcadium Center भी है जो कि Mayfield and Gorway पे है, उसके साथ साथ हमारा corporate head office भी Brampton में ही है, Old Williams Park पे जहाँ पे production का सारा काम होता है, in case anybody need quick service and we always can look after them here as well. Mississauga में देखिए Confederation Plaza भी है एंड उसके बाद क्रीक साइड जो कि डिक्सी डंडास पे है, वान में दो लोकेशन है अभी, सिटी व्यू प्लाजा जो कि मेजर मैक एंड 400 के ऊपर, क्लाइनबर्ग कॉमन लेटेस्ट जो हमने नई खोली लोकेशन एट 427 एंड मेजर मैक, उसके बाद बर्लिंगटन में भी आप जा सकते हैं, मिल्टन में भी एंड सेरी रेक्सडेल बुलेवार्ड जो कि टोबिको में पड़ता है वहां पे भी आप जा सकते हैं, स्कारब्रो में भी जा सकते हैं, मार्कम एंड स्टील, ऑरेंजविल में, किचनर में, सो दीज लोकेशंस वी हैव, यू कैन इजीली फाइंड समथिंग क्लोज टू यू, गो यू गोइंग टू गेट द सेम सर्विस फ्रॉम एवरी लोकेशन एंड आई स्टैंड बिहाइंड एवरी लोकेशन यू गो टू। इफ यू आर 1% नॉट हैप्पी प्लीज कॉल मी डायरेक्ट because wow. I'm going to make sure then you're super happy
0: anything kya baat hai
2: if laga ki ek aadha percent reh gaya hai to usme aapne bilkul wait nahi karni seedha mujhse aapne contact karna hai and I will make sure कौन सी कमी रही ताकि हम उसको रिपीट भी ना करें।
1: वाह,
2: तो इसलिए ये बड़ा जरूरी है हमारे लिए, यही मेरी जिंदगी है जी, क्यों जी शिवानी जी,
0: जी बिल्कुल।
2: हमें तो अभी ये मन में शौक है, मेरा पैशन है कि मैं अपनी तरफ से किसी को निराश ना करूं।
1: वाह,
0: और आमिर पिछले 17 सालों से मैं देख रही हूँ कि जब भी अश्विनी जी इंटरव्यू पे आते हैं, ये 17वां साल है, मतलब मैं अपने बात करूँ तो उनको उनका इंटरव्यू करने का, हमेशा वो ये कहते हैं कि कोई भी कमी रह गई हो तो बताइए, कोई, और हर लोकेशन पे, ना सिर्फ हेड ऑफिस में, हर लोकेशन पे जो भी जाए, बहुत बड़ी बात,
1: बहुत बड़ी बात है। और खास तौर पर इनके बारे में मैं एक बात बता दूं कि अश्विनी जी कभी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। आई हैव विजिटेड मोस्ट ऑफ हिज लोकेशंस, आप डाइवर्सिटी की बात करें, क्वालिटी की बात करें, वैरायटी की बात करें, कस्टमर सर्विस की बात करें, और खास तौर पर ये जो कंपैशन है इनके बिजनेस में, कि ये जो कम्युनिटी की सेवा का एलिमेंट है, सर्व करने का एलिमेंट है, ये बहुत कम बिजनेसमैन।
0: और एक और बात मैं कहना चाहूंगी आमिर की, मैं पर्सनली, बिकॉज मुझे ये खुद अच्छा लगता है कि हर एक स्टाफ मेंबर सो वेल ड्रेस्ड, ब्यूटीफुल लुकिंग, फ्रेश लुकिंग, ऐसा लगता है कि सब अच्छे से नींद पूरी करके कंफर्टेबल, एंड दे आर एंजॉयिंग वर्किंग विद कांडा ऑप्टिकल।
1: जी जी बिल्कुल,
0: मतलब एक चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट सी, मतलब एवरीबडी लगता है कि नया नया वो प्यार में, इश्क में डूबा है वो इंसान।
1: जी जी बिल्कुल,
0: वो रौनक।
1: अश्विनी जी देखे ना, अश्विनी जी खुद 45 साल के हैं लेकिन लगते नहीं है, लगता ऐसे ही है जैसे 25-26 साल का कोई लड़का है। तो अब आप मिलेंगे तो आपको पता चलेगा।
2: इसका ही कह रहा हूँ सभी को, आपने मुझे 45 का बना के बता दिया सभी को, नाउ आई लुक ओल्ड। कैसे किया आपने? तो ये तो बहुत ही अच्छा है। तो फिर तो आज ही जाके नए नए कपड़े लेकर आऊं।
1: नहीं आप लगते नहीं है बिल्कुल, मतलब बिल्कुल भी नहीं लगते, वाला 26 से ऊपर के नहीं लगते।
2: यू नो वो कलर, वो जस्ट फॉर मेन कलर मिलता है,
1: जस्ट फॉर मेन,
2: फटाफट वो लगा लूं जाके, काले काले बाल कर लूं।
1: आपके बाल वैसे ही बहुत काले हैं, लेकिन यू आर अ वंडरफुल पर्सन, वन ऑफ द बेस्ट आई हैव एवर सीन। गॉड ब्लेस यू, हमारी बहुत सी दुआएं भी और मोहब्बत भी, प्यार भी आपके साथ है, आपके पास है। और रेडियो टोरंटो कनाडा की तरफ से, लवी डवी शो की तरफ से, मैं अपने सुनने वालों को कहता हूं कि कांडा ऑप्टिकल इज द बेस्ट।
0: एब्सोल्युटली।
2: ये मुझे पता नहीं, मंड पे मुझे सुबह सुबह नींद उठ जाती है अमीर जी, एंड मुझे लगता कि 8-8:30 तक मैं अपनी लैब में पहुंच जाऊं। पता नहीं मुझे क्या खींच होती है कि भागूं, सभी वहां जाऊं, जाके कुछ ना कुछ कलाकारी से कुछ नई चीज निकालें।
0: आज भी वो क्रिएटिव है, इतने सालों के बाद।
2: मेक्स मी, आई थिंक इफ आई एम नॉट वर्किंग, I don't think I can survive.
1: Wow,
2: बहुत अच्छा। I need to be working and I'm workaholic and I love what I do.
1: Very nice.
2: This is what it is. And देखिए अभी हमारी एक और बहुत बड़ी लैब भी खुलने जा रही है, another lab where we going to have another state of the art, all the equipment, everything in Brampton. तो उसके लिए भी पूरी तैयारी चल रही है।
0: क्या बात
2: है। एंड क्लाइनबर्ग की लोकेशन जैसे कि मैंने बताया अभी खुल चुकी है। दिस इज ऑन 427 एंड बिल्कुल कॉर्नर पे है मेजर मैक के, वहां पे ब्यूटीफुल प्लाजा आपको मिलेगा। प्लीज अगर अभी तक आप नहीं गए, आप सुन रहे हैं और आपका जानने
1: वाला
2: उस तरीके जगह पे रहते हैं, उस तरफ रहते हैं खास, तो उनको जरूर हमारा ये संदेश।
1: बहुत बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी, आपसे फिर बात होगी अगले हफ्ते। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
2: थैंक यू सर।
0: थैंक यू अश्विनी जी। थैंक यू जी।
1: और यहाँ पे हमारा आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्टे ट्यून्ड।

0: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर, ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर। वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
1: Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. हम प्रोवाइड करते हैं honest और reliable services for all your financial needs, जैसे कि worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. दुनिया के किसी भी कोने से send और receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer करता है top dollars for your gold. Unwanted or used gold के लिए Cashpoint देगा fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. आज ही कॉल करें 416-284-7000, 416-284-7000.
2: Your business on CMR at 11. Reach the South Asian community.

0: बेस्ट साउथ एशियन क्लोथिंग के लिए एक ही स्टोर जहां पर आपको मिलेंगे एक छत तले बेस्ट फैशंस, बेस्ट स्टाइल्स एंड बेस्ट प्राइसेस। एशियंस पॉपुलर साउथ एशियन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल स्टोर नियर मार्कम रोड एंड लॉरेंस एवेन्यू इन स्कारब्रो, 3601 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट, यूनिट नंबर 23, स्कारब्रो। नोन फॉर देयर साड़ीज, लहंगा, सलवार सूट्स, ब्राइडल वेयर, मेन्स ट्रेडिशनल क्लोथिंग, ज्वेलरी एंड गिफ्ट आइटम्स। एशियंस 416-438-6568, ईस्ट और वेस्ट। एशियंस इज द बेस्ट।
1: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपनी सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30-point इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट ले, कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर it deserves.

0: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर, ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर। वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
1: कैश पॉइंट, वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर मनी ट्रांजैक्शन नीड्स। हम प्रोवाइड करते हैं ऑनेस्ट और रिलायबल सर्विसेज फॉर ऑल योर फाइनेंशियल नीड्स, जैसे कि वर्ल्ड वाइड मनी ट्रांसफर, चेक कैशिंग, करेंसी एक्सचेंज एंड बायबैक गोल्ड लोन एट एक्सेप्शनली लो रेट्स। दुनिया के किसी भी कोने से सेंड और रिसीव मनी ट्रांसफर, रिलायबल, कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल। दैट्स व्हाट कैश पॉइंट मनी ट्रांसफर सर्विसेज गिव यू। कैश पॉइंट ऑफर करता है टॉप डॉलर्स फॉर योर गोल्ड। अनवांटेड और यूज्ड गोल्ड के लिए कैश पॉइंट देगा फेयर मार्केट वैल्यू। लोकेटेड 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000. 416-284-7000.
2: Tie your business on CMR at 11. Reach the South Asian community.

0: आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यूनअप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लें एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिबेट भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 905-946-1000 फॉर मिडलैंड एंड सियर्स एंड 416-757-1000 फॉर मिडलैंड एंड एल्समियर और विजिट mymechanicauto.ca।
1: बेस्ट साउथ एशियन क्लोथिंग के लिए एक ही स्टोर जहां पर आपको मिलेंगे एक छत तले बेस्ट फैशंस, बेस्ट स्टाइल्स एंड बेस्ट प्राइसेस। एशियंस पॉपुलर साउथ एशियन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल स्टोर नियर मार्कम रोड एंड लॉरेंस एवेन्यू इन स्कारब्रो, 3601 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट, यूनिट नंबर 23, स्कारब्रो। नोन फॉर देयर साड़ीज, लहंगा, सलवार सूट्स, ब्राइडल वेयर, मेन्स ट्रेडिशनल क्लोथिंग, ज्वेलरी एंड गिफ्ट आइटम्स। एशियंस 416-438-6568, ईस्ट और वेस्ट। Asians is the best. You're listening to CMR. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR.

रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं सीजन, तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपनी सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री, मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट ले, कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स the care it deserves.

0: आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून अप माई मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लिए एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 905-946-1000 फॉर मिडलैंड एंड सील्स एंड 416-757-1000 फॉर मिडलैंड एंड एल्समियर और विजिट mymechanicauto.ca।
1: बेस्ट साउथ एशियन क्लोथिंग के लिए एक ही स्टोर जहां पर आपको मिलेंगे एक छत तले बेस्ट फैशंस, बेस्ट स्टाइल्स एंड बेस्ट प्राइसेस। एशियंस पॉपुलर साउथ एशियन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल स्टोर नियर मार्कम रोड एंड लॉरेंस एवेन्यू इन स्कारब्रो, 3601 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट, यूनिट नंबर 23, स्कारब्रो। नोन फॉर देयर साड़ीज, लहंगा, सलवार सूट्स, ब्राइडल वेयर, मेन्स ट्रेडिशनल क्लोथिंग, ज्वेलरी एंड गिफ्ट आइटम्स। एशियंस 416-438-6568, ईस्ट और वेस्ट। एशियंस is the best.

0: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर,
1: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
0: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
2: ओहो,

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: South Asian Unlimited Radio, Monday to Friday, 12 to 2 p.m. South Asian Unlimited Radio, जहां न्यूज व्यूज स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट की खबरें होंगी बिल्कुल अनलिमिटेड. एंटरटेनमेंट तो बहुत है लेकिन यहां पर मिलेगा आपको बिल्कुल अनलिमिटेड. न्यूज और व्यूज तो हर जगह मिलेंगे लेकिन यहां पर मिलेगा बिल्कुल अनलिमिटेड.
3: यहां भी होगा वहां भी होगा अब तो सारे जहां में होगा क्या मेरा ही जलवा.
2: जी हाँ, साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो का जलवा मंडे टू फ्राइडे 12 से 2 बजे तक. पापा, ये कौन से शो की बात कर रहे हैं पापा?
4: स्वैग से करेंगे सबका स्वागत.
2: जी हाँ, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत. ये उस शो की बात कर रहे हैं जिसका नाम है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम.
5: और म्यूजिक स्टार्ट करो भाई.
2: रोशनी कर खुदा को हो मंजूर, आंधियों में चिराग जलते हैं. साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम. स्टे ट्यून्ड.

0: The advertisements, views, and opinions expressed in the radio show are that of the sponsors, guests, and callers, and are not necessarily those of the South Asian Unlimited show, host, and its producers. The show is for entertainment purposes only and does not advocate any sponsors' messages. It is solely the responsibility of the advertiser or sponsor. नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सनी जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, जहां न्यूज, व्यू, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट की खबरें होती हैं बिल्कुल अनलिमिटेड। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055। बाहर का तापमान 17 डिग्री सेल्सियस, फील्स लाइक 16। व्हाट अ टर्न राउंड ऑफ द टेम्परेचर, यू टर्न लिया है बिल्कुल। टेम्परेचर कल तकरीबन 30-31 डिग्री तक पहुंच गए थे, फेल्ट लाइक 35-36 डिग्रीज, एंड टुडे इट इज गोइंग टू बी maximum hitting 18 degrees, night is 6, tomorrow 15 and 7, and Friday ko 17 and 11. Aur kuch isi tarah se decent temperatures dekhne ko milenge, and sunset hoga 8:42 per 8:42 p.m. स्टूडियो का नंबर 416-593-0055। और कैलाश खैर उदित नारायण की आवाज़ में यूं ही चला चल राही, यूं ही चला चल, एंड स्वदेश वॉज द फिल्म, फिल्म आया ऑन नन अदर देन शाहरुख खान। एंड स्टूडियो का नंबर है 416-593-0055। 12:15 की हेडलाइंस बिल्कुल रेडी है। स्काईलेक इमिग्रेशन से मनन गुप्ता जी भी आगे चलकर हमारे साथ होंगे विद द इमिग्रेशन सेगमेंट, जहां पर आपके सवाल मनन जी के होंगे जवाब फ्रॉम स्काईलेक इमिग्रेशन। 416-451-0040 is the number to call. And the segment is also brought to you by Brampton TV and Appliances. Bahut hi amazing deals chal rahi hai Brampton TV and Appliances pe, Sultan ji ne lagayi hui hai, unka fayda uthaiye. 801 Bovade Drive West at the corner of Bovade and Chinkusi in Brampton par pahunchiye. And saath hi saath the segment is brought to you by Win Lifetime Trading, 905-206-1008. Har Saturday free seminar hota hai, apni seat reserve karwana na bhuliye, please don't walk in at Win Lifetime Trading. And साथ ही साथ काफ़ी खबरें भी आप तक हमने पहुँचानी हैं, काफ़ी कुछ नया जो है हुआ है इन द लास्ट 24 आवर्स, और ऑब्वियसली फ्रॉम द US देयर इज ऑलवेज स्टफ हैपनिंग। बजट वॉच डॉग एस्टिमेट्स, कैनेडा विल स्पेंड ओवर $1 billion ऑन होस्टिंग द वर्ल्ड कप। ये फीफा की तरफ से खबर आई है, ओवर $1 billion कैनेडा स्पेंड करेगा इन द फ्यू मैचेस दैट हमारे यहाँ पर होने वाले हैं। एंड अब उसका आउटकम क्या होगा, इट्स अ ग्रेट थिंग कि फीफा वर्ल्ड कप यहाँ पे हो रहा है, आउटकम आने वाले दिन डिसाइड करेंगे। पुलिस रिलीज इमेज ऑफ सस्पेक्ट इन डेडली नून आवर स्टैबिंग, जो कल हुई थी हाईवे 10 होरंटारियो डंडास पर, पुलिस ने पिक्चर्स को जो है रिलीज कर दिया है। एंड आगे चलकर कुछ और खबरों को लेकर भी करेंगे बातचीत। 12:15 की हेडलाइंस बिल्कुल रेडी है। ड्राइवर इन क्रिटिकल कंडीशन आफ्टर एक सिंगल व्हीकल क्रैश हुआ क्लार्क बुलेवार्ड एंड वेस्ट ड्राइव इन ब्रैम्पटन। ब्रैम्पटन लिटरली जिसको कहते हैं द सेंटर फोकल पॉइंट ऑफ All this kind of stuff happening, unfortunately. We'll take a very short break. 12:15 ki headlines lekar foran aate hain wapas.
1: Ye wo time of the year hai jiska aap wait kar rahe the. Demonstrator event at Don Valley North Lexus, May 16th tak. Lease rates as low as 2.9% up to 24 months. Select demo vehicles per savings up to $4,989 included. Best selection ke liye Don Valley North Lexus, jaldi visit kare. जल्दी करें, ऑफर एंड्स मई 16th। विजिट donvalleynorthlexus.com टुडे। अ प्राउड मेंबर ऑफ वेन्स ऑटो ग्रुप।
0: बेस्ट साउथ एशियन क्लोथिंग के लिए एक ही स्टोर, जहां पर आपको मिलेंगे एक छत तले बेस्ट फैशंस, बेस्ट स्टाइल्स एंड बेस्ट प्राइसेस। एशियंस पॉपुलर साउथ एशियन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल स्टोर नियर मार्कम रोड एंड लॉरेंस एवेन्यू इन स्कारब्रो, 3601 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट, यूनिट नंबर 23, स्कारब्रो। नोन फॉर देयर साड़ीज, लहंगा, सलवार सूट्स, ब्राइडल वेयर, मेन्स ट्रेडिशनल क्लोथिंग, ज्वेलरी एंड गिफ्ट आइटम्स। एशियंस 416-438-6568, ईस्ट और वेस्ट, एशियंस इज द बेस्ट।
2: हाय अंजू, कैसी हो? हाउ इज योर सन डूइंग?
3: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर, टीवी, फोन पर लगा रहता है, आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
2: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
4: शी इज राइट, चाहे बच्चे हों या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे। ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव, ब्रैम्पटन, 9054573232, Clear Optical by Varun Kanda.
5: सुनो, आज मेरे भाई की फ्लाइट है इंडिया से।
6: अच्छी, याद है, याद है।
5: अच्छा उसको कहना कि आते हुए एक प्लेट छोले भटूरे पैक करा के ले आए इंडिया से।
6: अजी इंडिया जैसे स्वाद वाले छोले भटूरे खाने के लिए इंडिया के सपने ना लो, सीधा choleBhature.ca पे चलो।
7: choleBhature.ca बेस्ट पंजाबी रेस्टोरेंट इन ब्रैम्पटन। छोले भटूरे, पतीले वाले मटर कुलचे, पाव भाजी, अमृतसरी कुलचे और भी कई डिलीशियस ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल फूड के लिए पहुँचे। choleBhature.ca कॉल 9054582448।
8: सर्विंग फ्रॉम 4 डाइन इन लोकेशंस, 2 इन ब्रैम्पटन, 1 इन मिसागा एंड 1 बाय वॉन मिल्स।

Welcome back, friends. And the headlines are brought to you by Clear Optical by Varun Kanda, Rajdhani Sweets and Restaurant, McVean Dental Care, Kavya Homeo Care, Asians, popular South Asian clothing and textile store, Brampton TV Appliances, Win Lifetime Trading. Shuru karte hain taza tareen headlines. US Air Force ne warn kiya AI-powered robot fighters human pilots ko surpass kar sakte hain. Lawsuit settlement ke baad US government to drop the tax claim against President Donald Trump. Trump ne kaha ki unhone Iran par strike ko hold off kiya kyunki Qatar, Saudi Arab और यूएई के लीडर्स ने डिप्लोमेसी की अपील की थी. नाइजीरियन आर्मी का कहना है कि यूएस नाइजीरिया की जॉइंट स्ट्राइक्स ने 175 आईएसएस टेररिस्ट को मार गिराया. पीएम मोदी पहुंचे इटली, जहां प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी से की मुलाकात. फाइव नेशन टूर का ये आखिरी स्टॉप है. ट्रंप के चाइना विजिट के कुछ ही दिन बाद स्टेट विजिट के लिए व्लादिमीर पुतिन पहुंचे बीजिंग. मई 23 से 26 तक यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो 4-day विजिट पर इंडिया पहुंचेंगे. ट्रेड, डिफेंस और एनर्जी पर होगी अहम बातचीत. नॉर्वे ने रिपोर्ट किया यूरोप फर्स्ट केस ऑफ बर्ड फ्लू इन अ पोलर बेयर. ट्रंप की फ्रेश ईरान अटैक की टाइमलाइन, बोले 2 to 3 days और अर्ली नेक्स्ट वीक, द क्लॉक इज टिकिंग. अंडर ट्रंप प्रेशर यूरोपियन यूनियन ने अग्री किया टू इंप्लीमेंट यूएस ट्रेड पैक्ट. लोकल समाचारों में ब्रैम्पटन में हुए रोल ओवर क्रैश में ड्राइवर इन क्रिटिकल कंडीशन. पुलिस के अनुसार जीटीए ब्रेक इन्स के पीछे ऑर्गेनाइज क्राइम टेररिज्म ग्रुप है. और दूसरी ओर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने टोरंटो में हुई यूएस काउंसलर शूटिंग को लिंक किया टू अ मैन फेसिंग टेररिज्म चार्जेस. और स्कारबो कलिजन से 2 टोरंटो पुलिस ऑफिसर्स गए अस्पताल. एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन ने किया खुलासा सिक्योरिटी गैप्स एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एट टोरंटो इंटरनेशनल एयरपोर्ट. दूसरी ओर भारतीय समाचारों में असम के चीफ मिनिस्टर ने पोल प्रॉमिस रखा विजिट सिंगर जुबिन गर्ग्स मेमोरियल साइट. नाशिक के गॉडमैन अशोक खारत को प्रोब एजेंसी की कस्टडी में भेजा गया. करोड़ ऑफ पेमेंट्स पर जांच होगी. त्विशा शर्मा डेथ पर हुई जांच को लेकर भोपाल के टॉप कॉप का कहना है कि सुसाइड नॉट मर्डर, नो साइन ऑफ ड्रग यूज फाउंड. जामनगर डेंटल कॉलेज के 1.36 करोड़ रुपीज के स्कैम में एम्प्लॉय को हिरासत में लिया गया. दिल्ली बेक्स एट टेम्परेचर्स ओवर 45 डिग्री सेल्सियस, ऑरेंज अलर्ट इशू टिल मे 25th. प्रोलॉन्ग इलनेस के बाद फॉर्मर उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर वेटरन बीजेपी लीडर भुवन चंद्र खंडूरी का निधन हुआ. ही वॉज 91. पीएम मोदी और प्रेसिडेंट मुर्मू ने शोक जताया. यूएस में बोइंग फैसिलिटी पर इंडिया टू मॉनिटर ड्रीमलाइनर फ्यूल स्विच इंस्पेक्शन. फरवरी 2 को एयर इंडिया के पायलट ने डिफेक्टेड फ्यूल कंट्रोल स्विच को रिपोर्ट किया था. इकोनॉमिक स्टॉर्म वाले बयान को लेकर निर्मला सीतारमन ने कांग्रेस को स्लैम किया. कॉल्स देम ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट्स. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कर्नाटका फार्मेसीज ने 24 आवर्स स्ट्राइक का ऐलान किया. बीजेपी ने पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी के ट्रेटर वाले बयान को स्लैम करते हुए कहा, लैंग्वेज है ऑफ टेररिस्ट. राहुल गांधी वॉन्ट्स अनरेस्ट इन द कंट्री. फेक लिकर रैकेट में 5 states इन्वॉल्व हैं. चार्जशीट फाइल की गई. 25 accused नेम्ड इन इट. दूसरी ओर पाकिस्तान की खबरों से, पीटीआई ने पुलिस के साथ निगोशिएशंस के बाद डिसरप्शन के कुछ घंटे बाद इस्लामाबाद ब्लॉकेड को क्लियर किया. पाकिस्तानी ऑफिसर का दावा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 2 इंडियन एयर बेसिस को हिट किया गया था, मगर इंडिया के एयर डिफेंस नेटवर्क के अनुसार मिसाइल्स और रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करके उन्हें मिड एयर डिस्ट्रॉय किया गया था. पाकिस्तान और AIIB ने $320 million की लोन डील पर हस्ताक्षर किए फॉर नेशनल 5 हाईवे की रिकंस्ट्रक्शन. मिनिस्टर चीमा ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को एक रिलायबल डेवलपमेंट पार्टनर बताया है और यह भी कहा कि यह प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी को एनहांस करने में एक अहम रोल प्ले करेगा. सूत्रों के अनुसार इमरान खान अंडरगोज मेडिकल चेकअप एट अडियाला जेल. इमरान की आई का फॉलो अप एग्जामिनेशन हुआ. चीफ मिनिस्टर अफरीदी ने कहा, इमरान की अपने फैमिली के साथ मीटिंग बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं. उन्हें अपने चॉइस के अस्पताल में इलाज करने की सुविधा होनी चाहिए. पाकिस्तान एक्सटेंड्स एयर स्पेस बैन ऑन इंडियन फ्लाइट्स टिल जून 25th. और पीपीपी के राजा परवेज अशरफ ने कहा, शॉक्ड ओवर मेंशन बाय ड्रग क्वीन पिंकी. फॉर्मर मिनिस्टर का कहना है कि हर पाकिस्तानी को राइट है टू बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी. और सना यूसुफ मर्डर केस के

उमर हयात को 2 साल की सजा हुई इन आर्म्स केस। दूसरी ओर स्पोर्ट्स जगत से T20 कैप्टनसी को लेकर टीम इंडिया के लिए श्रेयस अय्यर का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। फॉर्मर खिलाड़ी मदन लाल ने इंडिया के ग्रेट की फिटनेस की तारीफ की। मदन लाल ने कहा कि द होल वर्ल्ड माइट गेट अनफिट बट नॉट विराट कोहली। वैभव सूर्यवंशी ने सेंसेशनल IPL रिकॉर्ड तोड़ा, स्क्रिप्ट हिस्ट्री विद फेरी 50 अगेंस्ट LSG, 93 runs and 38 balls for Rajasthan Royals. और बांग्लादेश कप्तान ने पाकिस्तान को बीट करके कहा, want to play more versus India and teams like Australia. बॉलीवुड खबरों से बॉबी डियोल की फिल्म बंदर का ट्रेलर कल रिलीज होगा। सोनू निगम सेल्स 5 करजत लैंड पार्सल्स फॉर 95 लाख रुपीज। अमिताभ बच्चन को रूटीन चेकअप के बाद मुंबई अस्पताल से मिली छुट्टी। प्रोड्यूसर वशु भगनानी ने टिप्स म्यूजिक डिस्प्यूट केस में मिली अदालत की रिलीफ को विक्ट्री फॉर ऑल प्रोड्यूसर्स बताया है। सेंसर बोर्ड ने मलयालम, तमिल और कन्नड़ा वर्जन्स ऑफ दृश्यम 3 को 0 cut से पास किया। तेलुगु वर्जन में एफ वर्ड को म्यूट किया गया। कॉकटेल 2 का मशहूर का सॉन्ग रिलीज हुआ। शाहिद कपूर, कृति सनन और रश्मिका मंदाना टर्न अप द हीट इन दिस प्लेफुल ट्रैक। और राजकुमार हिरानी का फर्स्ट वेब शो प्रीतम एंड पेड्रो टू स्ट्रीम ऑन जियो हॉटस्टार फ्रॉम 3rd July। और एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया से लिया लंबा ब्रेक। ये थी साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो की ताजा तरीन हेडलाइन। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055, स्टूडियो का नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं और अपना मनचाहा गीत सुन सकते हैं। राइट नाउ इट्स 17 डिग्री सेल्सियस, फील्स लाइक 16, एंड बहुत ही प्यारा सा गीत हमने आपके लिए लाइनअप किया है उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज़ में। एंड मैंने दिल तुझको दिया वॉज द फिल्म आया ऑन समीरा रेड्डी एंड सुहेल खान। एंजॉय द सॉन्ग, आई विल बी बैक।

Don Valley North Hyundai आपको दे रहा है मौका FIFA World Cup 2026 के टिकट्स जीतने का. कोई भी व्हीकल बाइकर के घर ले जाएं और पाए डबल एंट्रीज. विंटर टायर्स या एक्सटेंडेड वारंटी लें और हर एक के साथ पाएं एक एक्स्ट्रा एंट्री. आज ड्राइव करें, कल जीतें. Visit DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.

0: रानी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: 10 meter बस इन्ना को याद रखो, तुहानू उपरों लंघदियां बिजली दियां पावर लाइन्स तो घट्टो घट 3 meter दूर रहना चाहिदा है। ओंटारियो विच बिजली तो होण वाली मौतां दा एक प्रमुख कारण पावर लाइन्स हन अते बिना छुए भी तुहाडी मौत दा कारण बन सकदियां हन। जेकर तुसी बाहर काम कर रहे हो तां उपरों लंघदियां पावर लाइन्स वल ध्यान दिओ, अपने आप नूं अते अपने उपकरणां नूं इन्हां तों घट्टो घट 3 meter दूर रखो। इलैक्ट्रिकल सेफ्टी अथॉरिटी वल्लों सुनेहा esasafe.com/stoplooklive ते होर जाणो।
3: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
4: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada? Yeah.

0: You're listening to South Asian Unlimited Radio. For advertising, call 647-863-1940. 647-863-1940.
1: Genesis Markham, यहाँ मिले लग्जरी का फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस विद अ स्टेट ऑफ द आर्ट डीलरशिप और आपकी अपनी लैंग्वेज में एक्सपर्ट सर्विस. लीज करें ब्यूटिफुली डिजाइन 2026 G70 सिर्फ 1.9% से, या लीज करें 2026 GV70 सिर्फ 4.9% से. आज ही बुक करें टेस्ट ड्राइव. विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम. जेनेसिस मार्कम, डूइंग लग्जरी योर वे. A proud member of Wayne's Auto Group.
0: This part of the program is brought to you by Win Lifetime Trading. पिछले 15 सालों से successfully online trading से बहुत से परिवारों को side income provide करते आ रहे हैं, जिसमें आप हर महीने $2,000 से $6,000 US कमा सकते हैं. Flexible schedule है, surety with full confidence के साथ minimum $2,000 to $6,000 आप कमा सकते हैं. Free seminars attend करें हर Saturday afternoon. Make sure please make your appointment. Walk in ना करें. 12:30 PM to 3:30 PM होता है seminar, and call करके अपनी seat reserve करवा लें. 905-206-1008 905-206-1008. Mittal CPA Professional Corporation, for all your tax related matters, 289-748-4040 289-748-4040.

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: तेरी इस दुनिया में ये मंजर क्यों है, कहीं अपनापन तो कहीं पीठ पीछे खंजर क्यों है। सुना है तू इस संसार के हर जर्रे में रहता है, फिर जमीन पर कहीं मस्जिद कहीं मंदिर क्यों है। जब रहने वाले दुनिया के हर बंदे तेरे हैं, फिर कोई दोस्त तो कोई दुश्मन क्यों है। तू ही लिखता है हर किसी का मुकद्दर, तू ही लिखता है हर किसी का मुकद्दर, फिर कोई बदनसीब और कोई मुकद्दर का सिकंदर क्यों है। फिर कोई बदनसीब और कोई मुकद्दर का सिकंदर क्यों है।
4: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
5: जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना। वाकई जिंदगी बहुत ही सुहाना सफर है और कल क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। एक सुझाव मैं आपको देता हूँ कि किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस के लिए, जैसे ऑटो, होम, लाइफ एंड कमर्शियल इंश्योरेंस, एक भरोसेमंद नाम पूजा गुप्ता जी को कॉल करें 6476280040। दैट इज 6476280040।

0: कम्युनिटी का जाना बचाना और भरोसेमंद नाम मनन गुप्ता आपके लिए लाए हैं कैनेडियन इमिग्रेशन की प्रोफेशनल सर्विसेज। कॉल मनन गुप्ता 416-451-0040, दैट इज 416-451-0040, और विजिट skylakeimmigration.com।
1: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
2: I'm afraid we're going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada? Yeah.

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hum honge aapke saath hamesha.
2: वेलकम बैक फ्रेंड्स, और हम बात करते हैं आयशा मुनव्वर जी से, डेट सॉल्यूशन स्पेशलिस्ट, इनसॉल्वेंसी काउंसलर. और आयशा जी का ओवर 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑप्शंस आपको देती हैं अलग अलग फॉर डेट सेटलमेंट. और मैक्सिमम डेट रिलीफ के लिए आपने कॉल करना है 416-428-2165, 416-428-2165. आयशा जी, वेलकम टू साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो.
3: बिल्कुल, आई हैव टू लेट यू नो व्हाट ऑप्शंस आर अवेलेबल डेट सेटल करने के लिए. तो हमारी जो सर्विसेज हैं उनमें आ जाती हैं कंज्यूमर प्रपोजल्स, लमसम प्रपोजल्स, क्रेडिट काउंसलिंग सर्विसेज हैं. इसके अलावा हम बैंक्रप्सी में भी हेल्प आउट करते हैं, कलेक्शन कॉल्स रोक देते हैं, लीगल एक्शन रुक जाता है, इंटरेस्ट भी रुक जाता है, आपके एसेट्स जो है वो सेव रहते हैं. तो बेसिकली ये हमारी सर्विसेज हैं. और मोर देन 20 ईयर्स से मैं कम्युनिटी को हेल्प आउट प्रोवाइड कर रही हूँ, और उसमें ये है कि बेताशा क्लाइंट्स अब सक्सेसफुली डेट फ्री हो चुके हुए हैं. और अपॉइंटमेंट्स आर ऑलवेज फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल होती हैं, और वन ऑन वन अपॉइंटमेंट इसलिए जरूरी होती है कि हर पर्सन की सिचुएशन फर्क होती है, हर पर्सन की फाइल एक यूनिक फाइल होती है, तो उसको प्रॉपर तरीके से रिव्यू करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि बैंक किस तरह से जो है इसको मैक्सिमम सेटल करेंगे, और लीगैलिटी क्या है, प्रोसेस क्या है, फायदे क्या है, नुकसान क्या है, सब कुछ आपको बताया जाता है. एंड देन एंड के ऊपर वी हैव टू लेट यू नो कि कौन सी ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, क्रेडिट को आप किस तरह से दोबारा एस्टेब्लिश करेंगे, और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. तो basically this is you know what we do in first appointment to review your situation to know your options. Aur khali hum options discuss karke consultancy nahi provide karte, hum services provide karte hain. Basically we can file consumer proposals for you, bankruptcies for you, and also we provide credit counseling services. To kai tarah ke debts hote hain, unsecured, secured. To basically all kind of unsecured debts can be settled, aur business debts ho, personal ho, iske alawa CRA ke taxes hain, HST mein agar aap behind hain, aur kai लोग ऐसा करते हैं कि इधर उधर से गलत मशवरे लेके आ जाते हैं. तो आई विल सजेस्ट यू के यू नो ऑलवेज गेट योर एडवाइस फ्रॉम राइट प्रोफेशनल, ओनली पीपल हु आर फेडरली लाइसेंस दे कैन प्रोवाइड यू नो दीज सर्विसेज, जो कि ट्रस्टी ऑफिसर्स होते हैं, और वी आर वन ऑफ देम. और उसमें ये कि हम डायरेक्टली वन ऑन वन बैंक्स के साथ डील कर रहे हैं, कोई तीसरी पार्टी बीच में इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए आपके केसेस के खराब होने के चांसेस जो है वो क्लोज टू जीरो हो जाते हैं. एंड हमारा जो सक्सेस रेट है वो close to 99.9% aap samajh le, it's really high, or you know we know the right options for you. So all you have to give me a call to review your debt problems and know your right options to settle your debts. So phone number is 416-428-2165, that is 416-428-2165. Thank you.
2: बहुत बहुत शुक्रिया आयशा जी. और दोस्तों, मैं एक बार फिर से बता दूं, डेट सॉल्यूशन स्पेशलिस्ट इंसॉल्वेंसी काउंसलर आयशा मुनव्वर जी, एंड आपको देते हैं अलग अलग ऑप्शंस फॉर डेट सेटलमेंट. द नंबर टू कॉल आयशा मुनव्वर 416-428-2165, 416-428-2165, आयशा मुनव्वर. वेलकम बैक फ्रेंड्स, यू आर लिसनिंग टू साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. आमतौर पर हम ये सुनते हैं कि जो लोग आधा सुनते हैं ना, आपकी बात पूरी नहीं सुनते, वो पूरा मतलब कई बार निकाल लेते हैं बात का. बात आधी सुनी, अधूरी सुनी, मतलब निकाल लिया पूरा. इसीलिए कुछ इस तरह से कुछ पंक्तियां हैं कि आधा सुनने वाले लोग पूरा मतलब निकालने के विशेषज्ञ होते हैं, मतलब एक्सपर्ट होते हैं, वो खुद ही सारा मतलब निकाल लेते हैं. एंड इस तरह के लोगों को समझाएं तो समझाएं कैसे, क्योंकि उनके अंदर एक इम्पेशेंस होता है, वो आपकी बात ही नहीं सुनते. अभी आपके मुंह से दो सेंटेंसेस निकले हैं एंड दे ऑलरेडी मेक जजमेंट्स अबाउट व्हाट यू हैव टू से एंड व्हाट यू आर सेइंग. ऐसे लोगों का क्या करें, ऐसे लोगों से बच के रहें. स्टे ब्लेस्ड, लाइफ आई रिफ्यूज टू गिव.

0: इमिग्रेशन
1: कम्युनिटी का जाना पहचाना और भरोसेमंद नाम मनन गुप्ता आपके लिए लाए हैं कैनेडियन इमिग्रेशन की प्रोफेशनल सर्विसेज। कॉल मनन गुप्ता 416-451-0040 दैट इज 416-451-0040 और विजिट skylakeimmigration.com
0: Skylake Immigration।
2: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर। एंड इट्स दैट टाइम वेंसडे जब मनन गुप्ता जी स्काईलेक इमिग्रेशन से हमारे साथ होते हैं, आपके हॉट क्वेश्चंस होते हैं, हॉट सीट पे मनन जी होते हैं जवाब देते हुए। एंड immigration@gmail.com पर आप रेगुलर बेसिस पे अपने क्वेश्चंस मनन जी के लिए भेज सकते हैं। दिस इज द नंबर वन इमिग्रेशन कंपनी राइट हियर इन GTA इन ओंटारियो। 416-451-0040 दुनिया के किसी भी कोने से आपके रिश्तेदारों ने, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, लव्ड वंस ने आना है कनाडा, रिमेंबर वन नेम स्काईलेक इमिग्रेशन एंड नंबर 416-451-0040। मनन जी आपका स्वागत है।
3: थैंक यू सो मच सनी जी फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम सुन रहे सभी लिसनर्स और स्पॉन्सर्स को बहुत प्यार भरी नमस्कार, गुड आफ्टरनून, थैंक यू
2: जी, आपको भी। और पहला सवाल है आपका, आपके लिए मनोज जी का। मनोज जी पूछ रहे हैं कि मनन जी, कैन यू आंसर द ग्रोस मिसमैनेजमेंट एंड अदर केसेस ऑफ रॉन्ग डूइंग हैव बीन फाउंड एट इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, व्हाट्स योर टेक ऑन इट?
3: देखिए मनोज जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया फॉर सेंडिंग इन योर क्वेश्चन। हमारा ही तो टेक, फर्स्ट रिएक्शन तो यही है कि इट्स नॉट एक्सेप्टेबल इन द पास्ट, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल टुडे एंड इट इज नेवर एक्सेप्टेबल इन द फ्यूचर ऑल्सो। किसी भी तरह का अगर कोई मिसमैनेजमेंट, अगर कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कोई करता है, चाहे वो IRCC का स्टाफ मेंबर है, चाहे आजकल तो कैनेडा में हर डिपार्टमेंट CBSA, RCMP, OPP, टोरंटो पुलिस, पीट पुलिस, हर जगह ही जिसे कहते हैं प्रोफेशनल्स बिके हुए हैं, विच इज वेरी वेरी सैड रिफ्लेक्शन ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स। लेकिन जहां तक IRCC की बात है, IRCC ने रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने पब्लिश किए हैं वो सारे इंसिडेंट्स मिसकंडक्ट और रॉन्ग डूइंग के, जिसमें रेसिज्म से लेकर सेक्सुअल हैरासमेंट भी शामिल है और इसमें ओवर टाइम क्लेम करना काम ना करने के बावजूद और साथ ही साथ नेपोटिज्म, वैल्यूज और एथिक्स की उल्लंघना। तो ये सारी चीजें IRCC में हो रहे हैं विच नीड्स टू बी स्टॉप। चाहे 10,000 की इम्प्लॉयज की गिनती है, इट डजेंट मैटर कि 10,000 में एक दो जाने ऐसे निकले गलत निकले, हमें एक भी नहीं चाहिए क्योंकि दिस यू आर डीलिंग विद द फ्यूचर ऑफ कैनेडियन जिन्होंने नई दुनिया, नई जिंदगी कनाडा में शुरू करनी है।
2: जी, अगला सवाल मनन जी के लिए, मनन जी का नंबर दे दूं, स्काईलेक इमिग्रेशन 416-451-0040। अलीशा जी आपसे पूछती हैं कि मनन, हैव यू सीन एनी ड्रास्टिक चेंजेस इन प्रोसेसिंग टाइम्स ऑफ एप्लीकेशंस स्पेशली फॉर कैनेडियन वीजा ऑफिसेस लोकेटेड इन साउथ एशिया? अलीशा जी का सवाल है आपका।
3: देखिए ये इसको प्रोसेसिंग टाइम को मॉनिटर तो वैसे नो डाउट IRCC पब्लिश करती है डाटा प्रोसेसिंग टाइम रेगुलरली हर हफ्ते दो हफ्ते बाद, बट दिस इज नेवर अ गारंटी कि जो उन्होंने पब्लिश किए हैं टाइमलाइन उसी में आपकी फाइल प्रोसेस होती है। फॉर एग्जांपल इंडिया से अगर आज की डेट में अगर हम बात करें, औसतन 30 दिन लग रहे हैं विजिटर वीजा की एप्लीकेशन को। हमने कुछ एक सिनेरियो में एक हफ्ते में भी रिजल्ट आता देखा है। सिमिलरली आई डील विद लॉट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम बांग्लादेश, फ्रॉम नेपाल, फ्रॉम भूटान, वहां भी औसतन जो प्रोसेसिंग टाइम है 50 से 60 दिन है बांग्लादेश के, लेकिन हमें रिजल्ट 3 हफ्तों में भी आए हैं। सो देयर इज नेवर डेफिनेटली बेंचमार्क। मेन चीज ये होती है कि आपकी फाइल कंप्लीट हो, आपकी फाइल प्रॉपरली उसको एड्रेस किया जाए जो भी IRCC की रिक्वायरमेंट्स है, एंड देन लीव इट अप टू वीजा ऑफिसर टू डिसाइड इट इन अ जुडिशियल एंड रिस्पेक्टफुल टाइम।
2: जी, स्काईलेक इमिग्रेशन 416-451-0040। आज वेंसडे का आखिरी सवाल है रीटा पटेल। रीटा पटेल हमारी लिसनर पूछ रही हैं कि मनन जी, लर्निंग फ्रेंच इज बिकमिंग अ प्रेफर्ड पाथवे टू सिक्योर PR इन कनाडा, एनी स्ट्रेटजीज और सजेशंस? रीटा जी आपसे पूछ रही हैं।
3: देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है रीता जी कि फ्रेंच को सीखना, फ्रेंच की जानकारी होना आपको काफी ज्यादा जिसे कहते हैं पॉजिटिव रिजल्ट दे सकती है, नॉट ओनली टू बिकम परमानेंट रेजिडेंट बट उससे भी पहले। अगर कई लोगों के वर्क परमिट्स खत्म हो रहे हैं, एक्सपायर हो रहे हैं, तो दे कैन अवेल द फैसिलिटी ऑफ फ्रेंकोफोन मोबिलिटी परमिट जिसमें आपको लिसनिंग और स्पीकिंग में कम से कम लेवल 5 का स्कोर चाहिए। सो लर्निंग फ्रेंच इज नेवर गोइंग टू हार्म योर केस या हार्म योर फ्यूचर टू स्टे इन कैनेडा। लेकिन अब आपने हमें सीखना किससे है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया होना चाहिए. देखिए जो भी आपको लोग सिखा रहे हैं, ट्यूटर्स हैं, नो डाउट उनकी अपनी स्किल सेट को आप जानिए कि वो सिर्फ आपको इतनी तैयारी करवा रहे हैं कि आपने टेस्ट पास करना है या दे आर ट्राइंग टू मेक यू अ बेटर पर्सन एज वेल. क्योंकि बहुत सारे आजकल प्रोसीजरल फेयरनेस लेटर्स उन लोगों को आ रही हैं जिन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के टेस्ट सबमिट किए हैं. वीजा ऑफिसर्स कई बार वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं कि वाकई आपने फ्रेंच आपको आती है या आपने ले देकर कोई सर्टिफिकेट ले लिया. सो अगेन द चॉइसेज ऑफ आवर वैल्यूड लिसनर्स कि वो फ्रेंच कहाँ से सीखते हैं, जेन्युइनली सीखते हैं या किसी मिसरिप्रेजेंटेशन का शिकार होने से बचते हैं. जी
2: जी बिल्कुल. एंड दोस्तों कोई भी इमिग्रेशन रिलेटेड मैटर है, मेरी तो एक ही सलाह होती है जितनी नॉलेज मुझे है मीडिया में रहते हुए कि भाई जिसका काम उसी को साजे. जो एक्सपर्ट है मनन जी और उनकी जो टीम है स्काईलेक इमिग्रेशन पर, वो छोटी छोटी गलतियों से हमें ऐसा लगता है कि भाई गूगल एआई की मदद लेके हम एप्लीकेशन भर लेंगे, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है. रॉकेट साइंस है, छोटी सी एक अल्फाबेट की गलती से आपकी फाइल जो है 3, 4, 6, 8 महीने कई बार जो है डिले हो जाती है. उसमें स्ट्रेस भी होता है, मेंटल स्ट्रेस होता है आपके परिवार के लिए, आप स्पाउस के लिए या जिस अपने आप के लिए भी. अगर आप कोई फाइल इमिग्रेशन में लगा रहे हैं और गलती हो गई तो फिर डिले हो जाता है, वक्त बर्बाद होता है, मेंटल स्ट्रेस होती है, उसके ऊपर से पैसे की बर्बादी. सो जस्ट टॉक टू मनन गुप्ता जी एंड हिज टीम एट स्काईलेक इमिग्रेशन 416-451-0040-416-451-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0040-0 मनन जी बहुत बहुत शुक्रिया.
3: थैंक यू सो मच जी. और अगले हफ्ते होती है नई मुलाकात, नई जानकारी. बहुत मेहरबानी. थैंक यू.
2: एक्सलेंट, सुपर, बहुत बहुत शुक्रिया. 416-451-0040. और दोस्तों, डॉन वैली नॉर्थ हांडे की तरफ से दी जा रही हैं फीफा की टिकट्स. माय गॉड, इतनी महंगी हैं टिकटें. अभी मैं देख रहा था, ये CP24 पर दिखा रहे हैं. तो ये बैलेट जो है ये ड्रॉ किया जाएगा जून में. इसकी ऑफर खत्म होती है 31 मई को. अगर आप हांडे खरीदते हैं डॉन वैली नॉर्थ हांडे से, दो नेम दो टिकटों के लिए लकी ड्रॉ में ले जाएंगे. विंटर टायर्स विद स्टोरेज खरीदते हैं, वन नेम विद वन टिकट. एंड एक्सटेंडेड वारंटी परचेज करते हैं, अगेन वन नेम वन टिकट. For one ticket will be put in for a lucky draw. 7537 Woodbine Avenue and Markham Steel, Woodbine Wala Major Intersection, Don Valley North Hande. Best deals milti hain Don Valley North Hande par aapke liye. Aur Brampton TV and Appliance, Don Valley North Hande, Rajdhani Sweets and Restaurant ki taraf se Sajjad Ali ka favorite, mera favorite geet hai Ravi. And what a beautiful song. Enjoy karein. Bahut kuch kai baar geet kehna chahte hain, keh jate hain. Aur hum unhe samjhe na samjhe, ye hamare upar hai. Enjoy the song. I'll be back.

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940.

0: राजधानी राजधानी
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: अक्सर घर खरीदे में सिक्योरिटी हमारी आखिरी चॉइस होती है। ऐसा क्यों?
3: नया इलाका और नया घर,
2: अक्सर इन घरों में ज्यादा चोरियां होती हैं। घर नया ले या पुराना, बिना सिक्योरिटी के अधूरा रहेगा आपका प्लान। फॉर कंप्लीट पीस ऑफ माइंड एंड प्रोफेशनल सिक्योरिटी एडवाइस, पॉल सहगल 416-940-0624, 416-940-0624 और विजिट paulsecurity.com। प्रिवेंशन इज सॉल्यूशन।
4: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं For everything automotive, चाहे हो daily commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास, Wayne's Auto Group, हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates, जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care, Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें, waynesautogroup.com.

0: जी हाँ, यहाँ त्योहार, पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर, मूर्तियाँ, हवन सामग्री, फेंग शुई, वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
1: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
0: 31 मेलेनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 905-458-6808
1: और विजिट पूजाहट.com।
2: इंडिया सजावट एंड पूजा हट।
0: जय श्री राम।
3: Real estate is not easy business, और जो easy नहीं उसे easy बनाते हैं Realtor Raj Joshi from Royal LePage Credit Valley. घर खरीदना या फिर घर बेचना, first time home buyers या फिर investors, सबकी पसंद का रखते हैं ख्याल. ये है Raj Joshi, Realtor बेमिसाल. Call Raj Joshi from Royal LePage Credit Valley Realty 647-866-1086, 647-866-1086. Raj Joshi, सिर्फ नाम ही काफी है.

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर। बाहर का तापमान 17 डिग्री सेल्सियस, फील्स लाइक 16। एंड रॉयल लेपेज क्रेडिट वैली के नॉलेजेबल रियल्टर राज जी हमारे साथ है, राज जोशी। राज जी, आपका स्वागत है।
1: सनी जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब आपको, प्यारे लिसनर्स को वेरी गुड आफ्टरनून
0: जी आपको।
1: आज सनी जी हमेशा हमारे लिसनर्स या जो भाई बहन कॉल करते हैं कम्युनिटी के, वो ऑलवेज क्वेश्चन करते हैं कि आप किचनर वाटरलू हैमिल्टन एरिया की ज्यादा प्रॉपर्टीज या प्रोजेक्ट को शेयर करते हैं। तो आज मैं ये बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है एक्चुअली न्यू मार्केट की जो शेयर करने जा रहा हूं, और लोकेशन जो है बैथर्स्ट साउथ ऑफ डेविस ड्राइव, और इसमें 18 फीट के थ्री स्टोरी टाउन्स और 19 फीट के टू कार गैराज वाले रियर लेन टाउन्स, और साथ ही साथ 20 फुट वाले टू स्टोरी रियर यार्ड टाउन्स की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। इसमें प्राइजेस जो है बहुत ही जबरदस्त, 1900 स्क्वायर फुट के थ्री स्टोरी टाउन स्टार्टिंग एट 799, और आफ्टर द एनहांस्ड HST रिबेट इसकी कॉस्ट है सिर्फ 730,000। डिपॉजिट स्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त है, मैं इस वक्त उसको देख रहा हूं, $20,000 ऑन साइनिंग, $20,000 एट 30 डेज, 15,060 पे, 15,090 पे और 10,000 ईच एट 120 और 150 डेज। बहुत ही प्रेस्टीजियस ये लोकेशन होगी। जो टू कार गैराज वाले टाउन्स हैं वो 1,827 स्क्वायर फुट के अबाउट 849 का प्राइस है, और रिबेट के साथ आपको कॉस्ट पड़ेगी 774। इसी तरह टू स्टोरी वाले रेयर यार्ड टाउन 1,615 स्क्वायर फुट का यूनिट 867 का प्राइस है, और रिबेट के साथ आपको कॉस्ट पड़ेगी 789। डिपॉजिट स्ट्रक्चर अगेन वेरी सिमिलर, आप इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनके डेफिनेटली एक जबरदस्त प्रॉपर्टी के ओनर बनेंगे, वेदर वो आपके लिए फर्स्ट होम हो, वेदर आप उसको सिर्फ एक इनकम परस्पेक्टिव से देख रहे हैं या आपका लॉन्ग टर्म गोल है कि हमने कल इस पे जो भी हमें मार्केट में चेंजेस आते हैं उससे जितना भी प्रीमियम मिलता है उससे हम बेनिफिट करेंगे। बहुत जबरदस्त ये अपॉर्चुनिटी है। न्यू मार्केट ऑब्वियसली एक बहुत जबरदस्त ग्रोइंग कम्युनिटी, बैथर्स्ट और डेविस ड्राइव की लोकेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, प्रोजेक्ट टू कार गैराज विद डबल कार ड्राइववे पार्किंग है रियर लेन टाउन्स में, वर्कशीट रेडी है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सीरियस हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हमें कॉल कर लें, नंबर एक ही है हमारा। एंड ऑलवेज इट्स एन ऑनर फॉर अस टू बी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, विशिंग एवरीवन अ वंडरफुल डे
0: जी। बहुत बहुत शुक्रिया राज जी। 6478661086 राज जी का नंबर है, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सर जी।
0: थैंक यू जी। 6478661086 क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कांडा, दो लोकेशन से सर्व करते हैं आई एग्जाम्स के लिए, डॉक्टर्स अवेलेबल 7 डेज अ वीक, ब्रैम्पटन एंड जॉर्जटाउन, छोले भटूरे .ca, 4 लोकेशन सर्विंग यू, 2 इन ब्रैम्पटन, 1 इन वॉन, 1 इन मिसागा, ऑल लोकेशन हैव टेक आउट एंड डाइन इन ऑप्शन अवेलेबल, दिल्ली वाले ऑथेंटिक छोले भटूरे ओनली एट छोले भटूरे .ca। चलिए एक प्यारा सा गीत आपके लिए लगाते हैं, करवटे बदलते रहे सारी रात हम, किशोर कुमार साहब लता जी की आवाज में ये अमेजिंग सा गीत ऑन दिस ब्यूटिफुल मिड वीक वेंसडे, साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, वील बी बैक।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940 6478631940.
1: ये वो टाइम ऑफ द ईयर है जिसका आप वेट कर रहे थे. डेमोन्स्ट्रेटर इवेंट एट डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस मई 16 तक. Lease rates as low as 2.9% up to 24 months. Select demo vehicles for savings up to $4,989 included. Best selection ke liye Don Valley North Lexus jaldi visit kare. Jaldi kare. Offer ends May 16th. Visit DonValleyNorthLexus.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
2: Kya aap sun rahe hain?
0: मॉर्गेज का कोई भी काम याद रखें एक ही नाम मॉर्गेज आर्किटेक्ट्स के सनी जोशी. फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज, होम इक्विटी, रिन्यूअल्स, बैड क्रेडिट, इनकम इश्यूज के लिए लेट्स टॉक. बेस्ट रेट्स, बेस्ट सर्विस एंड बेस्ट मॉर्गेज प्रोफेशनल सनी जोशी. 6478631940 6478631940.
3: Hi Anju, कैसी हो? How's your son doing?
4: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर, टीवी, फोन पर लगा रहता है. आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल.
3: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल.
5: She is right, चाहे बच्चे हो या बड़े, wear smart glasses every day. ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज. विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव ब्रैम्पटन 9054573232 क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कैंडा.
6: क्रेडिट कार्ड, जीएसटी या कर्जों की समस्या, हम दिलवा सकते हैं 80% कर्जों से माफी और फीस लेंगे अप्रूवल के बाद. क्रेडिट बिल्डिंग में भी करेंगे मदद. सर्विंग यू फ्रॉम 4 लोकेशंस ऑल अक्रॉस जीटीए. ऑल डेट सॉल्यूशंस, मोहम्मद सिद्दीक 4166710577 4166710577 alldebtsolutions.ca.
0: बेस्ट साउथ एशियन क्लोथिंग के लिए एक ही स्टोर जहां पर आपको मिलेंगे एक छत तले बेस्ट फैशंस, बेस्ट स्टाइल्स एंड बेस्ट प्राइसेस. एशियंस पॉपुलर साउथ एशियन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल स्टोर नियर मार्कम रोड एंड लॉरेंस एवेन्यू इन स्कारब्रो. 3601 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट, यूनिट नंबर 23, स्कारब्रो. नोन फॉर देयर साड़ीज, लहंगा, सलवार सूट्स, ब्राइडल वेयर, मेन्स ट्रेडिशनल क्लोथिंग, ज्वेलरी एंड गिफ्ट आइटम्स. एशियंस 416-438-6568, East or West, Asians is the best.
1: Don Valley North Hyundai पे हो रही है जबरदस्त Hyundai Sunday की Ultimate Saving Sale on May 24th. Inventory पर huge bonus.

0: situation lay mortgage di lode jive first or second mortgage purchase or refinance ya private funds har jagah hath pair maar ke dekh chuke ho
1: tab fikr kyu kar de ho neelam sedhov kul hai solution for every situation
0: e offer kar dene best rates impaired credit ya bankruptcy hai no problem
1: in a call nahi a b and trusted private lenders
0: you shop around and come back to neelam
1: aaj hi call karo neelam sedhov nu
0: 647-739-8710 License number M200-00-3450
2: Hi, I'm Realtor Sikhi. Jee tusi ghar bechan ja khareedan bare soch rahe ho ta ek var mainu phone zarur karo. Main tuhanu professional advice deke tuhada ghar list karangi sirf $1000 vich. Ji haan, bilkul theek suneya. Only $4000. No hidden fees, no surprises. Call me at 647-408-7066. That is 647-408-7066. Just remember, you say sell and I say sold.
3: वेलकम बैक फ्रेंड्स. बिल्कुल जी, ये पावर होती है एक जबरदस्त रियल्टर की कि आपने सेल कहा और उससे पहले सोल्ड वाला प्रॉपर्टी पर बोर्ड लग गया. एंड इसीलिए सुखी कौर जानी जाती हैं होम लाइफ सिग्नेचर रियल्टी से फॉर द वर्क दैट शी डज, फॉर द लिस्टिंग्स दैट शी हैज, द वे शी टेक्स केयर ऑफ हर क्लाइंट्स. और जिस तरह से सुखी जी के पास एक पूरी टीम है, एक यू नो शी डज रियल एस्टेट एंड देयर इज अ मॉर्गेज टीम, लॉयर्स हैं, अप्रेजल, इंस्पेक्शन, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ बाय सुखी कौर एंड हर टीम. और एक बार आपने मन मूड बना लिया कि भाई लेना है घर एंड सुखी जी इज ऑन योर साइड, तो फिर रेस्ट अश्योर्ड कि भाई सारी की सारी जो ट्रांजैक्शन है इतनी स्मूथ होगी यू वोंट नो, और इससे पहले आपको पता भी नहीं होगा, ड्रीम होम की चाबियां आपके हाथ में होंगी. सुखी जी का नंबर 6474087066. सुखी जी, आपका स्वागत है.
4: थैंक यू सो मच सनी जी. सबसे पहले तो आपको एंड सभी लिसनर्स को मेरे सुखी की तरफ से वेरी हैप्पी वेंसडे.
3: जी आपको भी हैप्पी वेंसडे. एंड सुखी जी, आज क्या दिमाग में आ रहा है, किस चीज को लेकर आप हमारे लिसनर्स को एजुकेट भी करना चाहेंगी, क्योंकि आप जैसे प्रोफेशनल्स जब आते हैं वी गेट टू लर्न सो मच एंड ऑन टॉप ऑफ इट योर अमेजिंग लिस्टिंग्स वी ऑलवेज वेट फॉर.
4: जी ऑफ कोर्स सनी जी, सबसे पहले आजकल हमें बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा है कि जो हमारे बायर्स हैं, आई अंडरस्टैंड मार्केट है वो बहुत ही स्लो है फॉर सेलर्स के लिए, तो बायर्स के लिए आपको अच्छे प्राइसेस में घर मिल रहे हैं. तो बहुत सारे जो बायर्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि दे आर जस्ट गोइंग टू सी द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी देखकर उसको पसंद कर उस पर डिपॉजिट दे देते हैं एंड सोचते हैं कि यू नो व्हाट, क्योंकि प्राइस अच्छा है तो मॉर्गेज तो हो ही जाएगी. प्लीज डू नॉट डू दैट, क्योंकि बाद में क्या होता है, एवरीबडी द सिचुएशन इज डिफरेंट. अगर आपके फ्रेंड ने सेम आप जॉब करते हैं, आपकी सेम आप कह सकते हैं कि इनकम है, तो आप ये सोचकर उतने ही प्राइस का घर लेते हैं कि अगर उन्होंने ले लिया तो हम भी ले सकते हैं, हमारे भी मॉर्गेज हो जाएगी. बट दैट इज नॉट ट्रू. In this industry, your own situation is completely different than the other person. आपकी हो सकता है liabilities ज्यादा हो या उनकी liabilities ज्यादा हो, आप शायद और भी ज्यादा price का या और भी बढ़िया बड़ा घर ले सकते हैं. तो before you go to even see the houses, घर देखने से पहले सबसे पहले अपने आप को प्री अप्रूव करवाएं. आपको पता होना चाहिए कि आप व्हाट यू आर गोइंग टू डू, जिस आप काम में पैर रखने जा रहे हैं क्या वो बाद में पूरा भी उतरेगा या नहीं. ये ना हो कि आप थोड़े टाइम के लिए पेमेंट्स करें, 4-5 महीनों के बाद प्रॉपर्टीज आर कमिंग फॉर पावर ऑफ सेल. तो डू नॉट गेट इनटू दैट सिचुएशन. अपने आप को प्री अप्रूव कराएं, अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से अपना स्टेप ले. उसके लिए करना है क्या है, गिव मी अ कॉल एट 6474087066, 6474087066, क्योंकि हमारे पास जो है वो पूरी टीम है जिसमें से आपको रियल्टर्स, मॉर्गेजेस और इवन लॉयर्स, कुछ भी रियल एस्टेट के रिलेटेड जो काम है, वी डू एवरीथिंग अंडर वन अम्ब्रेला. एट लीस्ट यू नो कि आपका जो काम है वो स्मूथली हो जाएगा.
3: जी बिल्कुल.
4: हैविंग सेड दैट, कुछ प्रॉपर्टीज शेयर करना चाहूंगी जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है मार्केट में राइट नाउ. सबसे पहले तो कैम्ब्रिज में मेरे पास डिटैच घर है जो कि 3 बेडरूम का घर है, 1 बेडरूम की फिनिश्ड बेसमेंट है विद सेपरेट एंट्रेंस एंड किचन. तो फिनिश्ड बेसमेंट मिलेगी 1 बेडरूम.

0: कि तीन बेडरूम का ये घर है, बहुत ही अच्छे प्राइस में आपको मिल जाएगा. यू वॉन्ट टू बाई अ डिटैच हाउस इन कैनेडा इन सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, तो आपको ये घर मिड सेवन में मिल जाएगा. बहुत अच्छा घर है, कुछ काम नहीं होने वाला एंड बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है. 6474087066. अगर आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पावर ऑफ सेल पर घर है मेरे पास ब्रैम्पटन में, टाउन हाउस अवेलेबल है. ये तीन बेडरूम का घर है, वॉकआउट बेसमेंट है इसकी. आपको ये घर लाइक जैसे कि मैंने कहा छोटी सी इन्वेस्टमेंट, आपको ये घर मिड 400 में आप कैनेडा में घर लेना चाहते हैं, पावर ऑफ सेल पर मेरे पास प्रॉपर्टी अवेलेबल है. विदाउट एनी डिलेज गिव मी अ कॉल एट 6474087066.
1: जी बिल्कुल दोस्तों, बता दें सुखी कौर जी का नंबर 6474087066. कोई भी प्रॉपर्टी को आप चेकआउट करना चाहते हैं या इन GTA, बियॉन्ड GTA, याद रखें सुखी जी के पास बहुत ज़्यादा इस तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हो सकता है कुड बी अ फिट फॉर फर्स्ट टाइम होम बायर्स, और अगर आपकी ये सेकंड प्रॉपर्टी है एंड यूज़र, एज अ एंड यूज़र या एज अ इन्वेस्टर, सुखी जी से एक बार संपर्क ज़रूर कर लें 6474087066 पर. सुखी जी क्विकली जाने से पहले कुछ ऐड करना है?
0: हाँ जी, बताना चाहूंगी कि सॉरी, आई आल्सो वांटेड टू शेयर कि अगर हमारा कोई लिसनर प्रॉपर्टी लीज पर आपको कॉन्डो अपार्टमेंट चाहिए, तो मेरे पास ब्रांड न्यू दो बेडरूम की कॉन्डो दो बाथरूम इन बर्लिंगटन है. लाइक आई सेड ब्रांड न्यू नेवर लिव्ड इन, दो बेडरूम है, दो फुल बाथरूम मिलेंगे आपको. एंड इस कॉन्डो में एक जो प्लस पॉइंट है ना वो ये है कि इसमें आपको बैकयार्ड भी मिलेगा. बैकयार्ड के साथ कॉन्डो अपार्टमेंट रेंट पर लेना चाहते हैं, मेरे साथ कांटेक्ट कर लीजिए. लोकेशन बहुत ही अच्छी है, हाँ, QEW से इट इज लिटरली 6 मिनट्स की ड्राइव है, 407 इज 1 मिनट अवे. अमेजिंग लोकेशन, आपको गो स्टेशन जो मिलेगा वो अराउंड 5 मिनट्स की दूरी पर है. बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत ही अच्छा आपको रेंट इस पर मिल जाएगा. बर्लिंगटन में ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, अगेन प्लीज गिव मी अ कॉल एट 6474087066.
1: जी 6474087066. सुखी कौर 6474087066 इज द नंबर. सुखी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका.
0: थैंक यू सो मच, यू हैव अ वंडरफुल डे.
1: यू टू. 6474087066 इज द नंबर. एंड सुखी जी की तरफ से कुमार सानू की आवाज में जब प्यार किसी से होता है वॉज द फिल्म, फिल्माया ऑन सलमान खान. पहली प्यार जब प्यार किसी से होता है. बाहर का तापमान 17 डिग्री सेल्सियस, फील्स लाइक 16.

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940, 6478631940.
1: Genesis Markham, यहाँ मिले लग्जरी का फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस विद अ स्टेट ऑफ द आर्ट डीलरशिप और आपकी अपनी लैंग्वेज में एक्सपर्ट सर्विस. लीज करें ब्यूटिफुली डिजाइन 2026 G70 सिर्फ 1.9% से, या लीज करें 2026 GV70 सिर्फ 4.9% से. आज ही बुक करें टेस्ट ड्राइव. विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम. Genesis Markham, डूइंग लग्जरी योर वे. A proud member of Wayne's Auto Group.
0: This segment is brought to you by Clear Optical by Varun Karna, जो कि दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, Brampton and Georgetown. Exams के लिए doctors available 7 days a week, 905-457-3232. For name brand sunglasses, always remember Clear Optical by Varun Karna. The segment is also brought to you by Home Life Miracle के superstar realtors Sarabjit Gill, CP Chatwal for real estate buying, selling, investments. एक बार इनसे जरूर संपर्क करें. Some amazing properties that they have in the range of 700,000 and 800,000 in Brampton, in GTA. Sarabjit Gill, CP Chatwal, 647-887-2707 ya 416-627-4737. And the segment is also brought to you by Rajdhani Sweets and Restaurant, jo ki 30+ locations se serve karte hain 100% pure vegetarian food. Zabardast mithaiyon ka dusra naam, Rajdhani Sweets and Restaurant. McQueen Dental Care, Dr. Raj Gill, 9960 McQueen Drive, Unit 6 in Brampton. For all your dental needs, insurance ho ya na ho, McQueen Dental Care ke paas aapke liye special packages available hain. Talk to Sirat, 905-794-8883. Chahe braces lagwane hain, ya phir dentures, ya partial dentures, root canal cleaning, ya checkups, call McQueen Dental Care, 905-794-8883.
2: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं for everything automotive. चाहे हो daily commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care, Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें waynesautogroup.com.
3: कॉन्डो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर 5 साल किसको रुकना है? बन जाइए डेवलपर एंड बिल्डर और बनाइए पैसे डे 1 से. कांटेक्ट कीजिए अतीक खान एंड बिकम अ ब्रांड टू ग्रो योर ओन वेल्थ. 416-666-2745.
0: काव्या होम्यो केयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है. काव्या होम्यो केयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर. 10 Cotral Boulevard, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779.
4: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
5: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Lifetime. Learn to earn at Win Lifetime. Call 905-206-1008.
1: Don Valley North Hyundai pe ho rahi hai. Zabardast Hyundai Sunday ki ultimate saving sale on May 24th. Inventory par huge bonus offers. Deals itni zabardast ki miss nahi kar sakte. Sunday, May 24th ko apne calendar mein mark kar lo. Don Valley North Hyundai par hamari team baat karti hai. Hindi, Urdu, Punjabi aur Tamil mein. Visit kariye donvalleynorthhyundai.com. Woodbine Ave or Denison Street.
2: Don Valley North Hyundai, doing business your way.
1: Member of Wayne's Auto Group.
3: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर. और एक कॉलर है, उन्हें लेते हैं और फिर आपकी रिक्वेस्ट एक एक करके प्ले करनी है हमने 2 बजे तक. आप ऑन एयर हैं, प्लीज गो अहेड. हेलो. ओके, आपकी आवाज नहीं आ रही, कॉल बैक करें 416-593-0055. अभी कुछ देर पहले हमारे एक लिसनर ने मुझे इंस्टाग्राम पे एक वीडियो भेजा है जहाँ पर एक बेबी बेयर अरोरा की नेबरहुड में नज़र आया है. सो ऑल दीज काइंड ऑफ वीडियोस आर आल्सो फ्लोटिंग अराउंड. सो जहाँ पर भी आप होते हैं, रहते हैं GTA में, बियॉन्ड GTA, थोड़ा सा केयरफुल ज़रूर रहें बिकॉज वाइल्ड लाइफ यू जस्ट डोंट नो. और समटाइम्स हमारी कम्युनिटी से थोड़ी सी गलतियाँ ये भी हो जाती हैं कि पीपल स्टार्ट फीडिंग दैम. यू आर नॉट टेक्निकली सपोज टू फीड दैम, क्योंकि कायोटीज़ को फीड करने का मतलब है यू आर इन्वाइटिंग दैम, यू नो, आप उनको वेलकम कर रहे हैं. सो द बेस्ट थिंग इज़ टू अवॉइड एनिमल कंट्रोल को कॉल करना, या कई बार कोई छोटा सा फॉक्स हो या कोई वुल्फ हो, इस तरह के जो ये वाइल्ड लाइफ एनिमल्स होते हैं इन्हें अवॉइड करना ज़रूरी है बिकॉज दे डोंट रियली बिकम फ्रेंडली विद ह्यूमंस. दे एंड अप एक्चुअली बाइटिंग एंड यू नो अटैकिंग एंड ऑल दैट कैन नैस्टी स्टफ कैन हैपन. खासकर आप जहाँ पर आपके छोटे बच्चे भी हैं या खुद यू नो आप खुद की भी बात कर लें. हाउ आर यू गोइंग टू प्रोटेक्ट और डिफेंड योर सेल्फ इफ़ यू गेट अटैक्ड बाई यू नो अ कायोटी और अ वुल्फ और अ फॉक्स और इस तरह के जो animals hote hain, and even with your kids and stuff, your little pets got to be very careful. And Knicks rallied from 22 down to beat Cavs 115-104 in overtime in game 1 of Western Conference Finals. Bahut hi amazing game rahi. And Daljeet Dosanjh ki awaaz mein Lamborghini, ek bahut hi pyara sa geet. Waise to Daljeet ke sare geet hi ek se badhkar ek hote hain. And enjoy the song. Phir Brampton TV and Appliances Sultan ji bhi hamare saath honge. TV Appliance Laundry ke Sultan, kuch amazing deals aap tak lekar aayenge bahut jald.

0: ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ?
1: सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940 6478631940.
2: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर सते अनादी टोयोटा दा होवेगा द ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना. इस च साथ देन के चिप्स, चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स. पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे, एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा. ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक इजी स्टॉप. अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो क्योंकि यह सफर होने वाला है तूफानी.
3: उलझने हैं बहुत, सुलझा लिया करती हूं. फोटो खिंचवाते वक्त मैं अक्सर मुस्कुरा दिया करती हूं. क्यों नुमाइश करूं मैं अपने माथे पर शिकन की? क्यों नुमाइश करूं मैं अपने माथे पर शिकन की? मैं अक्सर मुस्कुरा के इन्हें मिटा दिया करती हूं. क्योंकि जब लड़ना है खुद को खुद ही से, तो हार और जीत में कोई फर्क नहीं रखती हूं. हारू या जीतू कोई रंज नहीं है, हारू या जीतू कोई रंज नहीं है. कभी खुद को जिता देती हूं, कभी खुद ही जीत जाती हूं. इसलिए भी मुस्कुरा दिया करती हूं, इसलिए भी मुस्कुरा दिया करती हूं.
4: He's breaking through the midfield.
5: Don Valley North Hyundai आपको दे रहा है मौका FIFA World Cup 2026 के टिकट्स जीतने का. कोई भी व्हीकल बाइकर के घर ले जाएं और पाए डबल एंट्रीज. विंटर टायर्स या एक्सटेंडेड वारंटी ले और हर एक के साथ पाए एक एक्स्ट्रा एंट्री. आज ड्राइव करें, कल जीते. विजिट DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
6: अपने करीबी को खोने से बड़ा कोई गम नहीं. ब्रैम्पटन क्रिमिटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर एंड एजैक्स क्रिमिटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है. 8 साल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रिमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध है. हर कदम हम आपके साथ. 30 ब्रैम्पटन कोर्ट इन ब्रैम्पटन, 905-458-2222 और लॉग ऑन टू bcvc.info और 384 Finley Ave in Ajax, 289-372-3330 और acvc.info.
7: सुनदे हो, मेरे प्रादी अज फ्लाइट है इंडिया तो.
8: ओ याद है, याद है. पर उनु कहीं कि आंदा होया एक प्लेट छोले भटूरिया दी फड़ लियावे.
7: इंडियन स्वाद वाले छोले भटूरे खान ले इंडिया दे सपने ना देखो. choleBhature.ca ते चलो.
9: choleBhature.ca बेस्ट पंजाबी रेस्टोरेंट इन ब्रैम्पटन. छोले भटूरे, पतीले वाले मटर कुलचे, पाव भाजी, अमृतसरी कुलचे ते होर भी कई डिलीशियस ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल फूड ले पहुंचो. choleBhature.ca कॉल 905-458-2448.
10: Serving from 4 dine-in locations, 2 in Brampton, 1 in Mississauga, and 1 by Vaughan Mills.
11: Genesis Markham. Yahan mile luxury ka first-class experience with a state-of-the-art dealership. Aur aapki apni language mein expert service. Lease karein beautifully designed 2026 G70, sirf 1.9% se. Ya lease karein 2026 GV70, sirf 4.9% se. Aaj hi book karein test drive. Visit genesismarkham.ca, located at Woodbine Avenue and John Street. Markham. Genesis Markham, doing luxury your way. A proud member of Wayne's Auto Group.
3: एक और कहानी मेरी जुबानी. एक बार की बात है, एक बहुत बुद्धिमान उल्लू था. वह एक पेड़ पर रहता था और हर दिन लोगों की मदद करता था. वो उनकी समस्याओं को सुलझाता था और उन्हें सही रास्ते पे ले जाता था. एक दिन एक लड़का उल्लू के पास आया और कहा, मैं बहुत दुखी हूं, मैं अपनी परीक्षा में फेल हो गया हूं. उल्लू ने लड़के को समझाया कि तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए. उसने कहा, आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए और फिर से कोशिश करनी चाहिए. लड़के ने उल्लू की बात मानी और फिर से कड़ी मेहनत की. अगली बार वो अपनी परीक्षा में पास हो गया. लड़का बहुत खुश हुआ. उसने उल्लू को धन्यवाद किया और कहा, आपकी मदद से मैं अपनी परीक्षा में पास हुआ. उल्लू ने कहा, आपका स्वागत है, हमेशा याद रखें कि कड़ी मेहनत और दृढ़ता से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं जिंदगी में। इस कहानी की सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी है, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, हमें हमेशा कड़ी मेहनत करनी चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। Stay blessed.

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर. ब्रैंटन टीवी एंड अप्लायंसेस से सुल्तान जी हमारे साथ हैं. 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट एट द कॉर्नर ऑफ बोवेड एंड चिकूसी इन ब्रैंटन. 905-450-2828 इज द नंबर. ओपन 7 डेज अ वीक, 11 AM टू 7 PM. BramptonAppliances.com पर जाकर आप अमेजिंग डील्स को चेकआउट कर सकते हैं. बाकी की सारी डील्स सुल्तान जी से लेते हैं. सबसे पहले टीवी सेक्शन की ओर करेंगे रुख. सुल्तान जी, आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर.
1: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया
0: सुल्तान जी. सबसे पहले द अमेजिंग टीवी सेक्शन पर थोड़ी सी रोशनी डालें.
1: डेफिनेटली जी, बिकॉज फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है और उसके साथ साथ रैप्टर्स की गेम चल रही हैं, साथ में ब्लू जेस की गेम चल रही है, तो जो भी स्पोर्ट्स के शौकीन कस्टमर हैं वो तो डेफिनेटली बिग स्क्रीन पे फुली इंजॉय करते हैं. और अगर बिग स्क्रीन डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाए तो फिर तो क्या ही बात है जी. तो ये जो भी कस्टमर इस वक्त 85 इंच QLED लेना चाहते हैं, क्वांटम डॉट क्वांटम प्रोसेसर के साथ QLED सैमसंग का 85 इंच $2000 वाला सिर्फ $1299 में मिलेगा. $700 आप 85 इंच QLED पे सेव करेंगे. ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस बोवेड एंड चिंकूजी वाली लोकेशन पे जी. इसी तरह 65 इंच सिर्फ $699 में मिल जाएगा और 55 इंच सिर्फ $399 में ले सकेंगे. पेमेंट आपने 6 महीने में करनी है जी, कोई इंटरेस्ट नहीं है. फ्री होम डिलीवरी होगी. आपको आना है 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकूजी ऑन बोवेड है जी. BramptonAppliances.com हमारी वेबसाइट से डायरेक्शन ऑफ द स्टोर भी ले सकते हैं. और जब बिग स्क्रीन की बात करें तो 98 इंच को मिस ना करें, क्योंकि 98 इंच सिर्फ 3 TV इन स्टॉक रह गए हैं. $3500 से सेल प्राइस $2799 का था, लेकिन $1999 में 3 lucky customers कैन गेट इट. 6 month नो इंटरेस्ट पेमेंट प्लान के साथ 98 इंच सैमसंग टीवी 1999 का. 905-450-2828, 905-450-2828 जी.
0: 905-450-2828, ब्रैंटन टीवी एंड अप्लायंसेस. सुल्तान जी, अप्लायंस एंड लॉन्ड्री की सेक्शन पर भी क्या अमेजिंग डील्स चल रही है, उस पर भी प्लीज डाले रोशनी. कुछ बंडल पैकेजेस भी मैं चाहूंगा कि आप हमारे लिसनर्स तक पहुंचाएं.
1: बिल्कुल जी, 40% का डिस्काउंट अप्लायंसेस इंडस्ट्री में नहीं मिलता. हाईएस्ट वॉल्यूम डीलर होने की वजह से 40% का डिस्काउंट जो है हम अपने कस्टमर्स के लिए लेके आए हैं जी. अगर तो बिल्ट इन किचन लेना है तो ह्यूज सेविंग है, क्योंकि बिल्ट इन कुकटॉप, बिल्ट इन वॉल ओवन, बिल्ट इन माइक्रोवेव, बिल्ट इन डिशवाशर और बिल्ट इन काउंटर डेप फ्रिज जो पूरे का पूरा बिल्ट हो जाएगा आपके किचन कैबिनेट्स में, और आइस एंड वाटर डिस्पेंसर के साथ होगा ये आपको $12,000 वाला बिल्ट इन किचन सिर्फ $6,900 में मिलेगा जी. ह्यूज सेविंग है, 40% की सेविंग करवा रहे हैं. फ्री होम डिलीवरी होगी. 6 month में आप पे करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है. इंडिविजुअल भी अगर आप लेना चाहते हैं, सिंगल फ्रिज आपको $2500 वाला $1799 में मिलेगा, और इसमें भी आप $700 एक फ्रिज खरीदने पे सेव करेंगे. स्मूथ टॉप इलेक्ट्रिक स्टोव $1300-1400 वाला $799 में मिलेगा सिर्फ, इसमें भी $500 की सेविंग है. टॉल टब की डिशवॉशर जो है $1000 वाली, ये तो मोर देन 40% डिस्काउंट है, क्योंकि $1000 से सिर्फ $499 में ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पे डिशवॉशर ले सकेंगे स्टेनलेस स्टील की $499 फ्री होम डिलीवरी के साथ. फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर की बात करें जी तो $2200 वाला फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर $1499 में, और टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर की अगर बात करें तो $1700 वाला टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर सिर्फ $1099 का पेयर मिलेगा. वॉशर ड्रायर दोनों ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस बोवेड एंड चिंकूजी वाली लोकेशन पे आना है. हमारा मैसेज जरूर पास ऑन करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव को. ह्यूज सेविंग्स इन इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस एंड लॉन्ड्री सेक्शन में मिलेंगी. 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकूजी ऑन बोवेड है जी. ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 905-450-2828, 905-450-2828 जी.
0: जी, 905-450-2828, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस.

0: You're listening to South Asian Unlimited Radio. For advertising, call 647-863-1940. 647-863-1940.
1: Ye wo time of the year hai jiska aap wait kar rahe the. Demonstrator event at Don Valley North Lexus, May 16th tak. Lease rates as low as 2.9% up to 24 months. Select demo vehicles per savings up to $4,989 included. Best selection ke liye Don Valley North Lexus, jaldi visit kare. Jaldi kare. Offer ends May 16th. Visit DonValleyNorthLexus.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
2: ये वो जगह है जहाँ हर धर्म को बराबर रखा जाता है, हमारी सद्भावनाओं का सम्मान किया जाता है और हमारी जनरेशन के लिए भी पुरानी कलाकृतियों को संभाला जाता है। ये है इंडिया सजावट एंड पूजा हट, धर्म, संस्कृति और कला का सुमेल। 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 905-458-6808.
0: वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। कई बार जिंदगी में सच जो है कड़वा होता है और ये सत्य है, क्योंकि सच हम कहते हैं ऑलवेज कि हम सुनना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई सुना दे तो तकलीफ भी होती है। झूठ जो है ना वो बड़ा मीठा होता है। आपकी कोई तारीफ करे, हर रोज करे, बार बार करे, चाहे वो झूठी ही सही, आपको लगता है कि भाई कुछ तो है मेरे अंदर, देखो कैसी तारीफ की जा रही है मेरी। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो ना सुंदर झूठ। सत्य कहो मगर स्पष्ट कहो, कहो ना सुंदर झूठ। चाहे कोई खुश रहे, चाहे कोई खुश रहे, चाहे जाए रूठ। इट्स ऑलवेज बेटर टू स्पीक द ट्रूथ। कम से कम इतना तो है ना कि आप झूठ नहीं कह रहे। कड़वा जरूर होगा, लेकिन कम से कम इतना है कि उसके पीछे कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है। ऐसे दोस्तों का भी क्या फायदा जो आपको सिर्फ और सिर्फ झूठ ही बोलते हैं और उनको ऐसा लगता है कि आप झूठ को समझ भी नहीं पाए। कई बार बंदा समझ के भी अनजान रहता है, चुप रहता है। स्टे ब्लेस्ड, लाइफ आई रिफ्यूज टू गिव अप।
3: एक घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, एक घर सिर्फ सपनों से नहीं बनता, एक घर बनता है इरादों से, जी जान मेहनत से। अपने इरादों को एक नया मुकाम दें, अपनी मेहनत को अंजाम दें। कॉल करें रॉयल लिपेज क्रेडिट वैली रियल्टी के राज जोशी को, जो काम करते हैं आपके लिए विद अटमोस्ट ट्रांसपेरेंसी एंड डेडिकेशन। 6478661086 6478661086। राज जोशी, नाम ही काफी है।
4: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर। ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर। वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।

0: Joshi.
1: You're listening to the Sunny Joshi Show on South Asian Unlimited Radio, CMR 101.3 FM. जी हाँ दोस्तों, यहां पे लेते हैं आपसे इजाजत. अब मुलाकात आपसे होगी कल 12 बजे ऑन CMR 101.3 FM. शो के बाद बातचीत करनी है, नंबर एक ही है 6478631940. टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस लेडीज एंड जेंटलमैन.

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: The opinions stated by the various contributors to Sean Express are not to be considered as endorsed by Sean Express or CMR. They represent the opinions of the individual or business in question. All information given on this radio show is for education and entertainment purpose only. Moreover, the health tips given on this radio show should be cleared with a physician or nutritionist. We make no guarantee about the accuracy of information presented on this show.
3: Attention please, Sean Express, Masiki Rail Gari, CMRP Station, 101.3 FM par aa chuki hai.
4: Jal mein sunane aayi, subah manane aayi, chatpate gossip ke saath masti lutane aayi. Aayi Sean Express, masti ki rail gari, aayi Sean Express, masti ki rail gari.
5: Sean Express, मस्ती की रेलगाड़ी,
6: एक ड्राइव इन मस्ती शो जिसमें है आज के जमाने के टॉप सॉन्ग्स, ताजा तरीन खबरें और चटपटी गॉसिप्स जो आपकी ड्राइव को बनाएंगे पावर ड्राइव. Sean Express, मस्ती की रेलगाड़ी, ड्राइव टाइम शो विद शालिनी.
5: शालिनी ब्रॉट टू यू बाय Sean Media.
7: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं शालिनी और आप लोगों का वेलकम करती हूं Sean Express मस्ती की रेलगाड़ी पर ऑन CMR FM 101.3. टुडे इज वेंसडे May 20th और अब जो है गर्मी बाहर कम हो चुकी है कल के मुकाबले और आज आ चुकी है 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर एंड इट्स अ ब्यूटीफुल डे विद सनशाइन. कहते हैं दोस्तों कि कभी कभी जिंदगी में बहुत कुछ नहीं चाहिए होता, बस थोड़ा सा सुकून, थोड़ा सा प्यार और कुछ लोग जो अपने होते हैं वो काफ़ी होते हैं. तो आज का मूड भी कुछ ऐसे ही है दोस्तों, सिंपल, सॉफ्ट और दिल से जुड़ा हुआ. आज का ब्यूटीफुल पॉजिटिव थॉट कहता है कि जो खुशी है वो चीज़ों में नहीं है, अच्छे रिश्तों और सच्चे एहसासों में मिलती है. तो आज अपने दिलों को लाइट रखिए, पुरानी यादों को फील कीजिए और म्यूज़िक को अपने इमोशन से कनेक्ट होने दीजिए. और इसी खूबसूरत एहसास के साथ आज की राइड की शुरुआत करते हैं एक एवरग्रीन गाने के साथ जिसने हर रोमांटिक दिल को कभी ना कभी ज़रूर टच किया है. वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए. गुड आफ्टरनून.

0: जी दोस्तों, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। कुछ गाने सिर्फ सुनाई नहीं देते, सीधे दिल में उतर जाते हैं। और ये जो गाना था उन्हीं एवरग्रीन गानों में से एक है। इस गाने की जो सिंप्लिसिटी है, इमोशंस हैं, और वो प्योर वाली जो फीलिंग है ना, वो आज भी दिल को उसी तरह टच करती है। कहते हैं कि कुछ एहसास शब्दों में नहीं आते, कुछ एहसास शब्दों में नहीं आते, बस दिल में उतर जाते हैं। और कुछ गाने वक्त के साथ पुराने नहीं होते, बल्कि यादों का हिस्सा बन जाते हैं। तो इसी रोमांटिक और सोलफुल वाइब के साथ हमने शुरुआत की आज की मस्ती की रेलगाड़ी की राइड ऑन CMRFM 101.3। आप लोगों का फिर से शालिनी करती है वेलकम। और ड्यूरिंग द शो आप हमारा साथ दे सकते हैं। बहुत प्यारा सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आपके लिए आज चुना है हमने, और आज भी मुझे चाहिए आपके उतने ही कॉल्स जितने आपने कल किए थे और मुझे बताया था कि कल के टॉपिक के बारे में आप क्या सोचते थे, और अब आप मुझे बताएंगे आज के टॉपिक के बारे में आप आज क्या सोचते हैं। सो वेल, स्टूडियो का नंबर 416-593-0055। 17 डिग्री सेंटीग्रेड, पार्टली क्लाउडी स्काई है, फील्स लाइक 16 डिग्रीज, और आज का हाईएस्ट दोपहर के 3 बजे हम पहुंचाएंगे साथ मिलकर 18 डिग्री सेंटीग्रेड। और ओवरनाइट लो आज जा सकता है, सिंगल ही है, डबल नहीं है, चिंता मत करो, 12 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा कहा जा रहा है रात में। सो वेल, ऑल इन ऑल अ ग्रेट डे टू एंजॉय, हेड आउट, बी विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिली मेम्बर्स। और जब हम आर्टिस्ट होते हैं दोस्तों, जब हम शो पर होते हैं या लाइव शो करते हैं या रेडियो शो करते हैं या टेलीविज़न शो करते हैं, हम सभी आर्टिस्ट होते हैं, तो हमारी हौसला अफजाई होती है वो एक मैसेज से, वो एक फ़ोन कॉल से जो आप लोग हमें करते हैं। तो शुक्रिया मेरे दोस्त, आपका मैसेज हम तक पहुँचा, गाना आपने पसंद किया, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही हमारा साथ दीजिएगा अगले 2 घंटे तक CMRFM 101.3 पर। डायरेक्ट नंबर टू रीच अस ड्यूरिंग और आफ्टर द शो 416-569-7812, 416-569-7812। और आज का दिन इतना मज़ेदार है ना कि बस मैं आपको क्या बताऊं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट एक चीज़ बता दूं, अगर आप बाहर निकले हुए हैं ना किसी के लिए फूल ज़रूर खरीद लें, क्योंकि आज है फ्लावर डे। और फूल देने के लिए वैलेंटाइंस डे या मदर्स डे ही नहीं होता, दिन साल में कोई भी दिन आप फूल दे सकते हैं, लेकिन आज फ्लावर डे है, तो क्यों ना आज किसी को आप स्पेशल फील कराएं। कहते हैं कि इट मेक्स अ टोस्ट टू द ब्यूटी ऑफ फ्लावर्स एंड द वे दे आर यूजफुल टू अस। तो इस वक्त जो है फूल खिलते हैं दोस्तों, समर आ रहा है, हम सभी बाहर निकले हैं, अच्छे से फ्लावर का बुके लीजिए और अपने किसी दोस्त को सरप्राइज कर दीजिए, बगैर किसी रीजन के फ्लावर्स दे दीजिए, और फिर देखिए उसके चेहरे पर क्या स्माइल आती है। आप में से कितने लोगों ने फ्लावर दिए हैं मुझे जरूर एंड ऑफ द शो से पहले पहले जरूर बताइएगा। एक ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद तुरंत वापस लौटते हैं, एक बहुत प्यारे से गाने की फरमाइश आई है, वो आपकी नजर करेंगे। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055। गुड आफ्टरनून Dear sponsors, for fast, effective and result-oriented drive, get on board Sean Express. For info, call 416-569-7812, 416-569-7812, or email info@seanmedia.com, seanmedia.com. Dear sponsors, for fast, effective and result-oriented drive, get on board Sean Express. For info, call 416-569-7812, 416-569-7812, or email info@seanmedia.com, seanmedia.com.
1: You work hard, manage to make both ends meet. Right combinations do miracles. If tax and accounting is your need, think Rajiv Madan. Depth of experience, passion for accounting. Tajurba wahi jo kaam aaye, aapko fayda pahunchaye. Certified General Accountant, Rajiv Madan. Tax accounting ke sabhi pehluon par paini nazar. Fark aazmane pe pata chalega. Call CGA Rajiv Madan, 905-362-2200. 905-362-2200.
2: 2970 Drew Road, Suite 214B, Mississauga.
1: CGA Rajiv Madan. Thoughts become things.
3: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर, ये time here for expert service at your local Toyota dealer.
4: One easy stop for oil changes, brake checks and tire swaps. Book your appointment today, kyunki ye safar hone wala hai toofani.

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम
1: Team Hashtag Homes and Rahul Kashyap Lekar aaye hain first time home buyers ke liye an amazing opportunity. Freehold town homes from $499,000 and detached homes from $605,000. First time home buyers can enjoy up to $130,000 in savings with new rebates, unlocking home ownership for the first time home buyers with the closing of 2027. Agar aap is opportunity ko grab karna chahte hain, then get in touch with Team Hashtag Homes today at 647-993-4844.
2: इस तेज रफ्तार जिंदगी में लीजिए एक लवली ब्रेक। चाहे बैक होम जाना हो या करनी हो दुनिया भर की सैर, अपने ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस को बनाइए लवली विद लवली फेयर्स। वेकेशन पैकेजेस, टूर्स या फ्लाइट्स, लवली ट्रैवल्स इज ऑलवेज रेडी टू मेक योर ट्रिप मेमोरेबल एंड अफोर्डेबल। कहीं और से टिकट्स बुक करने से पहले एक बार लवली फेयर जरूर चेक करें। लवली ट्रैवल्स, 80 मैरिटाइम बुलेवार्ड, यूनिट नंबर 54 इन ब्रैम्पटन। कॉल 9054585300, 905-458-5300.
3: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
4: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: पुराना गाना बनाए दीवाना, शोर एक्सप्रेस पर खोले यादों का पिटारा.
2: दिस सेगमेंट इज स्पॉन्सर्ड बाय मद्रास रेस्टोरेंट, ब्रिंगिंग यू ऑथेंटिक साउथ इंडियन फ्लेवर्स विद देयर अनलिमिटेड थाली. 20 प्लस डिलीशियस डिशेस, फ्रेश एंड अनलिमिटेड, स्टार्टिंग एट जस्ट 20-26, फ्राइडे टू संडे, ओनली एट मद्रास रेस्टोरेंट.
3: हर दोस्तों, एक बार फिर से शालिनी आप लोगों का वेलकम करती है मस्ती की रेलगाड़ी पर ऑन CMR FM 101.3. और एक बहुत प्यारा सा गाना है जो आपकी नज़र मैं करना चाहूँगी, क्योंकि कहते हैं कि जब मौसम हो सुहाना और दिल में हो प्यार का एहसास, तो एक गाना खुद ब खुद होठों पर आ जाता है. फिल्म का नाम है जब जब फूल खिले, और इस गाने को अपनी मधुर आवाज़ से सजाया है लता मंगेशकर जी ने, और पर्दे पर इस गाने को जिंदा किया है नंदा और शशि कपूर ने. कहते हैं ये समा ये फिजा बस तेरा ही एहसास है, तू पास हो तो हर पल खास है, तेरे साथ ही मेरी हर खुशी जुड़ी है, क्योंकि तू ही मेरा प्यार और तू ही मेरी हर सांस है. बहुत प्यारा सा गाना है, और चंद लाइनें मैं अपनी तरफ से आपकी नज़र करूंगी, उसके बाद हम ओरिजिनल ट्रैक सुनेंगे. गाने के बोल कुल इस तरह से हैं,

जी दोस्तों, और समा तो प्यारा हो ही जाता है, बस हमारे जहन में ना एक पॉजिटिव सा ख्याल होना चाहिए, और जब हम पॉजिटिव होते हैं तो अपने आप जैसा भी मौसम है अच्छा लगने लगता है, और हमारा तो मौसम आप लोग बनाते हैं दोस्तों। तो बहुत बहुत शुक्रिया शकील जी, आपका मैसेज आया, पिंकी जी आपका भी मैसेज आया, और शोना आपका मैसेज आया, साथ ही प्रभु आपका भी मैसेज आया, और बस बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी कोशिशों को आप पसंद करते हैं और हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। और दोस्तों आज का दिन क्या कहता है, मैं आपको बता दूँ, 20th of May है आज, और आज का दिन क्या कहता है, आज का दिन स्पॉन्सर कर रहे हैं देओल ट्रैवल, और पहले सुनिए इनके लेटेस्ट लेटेस्ट डील्स के बारे में। आज के बेस्ट ऑफर्स हैं, दिल्ली से टोरंटो अक्टूबर से जा सकते हैं जनवरी फरवरी तक, राउंड ट्रिप लगा है लिमिटेड सीट्स के साथ, केवल $1,320 में। नाउ दिल्ली से टोरंटो अक्टूबर टू नवंबर वन वे 8:30 में, टोरंटो से अमृतसर या दिल्ली सितंबर टू अक्टूबर राउंड ट्रिप लगा है दो बैग्स के साथ $1,650 में, विच इज अ लिमिटेड टाइम ऑफर। नाउ टू लोकेशंस टू सर्व यू, ब्रैम्पटन एंड इटोबिको, देओल ट्रैवल 905-588-5100 एंड 905

588-4200, 588-5100 and 588-4200. इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अपना घर आपका खूबसूरत हो जाए, आपके ऑफिसेज अच्छे हो जाएं, अच्छे अच्छी विंडोज़ हों और अच्छे अच्छे डोर्स हों, तो यश विंडोज़ एंड डोर्स में ज़रूर बात करें. वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इनके पास होते हैं, वो भी रीज़नेबल प्राइस में. ऑल ओवर ओंटारियो सर्विसेज देते हैं, कोई मिडल मैन नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं और इनकी टीम ही इंस्टॉल करती है. सुपीरियर स्टाइल हैं, गुड लुक्स हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी है, टॉप ऑफ द लाइन सिक्योरिटी, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, सब कुछ, और प्राइस ऐसी जो आपकी पॉकेट में आ जाए. उसके अलावा अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो फ्रेंचाइज ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं. कॉल कीजिएगा 416-732-3600, दैट्स 416-732-3600. और अब चलते हैं आगे और आपको बताते हैं कि आज के दिन में क्या खास हो रहा है, व्हाट इज सो स्पेशल टुडे. और आज के दिन को देखते हुए बहुत सारी बातें हैं. सबसे पहले तो मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया था, आज है नेशनल फ्लावर डे, तो किसी ना किसी को आप फ्लावर ज़रूर दे दीजिए. ज़रूरी नहीं है कि आपका वो वाला प्यार हो, ये वाले प्यार को भी दे सकते हैं फ्लावर्स, अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं, अपने दोस्तों को दे सकते हैं, अपने टीचर को दे सकते हैं, अपने स्टूडेंट को दे सकते हैं, और ये सब कुछ कर सकते हैं आप आज. ऑलराइट, तो सबसे पहले हम सभी लोग तमाम चीज़ें देखना पसंद करते हैं टेलीविजन पर, अपने सेलफोन्स पर, तो आज है नेशनल स्ट्रीमिंग डे. OTT प्लेटफॉर्म्स, म्यूजिक एप्स, लाइव शोज, यानी आज का दिन है बिंज वॉचिंग करने का, यानी बिंज वॉच कीजिए और अपनी फेवरेट सीरीज और सॉन्ग्स को एंजॉय कीजिए. फिलहाल तो आप हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं, राइट. फ्लावर डे है, यानी हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी और लव का सिंबल, किसी को फूल देकर उसका दिन बना दीजिएगा. और एक ब्यूटिफुल मैसेज वाला दिन है, टर्न ब्यूटी इनसाइड आउट डे. कहते हैं कि जो रियल ब्यूटी है, जो असली खूबसूरती है, वो बाहर की नहीं, अंदर से भी होनी चाहिए. अंदर की काइंडनेस, कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिविटी, वो सबसे बड़ी खूबसूरती है. और आप लोगों को मैं कहूँगी, बी ब्यूटिफुल फ्रॉम विद इन, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पेट लवर्स के लिए आज है नेशनल रेस्क्यू डॉग डे. रेस्क्यू डॉग्स जो सेकेंड चांस डिजर्व करते हैं, अडॉप्ट डोंट शॉप, ऐसा भी कहा जाता है. इसके बाद मेजरमेंट्स की इम्पॉर्टेंस है आज, और अपने वेट को भी आप मेजर करते रहिए. साइंस, टेक्नोलॉजी और डेली लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट रोल है मेजरमेंट्स का. हर चीज़ मेजर करके करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन खुशियों को मेजर ना करें, दुखों को भी मेजर ना करें. यू नो, लेट इट बी. खुशी आती रहती है, जाती रहती है, दुख भी आते जाते रहते हैं. जब आप दुखी हैं तो सोचिए अगली जो पड़ाव है ना, वो खुशी का है, और जब खुश हैं तो दुख के बारे में बिल्कुल ना सोचिए, राइट. लेट्स डू दैट. और फाइनली आज है ड्रीम बिग एंड वर्क हार्ड का दिन. मिलेनियर माइंडसेट स्टार्ट्स विद अ पॉजिटिव थिंकिंग, तो आज है बी अ मिलेनियर डे. और आपको लिए चलते हैं स्लम डॉग मिलेनियर के सुपर डुपर हिट गाने की तरफ, मस्ती की रेलगाड़ी पर.

0: एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।
1: खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें। आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157।
2: शगन का दिन चढ़ेगा, सजना घर आएंगे, डोली लेकर जाएंगे, दुल्हन सजेगी, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी। शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।
3: वेलकम टू मद्रास रेस्टोरेंट। स्वाद स्वाग और साउथ का तड़का। फ्राइडे, सैटरडे और संडे एंजॉय कीजिए ऑथेंटिक साउथ इंडियन अनलिमिटेड थाली, स्टार्टिंग एट सिर्फ 20-26। 20 प्लस साउथ इंडियन डेलिकेसीज, गर्मा गर्म और अनलिमिटेड पराठा, इडली वड़ा, स्पाइसी अरोमेटिक करीज एंड मोर। अनलिमिटेड सर्विंग्स, अमेजिंग वैरायटी और प्राइस जो पॉकेट को भी खुश करे। डोंट फॉरगेट टू ट्राई देयर सिग्नेचर डोसास, बिरयानी एंड लॉट मोर। मद्रास रेस्टोरेंट, 905-789-6600, दैट्स 905-789-6600।
0: Sean Express News Bulletin brought to you by Sean Media. News headlines sponsored by Anjum Qureshi. For all kinds of car accident claims, call 416-570-0157. That's 416-570-0157.

0: एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी में सवार हो चुके हैं आप और ये है न्यूज जंक्शन। पहले जान लेते हैं हेडलाइंस। पीएम मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने बुधवार को रोम में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मिडल ईस्ट में जारी युद्ध को लेकर चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट की। उधर भारत में सीजीआई सूर्यकांत के कॉकरोच वाले बयान के विरोध में बनी कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया पर सिर्फ 5 दिन में लाखों फॉलोअर्स हो गए। हिमाचल प्रदेश जो कभी था ठंडा ठंडा कूल कूल, वहां 4 जिलों में आज हीट वेव महसूस की गई। वहीं सलमान खान एक करीबी से मिलने हिंदुजा अस्पताल पहुंचे और पेपराजी पर भड़क गए।
1: और अब नजर डालते हैं लोकल खबरों की तरफ। टोरंटो के सबसे बिजी एयरपोर्ट टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। लेटेस्ट इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट W5 में सामने आया है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स एयरपोर्ट इंसाइडर्स का इस्तेमाल करके ड्रग्स को स्मगल कर रहे हैं। पैसेंजर्स के लिए तो स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी चेक्स हैं, एक्सरे स्कैनिंग, बॉडी स्कैनिंग कैमराज, लेकिन एम्प्लॉयज जिनके पास रिस्ट्रिक्टेड एरियाज का एक्सेस है उनके लिए मॉनिटरिंग कमजोर पाई गई है। एक अनोनिमस रैंप वर्कर ने बताया कि 20 साल से काम करते हुए उसने देखा है कि शिफ्ट खत्म होने के बाद कोई चेक नहीं करता, आप सीधे बाहर निकल जाते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर इस लूप होल को बंद नहीं किया गया तो ये इंटरनेशनल स्मगलिंग नेटवर्क के लिए बड़ा गेटवे बन सकता है। टोरंटो पुलिस चीफ मायरॉन डेमकिव ने 3 ऑफिसर्स के खिलाफ लगे आरोप पर पहली बार पब्लिक स्टेटमेंट दिया है। तीनों ऑफिसर्स स्पेन में अलेजेड इंसिडेंट के बाद सस्पेंड विद पे कर दिए गए हैं। अब कनेडियन अथॉरिटीज स्पेन पुलिस से डिटेल्स कलेक्ट कर रही है। ऑफिसर्स वेकेशन पर थे, ऑफिशियल ड्यूटी पर नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक बार्सिलोना में अलेजेड सेक्सुअल असॉल्ट का मामला सामने आया है। मेयर और पब्लिक दोनों इस मामले में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की मांग कर रहे हैं। उधर ऑरेंजविल के पास मैन्सफील्ड नामक एरिया में शॉकिंग इंसिडेंट सामने आया है। ओंटारियो प्रोविंशियल पुलिस के अनुसार सस्पेक्ट्स ने गैस भरवाने के बाद पेमेंट नहीं की। जब अटेंडेंट ने रोकने की कोशिश की तब सस्पेक्ट्स ने व्हीकल से टक्कर मार दी। विक्टिम को सीरियस इंजरीज के साथ एयर एम्बुलेंस से टोरंटो हॉस्पिटल भेजा गया है। पुलिस ने अगले दिन सस्पेक्ट को व्हीकल सहित ट्रेस कर लिया। केस में चार्जेस लग चुके हैं। अब एक डिजिटल गेमिंग अलर्ट, ऑनलाइन गेमिंग पेरेंट्स के लिए वार्निंग बनता जा रहा है। एक 8 साल के बच्चे ने रोब्लॉक्स खेलते खेलते $2,000 से ज्यादा खर्च कर दिए। परचेजेस छोटे छोटे एडॉन्स के रूप में हुए जो धीरे धीरे बड़ा अमाउंट बन गए। एक्सपर्ट्स एडवाइस कर रहे हैं कि पेरेंटल कंट्रोल्स एक्टिवेट करें, पेमेंट ऑथराइजेशन लिमिट करें, बच्चों को डिजिटल स्पेंडिंग के बारे में एजुकेट करें। उधर ब्रैम्पटन में आज अर्ली मॉर्निंग सीरियस एक्सीडेंट हुआ है। क्लार्क बुलेवार्ड और वेस्ट ड्राइव के पास एक कार गार्डरेल से टकराकर डिच में उलट गई। ड्राइवर को क्रिटिकल कंडीशन में ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। पुलिस अभी क्रैश के कारण की जांच कर रही है। ऑन्टारियो गवर्नमेंट ने बड़ा सिक्योरिटी डिसीजन लिया है। चाइनीज मेड ड्रोन्स को हाईली सेंसिटिव पुलिसिंग ऑपरेशंस में बैन किया जाएगा। डेटा सिक्योरिटी और सर्वेलियंस कंसर्न्स के चलते ये कदम उठाया गया है। फ्यूचर में इन ड्रोन्स को पूरी तरह फेज आउट करने की भी योजना है। उधर हैमिल्टन में मिसिंग वुमेन केस में नया मोड़, एमिली बेली 2022 से लापता हैं। पुलिस अब इसे होमिसाइड मानकर इन्वेस्टिगेट कर रही है। सर्च वारंट एग्जीक्यूट कर एविडेंस जुटाया जा रहा है। लास्ट में वेदर अपडेट। आज रहेगा प्लेजेंट डे, मिक्स ऑफ सन एंड क्लाउड, हाई ऑफ 18 डिग्रीज एंड लोज ऑफ 9 डिग्री सेंटीग्रेड। आउटडोर प्लान्स के लिए है परफेक्ट वेदर।
2: News headlines sponsored by Anjum Qureshi. For all kinds of car accident claims, call 416-570-0157. That's 416-570-0157.

0: जी हाँ, यहाँ त्योहार पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर, मूर्तियाँ, हवन सामग्री, फेंग शुई वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
1: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
0: 31 मेलिनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 9054586808
1: और विजिट pujahut.com।
2: इंडिया सजावट एंड पूजा हट।
0: जय श्री राम।
3: घर या बिजनेस के लिए चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स,
4: तो कॉल करें कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, ब्रैम्पटन का ट्रस्टेड नाम फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स।
3: बेस्ट क्वालिटी, स्टाइलिश डिजाइंस और ग्रेट प्राइसिंग, चाहे सनरूम हो या हो कस्टम कैनोपी, सब कुछ मिलेगा यहाँ।
4: फ्री कोटेशन के लिए अभी कॉल करें 416-831-4790, दैट्स 416-831-4790, या पहुँचो 24 रीगन रोड, ब्रैम्पटन।
3: कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, बनाए आपकी स्पेस सुंदर और फंक्शनल।
5: Team Hashtag Homes and Rahul Kashyap Lekar aaye hain first time home buyers ke liye an amazing opportunity. Freehold town homes from $499,000 and detached homes from $605,000. First time home buyers can enjoy up to $130,000 in savings with new rebates, unlocking home ownership for the first time home buyers with the closing of 2027. Agar aap is opportunity ko grab karna chahte hain, then get in touch with Team Hashtag Homes today at 647-993-4844.

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम
1: शॉन एक्सप्रेस यानी आप और हम, और इस गाने में है कुछ दम।
2: वेल दोस्तों, गाने में दम है बिल्कुल, क्योंकि आज के सुपरस्टार में भी दम है जो आप आज अपना बर्थडे मना रहे हैं। एंड आई मस्ट थैंक हैरी और जो है कंसोल इंजीनियर, क्योंकि उन्होंने मुझे याद दिलाया कि आज बर्थडे है जूनियर NTR का, और उनके बारे में तो जितना भी जाए कहा जाए उतना कम है, और डेफिनेटली उनके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि आज का कौन सा टॉपिक है। आप लोगों के मैसेज आने शुरू हो गए कि आज का टॉपिक बता दो ताकि आप लोग जो है भाग ले सकें। तो आज का जो दिन है दोस्तों, टर्न ब्यूटी इनसाइड आउट डे है, ठीक है। बहुत सारे चीज़ें हैं आज के दिन में, तो ये मुझे बड़ा खूबसूरत लगा आज का थॉट कि असली जो खूबसूरती है वो चेहरे में नहीं, इंसान के दिल और उसके व्यवहार में होती है। तो आज हमें बताइए कि किसी इंसान की कौन सी एक ऐसी आदत या एक ऐसी क्वालिटी ने आपका दिल जीत लिया। काइंडनेस, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट, सेंस ऑफ ह्यूमर, आपको क्या पसंद आई वो एक क्वालिटी। आई नो आपको बहुत सारे लोग मिले होंगे, उनकी बहुत सारी क्वालिटीज़ पसंद आई होंगी, लेकिन कभी कभी हम किसी से मिलते हैं ना कि हम कुछ और सोचते हैं कि ये इंसान ऐसा होगा, लेकिन जब मिलते हैं तो हमें लगता है नहीं, ये इंसान ऐसा नहीं है, ये इंसान तो बहुत अच्छा है, है ना। वी एक्सपेक्ट समटाइम्स वर्स देन इट इज, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा ये सोच के जाना चाहिए कि जिससे मिलने जा रहे हैं दैट पर्सन इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, और अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही मिलेगा। तो बताइए कि कौन सी एक आदत है जो आपको अभी तक याद है कि उस इंसान में मैं मिला था उस इंसान से, और उसकी वो एक आदत थी जिसने मेरा दिल जीत लिया, और आपने भी वो आदत अपनी जिंदगी में डालने की कोशिश की है और उसमें कामयाब हुए हैं या नहीं, ये एक अलग बात है। लेकिन आप बड़े इंप्रेस्ड हुए हैं उस इंसान की वो एक आदत से, हमारे साथ शेयर करें। और आज हम फिर से लाइंस खोलेंगे और स्टूडियो का नंबर बताते हैं 4165930055, और आज का जो विनर है उनको दिया जाएंगे स्केचर्स के पोलराइड सनग्लासेस जो स्पॉन्सर किए जा रहे हैं स्पेक्स एक्सप्रेस के सौजन्य से। स्टूडियो का नंबर फिर से 4165930055। और दोस्तों इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि आज के जो बर्थडे बॉय हैं जूनियर NTR, उनके बारे में बता दें, और एक बहुत ही अमेजिंग सा गाना है, वो गाना भी आपकी नज़र करते हैं, और वो गाना ऐसा है कि बस मज़ा आ जाएगा और आपका दिल करेगा कि बस झूमें और नाचें, राइट। तो जूनियर NTR स्पेशल होने जा रहा है अब एक ऐसे सुपरस्टार जिनकी जो स्क्रीन प्रेजेंस है ना, वो आते ही थिएटर में सीटियां और तालियां गूंज जाती हैं। एक ऐसा नाम जो पावर, परफॉर्मेंस और डांस तीनों का परफेक्ट कॉम्बो है। ऐसा बहुत कम होता है कि किसी इंसान में तीनों चीज़ें हो, कि पावर भी हो, परफॉर्मेंस भी हो और डांस भी करना जानता हो। तो ये हैं जूनियर NTR, साउथ सिनेमा के मेगा स्टार, और इनका पूरा नाम है नंदामुरी तारका रामा राव जूनियर, और वो आते हैं एक लेजेंडरी फिल्म फैमिली से। लेकिन उन्होंने सिर्फ फैमिली के नाम पर नहीं, अपनी मेहनत और टैलेंट से खुद को प्रूव किया है दोस्तों, और ऐसा ही हमें करना चाहिए। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने फिल्मों में एंट्री ली और जल्द ही बन गए मास ऑडियंस के फेवरेट। पावरफुल एक्टिंग, इमोशनल डेप्थ है और अनबिलीवेबल डांस मूव्स करते हैं वो जूनियर NTR। और RRR में उनका जो रोल है वो प्योर शक्ति और इमोशंस का ब्लेंड था। तो फिलहाल चलते हैं RRR के इस सुपरहिट गाने की तरफ, नाटू नाटू, जिसने हिस्ट्री बना दी, ऑस्कर जीतकर इंडियन म्यूजिक को ग्लोबल लेवल पर शाइन कराया। मस्ती की रेलगाड़ी पर

गाँव है रेला, ऊंचा पाँव यू पटका है ये देसी मेला। कैसा रहा यकायकी, नाचो नाचो नाचो नाचो, अरे धूम धूम थिरके जा पाँव में जाने।

0: चल दोस्तों, नाटू नाटू नाचो नाचो मज़ेदार गाना जिसने साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया को कनेक्ट किया, और हम सभी मिलकर एंजॉय कर रहे हैं मस्ती की रेलगाड़ी पर ऑन CMR FM 101.3. वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द वंडरफुल लिसनर्स. इट्स 2:50 राइट नाउ, और आज का जो टॉपिक है बड़ा मज़ेदार है. कहते हैं कि टर्न द ब्यूटी इनसाइड आउट डे है आज, और आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि कौन सी वो एक ऐसी हैबिट है जो किसी अपने की आपको इम्प्रेस कर गई, या किसी पराए की भी वो हैबिट आपको इम्प्रेस कर गई, और आपने वो हैबिट अपनी ज़िंदगी में डालने की कोशिश की. आप उसमें कामयाब भी हो सकते हैं और नाकामयाब भी हो सकते हैं. कोशिश की, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो कौन सी वो एक ऐसी हैबिट है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? डू गिव अस अ कॉल ऑन द स्टूडियो नंबर 416-593-0055. That's 416-593-0055. आप है मस्ती की रेलगाड़ी पर ऑन CMR FM 101.3 मेरे यानी शालिनी के साथ, और आज के विनर को दिए जाएंगे स्पेक्स एक्सप्रेस की तरफ से स्पॉन्सर्ड स्केचर्स के पोलराइड सनग्लासेस. एक विनर हम निकालेंगे आज के शो में. तो स्टूडियो का नंबर फिर से 416-593-0055. और इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी के बारे में, जो लार्जेस्ट ऑनिंग सप्लायर हैं कैनेडा वाइड घर या बिजनेस के लिए. अगर आपको चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग, तो आज ही कॉन्टैक्ट करें कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी. और टॉप क्वालिटी मटीरियल्स हैं, स्टाइलिश डिज़ाइंस हैं, कंपेटिटिव प्राइसिंग है, फ्री बारबेक्यू मिल रहा है विद एनी कैनोपी और ऑनिंग इंस्टॉल्ड. हर सल्यूशन मिलता है एक प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन के साथ. 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन में लोकेटेड है. नंबर है 416-831-4790. और अगर आप परेशान हैं चूहे, खटमल, कॉकरोचेस, बेडबग से, तो वैनगार्ड पेस्ट कंट्रोल है आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट पेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ. और रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल पेस्ट कंट्रोल वाइल्ड लाइफ रिमूवल एक्सक्लूजन करते हैं. 100% सेटिस्फैक्शन गारंटीड है. और अपने घर या बिजनेस को सेफ रखें, पेस्ट फ्री रखें. अयान काशिप जी से राइट अवे कॉल कर लें 647-966-4355. और हमारे साथ जुड़े जा रहे हैं एक कॉलर, और आइए जानते हैं उनका क्या विचार है आज के टॉपिक के बारे में. कौन सी वो एक आदत है जो आपको किसी की पसंद आई, जो आपने अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश की. कौन है हमारे साथ? गुड आफ्टरनून.
1: हेलो
0: जी, आपका नाम?
1: शान.
0: से दैट अगेन.
1: शान.
0: शान, अच्छा बताइए शान, क्या है आपका जवाब?
1: देखिए, मेरा जवाब ये पोलाइटनेस है. मैं आज से कई साल पहले इंडियन टीम आई थी और हम डिनर पे गए थे, तो मैं, मेरी नई वाइफ, उसी वक्त मेरी शादी हुई थी, मेरी वाइफ बिल्कुल नई थी, तो हम प्लेयर्स से मिलने जा रहे थे, तो वहाँ पे एक टेबल पे कपिल देव और मोहिंदर अमरनाथ बैठे हुए थे. और हम जाके जब उनसे मिले हैं तो वो दोनों खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि लेडी हमारी टेबल पे आई है, सो प्लीज. और इतनी पोलाइटली उन लोगों ने इतनी रिस्पेक्ट दी, इतने अच्छे से बातचीत की के फॉरएवर मैं उनका जो हूँ फैन हो गया हूँ. और ये पोलाइटनेस फिर ऐसी सीखी कि फिर हम भी जो है उसी पोलाइटनेस पे अमल करते हैं, कोशिश करते हैं कि लोगों से अच्छे से पेश आए, क्योंकि हमने देखा कि उनके अच्छे से पेश आने से हम सारी उम्र के लिए उनके फैन हो गए.
0: अरे वाह, क्या बात है, दैट इज सो अमेजिंग. बहुत अच्छी आपने बात की कि कभी कभी ना बहुत बड़े सितारे हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि सितारे जमीन पर, कि अगर सितारे बन गए हैं और उनके पैर जमीन पर हैं, तो ये असल मायने में कहते हैं इसको सितारे जमीन पर. उनकी जो फेम है ना, उनको छू कर भी निकल जाता है साथ से, और उनके सर चढ़ कर नहीं बोलता. वो बड़े ग्राउंडेड होते हैं ऐसे लोग, और इट इज़ सो नाइस टू हियर दैट फ्रॉम यू. थैंक यू सो मच.
1: अनबिलीवेबल, दे वर सो गुड एंड सो पोलाइट एंड सो रिस्पेक्टफुल.
0: और कभी कभी आपको लगता है कि शान की, कभी कभी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जिंदगी में जिन्होंने इतना कुछ नहीं किया होता, थोड़ा बहुत ही किया होता है, लेकिन उनको देखकर ऐसा लगता है कि उनमें पता नहीं कहाँ से इतना सारा एटीट्यूड आ गया. लेकिन कभी कभी हम इतने बड़े लोगों को देखते हैं लेकिन वो बड़े ग्राउंडेड हमें नजर आते, तब हमें लगता है कि असल मायने में सक्सेस इसको कही जाती है जब हमारे पैर जमीन पर होते हैं.
1: देखिए, एक ऐसे ही एक और हम कैरेक्टर से मेरी मुलाकात हुई थी, उनका नाम है नवाब ऑफ पटौदी, ये सैफ के फादर.
0: फादर
1: हम लोग क्रिकेट टीम थी हमारी, हम प्रैक्टिस कर रहे थे, तो ये उनको हमारी फील्ड पे लेके आ गया क्योंकि वो भी क्रिकेटर रह चुके हैं, तो हमारी नेशनल क्रिकेट क्लब थी वो प्रैक्टिस कर रही थी, तो ये उनको फील्ड पे लेके आ गया। आप यकीन नहीं करेंगे, वो इतना पोलाइट इंसान, इतना फ्रेंडली इंसान कि मतलब आप सोचिए कि आप वहाँ इंडिया जाएं तो उनसे मिल भी नहीं सकते हैं, वो इतने VIP। और वो हमारे साथ ऐसे खड़े थे जो हमारी फोटो खिंचवा रहे हैं ये वो, कि जैसे दोस्त सब खड़े हुए फोटो खिंचवा रहे हैं। ये वो सो नाइस पोलाइट, तो ये ऐसे लोग होते हैं ना जो पोलाइट, ये सारी जिंदगी आप पे एक मोहर छोड़ जाते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है, एकदम आपने ठीक कहा है। और यू नो हम कितना सीखते हैं ऐसे लोगों से ना, कि हमें लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें हम अगर ऐसी ज़िंदगी में लोगों से सीखते रहें तो बस हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक हो गई और ज़िंदगी जैसी है उससे भी ज़्यादा बेहतर हो गई है। बिकॉज हम सभी विद टाइम इवॉल्व करते रहते हैं, अपने आप को बदलते रहते हैं, और बदलना भी चाहिए, बदलना इस यू नो दुनिया का नियम है। अगर हम दूसरों को सीख सीख के ही बदलते हैं अपने को अच्छा बनने के लिए, तो व्हाई नॉट। बट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड शेयरिंग दिस थॉट, ट्रूली अप्रिशिएट। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जी दोस्तों, आपका हम स्वागत करते हैं एक बार फिर से मस्ती की रेलगाड़ी पर ऑन CMRFM 101.3, और इट्स 256 राइट नाउ। एक बहुत प्यारा सा गाना है जिसकी रिक्वेस्ट आई है, और ये जो गाना है हमने लिया है फिल्म दिलवाले से। आपकी नजर करते हैं, इंजॉय कीजिए खूबसूरत सा ट्रैक, उसके बाद चलेंगे आज की ताजा खबरों की तरफ। डायरेक्ट नंबर टू रीच अस ड्यूरिंग और आफ्टर द शो 416-569-7812, 416-569-7812। गुड आफ्टरनून।

0: Lifetime. Learn to earn at Win Lifetime. Call 905-206-1008.
1: दोस्तों 905-206-1008 ये नंबर है विन लाइफ टाइम का, और ये नंबर सही मायने में आपकी जिंदगी बदल सकता है. कैसे जाने के लिए यहां से एक्सपीरियंस ट्रेडर एंड ट्रेनर राफे जी हमारे साथ जुड़ेंगे. राफे जी, आपका स्वागत है मस्ती की रेलगाड़ी पर. कैसे हैं आप?
2: Thank God. Thank you very much. Good afternoon to you and your listeners.
1: Good afternoon to you as well. Thank you for joining us today, Rafi ji. और बहुत सारे लोग जो आपके सेमिनार्स में जाते हैं उस हवाले से भी बात करेंगे. बड़े हैप्पी होकर आते हैं और बड़े अच्छे उनके बड़ी पॉजिटिव बातें करते हैं विन लाइफ टाइम के लिए. लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी ट्रेडिंग करी हुई है और उन्हें अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा ट्रेडिंग करने से. तो मैं चाहूंगी कि आज हम उन लोगों को बताएं कि क्या गलती करी, क्या उन्होंने नहीं किया जिस वजह से ट्रेडिंग उनके लिए अच्छी नहीं साबित हुई और डेफिनेटली उन्होंने विन लाइफ टाइम का रुख नहीं किया है अभी. तो मैं चाहूंगी कि बताएं कि क्या गलती हम कर देते हैं कभी कभी ट्रेडिंग में.
2: प्राइमरली दो मेन चीजें हमने देखी हैं जो कुछ स्टूडेंट्स आते हैं किसी और तरफ से जिनका थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था. एक तो होता है कि सीख उनसे रहे होते हैं जो प्रोफेशनली ये काम नहीं करते. तो हमारे एक कहावत होती है कि नीम हकीम खतरा जान, के आपको कुछ आधा पता होता है आधा नहीं पता. आपको ट्रेडिंग में किसी ने डाल दिया, आपको पता ही नहीं था कि हुआ क्या और आपका नुकसान हो गया. नंबर टू, आपने ट्रेडिंग अकेले की, किसी सुपरविजन के बैठ के नहीं की. हमारा एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, दो ऑफिसेज हैं, 12,000 से ज्यादा स्टूडेंट हैं. आज भी सुबह 9:35 पे सेशन शुरू हुआ और 9:45 पे हमारे सीईओ ने कहा कि आप लोग सारे घर जा सकते हैं और टारगेट पूरा हो गया है.
1: अच्छा.
2: तो हम लोग इसलिए बकायदा प्रोफेशनल तरीके से करते हैं. ऐसे नहीं है कि कहीं आपको किसी रेस्टोरेंट में बैठ के ट्रेडिंग सिखाएंगे. बकायदा क्लासेस होती हैं, बकायदा सॉफ्टवेयर है. तो इट्स नॉट ए वन मैन शो. तो ये दो गलतियां मोस्टली करते हैं कि सुने सुनाए किसी ने कहा ट्रेडिंग में पैसे डाल दें. ऐसे नहीं होता. नंबर टू, ट्रेडिंग में हम लोग कहते हैं अपने पैसे नहीं इन्वेस्ट करते.
1: वाओ, क्या बात है. तो अपने पैसे नहीं इन्वेस्ट करने, आर देयर सम कंपनीज हु आर हेल्पिंग अस ग्रो आवर बिजनेस एट विन लाइफ?
2: एब्सोल्युटली, बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके पास बहुत मिलियंस ऑफ डॉलर्स, जो हाफ अ मिलियन डॉलर नॉर्मली अवेलेबल पड़ा होता है. वो कोई रिस्क नहीं है सारे का, सिर्फ उनको ट्रेडर्स चाहिए जो सॉफ्टवेयर जानते हो. तो वो सारे का सारा रिस्क वो लेंगे और आप रिवॉर्ड आपको देंगे.
1: दैट्स अमेजिंग. तो राफी जी, जो आपका सेमिनार हो रहा है बिल्कुल फ्री सेमिनार दिस सैटरडे, उस हवाले से बताएं हमारे लिसनर्स को कौन कौन इसमें आ सकता है और अभी कितनी सीट्स अवेलेबल है हमारे लिसनर्स के लिए.
2: लेकिन लास्ट टाइम सेमिनार किया था दूसरी लोकेशन में, तो हमने कहा था अपनी पिकनिक चेयर्स रखें साथ गाड़ी में, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं थी उस वक्त भी. तो सेम हो जाता है, ओवरफ्लो ओवर क्राउड हो जाता है. लेकिन हम हर सैटरडे को सेमिनार करते हैं, तो कोई भी आ सकता है किसी भी बैकग्राउंड से. यू आर नेवर टू यंग टू स्टार्ट, नेवर टू अर्ली टू स्टार्ट. कभी भी आए, आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी हर हफ्ते सेमिनार के साथ मिलती रहेगी.
1: वंडरफुल. तो दोस्तों 10 नंबर के फासले पर है ये अपॉर्चुनिटी. 905-206-1008, that's 905-206-1008, winlifetime.com. Right away call करिए और सैटरडे के सेमिनार के लिए अपनी सीट बुक करें. थैंक यू राफी जी, फिर आपसे जुड़ेंगे. ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर.
2: थैंक यू जी, टेक केयर जी.
3: शॉन एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन ब्रॉट टू यू बाय शॉन मीडिया.

0: वेलकम आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। और अब जान लेते हैं भारत से जुड़ी हुई खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट की। पीएम मेलोनी ने एक्स पर इस वीडियो को पोस्ट कर कहा, प्रधानमंत्री मोदी मेरे लिए गिफ्ट में बहुत बहुत अच्छी टॉफी लेकर आए, मेलोडी गिफ्ट के लिए थैंक यू। इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन यानी करीब 10 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया। वहीं एक्स पर भी इसे 74 लाख से ज्यादा व्यूज मिले। पीएम मोदी अपने 5 देशों के दौरे के आखिरी चरण में इटली पहुंचे थे, वहां पीएम मेलोनी ने उनका स्वागत किया। सीजीआई सूर्यकांत के कॉकरोच वाले बयान के विरोध में बनी कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया पर सिर्फ 5 दिन में लाखों फॉलोअर्स हो गए हैं। बुधवार शाम 7 बजे तक यह आंकड़ा इंस्टाग्राम पर 60 लाख से ज्यादा और एक्स पर करीब 1,26,000 तक पहुंच गया। आज के दिन सुबह से 30 लाख से ज्यादा लोग इससे जुड़ चुके हैं। इसका नारा है सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेजी। दरअसल 15 मई को कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सीजीआई सूर्यकांत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कुछ बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से की। हालांकि सीजीआई ने कहा था कि मैंने ऐसा नहीं कहा। इसके बाद महाराष्ट्र के अभिजीत दीपके ने इसके बयान के विरोध में सोशल मीडिया पर इसे बनाने का फैसला लिया। उधर इंस्टाग्राम पर भाजपा के 87 लाख और कांग्रेस के 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। अहमदाबाद में निकोल इलाके की एक ज्वेलरी शोरूम की सेल्स गर्ल हर्षिदा शेट्टी इन दिनों पुलिस की गिरफ्त में आ गई। 10 दिन बाद पुलिस की गिरफ्त में आई हर्षिदा। 11 मई को शोरूम से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की ज्वेलरी चुरा कर फरार हो गई थी। पुलिस पूछताछ में उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड मयूर माली के साथ मिलकर चोरी का ये प्लान बनाया था। वारदात के बाद दोनों अहमदाबाद से दिल्ली और वहां से उत्तर भारत के कई राज्यों में छिप कर रहे। मोहाली में 4.5 साल की बच्ची को उसके दादा दादी के सामने दिन दहाड़े अगवा कर लिया गया। कार में आए लोग जबरन बच्ची को उठाकर ले गए। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें बच्ची स्कूटी पर अपने दादा दादी के साथ थी। इसी दौरान दो युवक बाइक पर आए और बच्ची को छीनने की कोशिश की लेकिन स्कूटी गिर गई। इस बीच एक कार आई और उसमें से निकले युवक बच्ची को उठाकर ले गए। इस दौरान काफी हंगामा हुआ। दादा दादी बच्ची को छुड़ाने के लिए कार के आगे लटक गए लेकिन ड्राइवर कार को आगे बढ़ाते हुए ले गया। बच्ची के पिता ने कहा मां को और पिता को कई जगह चोटें आई हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में आज हीट वेव महसूस की गई। यानी गर्मी के ये दिन जब भारत में लोग शिमला ऊना सोलन और कांगड़ा का रुख करते हैं वहां पर भी लोग अब तेज धूप और गर्मी से बेहाल हैं। स्कूली बच्चे कामकाजी लोग जो हैं वो भी गर्मी जो है उन्हें परेशान कर रही है और दूसरी तरफ जो टूरिस्ट पहुंच रहे हैं उन्हें भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और अब खबर बॉलीवुड से। सलमान खान एक करीबी से मिलने हिंदुजा हॉस्पिटल पहुंचे थे जहां वो पेपराजी पर भड़क गए। अस्पताल से एक वीडियो सामने आया जिसमें वो काफी गुस्से में वार्निंग देते हुए दिखे। इस घटना के कुछ देर बाद ही सलमान ने आधिकारिक पोस्ट पर कड़े शब्दों में निंदा करते हुए चेतावनी दी कि वो 60 की उम्र में भी लड़ना नहीं भूले हैं। सलमान ने अस्पताल से लौटने के बाद आधिकारिक एक्स अकाउंट से एक एक कर 4 पोस्ट की। पहली पोस्ट में उन्होंने लिखा, अगर मैं किसी प्रेस वाले को अस्पताल में मेरी पीड़ा का मजा लेते देखूं, उस प्रेस वाले के लिए मैंने खड़े होकर बात की है, उनका ध्यान रखा है ताकि वो भी अपनी रोजी रोटी कमा सके। दूसरी तरफ वो नाराज भी हुए और उन्होंने ये बता दिया कि 60 बरस के हैं लेकिन लड़ना अब भी नहीं भूले हैं। तो शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी में न्यूज जंक्शन का ये स्टॉपेज यहीं तक। शुक्रिया।
1: दिस पार्ट ऑफ द शो इज स्पॉन्सर्ड बाय विन लाइफटाइम। क्या आप भी चाहते हैं एक्स्ट्रा इनकम? तो विन लाइफटाइम लेकर आए हैं ट्रेडिंग विदाउट इन्वेस्टमेंट, बस 90 मिनट रोजाना। फ्री सेमिनार एवरी सैटरडे एट 1 PM इन मिसिसागा। लिमिटेड सीट्स बट अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। कॉल 905-206-1008 और विजिट winlifetime.com। मद्रास रेस्टोरेंट, स्वाद स्वैग और साउथ का तड़का। फ्राइडे सैटरडे और संडे एंजॉय करें ऑथेंटिक साउथ इंडियन अनलिमिटेड थाली स्टार्टिंग एट ओनली 20-26। एंड KCDL कंस्ट्रक्शन ग्रुप, लीगल बेसमेंट कंस्ट्रक्शन से लेकर फुल होम रेनोवेशन, सेपरेट साइड एंट्रेंस, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल एस्फाल्ट पेविंग, रीसर्फेसिंग, कॉन्क्रीट, इंटरलॉकिंग एंड मच मोर। कॉल 647-766-4335, 647-766-4335। आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस।

0: प्रोटेक्टेड पर्सन या न्यू कमर है, फैमिली इनकम 70,000 से कम है, तो आप घर बैठे फुली ऑनलाइन इजी टू पास कोर्सेज करके नई स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। और इसके बारे में ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ नागपाल जी जुड़ने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं नंबर बता दूं, कॉन्टैक्ट नंबर मैजिकल नंबर 4372643175, 4372643175। नागपाल जी, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द शो।
1: थैंक यू,
0: बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।
1: हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू वेरी मच, सेम हियर
0: जी। और नागपाल जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि यूनिक ग्लोबल एडवाइजरी इनको गवर्नमेंट फंडेड कोर्सेज और जैसे लिविंग एक्सपेंसेस ग्रांट के लिए एजुकेशन कंसल्टिंग करते हुए कितना वक्त हो गया, कितने साल हो गए?
1: जी, हमें 7 ईयर्स हो चुके हैं गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम्स में हम डील करते हैं, एजुकेशन कंसल्टिंग कर रहे हैं हम 7 ईयर्स से, एंड हजारों क्लाइंट को ऑलरेडी असिस्ट कर चुके हैं। हमारा प्रोडक्ट के सर्विस डिफरेंट क्यों है? हम उन कोर्सेज में डील करते हैं जिनमें आपकी जेब से पैसे नहीं जाते। ऑन अदर हैंड आते हैं, कैसे आते हैं? गवर्नमेंट उन्हीं प्रोग्राम को स्पॉन्सर करती है जो एक पैरामीटर पे खड़े उतरते हैं, ठीक है। आप पढ़ेंगे, गवर्नमेंट फीस पे करेगी उस प्रोग्राम की, और साथ में आपको रहने खाने के लिए, लिविंग एक्सपेंसेस कवर करने के लिए माँ बाप की तरह आपको फंडिंग देती, जो कि सीधे आपके अकाउंट में आती, मेरे अकाउंट में नहीं आती। 30,000 से 100,000 की फंडिंग होती है, और डिपेंडिंग ऑन फैमिली साइज, बच्चे ज्यादा हैं, फैमिली साइज ज्यादा है, तो हुकूमत आपको तालीम हासिल करने के लिए आपके अकाउंट में फंडिंग मुकम्मल देती है। और अगर फैमिली साइज छोटा, अगर आप मैरिड है, तब भी अच्छी फंडिंग बन जाती है। आप हमें कॉल करें, हमारे ऑफिस आए, PR सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन आपका स्टेटस होना चाहिए, तो आप देर ना करें, 4372643175 पे कॉल करें, ऑफिस भी आए हमारे
0: जी 4372643175। अब नागपाल जी, क्या एलिजिबिलिटी है और क्या आप फंडिंग की कोई रेंज बता सकते हैं एग्जांपल के साथ?
1: हाँ जी, एलिजिबिलिटी देखिए जी, पहले एज की जो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, हमारे क्लाइंट्स हैं जिनके 50, 60, 70, 30, 40, हर एज ग्रुप से हमारे पास क्लाइंट्स हैं। ज्यादातर क्लाइंट्स जो है उनकी एज 50 साल से ज्यादा ही है, और PR सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन आपका स्टेटस होना चाहिए। मेन थिंग, आपकी अगर फैमिली इनकम 2024 के नोटिस ऑफ असेसमेंट पे लेस देन $70,000 है, तो ही आपको इसका बेनिफिट है। आप उबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, स्मॉल बिजनेस ओनर है, अनएम्प्लॉयड है, आपको अच्छा बेनिफिट है। हाउस वाइफ है, सिंगल मदर है, अच्छा बेनिफिट है। और लाइक कुछ कैच नहीं है जी, जैसे गवर्नमेंट बिलियन ऑफ डॉलर यूक्रेन को दे देती है, कितना? $30 बिलियन। कितना होता है $30 बिलियन बताइए? $1 बिलियन गवर्नमेंट में नेशनल फूड प्रोग्राम, बच्चों को जो खाना मिलता है स्कूल के अंदर, $1 बिलियन खर्चा है उसका 5 साल का। तो मतलब 30 बिलियन, इतना पैसा गवर्नमेंट ने यूक्रेन को दे दिया, और गवर्नमेंट जब सिर्फ $4 बिलियन एजुकेशन में लगाती है, मैं लगता है भाई साहब गवर्नमेंट पैसे क्यों बांट रही है, पैसे क्यों बांट रही है गवर्नमेंट? बट हाँ, उनका भी सपना पूरा होने वाला है। क्यों? 1 अगस्त के बाद जो नया अकेडमिक सेशन स्टार्ट हो रहा है, गवर्नमेंट उसमें ग्रांट्स में कट कर रही है। आज अगर फैमिली ऑफ फोर की फंडिंग बनती है $80,000, हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ते हैं, तो उसमें से $40,000 नॉन रिफंडेबल ग्रांट्स है जी, बाकी ऑप्शनल लोन एट 0% है। तो आप हमें कॉल करें, हमारे ऑफिस आए
0: जी। क्या बात है, नंबर यहाँ पर बता दूं, 4372643175। अब नागपाल जी, इसमें एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, राइट? और
1: रिस्ट्रिक्शन नहीं है,
0: किन लोगों के लिए सूटेबल है सबसे ज्यादा?
1: हाँ जी, एज की कोई रिस्ट्रिक्शन, इसमें एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी ना एज पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करती। हमारे क्लाइंट्स हैं जो पेंशन पे हैं, कर रहे हैं, फंडिंग आ रही है। लास्ट वीक 30 बंदों की फंडिंग उनके खाते में डायरेक्ट गवर्नमेंट ने डाली है। 30, तो इसमें डायरेक्ट, तो इसमें कोई कैच नहीं जी। आप आज ज्वाइन करते हैं, आपको विद इन 30 to 90 days आपको गवर्नमेंट से ईमेल आता है, आपका अकाउंट पूछते हैं, आपको अकाउंट डालते हैं, कोर्स स्टार्ट करते हैं। सोखे से कोर्सेज में भाई, आसान कोर्सेज हैं। हम आपको मिडिल एज के आप क्लाइंट हैं, हम आपको IIT में डालेंगे नहीं, जो आपको बैग पैक करके लंच बॉक्स लेके जाना पड़े कॉलेज। फुली ऑनलाइन कोर्सेज हमारे पास 2-3 घंटे आपके, मंडे टू फ्राइडे। कुछ ऐसे कोर्सेज जिनमें टीचर नहीं है, सेल्फ स्टडी वाले कोर्सेज हैं, गवर्नमेंट फंडेड है, गवर्नमेंट फीस पे कर रही है। आप स्किल सीख रहे हैं मैनेजमेंट की, अकाउंटिंग की, आप उसके अपना करियर भी बनाते हैं। सादा फंडिंग की हासिल कर रहे हैं, कितनी? $30,000 to $100,000 की आपके खाते में डायरेक्ट
0: जी। क्या बात है, नंबर यहाँ पर बता दूं, 4372643175। अच्छा नागपाल जी, जिन लोगों को डाउट होता है कि गवर्नमेंट फंडिंग क्यों कर रही है, कोई कैच होगा, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
1: गवर्नमेंट डेंटल केयर में इन्वेस्ट करती है, आप मांगे चलें। और जेंडर इक्वालिटी के, जेंडर इक्वालिटी में, वो तो मेरा फेवरेट है, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का बजट है 99 सेंट्स।

0: 65 मिलियन का जेंडर इक्वालिटी के लिए, जो कि 650 ऑर्गेनाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कनाडा के अंदर, नहीं कनाडा के बाहर. फॉर एग्जांपल वियतनाम में गवर्नमेंट ने 8.2 मिलियन डॉलर दिया राइस की फार्मिंग में, इक्वालिटी के लिए, जेंडर इक्वालिटी के लिए राइस फार्मिंग में वियतनाम में. ग्लोबल अफेयर्स कनाडा के ऊपर जाके चेक कर ले, जो गवर्नमेंट ऐसी चीजों में इन्वेस्ट कर सकती है. तो भाई साहब एडुकेशन में करते कोई कैच नहीं है. ऑफिस आए, कॉल करें, इजी कोर्सेज करें, फुली ऑनलाइन करें, फंडिंग हासिल करें, स्किल हासिल करें.
1: वंडरफुल. 437-264-3175. अब लास्ट में बताएं नागपाल जी, आपकी फीस कितनी है और पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है, क्या करना होगा टू गेट द फंडिंग?
0: हाँ जी, हम जब हम फंडिंग का वर्ड सुनते हैं हमारे दिमाग में कैच आता है. यहाँ पे कुछ कैच नहीं है, हम हजारों को हेल्प कर चुके हैं 7 ईयर से बिजनेस में. कैच क्यों नहीं बताओ? जितनी इनकम कम है उतनी ज्यादा फंडिंग आती है गवर्नमेंट से आपको. जितने ज्यादा किड्स हैं उतनी ज्यादा फंडिंग आती है. डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं जी? नोटिस ऑफ असेसमेंट, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट. तो हैंकी पैंकी अप्रोच है ही नहीं. कुछ आपको ट्रांसपेरेंट है भाई साहब, कुछ है कुछ. गवर्नमेंट का डेटा गवर्नमेंट को जा रहा है, कहाँ हेरफेरी करेंगे आप? बैंक थोड़ी है कोई. तो इसलिए आप इसमें कुछ कैच नहीं है. फंडिंग आपके पास डायरेक्ट आती है. हमारी फीस कितनी है? $199 से लेके $499 वन टाइम फीस है. कोई कमीशन, कोई कैच है ही नहीं. हमारे पास क्लाइंट आते हैं जो दूसरा तीसरा कोर्स करने के लिए हमें राइट अप एनरोल जाते हैं. क्या कहते हैं सर, पहले किसी ने 3500 लिया, पहले किसी ने 4000 लिया, आप तो राइट अप एनरोल जाते हैं. इनको पता है चीज क्या है. जो रह गए हैं वो भी ना रुके, क्योंकि 2 महीने बाद गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज कर रही है. हमारा बिजनेस ऐसा नहीं है हम आज कहेंगे मदर्स डे पे 50% ऑफ, फादर्स डे पे 100% ऑफ. जो पॉलिसी आज है वो कल नहीं है. तो एनरोल करें. नंबर हमारा है 437-264-3175. नंबर अगेन 437-264-3175. ऑफिस हमारा 200 एक्सपर्ट बुलेवर्ड पे, हरंटा रिडेरी पे. ऑफिस भी आप आ सकते हैं, 6 डेज खुला होता है हमारा ऑफिस. नंबर मैं दो बार और दे रहा हूँ, नोट करें प्लीज, 437-264-3175, 437-264-3175.
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया नागपाल जी हमसे जुड़ने के लिए, और फिर आपसे मुलाकात होती है बहुत जल्दी. ऑल द बेस्ट, टेक केयर.
0: थैंक यू
1: जी. वेल दोस्तों, इट्स 3:24 राइट नाउ. मस्ती की रेलगाड़ी CMRFM 101.3. आप जुड़े हैं मेरे यानी शालिनी के साथ, और आपसे मैंने पूछा था एक बहुत प्यारा सा सवाल, और हमारे पास कुछ लोगों के जवाब भी आए हैं. और स्पेक्स एक्सप्रेस की तरह से स्पॉन्सर किए जा रहे हैं स्केचर्स के पोलरॉइड सनग्लासेस, और एक विनर हम निकालेंगे बिफोर एंड ऑफ द शो. और आपसे पूछा था एक सवाल कि टर्न ब्यूटी इनसाइड आउट डे है आज, यानी असली खूबसूरती चेहरे में नहीं इंसान के दिल और उसके व्यवहार में होती है. और आप बताएंगे हमें कि किसी इंसान की कौन सी एक आदत, एक क्वालिटी ने आपका दिल जीत लिया, और वो क्वालिटी, वो आदत आपने अपनी जिंदगी में भी शामिल कर ली या शामिल करने की कोशिश की है, ये बताइएगा 416-593-0055 पर. दैट्स 416-593-0055. फिलहाल आपको बता दूं दोस्तों, देवल ट्रैवल की लेटेस्ट डील्स, दिल्ली से टोरंटो अक्टूबर से जनवरी फरवरी राउंड ट्रिप $1320, लिमिटेड सीट्स. दिल्ली से टोरंटो अक्टूबर नवंबर में वन वे 830, टोरंटो से अमृतसर दिल्ली सितंबर टू अक्टूबर राउंड ट्रिप 1650, दो बैग्स के साथ. इटोबिको एंड ब्रैम्पटन दो लोकेशन से सर्व करते हैं. देओल ट्रैवल 905-588-5100 एंड 905-588-4200, 588-5100 एंड 588-4200. अच्छा दोस्तों, आपके घरों में अगर छोटे मोटे कोई काम है, आपका टब क्रैक हो गया है, आपके वॉशरूम का सिंक लीक कर रहा है, प्लम्बिंग की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिकल कोई प्रॉब्लम है, आपकी टाइल्स टूट गई हैं उनको फिक्स करानी है, या आपका पेंट खराब हो गया है घर में पेंट कराना है, तो छोटा बड़ा कैसा भी काम है आप जो है राजेश शर्मा जी से बात कर लें. हैंडीमैन जॉब्स भी करवा देते हैं, साथ ही क्वालिटी कंस्ट्रक्शन इनकी कंपनी का नाम है, और प्रॉपर पूरा रेनोवेशन हो जाएगा. बेसमेंट कंस्ट्रक्शन, सेपरेट साइड एंट्रेंस, हार्डवुड फ्लोरिंग, टाइल्स, कुछ भी आपको काम कराना है, 6472102075. It's a 3:26 right now. आप है मस्ती की रेलगाड़ी पर ऑन CMRFM 101.3 मेरे यानी शालिनी के साथ. और एक छोटा सा टाइनी सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, और एक गाने की फरमाइश आ रही है, पुराने दौर की तरह चलते हैं जस्ट इन फ्यू मोमेंट्स. और गाना ऐसा है कि दिल कर आप कहें, सुनकर आप कहेंगे भाई वाह. लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात करना भी बड़ा जरूरी है, और उनके विचार जान लेते हैं इस टॉपिक के हवाले से. जी वेलकम, कौन बात कर रहे हैं?
2: थैंक यू फॉर कॉलिंग, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू मी चार्ली. हाउ आर यू?
1: आई एम डूइंग ग्रेट, हाउ आर यू?
2: Today, I'm so confused that I dialed this number 101.3. But when I was away for about 6-8 months, and before that, you were on a different channel, as lively as here.
1: Thank you so much. And who's this?
2: Well, this is Birdie here. But the only thing is that I kept looking for you for 1 month on that
1: channel.
2: Yeah.
1: Okay. But thank you so much.
2: But that was such a long one. Now this is for a short time, right?
1: जी बिल्कुल. बट कहते हैं ना कि शॉर्ट टाइम में भी आप कभी अपना बहुत बड़ा सा इम्पैक्ट बना लेते हो. तो टाइम जरूरी नहीं है. इट्स नॉट द क्वालिटी क्वांटिटी दैट मैटर्स, इट्स द क्वालिटी दैट मैटर्स. बट थैंक यू सो मच ब्रैडी फॉर जॉइनिंग मी टुडे हियर. और कैसी चल रही है आपकी जिंदगी? हाउ इज एवरीथिंग?
2: बहुत बढ़िया बताता हूं मैं आपको. तो शालिनी जी, पहली चीज तो ये है, व्हाट मैटर्स इज शालिनी ऑन द शो, वी ओनली जस्ट टैग बिहाइंड यू नंबर 1. नंबर 2, what you're talking about is positivity.
1: Mm-hmm.
2: That's what impresses me in the other people more, and I try and follow them.
1: क्या बात है, क्या बात है ब्रैडी. बहुत अच्छी बात आपने की है. और आपकी आवाज़ में भी मुझे पॉजिटिविटी नज़र आ रही है. कि जैसे भी कहते हैं ना कि जब हम पॉजिटिव हैं तो नेगेटिविटी हमारे पास तक भी नहीं आती, बाहर से ही चली जाती है.
2: बिल्कुल बिल्कुल
1: राइट.
2: तो
1: बहुत बहुत शुक्रिया ब्रैडी हमसे जुड़ने के लिए. और आप डेफिनेटली शो के बाद भी रीच आउट कर सकते हैं हमारे डायरेक्ट नंबर पर, मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं 416-569-7812 416-569-7812. थैंक यू सो मच ब्रैडी. और हम आपसे जुड़ते रहेंगे इस शो के दौरान. थैंक्स अ लॉट.
2: थैंक्स वेरी मच, अप्रिशिएट.
1: टेक केयर, बाय बाय. और वेल दोस्तों, कौन सी एक हैबिट आपको अपने किसी अपने की और किसी पराए की आपको पसंद आई, ये हमारे साथ आप जरूर शेयर कीजिएगा. और आज के शो में हम निकालेंगे एक विनर, जिनको दिए जा रहे हैं स्पेक्स एक्सप्रेस की तरफ से पोलराइड सन ग्लासेस स्केचर्स के. 416-593-0055 है स्टूडियो का नंबर, या डायरेक्ट नंबर पर आप मैसेज करके भी अपने जवाब हम तक पहुँचा सकते हैं. 416-569-7812. छोटा सा ब्रेक लेंगे दोस्तों, उसके बाद वो बहुत प्यारा सा गाना है जो मैं आपकी नजर करूंगी. स्टे ट्यून्ड.
3: Dear sponsors, for fast, effective and result-oriented ride, get on board Sean Express. For info, call 416-569-7812, 416-569-7812 or email info@seanmedia.com, seanmedia.com.
4: You work hard, manage to make both ends meet. Right combinations do miracles. If tax and accounting is your need, think Rajiv Madan. Depth of experience, passion for accounting. Tajurba wahi jo kaam aaye, aapko fayda pahunchaye. Certified General Accountant, Rajiv Madan. Tax accounting ke sabhi pehluon par paini nazar. Farq aazmane pe pata chalega. Call CGA Rajiv Madan, 905-362-2200.
3: 970 Drew Road, Suite 214B, Mississauga.
4: CGA Rajiv Madan. Thoughts become things.
5: मेडिकल इंश्योरेंस फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, द विजिटर्स इंश्योरेंस एंड सुपर वीजा इंश्योरेंस के बेस्ट रेट एंड बेस्ट प्लान के लिए एक ही नाम, संजीव पुरी.
6: संजीव शॉप अराउंड करके आपको बेहतरीन रेट और प्लान की गारंटी देते हैं, जिसमें खांसी, जुखाम, बुखार, स्लिप एंड फॉल, वॉकिंग क्लिनिक डॉक्टर की फीस, मेडिसिन एंड टेस्ट के खर्चे से लेकर एम्बुलेंस, हॉस्पिटलाइजेशन एंड फ्यूनरल तक सब कवर्ड होता है.
5: यू विल गेट फुल रिफंड इफ सुपर वीजा इज डिक्लाइंड.
6: इसके अलावा बच्चों की RESP, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, फ्यूनरल इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के लिए भी कॉल करें संजीव पुरी 416-890-3232
7: 8903232. वेलकम टू मद्रास रेस्टोरेंट. स्वाद स्वाग और साउथ का तड़का. फ्राइडे, सैटरडे और संडे एंजॉय कीजिए ऑथेंटिक साउथ इंडियन अनलिमिटेड थाली स्टार्टिंग एट सिर्फ 20-26. 20+ साउथ इंडियन डेलिकेसीज, गर्मा गर्म और अनलिमिटेड पराठा, इडली, वड़ा, स्पाइसी अरोमेटिक करीज एंड मोर. अनलिमिटेड सर्विंग्स, अमेजिंग वैरायटी और प्राइस जो पॉकेट को भी खुश करे. डोंट फॉरगेट टू ट्राई देयर सिग्नेचर डोसास, बिरयानी एंड लॉट मोर. मद्रास रेस्टोरेंट, 905-789-6600. दैट्स 905-789-6600.
8: Team Hashtag Homes and Rahul Kashyap Lekin. I have first-time home buyers clear an amazing opportunity. Freehold townhomes from $499,000 and detached homes from $605,000. First-time homebuyers can enjoy up to $130,000 in savings with new rebates, unlocking homeownership for the first-time homebuyers with the closing of 2027. Agar aap is opportunity ko grab karna chahte hain, then get in touch with Team Hashtag Homes today at 647-993-4844.
9: वीरे वधिया फर्नीचर ली किथे जावा
10: भाई चार लोकेशन तो देन सेवावा बस ऐसे करके ही मैं ता मिड्डा फर्नीचर ते ही जावा
11: लेटेस्ट डिजाइन एंड हाई एंड फर्नीचर विद बेस्ट सर्विसेज मार्केट दे प्राइस नालों 10-30% सस्ती प्राइस दा दावा कर देने
12: मिड्डा फर्नीचर आओ घर दफ्तर नु सजाओ ब्रैम्पटन स्कारब्रो मिसी सागा ते कैम्ब्रिज लोकेशन ते आओ ता सही
11: आजमाओ ता सही अपना बनाओ ता सही मिड्डा फर्नीचर कॉल करो 416-901-2810 410 मिड्डा फर्नीचर
13: आप रिश्ते को चलाना चाहते हैं या फिर घर बसाना चाहते हैं लेना है कोई बहुत बड़ा फैसला या करना है कारोबार स्ट्रेस और एंजाइटी ने जिंदगी को हिला के रख दिया है या फिर शादीशुदा लाइफ में बहुत सी परेशानियों का सामना है तो ये सब सितारों की वजह से भी हो सकता है आप सबसे बात करके डिसअपॉइंट हो गए हैं तो अब घबराने की जरूरत नहीं बात कीजिए फिफ्थ जनरेशन एस्ट्रोलॉजर मास्टर धनिक महाराज से 437-829-6023 इट्स 437-829-6023 मास्टर धनिक महाराज
14: Sean FM, simply gold. Red-

0: प्यार में दिल पे मार दे गोली, ले ले मेरी जान। कहते हैं कि प्यार में तो 100 खून भी माफ होते हैं, प्यार के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, राइट। लेकिन प्यार का गलत फायदा कभी नहीं उठाना चाहिए, किसी का दिल कभी नहीं तोड़ना चाहिए। और हम तो खैर कभी तोड़ते ही नहीं है आपका दिल, क्योंकि हमारे पास है अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे गाने, डील्स, ऑफर्स और मेहमान। और अगली मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगी देओल ट्रेवल से, नवजोत जी, लेटेस्ट लेटेस्ट डील्स के साथ। नवजोत जी, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम।
1: थैंक यू सो मच शालिनी।
0: जी बताइए, क्या है स्पेशल आज देओल ट्रैवल की तरफ से?
1: सो आज मैं बहुत सारी आपके लिए राउंड ट्रिप्स लेके आई हूँ। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी जी, सबसे पहले 1 वे के लिए जो है टोरंटो से बैंगलोर के लिए। टोरंटो से बैंगलोर अगर आप जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट फ्लाइट आपको सिर्फ और सिर्फ मिल रही है $900 में
0: वाह।
1: जून के मंथ में। एंड इफ यू वांट टू गो फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर एंड फॉर द राउंड ट्रिप टोरंटो से बॉम्बे के लिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये मिल रहा है $1,570 में।
0: ओह नाइस।
1: या एंड नेक्स्ट इज सितंबर टू अक्टूबर राउंड ट्रिप अगेन टोरंटो से बैंगलोर के लिए आपको ये सिर्फ और सिर्फ मिलेगा $1,410 में।
0: क्या बात है।
1: और अगर आप गर्मियाँ एंजॉय करने जाना चाहते हो मिड जून से मिड अगस्त तक तो ये राउंड ट्रिप आपको दिल्ली से लेके टोरंटो तक ये आपको मिल जाएगा जी $1,580 में।
0: वाह।
1: और अगर आप सर्दियों में टोरंटो आना चाहते हो तो ये दिल्ली से टोरंटो के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा $1,320 में, वो भी 2 बैग्स के साथ।
0: अमेजिंग।
1: ओके, ये है डील्स हमारे। अभी अभी ग्राब करने के लिए कॉन्टेक्ट करें 905-588-5100, 905-588-4200।
0: 588-5100 and 588-4200 Deol Travel, Etobicoke Brampton, 2 locations to serve you. Thank you so much हमसे जुड़ने के लिए नवजोत, आपसे बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। All the best, take care.
1: Thank you.
0: जी हाँ दोस्तों, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, और आप लोगों के कॉल्स का भी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और आपको मैं बता दूं फिर से टॉपिक का नाम, टॉपिक क्या है आज का? टॉपिक आज का ये है कि आपको कौन सी एक क्वालिटी किसी में सबसे ज्यादा पसंद आती है या आई है। कभी कभी यू नो वो क्वालिटीज बड़ी अनयूजुअल क्वालिटीज भी होती हैं, जो कोई सोच भी नहीं सकता वो हमें पसंद आती है। कि शायद मुझे वो पसंद आ जाए जो आपको पता ही ना चले किसी में, शायद मैं वो चीज देख लूं उस इंसान में। ठीक है, तो आप कोई चीज देख लें, शायद मैं ना नजरअंदाज कर दूं उस चीज को। तो वो कौन सी एक क्वालिटी है जो आपको लोगों में पसंद आती है, अंदरूनी क्वालिटी? क्योंकि आज है टर्न द ब्यूटी इनसाइड आउट डे, तो हम अंदर की खूबसूरती निकाल रहे हैं बाहर। और जब ट्रस्ट मी, जब मैं आप लोगों के व्यूज सुनती हूँ तो मुझे आपके अंदर का जो खूबसूरत इंसान है ना, वो सुनना, उसको समझना बड़ा मजा आता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो लेट्स हियर इट फ्रॉम यू। और आज स्केचर्स के पोलराइड सनग्लासेस 1 पेयर दिए जाएंगे विनर्स को। स्टूडियो का नंबर 4165930055। और आप हमेशा कहते हैं कि अपने सोशल मीडिया चैनल्स के बारे में मैं नहीं बताती, तो चलिए दोस्तों, आप शालिनी दीक्षित को कहीं भी सर्च कर सकते हैं। आप किसी भी जगह चले जाइए, इंस्टाग्राम पर चले जाइए, फेसबुक पर चले जाइए, टिकटॉक पर चले जाइए, यूट्यूब पर चले जाइए, आप शॉन मीडिया शालिनी दीक्षित आप लिख दीजिएगा, आपको हमारे वीडियोस मिल जाएंगे। उसको लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं अपने अपनों के साथ। और जितने भी बिजनेस ओनर्स हमारा शो इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को प्रमोट करना, डू ज्वाइन आवर टीम। नंबर है हमारा डायरेक्ट नंबर टू रीच अस फॉर ऑल द डिटेल्स 4165697812, 4165697812। अब चलते हैं आपको बड़े खूबसूरत से वर्ल्ड की तरफ लेकर, विंडोज एंड डोर्स के। यश विंडोज एंड डोर्स का नाम तो आपने सुन ही लिया होगा, ब्रांडेड नेम है हमारी कम्युनिटी का। वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के विंडोज एंड डोर्स वहां पर मैन्युफैक्चर भी होते हैं और इंस्टॉल भी होते हैं, यानी कोई मिडलमैन नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, रीजनेबल प्राइस में, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, सिक्योरिटी, क्वालिटी, लुक्स, स्टाइल, एवरीथिंग टुगेदर। और अगर आप बिजनेस आगे बढ़ाना चाहते हैं, दे हैव फ्रेंचाइज ऑप्शंस अवेलेबल एज वेल। आप यश विंडोज एंड डोर्स में बात करें राइट अवे 416-732-3600, 416-732-3600। आप है मस्ती की रेलगाड़ी पर ऑन CMR FM 101.3। अगला गाना बहुत जल्दी आपकी नजर हम करने लगे हैं, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे, कुछ मैसेजेस लेते हैं, और वो जो गाना है वो शायद आपने सालों से नहीं सुना होगा। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी अनयूजुअल सॉन्ग। स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक।
2: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMR FM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस।
3: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
4: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Dear sponsors, for fast, effective and result-oriented ride, get on board Sean Express. For info, call 416-569-7812, 416-569-7812 or email info@seanmedia.com, seanmedia.com.
1: एक लाइफ है जिसे लव है,
2: ये कहते मुझसे सब है,
3: अरे एक घर है जिसका ड्रीम है,
4: हाँ आपका ड्रीम।

0: one-stop solution for all your mortgage needs. Bank declined. Mortgage for self-employed. Quick closing in 48 hours. Or commercial loan. Just don't worry. 647-512-7000. Mortgage broker Mukesh Chauhan from Mortgage Diligent. FSRA number 10252. Conditions apply.
1: Don't worry. Mukesh Chauhan hai.
2: जी दोस्तों, डोंट वरी, मुकेश चौहान हैं और रिनाउंड मॉर्गेज ब्रोकर हैं फ्रॉम मॉर्गेज डिलिजेंट. कितने सालों का इन्हें एक्सपीरियंस है दोस्तों. आपकी मदद करते हैं रीफाइनेंसिंग में, डेट कंसोलिडेशन में, और बड़ी आसान सी प्यारी सी मंथली पेमेंट बन जाती है. आपके डेट्स भी मैनेज हो जाते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस भी मैनेज हो जाता है. वेल, इफ यू आर 55 प्लस और आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं मॉर्गेज, देयर इज अ सॉल्यूशन. ये होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए, लो इनकम लो क्रेडिट से परेशान है, डोंट वरी, वहां पर भी मुकेश जी विल बी रेडी टू हेल्प यू. पावर ऑफ सेल में फंसे हैं, मॉर्गेज पेमेंट्स मिस कर रहे हैं, एक्ट नाउ बिकॉज द हेल्प इज अवेलेबल. नंबर नोट करें मुकेश जी का. और बिफोर दैट आई शुड टेल यू, आई मस्ट टेल यू कि बिजनेस लोन चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए अप टू $1 million की, तो नंबर नोट करें मुकेश जी का. ही विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू. 647-512-7000. 6475127000. मुकेश जी, वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप?
3: शालिनी जी, वेरी गुड आफ्टरनून, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ. इट्स अमेजिंग ब्यूटीफुल वेनसडे आफ्टरनून, और yes, मेरे ख्याल से लॉन्ग वीकेंड आपने बड़ा अच्छा एंजॉय किया. हमने तो किया बहुत अच्छे तरीके से, हमने बहुत अच्छा किया और बहुत रिलैक्सिंग था. वेदर वॉज अमेजिंग. आई एम श्योर आपने भी इक्वली परिवार के साथ एंजॉय किया होगा, क्योंकि बहुत टाइम के बाद फील हुआ हम वाकई में समर एंजॉय कर रहे हैं.
2: बिल्कुल, और समर वाले कपड़े बाहर निकले नहीं थे, बड़े ढूंढ ढूंढ के निकाले और शाम तक जाकर मिले कि समर वाले कपड़े पहनने थे.
3: और आज दोबारा ठंड के निकाल लिए हमने कपड़े
2: आज. बिल्कुल, वो तो वो मतलब एक जैकेट तो समर विंटर जैकेट बाहर ही रहती है. यहाँ पर तो दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में वेदर इज ऑलवेज ट्रिकी, बट इट्स ग्रेट बिकॉज वी एंजॉय इन पॉकेट्स, एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन यू नो हैविंग अ मोनोटोनस एंजॉयमेंट फॉर एवर. तो ये पॉकेट्स में हमें एंजॉयमेंट मिलता है, वी एंजॉय. तो चलिए आपसे बातचीत करते हैं शुरू. आज भी मेरे पास कुछ सवाल है मुकेश जी आपके लिए. सबसे पहले होम ओनर्स के एंगल से अगर मैं आपसे पूछूं, अगर हमें होम में कुछ काम कराना है, घर में रेनोवेशन कराना है, यू नो एनीथिंग दैट वी नीड टू डू, उसके लिए अगर पैसा चाहिए तो मुकेश जी आप कैसे दिलवाएंगे? मॉर्गेज रीफाइनेंसिंग आप सजेस्ट करेंगे या होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट?
3: देखें, होम रेनोवेशन बिल्कुल हॉट टॉपिक है. समर इज राइट देयर ऑन द कॉर्नर, और इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आपको भी हर कोई करवाता है. और बिल्कुल पैसों का तो ये नहीं कि आप राइट अवे पैसे अपने अकाउंट से निकालें. बहुत रेयर है कि हम अपने सेविंग चेकिंग में पैसे पड़े हैं. दो ही हमारे पास ऑप्शन है, या तो आपके पास TFSA में पड़े हो, आपके पास राइट कुछ सेविंग्स छोटी मोटी हो, या आपके पास जो है अपनी होम एक्विटी, घर के अंदर एक्विटी है. अब घर में भी एक्विटी दो तरीके से निकलती है. आपने राइटली आस्क के रीफाइनेंसिंग, देखिए सिंपल सोल्यूशन ये कि आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो, मैं ये बताना चाहूंगा. अगर आपका रिन्यूअल अगले 3-6 महीने में है, राइट, तो रीफाइनेंसिंग इज द बेस्ट सोल्यूशन. बट ऑब्वियस है, क्योंकि आपको एक्विटी जो निकलेगी 50,000, 1,00,000, 2,00,000 वो घर की मॉर्गेज पे होगी, मतलब जो 4.5% के अंदर अंदर रेट है उस पे मिलेगी मॉर्गेज, है ना, उसी पे ही पैसे निकालोगे आप. सिंपल मैथ,
2: दैट्स राइट.
3: बजाय क्रेडिट कार्ड से निकालो 19% पे, चाहे सेकंड मॉर्गेज लो आप 12-13% पे, उससे बेटर है आपके घर के ऊपर, क्योंकि घर की ऊपर मॉर्गेज रेट बहुत सबसे कम उसी पे होता है, और किसी चीज पे आपको कम रेट नहीं मिलेगा, है ना, पीरियड होने के बाद. उससे पैसे भी निकालें, बच्चों को स्टडीज के लिए निकालने हैं, भेजना है, उनकी वेडिंग के लिए पैसे निकालना है समर में, या आपको अपने प्रॉपर्टी टैक्स बिल पे करने, पिछले 2-3 साल के CRA के ड्यूज पे करने, तो ये सारे काम पॉसिबल है मॉर्गेज रीफाइनेंसिंग. अच्छा, अब रिन्यूअल अगर देखें किसी का 1 साल के अंदर भी है, वो अपने बैंक से पेनल्टी चेक करें. पेनल्टी कम पड़ेगी आपको, ज्यादा नहीं पड़ेगी. अगर वो $2,000-4,000 देखे, बड़े मोटे पैसे निकलते हैं, तो यस, वाई नॉट, है ना.
2: अच्छा,
3: और दूसरी बात आते हैं, अब आपकी रिन्यूअल अगर 28-29 में पेनल्टी $30,000-40,000 पड़ रही है, तो फिर आप रीफाइनेंसिंग मत कराएं. आप होम एक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट ले सकते हैं. बैंक को पहले अप्रोच करें, ठीक है. इनकम और क्रेडिट के इश्यूज हैं, तो बैंक के अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं. आप मेरी तरह किसी भी ब्रोकर को अप्रोच करें, सेम लाइक अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आपको होम एक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट मिल जाएगी जिससे आप रिनोवेट करवाएं, अपने डेट्स पे करें. कोई भी आपको फाइनेंशियल नीड है वो आपको हेल्प करेगी. एक साल, दो साल, पांच साल, छह साल के लिए मॉर्गेज रखनी है, लाइन ऑफ क्रेडिट आप रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. तो वंस अगेन आपको क्लैरिटी अभी भी क्लियर नहीं हुई बात, फोन पे जरूरी नहीं सारी चीजें बताना और बहुत समय कम होता है. कॉल करें, टेक्स्ट करें. आई एम हियर टू हेल्प यू. दिस इज मुकेश चौहान. नंबर टू कॉल 647-512-7000.
2: जी. और अब मुकेश जी, होम वैल्यूएशन की मैं बात करूं तो उसमें आप कैसे मदद कर सकते हैं?
3: देखिए, होम वैल्यूएशन के लिए आप अपना नाम और एड्रेस घर का भेजिए, मैं आपको आपकी घर की वैल्यू चेक करके बताऊंगा क्या वैल्यू है. उसके बाद फिर पेड अप्रेजल पे जाएंगे. और पेड अप्रेजल पे ये गुड न्यूज है शालिनी जी कि आपकी क्लोजिंग पे ये पैसे जो आपने दिए रीइंबर्स हो जाएंगे आपको, है ना. तो ये सपोर्ट मिलेगा आपको बिल्कुल बैक टू यू.
2: Very nice, I love it. 647-512-7000. अच्छा, आप ये भी बता दीजिए मुकेश जी कि अगर किसी ने मॉर्गेज पेमेंट्स मिस कर दिए हैं तो क्या हो सकता है और आप कैसे बचा सकते हैं उनको?
3: देखें, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा है, बड़े पते का ना. होम रेनोवेशन पूछा आपने, आपने होम वैल्यूएशन पूछा और ये भी बहुत ही अच्छा पूछा. इसमें देखें, ये
2: है बात ही पूछती हूँ, पते की बात पूछती
3: ये बात माननी पड़ेगी, पते की बात पूछती है. अच्छा देखिए, पेमेंट मिस, आपने पेमेंट मिस कर दिए तो ये फियर आ जाता है शालिनी जी कि घर पावर ऑफ सेल पे जा सकता है ना. दो तीन चार पांच आपने पेमेंट मिस करी तो फिर बैंक से लेटर आना शुरू हो जाएंगे. तो देखिए, उस सिचुएशन में अगर आप हैं, अगर आपने क्रेडिट कार्ड पेमेंट तो मिस करी साथ में मॉर्गेज पेमेंट मिस करिए तो इज अलार्मिंग, राइट. तो आप राइट पे कॉन्टेक्ट करें मुझे, आई हैव अ सोल्यूशन. आपकी मॉर्गेज रेगुलर करवा दूंगा मैं, अप टू डेट करवा दूंगा आपकी. आपको एक्स्ट्रा फंडिंग चाहिए तो वो भी आपको हेल्प, मैं उसको सहायता करूंगा आपकी, ट्राई टू गिव यू एक्स्ट्रा फंडिंग. आपको अगले 6-8 महीने अगर कैश फ्लो के लिए पैसे चाहिए तो वो भी, एज लॉन्ग एज आपके घर में एक्विटी अप टू 80% तक मैं आपकी हेल्प करने में करवा सकता हूँ. तो गिव मी अ कॉल, गिव मी अ शाउट. दिस इज अ वेरी क्रिटिकल, उसको लाइटली मत लें, मैं ये बोलूंगा. बिल्कुल लाइट मत लें, राइट अवे एक्शन करें. सोचे मत कि कोई आके जगाएगा आपको, आपको नॉक करेगा, लेटर करेगा बैंक का, उसके लिए वेट मत करें प्लीज. दिस इज अ सीरियस. सो प्लीज टेक अ एक्शन. मुझे इन्फॉर्मेशन के लिए फोन करना है, नो प्रॉब्लम, गिव मी अ कॉल, आई एम हियर टू हेल्प यू. मॉर्गेज रीफाइनेंसिंग है, घर के वैल्यूएशन है, रेनोवेशन के लिए पैसा चाहिए, बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, आई एम हियर टू हेल्प यू. वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए अपने बिजनेस के लिए, आई एम हियर टू हेल्प यू. दिस इज मुकेश चौहान, मॉर्गेज ब्रोकर फ्रॉम मॉर्गेज डिलीजन. नंबर 647-512-7000. शालिनी जी, आपसे दोबारा बात होती है. थैंक यू.
2: जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी हमसे जुड़ने के लिए. नंबर फिर से बता दूं दोस्तों, बिल्कुल मैजिकल नंबर है ये नंबर, आप सेव करें अपने पास. 647-512-7000, 647-512-7000. जैसे सात के आगे जीरो लगे हैं ना, ऐसे ही आपके जो भी आप फंडिंग अप्लाई करेंगे उसके आगे अपने आप जीरो लगते जाएंगे अगर आप मुकेश जी से बात करते हैं तो. इतना पैसा हो सकता है और इट इज ऑल देयर, वी डोंट रियलाइज इट. सो यू नीड अ प्रोफेशनल टू मेक यू रियलाइज इट. Number once again, 647-512-7000. Thank you, Mukesh. We'll talk to you soon. All the best.
3: Thank you so much.
2: जी. हर वेल दोस्तों, इट्स 3:55 और आप हैं शालिनी के साथ मस्ती की रेलगाड़ी पर. थैंक यू सो मच आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों के कॉल्स का. कभी कभी एक्नॉलेजमेंट नहीं कर पाऊँ तो माफी चाहती हूँ, लेकिन आई एब्सोल्युटली लव व्हाट यू गाइस सेंट मी ऑलवेज. एंड सोशल मीडिया पर भी आप हमें विजिट कर सकते हैं. अगर आपको नहीं चाहिए, नहीं पता हमारे हैंडल्स, तो आप हमें ज़रूर मैसेज करें. वी विल सेंड यू द लिंक टू ऑल आवर सोशल मीडिया हैंडल्स सो दैट यू कैन गो वॉच आर वीडियोज़. हम किस तरह से स्टूडियो में परफॉर्म करते हैं तो आप लोग मैसेज अपने भेज सकते हैं नाम के साथ, अपने टेक्स्ट मैसेजेस हम तक पहुँचा सकते हैं. अगर आप हमें जुड़ना चाहें सोशल मीडिया पर तो हमारा डायरेक्ट नंबर है टू रीच अस. और जितने भी यहाँ पर लोग हमारा शो इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं, इफ़ यू वांट टू प्रमोट योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑन आवर शो, डू रीच आउट टू अस. वी वुड बी वेरी हैप्पी टू प्रमोट यू ऑन मस्ती की रेलगाड़ी एंड ऑल्सो ऑन आवर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. डायरेक्ट नंबर टू रीच अस 416-569-7812. आज के शो में शालिनी का साथ देने का बेहद शुक्रिया. कल मिलते हैं फिर से 2 से 4 मस्ती की रेलगाड़ी के साथ. टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. नमस्कार.

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: The views and information shared by the guests and their ads are their own and shall not be construed as advice from Radio Voice hosts. We make no recommendations or endorsements for radio show programs, products, or experiences mentioned on air. Personal views expressed by the guests, ads, interviews will always be presented as such. No liability, explicit or implied, shall be extended to Radio Voice or the show hosts whose words and or opinions appear on the show.
3: रेडियो वॉइस एक ऐसा रेडियो शो जो सुने आपकी बात,
4: जो हो आपके दिल के करीब,
3: जो मनाए आपके त्योहार,
4: रखे चुटकुले तैयार,
3: जहाँ पर मिले आपके सवालों के जवाब,
4: जहाँ मचे शायरी की धूम,
3: जो दे खबरें अप टू डेट
4: और दे ढेरों इनाम,
3: आपका अपना रेडियो शो रेडियो वॉइस
4: जतिन के संग
3: ऑन CMR 101.3 FM. ट्यून इन मंडे टू फ्राइडे और लॉग ऑन टू CMR.fm.
5: हाँ जी, मेरे भाइयों, यू द वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन. नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और वनकम. किताबों के पन्ने अब धूल खाने लगे हैं, किताबों के पन्ने अब धूल खाने लगे हैं, ख्वाब अब स्क्रीन की चमक में खोने लगे हैं. वो जो वक्त था खुद को तराशने के लिए, वो जो वक्त था खुद को तराशने के लिए, अब इंस्टाग्राम की रील की रफ्तार में सब बहने लगे हैं. हाँ जी बिंदर भाइयों, इंस्टाग्राम की रील की रफ्तार में सब कुछ बह रहा है, ऐसा एजुकेशनिस्ट का मानना है. और इसी वजह से शायद ओंटारियो में भी अब स्कूल में सेलफोन बैन किए जाएंगे, सोशल मीडिया बैन किया जाएगा. क्या ऐसा होगा, इंतजार करते हैं. लेकिन फिलहाल आपको लिए चलते हैं एक खूबसूरत नगमे की ओर. ये द वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन.

0: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस 416-660-8545।
1: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर,
2: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
1: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
3: नॉर्थ अमेरिका का सब तो वड्डा माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
4: यहाँ से आपको ढाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलेनी ड्राइव यूनिट 9 & 10 ब्रैम्पटन। टेलीफोन 905-799-9400।
5: माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
6: टेस्टी डोसा खाने का मन है? हमारा फेवरेट गुरु लक्ष्मी है ना, यूनिट 44-50 7070 सेंट बारबरा बुलेवार्ड मिसिसागा। मंडे और ट्यूसडे को डिनर शाम 5 to 10, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे लंच 12 to 3, डिनर 5 to 10। वेडनेसडे को बंद, मगर लॉन्ग वीकेंड पे खुले रहते हैं। कॉल करें 9057952299 या विजिट करें gurulakshmi.com। गुरु लक्ष्मी साउथ इंडिया के स्वाद का असली तड़का।
7: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
8: हम होंगे आपके साथ हमेशा।
9: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
10: घर कहीं भी लेना हो

0: Meet Rohit the Yes Man at Ritz Furniture Planet, 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca.
1: Sasta saman sasta nahi. High end da saman mile sasta.
2: क्या बात है, उलझन में लग रही हो?
3: उलझन ही तो है, एक तरफ चिंटू के दांतों में कीड़ लग गई है, चॉकलेट इतने खाता रहता है, और दूसरी तरफ माँ जी के दांतों में दर्द हो रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: समझना क्या, डॉक्टर नील गज्जर को फोन करो, बहुत ही रिनाउंड डेंटिस्ट है, और उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा और मेरा भी अपॉइंटमेंट बना लो दाँत की सफाई करने के लिए। ये लीजिए फोन नंबर 289-401-0009 289-401-0009.
3: Dr. Neil Gajar, 735 Tween Avenue, Suite 16, Mississauga. Call 289-401-0009.
4: मेडिकल इंश्योरेंस फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, विजिटर्स इंश्योरेंस एंड सुपर वीजा इंश्योरेंस के बेस्ट रेट एंड बेस्ट प्लान के लिए एक ही नाम,
5: संजीव। शॉप अराउंड करके आपको बेहतरीन रेट और प्लान की गारंटी देते हैं, जिसमें खांसी, जुखाम, बुखार, स्लिप एंड फॉल, वॉकिंग क्लिनिक डॉक्टर की फीस, मेडिसिन एंड टेस्ट के खर्चे से लेकर एम्बुलेंस, हॉस्पिटलाइजेशन एंड फ्यूनरल तक सब कवर्ड होता है। इसके अलावा बच्चों की RESP, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, फ्यूनरल इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के लिए भी कॉल करें संजीव पुरी 416-890-3232.
6: Craving something truly authentic? Mumbai Grill in Ajax has been delighting taste buds for 18 years. Just specialized in mouth-watering momos plus tandoori and butter chicken momos. Jahan milenge best of South Asian cuisine. Miss out mat karna unka famous lunch and dinner buffet. Signature dishes like butter chicken and shahi paneer. Agar food aapko karta hai excite, to zarur pahunche Mumbai Grill at 619 Kingston Road, Ajax. Call kare at 905-239-4077 ya visit kare Mumbai Grill.com. Available for small and very large group catering services. Mumbai Grill, yummy food that thrills.
2: Dr. Neil Gajar Associates and Specialists, Family Dentists, caring for all your dental needs. Accept कर रहे हैं patients जिनके पास CDCP यानी कि Canadian Dental Care Plan है. अगर आपने ये plan receive नहीं किया है और आप eligible है, तो इस plan में enroll होने के लिए visit करें CDCP website. CDCP की website visit करके enroll हो जाइए और कॉन्टेक्ट कीजिए डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट का। बेंद्र भाइयों, आपकी अपॉइंटमेंट अभी से बुक करवा ले 905-564-2021 905-564-2021. डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट्स, आपके फैमिली डेंटिस्ट।
7: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
8: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
9: Tasty dosa khane ka man hai? Hamara favorite Guru Lakshmi hai na? Unit 44 to 50, 7070 St. Barbara Boulevard, Mississauga. Monday or Tuesday ko dinner, sham 5 to 10. Thursday, Friday, Saturday, Sunday, lunch 12 to 3, dinner 5 to 10. Wednesday ko band, magar long weekend pe khule rehte hain. Call kare 905-795-2299 ya visit kare gurulakshmi.com. Guru Lakshmi, South India ke swad ka asli tadka.
10: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस, कॉल करें 416-660-8545.
11: हाँ जी मित्र भाइयों, ये वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। कनाडा और अमेरिका के बीच का रिश्ता हमेशा दुनिया के सबसे व्यस्त और मजबूत व्यापारिक और पर्यटन संबंधों में से एक रहा है। लेकिन हाल ही में आई एक चौंकाने वाली रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच होने वाली क्रॉस बॉर्डर ट्रेवल यानी सीमा पार यात्राओं में एक ऐसी ऐतिहासिक भारी गिरावट देखी जा रही है जिसने एनालिस्ट को हैरान कर दिया है। हाँ जी मित्र भाइयों, आपको बता दे कि आधिकारिक आंकड़े यानी कि स्टेटिस्टिक्स कनाडा की रिपोर्ट में पहले ये बताया गया था कि पिछले साल अमेरिका से लौटने वाले कनाडाई नागरिकों की संख्या में करीब 25% की कमी आई है। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के स्कूल ऑफ सिटीज द्वारा किए गए एक नए सेलफोन डेटा रिसर्च ने एक अलग ही कहानी बयां की है। इस बारीकी से की गई रिसर्च के अनुसार सीमा पार यात्राओं में यह वास्तविक गिरावट 25% नहीं बल्कि 42% के करीब है, यानी स्थिति सरकारी अनुमान से कहीं ज्यादा गंभीर है। ये गिरावट सिर्फ ठंडे इलाकों या सीमावर्ती कस्बों तक सीमित नहीं है। कनाडाई पर्यटकों के पसंदीदा पर्यटन स्थलों जैसे फ्लोरिडा के ओरलैंडो, मियामी और कैप कोरल में कनाडाई विजिटर्स की संख्या में 50-65% तक की भारी गिरावट दर्ज की गई। चौंकाने वाली बात यह है कि मर्टल बीच में यह गिरावट सबसे ज्यादा यानी 65% रही। सिर्फ छुट्टियां मनाने वाले ही नहीं बल्कि बिजनेस सेंटर्स जैसे न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को और बोस्टन जाने वाले कैनेडियन लोगों की तादाद भी कम हो गई है। विशेषज्ञ इसे कैनेडाई नागरिकों द्वारा अमेरिकी नीतियों के खिलाफ एक स्वतः स्फूर्ति या सेल्फ इम्पोज्ड ट्रैवल बैन के रूप में देखते हैं। क्या सब कुछ जल्द से जल्द नॉर्मल होगा? करते हैं इंतजार। ये हिट वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन।

0: Haan, mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo fettis, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: क्या बात है, उलझन में लग रही हो?
4: उलझन ही तो है, एक तरफ चिंटू के दांतों में कीड़ लग गई है, चॉकलेट इतने खाता रहता है और दूसरी तरफ माँ जी के दांतों में दर्द हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: समझना क्या, डॉक्टर नील गज्जर को फोन करो, बहुत ही रिनाउंड डेंटिस्ट है और उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा और मेरा भी अपॉइंटमेंट बना लो।

0: दांत की सफाई करने के लिए ये लीजिए फोन नंबर 289-401-0009 289-401-0009
1: डॉक्टर नील गजर 735 ट्वीन एवेन्यू स्वीट 16 मिसिसागा कॉल 289-401-0009
2: संजीव पुरी ऑफ स्टार लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंक एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ ही कैन शॉप अराउंड फॉर यू फॉर द बेस्ट प्लान्स ऑफ इंश्योरेंस दैट विल सूट योर बजट एंड नीड्स संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर डायबिटीज हार्ट अटैक बाईपास सर्जरी लिवर या किडनी के इश्यूज हो या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232 416-890-3232

0: वक्त जो है वो बदल चुका था। रामाधीर ने उस गाने को नहीं पहचाना, पर वो रेडियो वॉइस को पहचान गया था। ये वो जमाना था जब लोग अपना ईमेल का पासवर्ड भूल जाया करते थे, पर रेडियो वॉइस सुनना नहीं। और उसके बाद रेडियो वॉइस पर जो एडवर्टाइजर्स का तांता शुरू हुआ, उससे पूरे एफएम रेडियो का समीकरण ही बदल गया। एडवर्टाइजिंग जो है उसके लिए आज ही कॉल करें 416-660-8545।
1: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस, कॉल करें 416-660-8545।
0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो वॉइस एफएम 101.3 और मैं हूं अमिताभ। वंस अगेन इट्स वेंसडे अराउंड 4:25 PM और वक्त हो चला है उनसे मिलने का जिन्हें आप सालों से रियल एस्टेट की ट्रस्टेड अथॉरिटी मानते आए हैं। जी बिल्कुल सही पहचाना आपने, हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट की दुनिया के एक बहुत ही ट्रस्टेड पर्सनैलिटी श्री पी के सबरवाल जी की। सबरवाल जी अपने साथ लाते हैं डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस, हजारों फैमिलीज का अपना घर खरीदने के सपने को पूरा करने का इत्मीनान और हर वीक आपके लिए मार्केट का पूरा हिसाब किताब बिल्कुल सीधा और सच्चा। चाहे आप पहला घर खरीदना चाहते हैं या प्री कंस्ट्रक्शन कॉन्डो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन और विश्लेषण सबरवाल साहब से आपको मिलेगा यही रेडियो वॉइस पर। सबरवाल साहब हमारे साथ जुड़े रहेंगे 4:50 तक। तो अगर आपका भी रियल एस्टेट से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप पीके से डायरेक्टली पूछ सकते हैं सिंपली बाय कॉलिंग आवर स्टूडियोज ऑन 416-593-0055। सबरवाल साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्लीज हमारे श्रोताओं को अपनी एक्सपर्टीज का फायदा उठाने दें और हम सभी को रियल एस्टेट की इस हफ्ते की कुछ खास अपडेट्स दें। ओवर टू यू।
2: थैंक यू वेरी मच अमिताभ जी एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल योर लिसनर्स। जी अमिताभ जी,
0: सबरवाल साहब खबरें तो बहुत सारी आती हैं रियल एस्टेट से जुड़ी हुई, पर मैं चाहता हूं कि हम लोग 2-3 चीजों पे फोकस करूं। तो पहले मेरा प्रश्न है आपके से रिलेटेड कि इन्फ्लेशन का और इंटरेस्ट रेट्स का क्या असर पड़ रहा है रियल एस्टेट मार्केट पे आजकल?
2: इन्फ्लेशन की खबर जो आई है अभी जो आज ही कल आई, तो इन्फ्लेशन जो है वो 2.8% बढ़ा है अप्रैल में, लेकिन जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा था 3.1% के आसपास अलग अलग इकोनॉमिस्ट, लेकिन ये 2.8% भी देखने में तो बहुत ज्यादा है। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ा जो रिपोर्ट आई है जो उसमें ये बताया जा रहा है कि वार ड्रिवन जो एनर्जी कॉस्ट है उसकी वजह से ये बढ़ा है। गैसोलीन के प्राइस जो है वो 28.6% बढ़ गए ईयर ईयर लास्ट मंथ जो बढ़े अप्रैल में ईयर ओवर ईयर, और जो मार्च की हमारी रीडिंग थी इन्फ्लेशन की वो 2.4% थी। गैसोलीन इतनी जबरदस्त आपने देखा ही है कि $2 के लिए पहुंच गई, उसकी वजह से जो है ये इन्फ्लेशन में असर पड़ा। और दूसरा इसके अंदर फूड कॉस्ट, हालांकि वो उस रफ्तार से नहीं बढ़ी जिस रफ्तार से ग्रोसरी की हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो ऊपर की तरफ गई है। अगर हम इसमें से गैसोलीन को निकाल दें तो ये हमारी बड़ी मॉडेस्ट 2.2 गैसोलीन एंड जो इससे रिलेटेड है ग्रोसरी एंड ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, तो बड़ी मॉडेस्ट 2% हो जाती है, जो कि हमारे बैंक ऑफ कनाडा के जो है वो उनके टारगेट के अंदर ही आती है। मंथली बेसिस देखा जाए तो CPI जो है 0.4% बढ़ी है, इकोनॉमिस्ट फोरकास्ट कर रहे थे 0.7%। तो मेरे हिसाब से ये टेम्पररी कहूंगा मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि हमें इससे घबरा जाना चाहिए, लेकिन हाँ जो है सो है, अब क्या कर सकते हैं। चाहे गैसोलीन बढ़ी बढ़े तो है, इन्फ्लेशन तो आई है, अब गैसोलीन के चक्कर में ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाती है, जब ट्रांसपोर्ट बढ़ जाती है तो हर चीज महंगी हो जाती है, ग्रोसरी सबसे पहले असर पड़ता है ग्रोसरी के ऊपर और बाकी चीजों का भी उस पर असर पड़ जाता है। फूड जो है वो ग्रोथ जो है वो 4% जो मार्च में हुई थी उसकी थोड़ी बड़ी तो है, पर उसके हिसाब से कम बढ़ी है, 3.5% बढ़ी है। तो ये जैसे कहते हैं अगर मैं इसमें से इन्फ्लेशन में से फूड एनर्जी और इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह अगर निकाल दूं
0: जी
2: तो ये 1.5% तक रह जाती है, और जिसको बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल के हमारे जो जिनको मैं बड़ा पसंद करता हूं डॉगलस पोर्टर साहब, वो कह रहे हैं कि अगर ये हटा दो तो इन्फ्लेशन ना के बराबर है, बिल्कुल ना के बराबर है। तो अब देखो, अब आपने दूसरा कनेक्टेड क्वेश्चन पूछा साथ में, इसका इंटरेस्ट रेट में क्या असर होगा?
0: जी जी,
2: 10 जून को जो है वो ये डिसीजन आना है इंटरेस्ट का, और ये माना जा रहा है पिछले 2-3 हफ्ते से मैं लगातार मैं भी कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि इस साल इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या घटेगा, ये होल्ड में ही रहेगा। और ये रिपोर्ट आते ही अलग अलग बैंक्स, अलग अलग लेंडर्स ने ये कहना शुरू कर दिया है कि भाई हालांकि इन्फ्लेशन बढ़ गया है, जिसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि ये इन्फ्लेशन सुपरफिशियल टाइप का है, एक्चुअल नहीं है, तो इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिसीजन बढ़ाने या घटाने का नहीं लिया जाएगा, ये होल्ड में ही रहेगा। अलग अलग बैंकों ने सेम बात कही है, टीडी बैंक भी यही बात कह रहा है कि इसके ऊपर कोई आर्गूमेंट होना ही नहीं चाहिए कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। और स्कॉटिया बैंक ये बात कह रहा है कि बैंक ऑफ कैनेडा को भी पेशेंस रखनी चाहिए, इसके बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए। बीमो कह रहा है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं तो बहुत बड़ी पॉलिसी एरर होगी, यानी कि सब इसी बात को कह रहे हैं कि इस वक्त इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन को देखते हुए नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो रियल नहीं है, वो आर्टिफिशियल है, हालांकि है पर वो एक रियल इकोनॉमिक सेक्टर नहीं है, वो एक वॉर रिलेटेड है,
0: टेम्पररी टाइप।
2: साउथ ऑफ द बॉर्डर रात को कुछ कह देते हैं तो अगले दिन कुछ हो जाता है, फिर सुबह आगे कहते हैं कंप्रोमाइज हो रहा है, सुबह आगे कहते हैं कि सीज फायर हो रहा है तो प्राइजेस कुछ और हो जाते हैं, और उसके हिसाब से डॉलर कीमत बढ़नी शुरू हो जाती है, शेयर बढ़ने शुरू हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि हम वार कर देंगे तो डॉलर घटना शुरू हो जाता है, वहां पर जो है शेयर की प्राइस जो है वो कम होने शुरू हो जाते हैं, बस एक गेम चल रही है, मैं तो कहूंगा कुछ नहीं हो रहा जी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इतना ऊपर नीचे होता है कि परसों उन्होंने कहा कि मैं तो अटैक करने वाला था, फिर मैंने रोक लिया, फिर आज एक खबर आई है अभी थोड़ी देर पहले कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे फिर यूएस ने ब्लॉकेड शुरू कर दिया है अपना, तो इस तरह की कॉन्फ्लिक्टिंग न्यूज से तो मार्केट में कोई भी ठहराव नहीं आएगा।
2: इनर ट्रेडिंग हो रही है मेरे ख्याल से
0: जी,
2: कहते ना एक वर्ड था इनसाइड ट्रेडिंग, आपको याद होगा
0: जी जी,
2: तो
0: बिल्कुल।
2: वो वाली इनसाइड ट्रेनिंग ही मानूंगा, इनकी बातों के ऊपर दुनिया चल रही है, आज कुछ कह दिया कल कुछ कह दिया, गेम खेली जा रही है, कीमतें कभी बढ़ जाती हैं कभी घट जाती हैं, लोग शेयर खरीद लेते हैं कभी कम हो जाते हैं, दिस इज बिकमिंग नॉनसेंस, इसको तो असर करना इसको सोचना ही मेरे को लगता है बेकार है,
0: और पर लेकिन भुगतना तो हम लोगों को पड़ता है सुपरबाल साहब, हम जैसे लोगों को जो कड़ी मेहनत से अपना घर बनाने की कोशिश करते हैं या मॉर्गेज लेने की कोशिश करते हैं, परेशानियां तो हमको झेलनी पड़ती हैं।
2: बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आम आदमी पिस जाता है, खास करके जो मिडिल क्लास फैमिली है उस पर सबसे ज्यादा असर होता है, मिडिल क्लास फैमिली ऐसी फंस जाती है कि वो मिडिल क्लास फैमिली ना ऊपर जाने जोगी, और वो ऐसा उनका लाइफ स्टाइल बन जाता है कि ना नीचे जाने जोगी, वो सबको पाल रही है, मैं तो कहता हूँ कि मिडिल क्लास फैमिली जो है ना वो ही इकोनॉमी को संभाल रही है, टैक्स भी वही दे रही है, हर चीज को वो यूज भी नहीं कर पा रही, हर चीज उनकी उम्मीदें वहीं की वहीं रह जाती है, जो लोअर क्लास है उनको चलो सरकार हेल्प कर रही है, मिडिल क्लास की कोई हेल्प भी नहीं हो रही, वो बल्कि मैं तो कहता हूँ रईसों के लिए वो हेल्प कर रहे हैं, उल्टा ही हो रहा है।
0: जी। सबरवाल साहब, मेरा दूसरा क्वेश्चन भी रिलेटेड ही था कि हाउसिंग स्टार्ट में एक जंप देखी गई है, मतलब कहने का मतलब न्यू होम्स के बिल्डअप बिल्डिंग में थोड़ा सा उछाल देखने को मिल रहा है, इसके आपके क्या विचार है?
2: बिल्कुल, आप अगर नंबर दे दें अपना, अगर हमारा यहाँ का अगर नंबर भी दे दें तो जरा अच्छा हो जाएगा, लोग अगर कॉल करना चाहे तो कर लेंगे।
0: डेफिनेटली, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। तो सबरवाल साहब जी हमारे साथ लाइव हैं और बने रहेंगे 4:50 से थोड़ा ऊपर तक, तो अगर आपका भी रियल एस्टेट से जुड़ा कोई भी सवाल है तो लाइन स्टूडियो की खुली हुई है, बस आपको फोन उठाना है और फटाफट नंबर घुमाना है, नंबर है 416-593-0055, जी। सबरवाल साहब
2: जी, हाउसिंग स्टार्ट के अंदर अभी सीएमएचसी की रिपोर्ट आई है, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, जंप बड़ा जबरदस्त हुआ है अप्रैल के महीने में, 17% हाउसिंग स्टार्ट के अंदर जंप हुआ है, मार्च में जो हाउसिंग स्टार्ट थे कनाडा में वो थे 239,000 समथिंग, और जो कि अप्रैल में आके हो गए 279,000 समथिंग, तो ये 17% जंप जो है ये मंथली गेन है, और ये एकदम से इसने रिबाउंड सा किया है, कुछ इकोनॉमिस्ट ये भी कह रहे हैं कि इसको आप कम बैक मत मानिए, हालांकि खबर खुशी की है 17% का जंप, लेकिन इसको कुछ इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि इसको कमबैक मत मानिए, क्योंकि कई महीनों के डाउनफॉल के बाद अगर एक महीने में जंप आता है तो वो मापदंड नहीं है, वो रियल जो है वो एक मेजरमेंट नहीं है. तो इसीलिए अगर ये लगातार कुछ महीने होता तो हम सोच सकते हैं कि हाउसिंग स्टार्ट के अंदर उछाल आ गया, लेकिन कई महीनों के नीचे जाने के बाद अगर ये रिबाउंड करता है एक महीना, तो इट शुड नॉट बी टेकन एज ए कम बैक. तो अब देखो क्या होता है, क्योंकि कई महीने लगातार कंजेक्टिव स्पिलेज हुआ है इसके अंदर, और ये ट्रेंड बड़ा नीचे उतर गया, और ये भी माना जा रहा है कि 2031 तक आते आते बड़ी जबरदस्त शॉर्टेज होने वाली है हाउसिंग की, क्योंकि घर बन ही नहीं रहे. Exactly. और आगे जब डिमांड उठेगी तो क्या होगा, या तो यही पॉलिसी सरकार की चलती रहे कि जी चलो इमिग्रेंट्स नहीं आ रहे या कम आ रहे हैं, या उसके अंदर उन्होंने एक फिक्स कर दिया कोटा, तो वो अलग बात है, अदरवाइज आबादी तो बढ़ी रही है और वो घर कहाँ से आएंगे, पुराने घर की सेल परचेज से काम नहीं चला करता, आबादी के हिसाब से भी घर बढ़ने चाहिए ना जी. तो ये जो है ये माना जा रहा था, CMSC भी कह रही थी, पर बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट भी कह रहे हैं कि 2031 तक बड़ी जबरदस्त एक शॉर्टेज होने वाली है घरों की. तो लेकिन ये वाली जो खबर आई है 70% जंप, ये एक पॉजिटिव है. साथ साथ जैसे मैंने अभी कहा, कुछ महीने के डाउनफॉल के बाद अगर एक महीने का जंप आया, लेट्स सी अनदर फ्यू मंथ्स, तब जाके फाइनल पता चलेगा कि हाँ अब जो है ये हाउसिंग में कुछ दम आया कि नहीं आया. जी
0: मेरा भी एक क्वेश्चन था इसी से जुड़ा हुआ है पीके साहब, कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 2026 में जो प्री कंस्ट्रक्शन लॉन्च नहीं हुए उसकी वजह से 2028-29 में सप्लाई बहुत ही कम हो जाएगी, क्या ये सच है, और अगर हाँ तो क्या अभी खरीदना समझदारी है या फ्यूचर सप्लाई की क्रंच आने से पहले, आपके क्या विचार है?
2: देखो जी, ये तो बिल्कुल ही ठीक बात है आपने जो कही कि जो बनने चाहिए थे 2025 में 24 में जो घर बनने चाहिए थे नहीं बने, और उसकी शॉर्टेज तो आगे नजर आएगी 3-4 साल बाद, आए नहीं आने को रोक ही नहीं सकता. अब डेवलपर भी क्या करे, उनकी पुरानी इन्वेंटरी तो बिकी नहीं रही, तो नए कहां से बना लेंगे. अभी मेरी एक डेवलपर से बात चल रही थी, अभी मैं उनके साथ मिला था, मेरी उनके साथ सिरे ब्रेकफास्ट मीटिंग थी उनके साथ, तो मैंने कहा कि तुम्हारा वो प्रोजेक्ट जो आना था, मैं नाम जगह का नहीं लूंगा क्योंकि फिर उससे पता चल जाएगा मैं किससे बात कर रहा हूँ, तो जो लोग जानते हैं रियल एस्टेट उनको समझ आ जाएगी मैं किस बिल्डर की बात कर रहा हूँ, तो मैं उसकी जमीन की बात नहीं कर रहा. तो मैंने कहा कि आपने जमीन को 35-40 million dollars लगा रखा है कई सालों से, और आपने प्रोजेक्ट लॉन्च करना था 2 साल पहले, तो कहता पीके मेरी एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री तो पहले बेच दो, वो जमीन पड़ी है मेरा क्या ले रही है, जमीन के ऊपर जो मुझे लॉस हो रहा है, जो जमीन के ऊपर जो मेरी कीमतें जो इंटरेस्ट लग रहा है मेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, उसको तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन जब मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा अराउंड $1 billion का जो प्रोजेक्ट आएगा मेरा, उसका लॉस बर्दाश्त नहीं मैं कर पाऊंगा.
0: ठीक है साहब, अगर इजाजत दे तो मैं यहाँ पे आपको 2 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा, क्योंकि 2 कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो बिना वक्त गवाए सीधे उनके पास चलते हैं. हेलो, आप रेडियो वॉइस पे लाइव है, अपना क्वेश्चन पीके साहब से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, प्लीज गो अहेड.
3: हाँ जी पीके जी, कैसे हैं? ठीक है आप?
2: ठीक बात, ठीक है जी. आप सुनाइए, आवाज गूंज रही है, इसका मतलब नूर साहब.
3: कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत देर बाद बात.
2: नूर साहब आपका फोन आया.
3: बस यार ऐसे ही है, क्या करें, जिंदगी ऐसी चल रही.
2: हुक्म करिए.
3: हाँ जी, आप मुझे बताएं कि क्या अभी ये कोंडो मार्केट कुछ मूव करेगी नहीं करेगी, या अभी बस रेंट पे देके बैठे रहे?
2: जी जी, बात ये रेंट भी लेके कैसे बैठे रहे, अगर रेंट पे अभी भी लेके बैठना है तो रेंट पे ही लेके बैठे रहोगे. अगर आज नहीं खरीदा, अभी आप ही खुद ही कह रहे हैं नूर साहब की ये आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी. यस बढ़ेगी, घटने का तो बात ही खत्म हो गई.
3: मेरा कहने का मतलब है कि और कंडो लेना चाहिए या जो है उसी को लेके बैठे रहे.
2: भाई बात ये है, सिंपल सी बात है कि आपका पार्किंग कहाँ अलाउ करता है. मैं मेरे पास उस दिन एक सज्जन आए थे, बड़े नाइस बंदे, बड़े उनको मिलके मेरे को बहुत खुशी हुई. 2-3 दिन पहले आए, वो अपना डाउन साइज करना चाहते थे, बड़े घर से छोटे घर में जाना चाहते थे क्योंकि वो सीनियर एज होगी उनकी रिटायरमेंट की. तो मैंने उनको कहा कि अगर आपने डाउन साइज करना तो ये टाइम नहीं है, क्योंकि आप बहुत बड़ा घर बेचोगे. आज 30% कीमत गिरी पड़ी है, तो अगर मान लीजिए 2 मिलियन का घर है उसमें आप 30% कम हो गया तो 1.4 मिलियन का रह गया. और अगर आप छोटे घर में जाओगे, मान लीजिए छोटे घर 1 मिलियन का 30% डाउन हुआ तो 7 लाख का रह गया, तो वहां पर 3 लाख का फायदा हुआ, यहाँ पर 6 लाख का घाटा हो गया. तो अगर आप डाउन साइज कर रहे हैं दिस इज नॉट द टाइम, होल्ड करिए. लेकिन अगर आप अपग्रेड कर रहे हैं, अपसाइज कर रहे हैं, तो इससे ऐसा मौका नहीं आ सकता. नूर साहब जैसे आपने कहा, अगर आप कांडो में लेके बैठे रहे कह रहे हो और आप घर में आ रहे हो, आज घरों की कीमतें ज्यादा गिरी हुई है कांडो से। कांडो अपार्टमेंट जो है वो उससे ज्यादा लो राइज, हाई राइज से ज्यादा लो राइज गिरा हुआ है इस वक्त, और वो इस वक्त आपका मूव अप साइज करना ये नूर साहब बेस्ट टाइम है। आप भी रेडियो वॉइस में आते हैं, मुझे लगता है आपको आते हुए भी शायद 5-6 साल हो गए, तो ये क्वेश्चन आपका हमेशा रहता है, आपको याद होगा मैंने आपको 2020 और 21 में मैंने आपको ये कहा था कि ये टाइम नहीं है लेने का। आपने मेरे पुराने रिकॉर्ड सुन लो, पुरानी रिकॉर्डिंग सारी सुन लो रेडियो वॉइस की, मैंने कहा था 2021-22 में ये टाइम लेने का नहीं है, मार्केट के अंदर झटका लगेगा, अगर आप होल्ड कर सकते हो तो ले लो, नहीं तो मत लो। आज वही पीके सबरवाल कह रहा है ये टाइम है लेने का, अगर अब नहीं लिया तो कभी नहीं लिया।
3: नहीं, एक्सचेंज 2 की क्या पोजीशन है उसमें?
2: एक्सचेंज 2 की क्या पोजीशन है, उसके अंदर ऑक्युपेंसी मिलनी शुरू हो गई है, एक्सचेंज 2 के अंदर ऑक्युपेंसी मिलनी शुरू हो गई है, और उसकी क्लोजिंग जो है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर आएगी। ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट है वो, और इसको जो मार्केट गिरी हुई है वो इतनी ज्यादा गिरी हुई है हर जगह, पर उस हिसाब से एक्सचेंज 2 के अंदर ना के बराबर गिरी हुई है। 30% कीमतें गिर गई, लेकिन एक्सचेंज के अंदर 50,000, 60,000, 70,000 ऑन एन एवरेज, यही चीज बता देती है कि एक्सचेंज कितना सॉलिड प्रोजेक्ट है इस वक्त। खुश कोई भी नहीं है नूर साहब, ये बता दूं मैं आपको, खुश कोई भी नहीं है। जिसको $1 का नुकसान है वो भी बड़ा दुखी है, जिसको 1 लाख का नुकसान है वो उसको वो भी बड़ा दुखी है।
3: मैं बहुत खुश हूँ।
2: आप बड़े खुश हैं एक्सचेंज से?
3: नहीं, मैं हर चीज से खुश हूँ।
2: बस ठीक है, थैंक यू।
3: सब गुजर जाएगा, सब गुजर जाएगा,
2: सब निकल जाएगा। थैंक यू वेरी मच जी। जी अपना अमिताभ जी,
0: नूर साहब कॉल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीधे चलते हैं दूसरे कॉलर की ओर जो काफी देर से हमारा वेट कर रहे हैं। हेलो, आप रेडियो वॉइस पर लाइव हैं, पीके सबरवाल जी से अपना क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं, प्लीज गो अहेड।
4: जी हेलो पीके साहब, आई एम श्योर आई एम ऑनलाइन ऑनलाइन। तो आपने ये कहा
2: आपका नाम क्या है सर? सॉरी, आपका नाम बताइए।
4: मुजफ्फर मेरा नाम है सर।
2: जी मुजफ्फर साहब, जी जी जी,
4: आपने बड़ी अच्छी बात की कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, तो मार्केट वाकई बड़ी ऐसी है और आपकी बातें सुन के और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब जरा थोड़ा सा ये भी बता दें कि अगर अब हमने इन्वेस्टमेंट करनी हो अराउंड $1 million तक का कोई रेजिडेंशियल लेना हो, तो व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर नाउ? प्री कंस्ट्रक्शन कोई जिसको 2028-29 में हमें मिल जाए, घर में लें या कॉन्डो में लें, अगर टाउन हाउस हो या 5-7 साल पुराना घर हो, थोड़ी इसमें गाइडेंस दें कि आज अगर लेके 2031 को आपने जैसा बताया 30 में जाके एकदम उछाल आएगा, तो इस गेन को लेने के लिए हजूर क्या किया जाए?
2: एक बार बताइएगा मुजफ्फर साहब, ये आप जो लेना चाहते हैं ये अपना प्राइमरी घर को लेना चाहते हैं या प्राइमरी घर को अपग्रेड करना चाहते हैं या डाउनसाइज करना चाहते हैं या प्योर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं?
4: इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से सर, बच्चे के नाम
2: इन्वेस्टमेंट के पर्पज के हिसाब से मैं आज 1 million के ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं छोटे में जाऊंगा, क्योंकि छोटे के अंदर डिमांड छोटा जो है इन्वेस्टमेंट वो वॉलमार्ट है, वहां भीड़ लगी हुई है। आप लॉबना जाओगे तो भीड़ कम है, प्राइस ज्यादा है। कई चीजें आप देखोगे वॉलमार्ट में और लॉबना में सेम है, पर प्राइस का फर्क है, सिर्फ बड़े का नाम है, ठीक है? तो मैं चाहूंगा कि पहली बात मुजफ्फर साहब, अगर ये प्योर इन्वेस्टमेंट है तो 1 million इज टू मच, छोटे 2 ले लेने ज्यादा बेटर है, 5-5 लाख के बजाय 1 million का, क्योंकि ये डिमांड कभी खत्म होने वाली नहीं है। एक आदमी जो अफोर्डेबल नहीं कर पा रहा कोई चीज लेना, एक फैमिली जो अफोर्ड नहीं कर पा रही, तो वो अफोर्ड नहीं कर पा रही का मतलब है कि वो पहले छोटे घर में जाएगी, और आज टाउन होम लो राइज वो भी 5-5, 5.5 लाख के बड़े शानदार मिल रहे हैं, अपार्टमेंट तो आज 4-4 लाख के भी मिल रहे हैं हाई राइज। तो मेरा मानना ये है मुजफ्फर साहब कि मैं नंबर देता हूँ, एक मुलाकात कर लीजिए, एंड देर इज नो ऑब्लिगेशन, नो चार्जेज, नथिंग, बैठ के मैं आपको सारा एक चेकलिस्ट बना के दे दूंगा, और आप घर जाके आराम से सोचिए, आपको दोबारा हम कॉल बैक नहीं किया करते, क्योंकि अगर हम कॉल करते हैं तो लोग सोचते हैं ये रियल्टर हमारे पीछे पड़ गया। हमारे ऑफिस की पॉलिसी है कि मीटिंग होने के बाद वी नेवर कॉल बैक। आपको अगर दोबारा कोई चीज पूछनी है हमें कॉल कर लीजिए, और या अगर आपके कोई जानने वाले हैं जिनके थ्रू काम करना चाहते हैं, वी विश यू गुड लक। लेकिन जब आप हमें कॉल कर दोबारा करेंगे कि हाँ पीके जी आप वहाँ आए थे और हम अब नेक्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं, सिर माथे पे आप हमें दोबारा मिलिए, हम बिल्कुल आपसे बैठेंगे, बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, प्लान करेंगे। तो मेरा मतलब कहने का यह है मुजफ्फर जी कि इसके ऊपर 1 घंटा लगाइए, क्योंकि 1 million खर्च करने के लिए 1 घंटा तो मिनिमम चाहिए, फोन पे नहीं होगा। आपको मैं नंबर दे देता हूँ, मुलाकात करिए, फिर आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपको जो चीजें मैं रेडियो में अभी नहीं बता पा रहा वो भी जब बताऊंगा तो आप दंग रह जाएंगे कि अरे ऐसे भी हो सकता है क्या। मेरा नंबर है 647-299-4757, 647-299-4757, और अपना नाम जरूर लिख दीजिएगा और बोलिएगा रेडियो में आपने मेरे से बात की थी, तो मैं बिल्कुल मुजफ्फर साहब पहचान जाऊंगा, क्योंकि हमारी कोई रिश्तेदारी मुजफ्फरपुर में रहती है तो मुझे मुजफ्फर कभी नहीं भूलेगा।
4: नहीं सर, आप तो जिस तरह इन्फॉर्मेशन बांटते हैं यकीन करें, वी वॉन्ट टू रिस्पेक्ट यू द वे यू आर टेलिंग और गाइडलाइन देते हैं, कोई भी नहीं देता सर। वी रियली अप्रिशिएट योर टाइम टू द
2: आप लोगों का दिया हुआ है सब कुछ, जो कुछ मैं हूँ आज आप लोगों की वजह से हूँ, ये सब आपका दिया हुआ है और ये मैं एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। जितना मुझे आप जैसे भाइयों ने मुझे इज्जत दी और मुझे एक तरक्की दी, मैं जितना भी करूं उतना कम है, मैं जितना भी करूं उतना कम है, नहीं तो मुझे 73 एज में मुझे क्या जरूरत है काम करने की। मेरा पैशन है ये कि अगर मैं कुछ वापस कर सकूं तो मैं कर दूं। जी
4: थैंक यू वेरी मच फॉर योर,
2: थैंक यू
0: मुजफ्फर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। और बहनों और भाइयों, आपने सुना पीके जी का प्रो टिप, ये है कि अगर आप $1 million तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक प्रॉपर्टी में ना डालें, 500,000 के दो प्रॉपर्टीज में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो उस पर रिटर्न आपका बेहतर होगा, ऐसा पीके सबरवाल जी की एक्सपर्ट एडवाइस है। और यहां चलते चलते मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे पास अब कुछ मिनट बाकी हैं, तो अगर आप भी कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो लाइन अभी भी खुली हुई है और स्टूडियो का नंबर है 416-593-0055।
2: जी मैं एक बार बताना चाहता हूँ, सुबह के किसी शो में एक सज्जन ने मेरे को मैसेज डाला था, उनका नाम राजन था, तो मैंने उनको जवाब दे दिया था, लेकिन हो सकता है गलत फहमी कईयों में और में भी हो। हमने आपको याद होगा लास्ट शो में मैंने कहा था टोरंटो कॉन्डो सेल्स जम्प्ड
0: जी
2: एंड प्राइजेस कंटिन्यू टू प्लंच, आपको याद होगा जो मैंने
0: जी, जी, जी।
2: तो उन्होंने मुझे ये कहा, अब सर मैसेज डाला कि पिछले हफ्ते तो आपने कुछ और फिगर दी थी, इस हफ्ते आप कुछ और फिगर दे रहे हैं। okay. मैं बता दूं कि जरा ध्यान से सुनिए, बड़ा फर्क है। पिछले हफ्ते मैं बता रहा था टोरंटो कॉन्डो सेल्स की बात हो रही थी और आज मैं बात कर रहा हूँ हाउसिंग स्टार्ट की बात कर रहा हूँ।
0: yes.
2: नए घर कितने बनने शुरू हुए उसकी बात हो रही है। पिछले हफ्ते हमारी सेल की बात हो रही थी जी, और उसके अंदर प्राइस की बात भी हुई थी, जब मैंने कहा था प्राइस वर अप 2.4% मंथ ओवर मंथ और बट डाउन 6.3% ईयर ओवर ईयर। आज मैं बात कर रहा हूँ और हाउसिंग स्टार्ट की बात कर रहा हूँ, तो प्लीज जो है ये आपने पूछा राजन जी, मैंने सर बता दिया था वैसे तो, बड़ा अच्छा किया, क्लैरिटी हो गई, ये तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि अलग अलग डाटा अलग अलग तरीके से बताए जाते हैं।
0: exactly.
2: तो मिक्सअप ना हो। जी जी जी, जी.
0: सबरवाल साहब एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। हेलो, आप पीके सबरवाल जी से अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लीज गो अहेड।
5: हेलो नमस्ते जी, सबरवाल जी
2: नमस्कार जी,
5: थैंक यू वेरी मच। जो आप
2: तो हमारे राजपूत साहब हैं, शायद राजपूत जी हैं। जी राजपूत जी,
5: आप जो बता रहे हैं ना कि आप 73 के में भी आप में इतना पेशेंस हो, और मुझे तो आपसे बहुत अच्छी तरीके से मेरा एक्सपीरियंस हुआ है। आज भी अभी मैंने 2 वीक पहले सबरवाल टीम को मैंने एक कॉन्डो रेंट पे देने के लिए अभी दिया था, उन्होंने दिन रात एक करके काम करके न कभी वीकेंड देखा न कभी लॉन्ग वीकेंड देखा उन्होंने, और इस पेशेंस से काम किया कि वो आज रेंट पे चढ़ गए। वो तो ये इनकी खासियत है।
2: थैंक यू राजपूत जी, देखो इनको बता दो, जो लोग कहते हैं हमारा रेंट पे नहीं चढ़ता, और ये भी तब रेंट पे चढ़ा है जब हमने बहुत जबरदस्त स्क्रूटनी की है। हम आम आदमी को रेंट में सिंगल की हमारा सिस्टम होता है, जिसमें कि जब तक हमारी ये तसल्ली नहीं हो जाती कि इसकी फैमिली इनकम कितनी है, इनकी बैक हिस्ट्री क्या है, इनका फैमिली स्ट्रक्चर क्या है, इनका जो क्रेडिट स्कोर क्या है, इनकी इनकम क्या है, जब तक हमारी तसल्ली नहीं होती हम नहीं देते। इतनी स्क्रूटनी के बाद भी आपका विद इन 10-12 डेज किराए पे चढ़ गया, और सबसे बड़ी बात यह है आप मेरे लिए मिठाई लेकर आए थे, मुझे याद है, और वो मिठाई लाए थे राजधानी स्वीट की। देखो मुझे याद है आप मिठाई लाए थे, राजधानी स्वीट की भी ऐड हो गई यहाँ पर, तो कहिए हम बजाय हम आपको मिठाई खिलाएं, आप हमारे लिए मिठाई लेके आए थे राजपूत जी अपनी वाइफ के साथ।
5: मेरे लिए आप बड़े भाई है। देखो अगर मैं आपसे लूं या मैं आपको दूं, मेरे लिए सेम ही है और आपके लिए भी मैं सेम ही हूँ, ये मैं आपको ओपनली रेडियो पे बोलता हूँ।
2: देखो बात तो ये है ना कि ये इज्जत मान जो है ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है किसी को फर्क नहीं पड़ता, आप मिठाई लाए ये बहुत बड़ी इज्जत की बात है, अदरवाइज कौन सोचता है इस बात को, राइट? और मुझे वो याद भी है जो अब लाए, और मजेदार बात यह है कि मेरे को मीठा खाना मना है भाई, मेरे को वाइफ के सामने मैं नहीं खाता, इसलिए मैंने ऑफिस में निकाल के फटाफट एक चीज खा लिया, मैं कहा घर जाके तो मिलेगा नहीं जी जी, थैंक यू वेरी मच राजपूत जी जी।
0: राजपूत साहब, आपका कॉल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबरवाल साहब, वक्त, मन तो नहीं चाहता कि आपके साथ बातचीत बंद करी जाए, लेकिन वक्त का तकाजा भी ये है कि आज का ये सेशन हमें यहीं पे क्लोज करना पड़ेगा। पर चलते चलते आपके कुछ प्रो टिप होगी या कुछ गोल्डन वर्ड जो आप बताना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को?
2: जी जी जी, थैंक यू वेरी मच अमिताभ जी। ये जो मैं ये फिर भी ये बार बार कहता हूँ कि आप अगर कंफ्यूज है या आपको कोई जवाब नहीं मिल रहा, खाली घर बैठ के कोई आंसर नहीं मिलने वाला, आपको एक मिनट के लिए फोन उठा के टेक्स्ट मैसेज डालना पड़ेगा और मिलना पड़ेगा। कभी कभी इंसान कंफ्यूज होता है और उसके पास ये रास्ता समझ नहीं आता। मेरे को कई बच्चे मिलते हैं, मतलब 40-45 साल के मेरे लिए तो बच्चे ही हैं, कि मेरे बच्चे इसी उम्र के हैं, इससे बड़ी उम्र के हैं बल्कि, तो मैं उनको कहता हूँ, वो मुझे बल्कि कहते हैं कि इंडिया में, पाकिस्तान में हमारे पेरेंट्स हमें पुश करते थे, यहाँ पर आप अंकल हमें पुश करते हो। पुश करने वाली बात ये है कि आपको, आपके पीछे कोई इंसान खड़ा होना चाहिए, वो जो है बहुत जरूरी है। और मैं यहाँ बैठा हूँ आपको एक सही रास्ता दिखाने के लिए, और आप मुझे बिल्कुल बिना किसी सोचे बिना झिझक के टेक्स्ट मैसेज डालिए, अपना नाम लिखिए और मुझे मिलिए, और मिलने के बाद आप देखिए कि कैसे इस चीज का मैं हल निकालता हूँ या आपको ऑप्शंस देता हूँ, फिर घर जाके आराम से सोचिए। जाते जाते मैं एक बात छोटी सी कहना चाहूंगा, उससे पहले मैं इंस्टाग्राम की बात बता दूं, पी के सबरवाल ऑफिशियल इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करिए, आप देखेंगे उसमें कुछ बहुत कुछ मिलेगा। अभी मेरी लिंटारा डेवलपमेंट के चेयरमैन मार्क मेडलबम, उनसे मेरी एक इंटरव्यू हुई थी 10-12 मिनट की, और ब्रॉडकास्ट में वो भी इंस्टाग्राम में छोटे छोटे टुकड़ों में आ रहा है, आप देखिए, आपको शायद वहां पर भी बहुत कुछ समझने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो पीके सबरवाल ऑफिशियल, एक पते की बात जो गोल्डन वर्ड जो आपने कही वो मैं जाते आते जरूर कहूंगा, जिसको मैं मानता हूँ, ट्रीट योर रिलेशंस एंड मनी विद इक्वल रिस्पेक्ट। जैसे भी राजपूत जी ने कहा, ये रिस्पेक्ट जो मिठाई में दिल लाए थे, ट्रीट योर रिलेशंस एंड मनी विद इक्वल रिस्पेक्ट, बिकॉज बोथ आर हार्ड टू मेक एंड ईजी टू लूज। उनको कमाना बहुत मुश्किल है, रिश्ता और पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, और उसको गंवाना एक मिनट का काम है।
0: बिल्कुल, बहुत सही शब्द, बहुत ही सही वर्ड्स टू लिव बाय सबरवाल साहब,
2: थैंक यू वेरी मच।
0: ओके जी, तो दोस्तों ये था आज का इनसाइटफुल सेशन पी के सबरवाल जी के साथ, रियल एस्टेट के हर सवाल का सीधा और प्रैक्टिकल जवाब। तो धन्यवाद सबरवाल जी फॉर योर एक्सपर्ट एनालिसिस एंड इजी टू अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशंस ऑन द करंट मार्केट सिचुएशन। आपके साथ फिर से मुलाकात होगी अगले वेंसडे उसी टाइम, यानी 4:25 तक। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम चलते हैं वापस।
6: हाँ जी मित्र भाइयों, ये वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। आइए सीधे चलते हैं रॉजर्स एम्प्लॉई वकार खान जी के पास। रॉजर्स की बेहतरीन डील्स के लिए एक बार वकार जी से बात और मुलाकात जरूर करें। नंबर टू डायल इज 6478648000। आइए सीधे चलते हैं वकार जी के पास। वकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो वॉइस में। प्लीज हमारे श्रोताओं को आज किस प्रमोशंस के बारे में बताना चाहेंगे, प्लीज बताएं।
7: थैंक यू सो मच जतिन भाई, आपको, तमाम लिसनर्स को मेरी तरफ से नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। जतिन भाई, रॉजर्स की बहुत अच्छी ऑफर आई हुई है, बहुत सारी प्रमोशन है, बंडल ऑफर्स हैं, बहुत ही स्पेशल प्राइस के साथ है। इसमें टीवी है, बहुत सारे चैनल्स हैं, इंटरनेट है 2000 की स्पीड का सुपर फास्ट, फोन में अमेरिका कनाडा सारा फ्री है, 9:30 मिनट हर महीने इंडिया पाकिस्तान इंग्लैंड के, आप बैक होम कॉल करें, बहुत ही स्पेशल ऑफर है। अगर आपको सिर्फ इंटरनेट लेना है तो 500 की स्पीड का इंटरनेट है, 1500 और 2000 की स्पीड के एक्सफिनिटी इंटरनेट लेटेस्ट मॉडर्न अनलिमिटेड डाउनलोड के साथ बहुत चीप रेट पे दिला देंगे। रॉजर्स के सेल फोन्स के भी बहुत अच्छे प्लान्स हैं, अनलिमिटेड कैनेडा वाइड कॉलिंग है, अनलिमिटेड US कॉलिंग है, डेटा भी अनलिमिटेड है, और अगर आपको डिवाइस लेनी है तो आईफोन है, सैमसंग है बहुत अमेजिंग रेट पे, ये डिवाइस और प्लान इस वक्त अवेलेबल है, प्लीज़ कॉल कीजिए। इस वक्त बहुत अच्छी ऑफर्स हैं, बहुत सारे प्रमोशंस और डिस्काउंट्स हैं, स्पेशली इंटरनेट की बहुत ही चीप प्राइस पे ऑफर है, ज़रूर एक बार कॉल करें। नंबर है मेरा 6478648000, 6478648000। मैं रॉजर्स कॉर्पोरेट एम्प्लॉई हूँ, 18 साल से रॉजर्स के साथ हूँ, मुझे रॉजर्स के सिस्टम में एक्सेस है, आपके एड्रेस और अकाउंट चेक करके बेस्ट ऑफर दूंगा। नंबर अगेन 6478648000, 6478648000।
6: वकार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहनर भाइयों जरूर कॉल करें, वकार जी से बात और मुलाकात करें रॉजर्स की बेस्ट डील्स के लिए 6478648000, 8648000। वकार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
7: थैंक यू जतिन भाई।
8: ये साला इधर टेलीफोन का घंटी बहुत बजता है, गलत चीज बनाए टेलीफोन, उधर से आदमी सोचता कुछ है, बोलता कुछ है और करता कुछ है, मालूम?
9: टेलीफोन की घंटी तो लगातार बजेगी जब आपकी एड चलेगी रेडियो वॉइस पर, तो आज ही कॉल करें अमिताभ 416-660-8545, that's 660-8545, रेडियो वॉइस आपकी अपनी चॉइस।

अच्छा, बचपन में ना अक्सर हमारी वो सो कॉल्ड फालतू डिमांड्स पर हम डांट वाट में सुनी लेते थे कि पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या। और आज इस नेशनल बी अ मिलियनेयर्स डे पर मुझे याद हो आई सुमित्रा नंदन पंत जी की एक कविता जो मैं बताने वाली हूँ जल्दी ही, बट कोइंसिडेंटली उनकी जन्म जयंती भी है। तो व्हाट ही रोट इज समथिंग लाइक दिस, मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फल फूल कर मैं मोटा सेठ बन जाऊंगा। पर बंजर धरती में एक ना अंकुर फूटा, बंधिया मिट्टी ने ना एक भी पैसा उगला, मैं हताश हो बाट जोता रहा, मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। वेल, पूरी पढ़ेंगे ना आप तो अच्छी तो लगेगी और ये भी जानेंगे कि कितनी ऑल टाइम रेलेवेंट पोयम है ये जो उन्होंने तब लिखी थी, वेयर द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि भाई जो भी बोओगे वही तो पाओगे, दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग एक्सेप्ट पैसा। सो ऑन दिस फिलोसॉफिकली पोएटिक नोट, दिस इज स्वाति एंड हैंसल ऑन फिल्म यूनिवर्स, हमारा एडवाइस सेइंग कि भाई पैसा तो ना ख्याली पुलाव से मिलता है और ना ही पेड़ों पे उगता है। हाँ, वो बात अलग है अगर लॉटरी वॉटरी लग जाए, पर उसके भरोसे रहना वो भी गलत है।

0: Genesis Markham. यहाँ मिले लग्जरी का फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस विद अ स्टेट ऑफ द आर्ट डीलरशिप और आपकी अपनी लैंग्वेज में एक्सपर्ट सर्विस. लीज करें ब्यूटिफुली डिजाइन 2026 G70 सिर्फ 1.9% से, या लीज करें 2026 GV70 सिर्फ 4.9% से. आज ही बुक करें टेस्ट ड्राइव. विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम. Genesis Markham, doing luxury your way. A proud member of Wayne's Auto Group.
1: इस बायर्स मार्केट में घर का प्राइस बहुत कम मिल रहा है और रियल्टर्स कमीशन भारी पड़ रहा है, क्या करूं?
2: स्मार्ट सेलिंग प्राइस बेशक मार्केट डिसाइड करती है, लेकिन माय रियल्टर के सेलर एडवांटेज प्रोग्राम से आप खुद डिसाइड करते हैं सर्विस पैकेज और कमीशन भी.
1: यानी फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल दोनों मेरे हाथ में.
2: बिल्कुल. लिस्टिंग कमीशन स्टार्ट्स फ्रॉम 0.99%. मैं हूँ संजीव मनोचा, ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड माय रियल्टर. कॉल मी फॉर अ फ्री मार्केट इवैल्यूएशन एट 416-843-7600.
1: My property, my choice, my Realco, the real estate company. Or visit myrealco.com. Not intended to solicit buyers and sellers already under contract.
3: बायर्स मार्केट में अगर घर बेचना आपको एक मुश्किल काम लग रहा है एट अ डिजायर्ड प्राइस, तो माय रियल्टर के ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड संजीव मनोचा जी अब लाए हैं सेलर्स एडवांटेज प्रोग्राम, जिसमें लिस्टिंग कमीशन शुरू हो रहा है फ्रॉम जस्ट 0.99%, यानी हजारों डॉलर्स की बचत. बाकी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस तो उनका यू भी सॉलिड है, जिससे घर बेचना हो या खरीदना, एक्सपीरियंस आपका बस हैप्पी वाला होगा. विद लिस्टिंग कमीशन स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 0.99%. उन्हें कॉल करें एट 416-843-7600 और सेलर्स एडवांटेज प्रोग्राम के बारे में डिटेल्स पता कर लें. घर अगर खरीदना है तो भी उनके पास बायर्स रिवॉर्ड्स प्रोग्राम है, जहां अप टू 40% ऑफ हिज कमीशन आपको मिल सकता है एज कैशबैक, अगेन सेविंग यू thousands of dollars. Free consultation hai. Call kare 416-843-7600. Sanjeev Manocha from My Real Co. 416-843-7600 or visit myrealco.com. Dika oosa, dika stara di da kukaru.

0: देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवर्टाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: बिजनेस में ग्रोथ रुक गई है, हो सकता है आपका बिजनेस नेम या वास्तु सही सपोर्ट ना कर रहा हो। पन्ना शाह के साथ पाइए बिजनेस नेम करेक्शन, शॉप एंड ऑफिस वास्तु और बिजनेस ग्रोथ न्यूमरोलॉजी। सही नाम और सही दिशा दोनों बनाते हैं बिजनेस को स्ट्रॉन्ग। आज ही व्हाट्सअप करें 4376733125, 4376733125 और पाइए 10 मिनट की फ्री कंसल्टेंसी।
2: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑल स्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 6474535353। दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं। सिमरन बेंस एंड ऑल स्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स। कॉल सिमरन बेंस एट 6474535353, 6474535353. And yes, even for one car and a home, $400 to $500 की annual savings possible. Call Simran Benz 6474535353.
3: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं for everything automotive. चाहे हो daily commute या weekend escape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group. हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care, Wayne's Auto Group is always there. आज ही विजिट करें waynesautogroup.com.
4: फायदा उठाए स्प्रिंग स्पेशल मॉर्गेज रेट्स एंड एक्स्ट्रा प्रमोशन का विद अमित खुराना। 5 ईयर्स फिक्स्ड 4.14%, 3 ईयर्स फिक्स्ड 4.19%, 5 ईयर्स वेरिएबल 3.55%, प्लस कैश बैक फ्रॉम बैंक एंड स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम अमित खुराना अप टू $1,500। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। कॉल अमित 6473412785, 6473412785 और विजिट amitkhurana.com।
0: Follow us on Instagram. It's RJ Swati _Toronto.

0: It's Toyota Red Tag Days at Markville Toyota. 2026 Prius Plug-in Hybrid. Ghar le jaane ka perfect time. Receive kare up to $7,500 off. Current Toyota owners ke liye up to 1% rate reduction. Toyota Tundra Finance kare as low as 3.99% for up to 36 months. Aapke trade ke liye hum dete hain top dollar. Visit Markville.com. Ya jaye 5362 Highway 7, Markham Bay. Markville Toyota, Wayne's Auto Group ka proud member.
1: Alright, इस वक्त आप हैं फिल्मी नुक्कड़ CMR 101.3 FM पर स्वाति और हैरी के साथ, और हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी जुड़ी है इस वक्त जिसकी आवाज हमें तभी सुनाई देती है जब कुछ खास आपके लिए लेके आती है। तो क्या खास है उसको जानने के लिए मैं तो बहुत उत्सुक हूँ। वेलकम करते हैं निकी गांधी का ऑन फिल्मी नुक्कड़। निकी, वेलकम।
2: हाँ जी स्वाति, थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग मी ऑन एयर, एंड सभी लिसनर्स को मेरी तरफ से वेरी गुड इवनिंग। स्वाति, आपने बिल्कुल सही कहा, जब कुछ एक्साइटिंग प्रोजेक्ट आता है तभी हम प्रमोट करते हैं उसको, जिसमें हमें खुद ही कॉन्फिडेंस होना कि अच्छा ये बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, ये हमारे क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला है, तभी हम उस प्रोजेक्ट को प्रमोट करते हैं। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रैम्पटन के एक बहुत ही एक्साइटिंग प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के बारे में, रोलिंग वुड्स टाउन। सी, आजकल के मार्केट में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि बिल्डर जो है वो अमेजिंग इंसेंटिव दे, राइट? और रोलिंग वुड टाउन जो है वो बेसिकली क्लाइंट्स के लिए बहुत ही बढ़िया अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है, जिसकी प्राइसिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है सिर्फ और सिर्फ 600 से, और विद दी अर्ली 2028 के क्लोजिंग में है, जो बायर को एक्सटेंडेड डिपॉजिट स्ट्रक्चर और प्लानिंग की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और हम ये 600 की बात करते हैं ब्रैम्पटन में, गाइज बहुत ही बढ़िया लोकेशन है, मेविस एंड रेलोसन बुलेवर्ड के प्राइम लोकेशन पर है। बेसिकली ब्रैम्पटन एंड मिसागा की बॉर्डर जो है बिल्कुल उसके नजदीक है। हम लोग रियल एस्टेट में बोलते हैं, राइट, कि

0: लोकेशन लोकेशन लोकेशन. एक्चुअली ये लाइन जो है ना वो रोलिंग वुड पे परफेक्टली फिट बैठता है. मेजर हाईवेज जैसे कि 401, 407, स्कूल, शॉपिंग, ट्रांजिट, आपकी डेली अम्यूनिटीज की जितनी भी चीजें बहुत ही नजदीक है वहां से. शेरिडन कॉलेज सिर्फ 3 मिनट की दूरी पर है. हार्टलैंड टाउन सेंटर, शॉपर्स वर्ल्ड, कॉस्को, वॉलमार्ट, ग्रोसरी स्टोर, सब कुछ बहुत ही कन्वीनियंटली लोकेटेड पर है. सो जो भी फैमिलीज लाइक फर्स्ट टाइम होम बायर्स है और जो खुद मूव होना चाहती है या फिर अगर कोई इन्वेस्टर है, दोनों के लिए ये बहुत ही स्ट्रांग लोकेशन है. और एक और खास बात बताऊं इस पॉकेट के बारे में, इस पॉकेट के 4 से 5 किलोमीटर के रेडियस में ना अब कितने टाइम से कोई भी नया प्रोजेक्ट नहीं आया. हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट देखे हैं ब्रैम्पटन में, बट वो आइदर काफी नॉर्थ होते हैं, काफी लाइक डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं, बट ये जो पॉकेट है वहां पे हमने कई टाइम से कोई भी प्री कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट नहीं देखा और हम नियर फ्यूचर में देख भी नहीं रहे. सो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है अगर आपको इस पॉकेट में रहना है, मेविस एंड रिलसन बुलेवर्ड के इंटरसेक्शन पे, और वो भी आपको अगर फ्री होल्ड टाउन हाउसेस चाहिए. गाइज इट्स अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी, डेफिनेटली यू डोंट वांट टू मिस इट. और हमारे पास यहाँ पे 1300 से 1900 स्क्वायर फीटेज तक के डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स अवेलेबल है, ब्यूटीफुली डिजाइन किए हुए हैं. सो अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो, अगर आप इन्वेस्टर हो, सबके लिए, या फिर अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ रहना चाहते हो, सबके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑप्शन अवेलेबल है गाइज. इसके साथ साथ इसमें इतने ज्यादा मॉडर्न लेआउट और स्मार्ट प्लानिंग के साथ बिल्डर ने डिजाइन किया है कि मतलब सबको कुछ ना कुछ अपनी चॉइस का मिल जाएगा. वी हैव 1300 to 1900 square feet तक के टाउन फ्लोर प्लान्स अवेलेबल है. इसके साथ साथ बिल्डर बहुत ही बढ़िया इंसेंटिव देने वाले इस प्रोजेक्ट में. और ये जो प्रोजेक्ट है हम बेसिकली लॉन्च कर रहे हैं June 1st को. सो पहली तारीख को हम प्राइजिंग और इंसेंटिव सारा कुछ रिलीज करेंगे. सो गाइस स्टे ट्यून्ड, यहाँ पे आप बने रहिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. बट अगर आप इस प्रोजेक्ट पे बाय करना चाहते हैं, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. और एक बात है खास, अब गवर्नमेंट ने जो अप टू 130,000 का जीएसटी एचएसटी का रिबेट अनाउंस किया है, जो कि आपको मिल सकता है अप टू 30,000 इन प्री कंस्ट्रक्शन. वो भी बेसिकली प्री कंस्ट्रक्शन अपॉर्चुनिटी को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है. और ये जो इंसेंटिव है ना सिर्फ फर्स्ट टाइम बायर के लिए बट इन्वेस्टर के लिए भी है. सो यू गाइज कैन गेट अप टू 130,000 का जीएसटी एचएसटी रिबेट भी पा सकते हो गाइज. मैं बस यही कहूंगी धीरे धीरे मार्केट जो है वो ओपन अप हो रही है, इंटरेस्ट रेट जो है वो भी स्टेबलाइज हो रहे हैं, बायर का कॉन्फिडेंस भी वापस आ रहा है. सो जो लोग वेट कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है. एंड हम लोग आई एम दी लिस्टिंग एजेंट विद द बिल्डर गाइज. सो अगर आप रियल्टर हो, अगर ब्रोकर हो, मेरे सभी रियल्टर भाइयों बहनों को अगर किसी को भी इसमें चाहिए, इंटरेस्ट है आपके पास क्लाइंट, फील फ्री टू कॉल मी एट 416-456-3815. हमारा जो ब्रोकर लॉन्च होने जा रहा है वो है ग्रैंड एम्पायर बैंक्वेट हॉल बिटवीन 12 to 2 PM फॉर द ब्रोकर्स. So guys, make sure to be there and sabhi clients ko if you need any pricing, floor plan, incentives, koi bhi information chahiye, feel free to call me right away at 416-456-3815. Again, it's 416-456-3815.
1: अच्छा निकी, क्विकली बिफोर यू गो एक बार और बताएं 12 से 2 के बीच में आपका जो इसके लिए इवेंट है वो कहाँ है और किस दिन है?
0: सो वो है सिर्फ ब्रोकर्स के लिए. सो सभी ब्रोकर्स को दे आर इनवाइटेड 12 to 2 ग्रैंड एम्पायर बैंक्वेट हॉल में.
1: ग्रैंड एम्पायर बैंक्वेट हॉल
0: ऑन June 1st 12 to 2. सो आप मुझे कॉल कर ले, आई विल गिव यू मोर डिटेल्स अबाउट दैट.
1: ओके, सो मैं एक बार क्विकली समराइज कर देती हूँ. निकी ने जो बताया है कि बहुत अच्छा ये प्रोजेक्ट है जिसका नाम है रोलिंग वुड टाउन्स, और ये फ्री होल्ड टाउन्स हैं जो आ रहे हैं ब्रैम्पटन मिसियागा का बॉर्डर कहलाता है वो. बड़ी अच्छी लोकेशन है, मेविस और रे लॉसन की लोकेशन है जो हमें पता है, बहुत ही प्राइम लोकेशन है. वहाँ पे ये टाउन्स आ रहे हैं फ्री होल्ड, और इनकी स्टार्टिंग प्राइस इस वक्त सिर्फ 600 से स्टार्टिंग प्राइस है. इंसेंटिव्स बिल्डर बहुत अच्छे दे रखे हैं, गवर्नमेंट ने पॉलिसीज जो निकाली हैं रिबेट्स वाली या फर्स्ट टाइम होम बायर्स की इन्वेस्टर्स के लिए, उनका फायदा भी आप इसके साथ उठा सकते हैं. 2028 अर्ली की क्लोजिंग बताई जा रही है. लॉन्च होंगे ये 1st June को जहाँ पे उन्होंने बताया है, लेकिन अगर आप पहले से इसमें कुछ इसके बारे में जानकारी चाहते हैं ताकि आपको लॉन्च पे सही इंसेंटिव्स के साथ सही प्राइसिंग में और अपनी पसंद का टाउन मिल सके टाइमली, तो आप एक बार कॉल जरूर करें निकी को एट 416-456-3815, 416-456-3815. निकी को कॉल करके एक बार इंफॉर्मेशन जरूर लें। समटाइम्स अपॉर्चुनिटीज जो आती हैं वो इतनी जल्दी आके जल्दी चली जाती हैं, फिर हम सोचते रह जाते हैं, तो ज्यादा सोचिएगा मत। इट्स ऑलवेज गुड टू हैव इन्फॉर्मेशन एंड देन डिसाइड। थैंक यू निकी, आपसे फिर कनेक्ट करेंगे और इस बारे में डिटेल में जानकारी फिर लेंगे।
0: थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू सो मच।

0: He's breaking through the midfield.
1: Don Valley North Hyundai aapko de raha hai mauka FIFA World Cup 2026 ke tickets jeetne ka. Koi bhi vehicle biker ke ghar le jaye aur paaye double entries. Winter tires ya extended warranty le aur har ek ke saath paaye ek extra entry. Aaj drive kare, kal jeete. Visit DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
2: Fresh Breeze New Release on CMR at 5 p.m.
3: Rightful Minukas, CMR 101.3 FM पर आप हैं स्वाति और हैरी के साथ एंड टाइम है एक फ्रेश ब्रीज की रिलीज का. तो इट्स अ नॉन फिल्म सॉन्ग जो मैं आपको सुनवाने वाली हूँ आज बाय अकुल. रूठे को मनाने की कोशिश करता सा गाना है, ये आपके काम आ सकता है अगर आपसे लोग रूठते बहुत हैं. मॉडर्न म्यूजिक वाइब है इसकी, अर्बन वाली बीट्स एंड रिदम ठीक ठाक से हैं, एक्सप्रेसिव और रेस्पी वोकल्स हैं अकुल के. ओवरऑल म्यूजिक टेक्सचर, लिरिक्स एंड वोकल्स इसको थोड़ा सोलफुल रोमांटिक भी बनाता है. जेंटल गिटार और इलेक्ट्रॉनिक सेंस जो है वो अच्छे से बैलेंस्ड है. ओवरऑल समथिंग ऐसा जो चल रहा है तो आप सुन लेंगे. कोरस हुक इसका कैची भी है. द ओनली थिंग इज जब मैं सुन रही थी ना तो मुझे लग रहा था कुछ नयापन नहीं है, वही सेफ सा इंडी पॉप टेम्पलेट है जो कि बहुत प्रेडिक्टेबल धुन के साथ होता है. वैसे पीसेस गुड फॉर लॉन्ग लेट नाइट ड्राइव्स, रील्स एंड ऑल जैसे बनाने में काम आ सकता है. नॉट सो ग्रेट लिरिक्स आर रिटन बाय दिव्येश मुंगरा एंड इजी ब्रीजी सा फैमिलियर सा कॉम्पोजिशन जो है वो नील नीरज का. दो दो लोग फिर भी ऐसा कॉम्पोजिशन कुछ बेहतर कर सकते थे, है ना. टाइटल है मेरी जान. गाना सुन रही थी ना तो मुझे लगा इजीली इस गाने को ट्रांजिशन किया जा सकता है इनटू दैट सॉन्ग जो किंग का है ना, बड़ा पॉपुलर सा गाना तू मानू मेरी जान, मुझे लगा था उसमें ट्रांजिशन कर सकते हैं. बोला ना कुछ नया नहीं है पर सुनेबल है. आप सुने बताएं कैसा लगा आपको. इट्स मेरी जान बाय अकुल, फ्रेश प्रीज न्यू रिलीज.

0: To advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. your prime drive time show, call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time.
1: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
2: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
1: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
3: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
4: हम होंगे आपके साथ हमेशा।
5: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, debt solutions specialist and insolvency counselor with Rheumanic.

0: Don Valley North Hyundai पे हो रही है जबरदस्त Hyundai Sunday की Ultimate Saving Sale on May 24th. Inventory पर huge bonus offers. Deals इतनी जबरदस्त की मिस नहीं कर सकते. Sunday, May 24th को अपने कैलेंडर में मार्क कर लो. Don Valley North Hyundai पर हमारी टीम बात करती है हिंदी, उर्दू, पंजाबी और तमिल में. विजिट करिए donvalleynorthhyundai.com. Woodbine Ave और Denison Street, Mark Cooper.
1: Doing business your way.
0: Member of Wayne's Auto Group.
2: काव्या होम्योकेयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है. काव्या होम्योकेयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर. 10 कोटराल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779.
3: All right, आप हैं फिल्मी नुक्कड़ CMR 101.3 FM पर विद स्वाति एंड हैरी, एंड ये टाइम है एक क्विक हेल्थ अपडेट का. ऐसी बातें जो हमारी जिंदगी में हमारी सेहत से जुड़ी तो होती हैं, पर हमें समझ नहीं आता कई बार कि इनकी ट्रीटमेंट के लिए किया क्या जाए, क्योंकि कई बार टेम्परेरीली तो हम उन्हें सॉल्व कर देते हैं कि कहते हैं ना, गोली कटकी और फिलहाल के लिए काम चल गया. पर कई बार ये भी समझ में आता है कि जड़ से उन परेशानियों को खत्म नहीं किया गया अगर, तो हेल्दी इंडिविजुअल तो हम नहीं कहलाएंगे, है ना. और उसके लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट सेफ होते हैं. एक अच्छा होम्योपैथ अगर साथ में है तो हमेशा के लिए ट्रीटमेंट हो जाता है, ये भी बड़ी बात है. और इसलिए काव्या होम्योकेयर का नंबर मैं आपको हमेशा देखती हूँ. मीता जी से आप मिलें अपना अपॉइंटमेंट बनाकर, और घर में छोटे बड़े जितने भी लोग हैं, जो भी छोटे बड़े हेल्थ इश्यूज आपके हैं, उनके पास जाएं. आप देखेंगे आपको एक परमानेंट सोल्यूशन उसके लिए ज़रूर मिलेगा, एंड यू कैन एक्चुअली स्टार्ट अ हेल्दी लाइफ. छोटी छोटी परेशानियों से भी आपको एक फ्रीडम मिल जाएगी. उनका नंबर रहता है 6477602775. और मीता जी से मिलने के बाद एक चीज़ आपको और पता चलेगी कि जो आप इतनी बातें उनके बारे में अच्छी अच्छी सुनते थे वो एक्चुअली सही है. आप खुद रेफरेंस बन जाओगे, जो मैं हमेशा बोलती हूँ. इतना लंबा अनुभव है, यूं ही बहुत सारे लोग इनसे ट्रीटमेंट नहीं कराते आए हैं. अगर आप भी ढूंढ रहे हैं एक अच्छा होम्योपैथ तो ज़रूर जाएं मीता जी के पास. आजकल तो इंश्योरेंस कंपनीज भी बहुत सारी कवर करती हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट. आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी से पता करें. अगर आने जाने में तकलीफ है किसी भी वजह से, उम्र की वजह से, टाइम की वजह से या कम्यूट की वजह से, तो भी आप एक बार फोन पे बात करके भी कंसल्टेशन ले सकते हैं. इनिशियली आप बात करें, आपको पता चलेगा, और दवाइयां भी आपके घर के दरवाजे तक पहुंच सकती हैं पूरे नॉर्थ अमेरिका में कहीं भी होम्योपैथिक मेडिकेशंस. पर बिफोर यू स्टार्ट टू से स्वाति बात तो कराओ, तो लेट मी गो टू मीता जी. मीता जी.

0: थैंक यू सो मच स्वाति जी. गुड इवनिंग एवरीवन, एंड सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो?
1: अच्छे हैं. और अमिता जी, एक चीज मैं देखती थी, एलर्जी सीजन भी है वैसे तो, पर एक एक चीज है हमारी बॉडी में, अक्सर सबको होती है, और उसको लोग, कुछ लोग संज्ञा दे देते हैं मंडे मॉर्निंग हैंगओवर का, कुछ लोग संज्ञा उसे दे देते हैं मॉर्निंग कम्यूट का, बोले तो हेडेक, साइनस हेडेक जो होता है. यहाँ पे ठंड की वजह से भी लोगों को बहुत देखा गया है, एलर्जीज की वजह से भी देखा गया है. एंड आई एम श्योर आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे इस परेशानी को लेके, जिसमें रीजंस कई और भी होते होंगे. तो होम्योपैथी में हाउ गुड इज द ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर साइनस हेडेक्स?
0: जी स्वाति जी, सो आजकल वेदर चेंज करके, एलर्जीज करके साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम और उसके साथ साइनस हेडेक काफी लोगों में ये चल रहा है. अब साइनसिस में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होगा तो उसके साथ जो सर दर्द होता है तो उसको हम साइनस हेडेक कहते हैं. अब जिनको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग आप देखोगे कि जुकाम या कोल्ड हुआ, फ्लू हुआ, एलर्जीज हुई, के रनी नोज, स्नीजिंग है, इससे शुरुआत होके फिर आगे जाके साइनसिस में प्रेशर बनने लगेगा, जिस करके आप देखोगे कि आंखों के ऊपर आईब्रोज एरिया में जो साइनसिस हैं, या चिक्स एरिया, आंखों के नीचे के एरिया में जहां पे साइनसिस हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगी. और ये इन्फ्लेमेशन करके आपको वहां पे पेन फील होगा. और जब मैक्सिलरी यानी कि आंखों के नीचे वाले साइनस में इन्फ्लेमेशन है ना, तो कई बार उस साइड पे चेहरे पे आप देखोगे स्वेलिंग आ गई है चिक्स एरिया में, और ये जो स्वेलिंग करके आपके दांतों तक, जो अपर टीथ है वहां तक ये पेन फील होती है. सो ये जो है, जिस साइड के साइनस में इन्फ्लेमेशन हुआ है, तो वो आपकी फेस की एक साइड में ये साइनस हेडेक आपको फील होगा. सो आंखों के ऊपर से लेके आंखों के नीचे का एरिया, कई बार ये दांत तक आपकी पेन जाती है. और जैसे ही आप आगे की ओर झुकते हैं या लाई डाउन करते हैं, तो उसके साथ ये पेन बढ़ जाएगा, प्रेशर सा फील होने लगता है अंदर से. एंड अफेक्टेड साइड में फेस पे भी स्वेलिंग दिखेगी, फटीक सा फील होना, एंड एकदम से ठंड लग के फीवर भी साथ में होता है. स्टफी नोज है या नेजल ब्लॉकेज की प्रॉब्लम ऑन एंड ऑफ चलती रहती है. पोस्ट नेजल ड्रिप, के आपके थ्रोट में म्यूकस ड्रिप होती रहती है, वाइट से वॉटरी से लेके क्लियर से लेके वाइट या येल्लो ग्रीनिश तक ये म्यूकस का कलर टर्न होता जाता है, जैसे इन्फेक्शन होती जाती है अंदर. और फिर जिनको साइनसिस की ये प्रॉब्लम आती है, तो उनको बर्निंग इनसाइड नेजल पैसेज, नाक के अंदर है, आंखों का पीछे का एरिया है, वहां पे प्रेशर या बर्निंग सी फील होती है. अब ये जो साइनस हेडेक है, ज्यादातर टाइम आप देखोगे कि जिस साइड के साइनस में इन्फ्लेमेशन है, वन साइडेड होगा. तभी काफी बार पेशेंट्स जो आते हैं, उनको ये कंफ्यूजन होता है कि मुझे सर दर्द की प्रॉब्लम है या फिर हेडेक की या माइग्रेन की प्रॉब्लम है. सो ये जो हेडेक है साइनस का, वो माइग्रेन से डिफरेंट है. हाँ, पेन उतनी सीवियर हो सकती है, लेकिन ये जो हमने टिपिकल इसकी लोकेशन देखी, तो वो इंडिकेट करेगा, साथ में जुखाम है या कोल्ड वाले सिम्टम्स हैं, तो ये इंडिकेट करते हैं कि आपको साइनस हेडेक है. अब ऐसे में कुछ लोगों को, जिनको एलर्जीज वगैरह की प्रॉब्लम है या इम्यूनिटी लो है कह लें, तो आप देखोगे कि ईयर्स हो गए हैं कि उनको गले में ये म्यूकस ड्रिप हो रहा है, जिसको हम पोस्ट नेजल ड्रिप कहते हैं. तो ये म्यूकस सालों से गले में ड्रिप हो रही है, और वो थोड़ा एक टाइम सही जाता है समर के एक दो मंथ्स, लेकिन उसके बाद ये वापस स्टार्ट हो रहा है. तो इन सारे कंसर्न के लिए वी कैन हेल्प, एंड बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है होम्योपैथी में. ये ट्रीटमेंट आप स्टार्ट करते हो, उसके साथ ही एक्यूट सिम्टम्स में कुछ ही दिनों में आराम आएगा. और जिनको बार बार लगातार एलर्जीज वगैरह हैं या रिपीटेडली फ्लू हो रहे हैं, खास करके छोटे बच्चों में जिनका इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा है, तो उनको भी ये ट्रीटमेंट मैं हाईली रेकमेंड करूंगी. क्योंकि जैसे ही म्यूकस ड्रिपिंग बढ़ जाती है, तो म्यूकस से भरी लाइनिंग हैंग डाउन करने लगेगी, आगे जाके वो नेजल पॉलिप डेवलप कर सकता है, छोटे बच्चों में एडेनोइड्स का एनलार्जमेंट, एंड वही म्यूकस इन्फेक्टेड आपके गले में ड्रिप होगी, सो टॉन्सिल्स एनलार्जमेंट या फिर थ्रोट इन्फेक्शंस. सो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहने के रिपीटेडली होते रहते हैं, तो इन सारे कंसर्न के लिए ये ट्रीटमेंट हेल्प करेगा, उसकी जड़ तक जाके उसको सही करेगा. फिर आप या आपके बच्चे जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है, रिपीटेड इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो ये चेन ब्रेक डाउन हो जाएगी. सो कोई भी डिजीज से सफर कर रहे हैं, इसके साथ हम लेके आए हैं मसाज थेरेपी. सो साइनस के जो प्रेशर पॉइंट्स हैं, साथ में मसाज दी जाती है, जिस करके आपको काफी रिलीफ राइट वे महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा. सो ये जो कॉम्बिनेशन है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का एंड मसाज थेरेपी का, तो इससे काफी लोगों को बेनिफिट हुआ है. फील फ्री टू कॉल अस किसी भी तरह की बीमारी के लिए. काव्या होम्यो केयर से आप मेरा कॉन्टेक्ट जरूर करें.
1: परफेक्ट. 6477602775 नंबर है बात. यहाँ आज बेशक हमने साइनस हेडेक्स की करी है, पर ये ज़रूर है कि आपको छोटी बड़ी कैसी भी समस्या चल रही हो लाइफ में, आपको एक अच्छा ट्रीटमेंट ज़रूर मिलेगा व्हेन यू विजिट काव्या होम्यो केयर. मीता जी के एक्सपीरियंस का आप अपनी सेहत के लिए फ़ायदा ज़रूर उठाएँ. एक बार कॉल करें 6477602775. थैंक यू मीता जी, अगले हफ्ते फिर आपसे बात करते हैं.
0: 2779
1: सो 2779 ओके माय बैड 7602779 इज द नंबर. वैसे आप काव्या होम्यो केयर .com इस वेबसाइट पे जाएंगे तो भी नंबर आपको मिलेगा. आप अलग से भी मुझसे टेक्स्ट पे ले सकते हैं, मैं अलग से भी नंबर आपको दे दूंगी. 6477602779 इज द नंबर. थैंक यू मीता जी.
0: थैंक यू सो मच स्वाति जी.
1: जी.

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: ऑटो एंड होम इंश्योरेंस के बिना तो काम चलता नहीं इफ यू हैव अ कार एंड अ हाउस, है ना? अब ऐसे में सोचिए, अगर आपके पास एक कार और एक घर है और इंश्योरेंस पर सालाना आपके 400 से 500 डॉलर्स की बचत हो जाती है, या आपके पास दो कार और एक घर है और ऑटो एंड होम इंश्योरेंस पर आपकी बचत हो सकती है अप टू 2029 डॉलर्स, तो कितना अच्छा हो, है ना? यानी कि रेट्स भी सही मिल जाए, कवरेज कॉम्प्रोमाइज ना हो एंड सेविंग्स ही सेविंग्स। तो भाई ये पॉसिबल है। कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑल स्टेट की मिसिसागा साउथ एजेंसी एट 6474535353। उनको कॉल करेंगे तो आपको और ऑप्शंस भी पता चल सकते हैं। 6474535353।
4: Genesis Markham, यहाँ मिले लग्जरी का फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस विद अ स्टेट ऑफ द आर्ट डीलरशिप और आपकी अपनी लैंग्वेज में एक्सपर्ट सर्विस। लीज करें ब्यूटिफुली डिजाइन 2026 G70 सिर्फ 1.9% से, या लीज करें 2026 GV70 सिर्फ 4.9% से। आज ही बुक करें टेस्ट ड्राइव। विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम। Genesis Markham, डूइंग लग्जरी योर वे। A proud member of Wayne's Auto Group.
5: Retro in Metro. Nukkad Classic.

0: It's Toyota Red Tag Days at Markville Toyota. 2026 Prius Plug-in Hybrid. Ghar le jaane ka perfect time. Receive kare up to $7,500 off. Current Toyota owners ke liye up to 1% rate reduction. Toyota Tundra Finance kare as low as 3.99% for up to 36 months. Aapke trade ke liye hum dete hain top dollar. Visit Markville.com. Ya jaye 5362 Highway 7, Markham Bay. Markville Toyota, Wayne's Auto Group ka proud member.
1: Today's trends and trolls. Kuch seedhi baat, kuch golmol.
2: Main te bas follow karta. Main te bas follow karta.
1: मैं तो बस फॉलो करती और आप लोगों से शेयर कर देती कि आज के कुछ चर्चाफुल हाइलाइटेड ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या हैं। तो भाई सबसे पहले यहाँ पर तो फोर्ड सरकार, क्योंकि चाइनीज मेड ड्रोन्स जो जैसे हाईली सेंसिटिव ओपीपी ऑपरेशंस या सरकारी मिनिस्ट्रीज में यूज होते हैं उन पर फौरन से पेशतर बैन लगा दिया है। वजह, चाइना का माल है भाई, भरोसा किया ही नहीं जा सकता। अब देखो ना, अभी ट्रंप भी वहां से जब लौटे तो कोई गिफ्ट लेकर नहीं आए। Security is important, right? You mean drones की जगह अब made in Canada products होंगे, buy Ontario, buy Canadian policy को सलाम करते हुए। And then trending is snowbirds here, क्योंकि हमारे जो Prime Minister है Mark Carney, उन्होंने snowbirds को retirement दे दिया है until replacement planes arrive 2030 में। सवाल उठ रहे हैं हालांकि कि एक तरफ भाई आप राष्ट्रीय एकता और गर्व की बात करते हो, स्नोबर्ड्स को रिटायर कर दिया क्यों, ये निर्णय क्यों लिया? वेल, उनका कहना है कि आउटडेट हो रहे थे, उन्हें ठीक करना है, यू नो, नए लाने हैं, वो सारी बातें। वेल, सबकी अपनी अपनी इसमें सोच है। देन ट्रेंडिंग इज CJP भारत में। वहां पे एक बोले तो कॉकरोच जनता पार्टी, फनी सा नेम है, जिसको एक सटारिकल यूथ मूवमेंट कहा जा रहा है और एक मॉक पॉलिटिकल पार्टी भी। इसका नाम कॉकरोच जनता पार्टी रखने के पीछे वहां की CGI का हाथ है, क्योंकि उन्होंने भारतीय यूथ को कॉकरोच कहा था कभी। तो उसके फाउंडर जो है इस पार्टी के अभिजीत, उन्होंने पोस्ट किया कि व्हाट इफ कॉकरोचेस यूनाइट, और बस उसके बाद ये सटारिकल पार्टी की शुरुआत हुई। 72 आवर्स के अंदर 1,00,000 से ज्यादा मेंबर्स ने साइन अप किया है डिजिटली, और ये धीरे धीरे ग्रो करती ही जा रही है मैसिवली। कोई से कांग्रेस की बी पार्टी कह रहा है तो कोई आपकी बी पार्टी कह रहा है, और CJP खुद को यूथ मूवमेंट बता रही है। डिजिटल इंप्रेशन स्ट्रांग है इसके। अब ये पाँव एक्चुअली कितने जमा पाती है ये देखना बाकी है। देन मेलेडी तो चर्चा में है ही, जैसे कि हमने अभी बात करी थी, नॉट दैट मेलेडी टॉफी का यू नो इंटरनेशनल प्रमोशन बाय टू कंट्रीज के PMs, बट ऑल्सो एज पीपल लाइक टू से इट एज मेलेडी फॉर मेलेनी एंड मोदी जी। अच्छी बात मालूम क्या है इसमें, ये दोनों खुद इसको बहुत ही स्पोर्टिंगली लेते हैं। देन ट्रेंडिंग इज #NATO, क्योंकि वो कंसिडर कर रहा है डिप्लॉइंग फोर्सेज टू द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अगर जुलाई तक ये बंद रहता है तो। ट्रेंडिंग इज ऑल्सो #ElonMusk, क्योंकि एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया है जहां पे उन्होंने कहा पृथ्वी है नन्ही सी, भविष्य तो भाई स्पेस में है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा है कि SpaceX के प्लान में ये भी आता है, 1,000,000 टन कार्गो को वो भेजेंगे टू बिल्ड सेल्फ सस्टेनिंग सिविलाइजेशन चांद पर भी और मार्स पर भी। आप जाएंगे मौका मिले तो? मैं तो जाना पसंद करूंगी, पर सिर्फ भ्रमण करने के लिए, लौट के अपनी पृथ्वी पर, अपने घर पर ही आना चाहूंगी। वेल, इबोला आउटब्रेक भी ट्रेंड हो रहा है। वैक्सीन है नहीं अभी, पर फैलता जा रहा है ये वायरस, और कैनेडियंस अभी कोई इसकी चपेट में आए हैं या नहीं इसकी कोई इन्फॉर्मेशन सामने नहीं है। देन मौसम, 2 दिन के भीषण गर्मी के बाद अब ठंडी हवाओं के झोंके आ चुके हैं इन GTA।

this love. क्या यही प्यार है? प्यार क्या है? ये है या वो है या ये जो कुछ कुछ होता है ना वही सब कुछ है. This love has always been a mystery. जिसको जानने की सभी में रहती है अच्छी खासी curiosity. तो प्यार को अलग ही दृष्टिकोण से देखते दिखाते हुए उसका किया गया एक अच्छा खासा पंचनामा इन 2011 विद द टाइटल प्यार का पंचनामा. इसमें सारी की सारी नई नई थी कास्ट और जो फ्रेशनेस थी ना वो फ्रेश एक्टर्स वाली वो सभी को इतनी अच्छे से क्लिक करी कि फिल्म सुपरहिट हुई. और जो पर्सपेक्टिव इसमें था उस पंचनामा का वो सभी को डाइजेस्ट भी हुआ. एंड एक्ट फिल्म जो है इट हैज कंप्लीटेड इट्स रिलीज. द फिल्म इज आल्सो नोन फॉर इट्स लॉन्गेस्ट सिंगल टेक सीन फॉर बॉलीवुड फिल्म जो कि कार्तिक आर्यन का है. फिल्म वॉज फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव टोटली पर हाँ समझ में आई और अच्छी भी लगी. दिस वन इज पारो के लिए ये गाना फ्रॉम द फिल्म लाइंड अप नेक्स्ट ऑन फिल्मी नुक्कड़.

0: अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
2: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888। दैट्स 9054608888।
1: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
3: फायदा उठाएं स्प्रिंग स्पेशल मॉर्गेज रेट्स एंड एक्स्ट्रा प्रमोशन का विद अमित खुराना। 5 इयर्स फिक्स्ड 4.14%, 3 इयर्स फिक्स्ड 4.19%, 5 इयर्स वेरिएबल 3.55%, प्लस कैशबैक फ्रॉम बैंक एंड स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम अमित खुराना अप टू $1500। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। कॉल अमित 6473412785, 6473412785, और विजिट
4: अमितखुराना.com। ये वो टाइम ऑफ द ईयर है जिसका आप वेट कर रहे थे। डेमोन्स्ट्रेटर इवेंट एट डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस, मई 16 तक। लीज रेट्स एज लो एज 2.9% अप टू 24 मंथ्स। सेलेक्ट डेमो व्हीकल्स पर सेविंग्स अप टू $4,989 इंक्लूडेड। बेस्ट सिलेक्शन के लिए डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस जल्दी विजिट करें। जल्दी करें, ऑफर एंड्स मई 16th। विजिट donvalleynorthlexus.com टुडे। अ प्राउड मेंबर ऑफ वेन्स ऑटो ग्रुप।
5: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑल स्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 6474535353। दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं। सिमरन बेंस एंड ऑल स्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स। कॉल सिमरन बेंस एट 6474535353, 6474535353. And yes, even for one car and a home, $400 to $500 की annual savings possible. Call Simran Benz 6474535353.
0: Exclusively picked.

0: एट वेन्स ऑटो ग्रुप आप हम पर रिलाई कर सकते हैं फॉर एवरीथिंग ऑटोमोटिव चाहे हो डेली कम्यूट या वीकेंड स्केप हमारा प्रॉमिस विल ऑलवेज रिमेन द सेम हर जर्नी को बनाए खास वेन्स ऑटो ग्रुप हमेशा आपके साथ ओवर 1400 डेडिकेटेड एसोसिएट्स जो बोलते हैं आपकी लैंग्वेज ऑफरिंग 9 ब्रांड्स अक्रॉस 15 डीलरशिप्स फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर Wayne's Auto Group is always there. Aaj hi visit kare waynesautogroup.com.
1: Fatafat facts with Fact Factory. Mujhe to malum hai, par kya aapko pata hai? Only on Filmy Nukkad. All right, Fact Factory mein aaj ka fact khaas hai. वो हमिंग बीज के बारे में वर्ड बी डे है आज सोचा इनका जिक्र तो बनता है और पहला फैक्ट मैं देख रही थी कि दीज आर द ओनली इंसेक्ट दैट प्रोड्यूसेस फूड फॉर ह्यूमंस पूछो तो क्या वो मीठा मीठा शहद भाई अब देखो ना ये भी एक इंटरेस्टिंग सही बात है कि एक तरफ तो वो हनी देती हैं मीठा मीठा और दूसरी तरफ नाराज हो जाए ना तो जोरदार डंक भी मार लेती हैं कि बरसों याद है रहता है ना और ये जो बजिंग साउंड होती है ना इनकी नन्नी नन्नी सी जानों की वो उसमें पूरी ताकत लगा देती है पंखों के साथ अपने इनक्रेडिबल रेट से वो फटफटाते हैं लाइक मैं पढ़ रही थी कोई 11,400 टाइम्स पर मिनट और तब वो साउंड आती है और ये फैक्ट तो खैर मैंने बचपन में ही पढ़ा था कि आंखें इनकी पांच होती हैं वो सिंपलाइज एंड कंपाउंड आईज आपको याद है तो मुझे लगता है हमसे ज्यादा देख पाती है एंड यू नो वॉट पेट भी इनके दो होते हैं एक खाने के लिए एक नेक्टर स्टोरेज के लिए और मैं सोच रही थी कि पढ़ के कि एक हम है एक पेट है उसे ही नहीं संभाल पाते उसी से दुखी रहते हैं है ना पता नहीं कैसे संभालती है दो दो पेट एंड यस वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि दे आल्सो टॉक एंड कम्युनिकेट जानते हैं कैसे नृत्य भाई बोले तो डांस के जरिए एक वेगल डांस होता है इनका टू प्रोवाइड डायरेक्शंस और दूसरा राउंड डांस टू सिग्नल नियर बाय पोलन तो इन शॉर्ट डांस जैसे एक्सप्रेशन का ये नन्ही नन्ही बीज भी रखती तो है शौक

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
2: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
3: घर कहीं भी लेना हो

वेल इन्होंने तो अपने पापा का नाम काफी किया, पापा ने सही कहा था क्या में काम की बात हो रही है। इस फिल्म में इस गाने को देखने के बाद जब ये गाना रिलीज हुआ था काफी काफी सारे लोगों का इन पे क्रश अच्छा खासा हुआ था क्यूएस क्यूटी में। आई वॉज वन ऑफ दोज काफी अच्छे सारे लोग जिनका अच्छा खासा इन पे क्रश हुआ था। एंड पापा कहते इतना फेमस हो गया साथ में कि पापा कहते हैं नाम से एक फिल्म बन गई थी जो कि अभी 17 तारीख को ही रिलीज हुई थी, नॉट दिस ईयर, इन 1996। तो कुछ साल इस फिल्म को कंप्लीट हुए हैं एज अ रिलीज। अब पापा कहते हैं जिसमें अनुपम खेर थे, मयूरी कांगो थी, बहुत क्यूट लगी थी, और जुगल हंसराज थे जो कि बहुत सारी फिल्मों में तो नहीं आए पर इस फिल्म में एक्चुअली नोटिस जरूर हुए थे जुगल हंसराज। और इस फिल्म के गाने राजेश रोशन के म्यूजिक था, जावेद अख्तर के लिरिक्स थे, बहुत ही खूबसूरत से लिखे हुए हैं और बहुत ही अच्छी सी कंपोजिशन है। इस फिल्म के सारे गाने हिट हुए थे एंड दिस वन सुमो सानू जी की आवाज में है, याग्निक जी की आवाज में है एंड बहुत ही प्यारा सा गाना है। लाइन अप नेक्स्ट फॉर यू।

0: breaking through the midfield.
1: Don Valley North Hyundai aapko de raha hai mauka FIFA World Cup 2026 ke tickets jeetne ka. Koi bhi vehicle biker ke ghar le jaye aur paye double entries.
0: This is dangerous. Into the box.
1: Winter tires ya extended warranty le aur har ek ke saath paye ek extra entry. Aaj drive kare, kal jeete. Visit DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
2: FIFA के टिकट चाहिए घर तो जाए डॉन वैली नॉर्थ हंडई पर. अब पूछो वहाँ क्यों? उन्होंने खूब समझाया हम सबका मन. अब देखो ना, फीफा के टिकट लेना कोई छोटी बात थोड़ी है. मारा मारी हो रखी है भाई टिकट्स की. मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लग रहा है उन टिकट्स का हाथों में आना. ऊपर से बजट के बाहर उनकी प्राइसिंग पूरे साधारण इंसान है ना. पर डॉन वैली नॉर्थ हंडई के साथ ये हो सकता है आसान. अब पूछो कैसे. एक बैलेंस है उनका जिसमें एंट्री आपको करनी होगी बस टिल May 31st, दैट्स अ डेडलाइन. और फिर ड्रॉ होगा जून में. जिनके नाम निकल आए उनको मिल जाएंगे टिकट्स फीफा के. अगर आप मुझसे कोई भी हंडई कार लेते हैं ना तो दो टिकट्स जीतने के लिए आपको ड्रॉ में दो नाम डालने होंगे बैलेट में. अगर विंटर टायर्स लेते हैं विद स्टोरेज तो एक नाम एक टिकट के लिए डाल पाएंगे. या फिर कोई एक्सटेंडेड वारंटी ले लेते हैं तो भी एक नाम फॉर वन टिकट आप लकी ड्रॉ बैलेट में डाल पाएंगे. देखिए ऐसे नहीं तो वैसे क्या आपको फीफा टिकट्स मिल पाते हैं? और डॉन वैली नॉर्थ हंडई ने तो अपनी कोशिश आपके सामने रख दी है आपको जिससे टिकट्स मिल पाए. अब आपको करने अपने प्रयास. जल्दी जाएं एट डॉन वैली नॉर्थ हंडई वुडबाइन एवेन्यू मार्कम.

0: to advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. Your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time.
1: मेरी रेगुलर किराया देने से प्रॉपर्टी मेरे लैंडलॉर्ड की मॉर्गेज फ्री हुई और मेरे अपने घर का सपना वो सपना ही रह गया।
2: अब वक्त है अपने घर का सपना साकार करने का। मैं हूँ संजीव मनोचा, ब्रोकर ऑफ रेकॉर्ड माई रियल को, द रियल एस्टेट कंपनी। पिछले 20 सालों में मैंने सैकड़ों फर्स्ट टाइम बायर्स को उनके बजट और जरूरत के हिसाब से घर खरीदने में हेल्प की है। अब बारी आपकी। कॉल मी नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एंड स्मार्ट बायर्स रिवॉर्ड प्रोग्राम एट 416-843-7600।
0: दैट्स 416-843-7600 और विजिट माई रियल को .com
3: ਮੱਜਾ ਮਾਲ ਵਦਵਾ ਬਾ ਵੈਡਿੰਗ ਸਟੋਰ
4: ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੱਜਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਵੈਡਿੰਗ ਸਟੋਰ
5: ਯਹਾਂ ਸੇ ਆਪਕੋ ਠਾਕਾ ਚੁੰਨੀ ਮਹਿੰਦੀ ਜਾਗੋ ਮਿਲਨੀ ਔਰ ਬਾਰਾਤ ਸੇ ਡੋਲੀ ਤੱਕ ਕਾ ਸਾਰਾ ਸਜਾਵਟ ਕਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ 30 ਮੈਲੇਨੀ ਡਰਾਈਵ ਯੂਨਿਟ 9 ਐਂਡ 10 ਬ੍ਰੈਂਟਨ ਟੈਲੀਫੋਨ 905-799-9400

विंटर्स में हमारे व्हीकल्स थोड़ी एक्स्ट्रा केयर मेंटेनेंस मांगते हैं और उसके लिए गो टू माई मैकेनिक ऑटो एंड टायर, सभी तरह की मैकेनिकल रिपेयर्स और टायर सर्विसेज के लिए। अब वहाँ किसी भी ऑयल चेंज और सर्विसेज के साथ गेट अ कॉम्प्लीमेंट्री विंटर मेंटेनेंस इंस्पेक्शन, गेट अ $20 ऑफ ऑन ऑल सिंथेटिक ऑयल चेंज सर्विसेज। मिशलिन टायर्स के ऑथराइज डीलर है ये, एंड यू कैन गेट अप टू $150 रिबेट जब आप 4 नए टायर्स खरीदते हैं। इंश्योरेंस से ये डायरेक्ट डील करते हैं। विजिट देयर मार्कम स्टोर एट मिडलैंड एंड स्टील्स और स्कारबोरो स्टोर मिडलैंड एंड एल्समियर पर। फॉर डिटेल्स विजिट mymechanicauto.ca। गेट ऑन योर फीट विद पेपी नुक्कड़ बीट्स।

आज एक म्यूजिक कंपोजर के बारे में बताना चाहूंगी। हिंदी और पंजाबी फिल्म्स में काफी पॉपुलर रहे थे ब्लैक एंड व्हाइट एरा में। वेल ट्रेन्ड थे म्यूजिक में, क्लासिकल वोकल म्यूजिक सब सीखा था उन्होंने। पापा हालांकि जमींदार थे उनके। फिर जब बड़े हुए ना तो लाहौर में इन्होंने म्यूजिक स्कूल खोल लिया और फिर कुछ नॉन फिल्मी एल्बम्स भी वहां निकाली और फिर आ गए मुंबई टू परस्यू हिज करियर एज ए कंपोजर इन हिंदी फिल्म्स। बात कर रही हूँ मैं यहाँ हंस राज बहल साहब की। बहुत कम लोगों ने इनका नाम सुना हुआ है पर मुझे पता है कि गाने आपने जरूर सुने हैं। बस यही नहीं पता होता ना कई बार कि अच्छा इनकी म्यूजिक की कंपोजिशन इन साहब ने की है। तो भाई जब मुंबई आ गए तो पृथ्वीराज कपूर साहब से उनकी मुलाकात हो गई थ्रू हिज अंकल। और एक बार एक अच्छा सा रेफरेंस मिल जाता है फिर गाड़ी निकल पड़ती है अगर आप टैलेंटेड हैं, है ना। तो एक फिल्म आई फिर उसके बाद विद इन टू ईयर्स और उससे उनका डेब्यू हो गया। और उसके बाद आई वो फिल्म जिससे फिल्म इंडस्ट्री को मिली वो आवाज जो आज तक अपने आप में एक लीजेंडरी वॉइस है और कितने लोगों को इंस्पायर कर चुकी है। फिल्म थी चुनरिया और उसमें जोहरा बाई अंबाले वाली जी के साथ गाया था आशा भोसले जी ने पहली बार डेब्यू किया था और म्यूजिक कंपोजर थे हंसराज बहल साहब। उन्होंने ही ये नगीना चुना था पहली बार एक फिल्म में गाने के लिए और देखे ना क्या किस्मत वहां से निकल पड़ी उनकी। 40 साल से ज्यादा के करियर में मैं देख रही हूँ हंसराज बहल साहब के, उन्होंने 67 से ज्यादा फिल्मों में म्यूजिक दिया एंड ही वर्क्ड विद ऑल द यू नो रिनाउंड सिंगर्स एंड लिरिसिस्ट। So, by remembering the forgotten music composer today on his death anniversary, this is Swati signing off for now, leaving you all with the gana, jise aapne hazaron baar suna hai, aapko aata bhi hai. Bas, ye shayad bahut kam log jante honge ki iski composition ya music diya hai isme Hansraj Behl saab ne. Kya bhai, mujhe lagta hai, फेमस गानों के अच्छे गानों के क्रेडिट्स हमें हमेशा याद रहने चाहिए। तो वेल आप को छोड़े जाती हूँ इस गाने के साथ, मिलते हैं फिर जल्दी ही, तब तक लव एंड स्माइल्स फ्रॉम मी टू यू।

0: 3FM.
1: न्यूज के लिए मैं दावत दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट. फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 647-295-7861 647-295-7861.
2: पेश खिदमत है आज की अहम खबरें. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ मुजाकरात आखिरी मरहले में हैं और तेहरान ने मुआहिदा न किया तो मजीद हमले करेंगे. उन्होंने कहा कि वो आबनाए हुरमुस को फौरी तौर पर खुला देखना चाहते हैं. सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान का कहना है कि जंग के खात्मे के लिए सिफारतकारी को मौका देने पर ट्रंप और सालिसी की कोशिशों पर पाकिस्तान को सराहते हैं. वजीर दाखिला मोहसिन नकवी एक बार फिर तेहरान पहुँच गए हैं. अरब मीडिया ने दावा किया है कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुजवजा माहदे के हतमी मुसवदे का ऐलान जल्द मुतवक्को है और मुजाकरात का अगला दौर ईद के बाद इस्लामाबाद में होगा. ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची ने दावा किया है कि जंग में वापसी की सूरत में अमरीका को बहुत से सरप्राइज मिलेंगे. ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा है कि ईरान ने जंगबंदी को ऑपरेशनल सलाहियतें बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया. उधर ईरानी पासदारा ने इनकलाब का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटे में 26 बहरी जहाज आबनाए हुरमुस से गुजरे हैं. चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि मौजूदा आलमी सूरत हाल पेचीदा है लेकिन तनाज़े का दोबारा आगाज नाकाबिल कबूल होगा. चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याह्या अफरीदी ने इमरान खान और उनकी एहलियत से मुतालिक मुकदमात ईद के बाद मुकर्रर करने की यकीन दहानी करा दी. इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैमिली की बुशरा बीबी से मुलाकात का मामला दोबारा सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल को भिजवा दिया है और कहा है कि सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल फैमिली मुलाकात की दरख्वास्त पर दोबारा फैसला करें. बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट मैच में 78 रन से हराकर सीरीज में वाइट वॉश कर दिया और आज रात से गैस की कीमत में 1 सेंट फी लीटर कमी हो जाने का इम्कान. इन खबरों की तफसील आप सुन सकेंगे रात 8 बजे.
3: खास खास खबरें जुबैरुद्दीन साहब के लिए पेश किया करते हैं. स्टूडियोज में रबते के नंबर 416-593-0003. गैलेक्सी इंटरनेट एक्सचेंज का आज का रेट है 201.40 रुपये. डेबिट और ईमेल ट्रांसफर के थ्रू आप ट्रांसफर कर सकते हैं. पाकिस्तान में एमसीबी की 11 से ज्यादा ब्रांचेस हैं. डायरेक्ट डिपॉजिट कर लीजिए, वहाँ अकाउंट नहीं है. कैश या बैंक ड्राफ्ट भी हासिल कर सकते हैं. घर बैठे 24 घंटे ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कीजिए. gondarbrothers.com पे आप लॉग इन हो जाइए. आज का रेट है 201.40 रुपये. कॉल कर लीजिए 905-306-0000. वेंसडे राजीव तलवार साहब मॉर्गेज की मालूमात आप तक पहुंचाया करते हैं. डेट कंसल्टेशन के वाले से आयशा मनोवर साहबा से आपकी मुलाकात करवाएंगे. आईसीसी इमिग्रेशन से एमडी भाई हमारे साथ होते हैं और इंश्योरेंसेस की मालूमात विशाल त्रिवेदी साहब हम तक पहुंचाते हैं. कनेडियन इंग्लिश हेडलाइन 7:30 बजे, तफसीली खबरें 8 बजे, लाइव कॉल आपके लेंगे तकरीबन 8:30 बजे के करीब. और भी कुछ मौजूद हमारी और आपकी बातें, लेकिन ये सबको सुनने के लिए हमारे साथ रहना है. अब से 9 बजे तक मैं आपका होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी हूँ. मेरे छोटे प्यारे सामिन, अल्लाह से प्यार करने वाले अल्लाह के काम से प्यार करते हैं. खालिक की इज्जत करने वाले, खालिक का अदब करने वाले, खालिक के अमल का एहतराम करते हैं. और खालिक का अमल मखलूक को पैदा फरमाना है. अल्लाह करीम ने बड़े वसूक से इंसान को तख्लीक फरमाया. इंसान को एहसन तकवीम कहा गया. अल्लाह जब किसी को अपनी बारगाह में मकबूल फरमाता है तो इसे मखलूक की खिदमत और मखलूक से मोहब्बत का रास्ता इनायत फरमाता है. अल्लाह ने अपने सबसे प्यारे इंसान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने महबूब इंसान को सब जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा. अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मोहब्बत फरमाते हैं और आप मखलूक के लिए बाइस रहमत हैं. अल्लाह के तकर्रुब की राह मखलूक की खिदमत और मोहब्बत की राह है. मखलूक को नापसंद करने वाला कभी खालिक का मरकब मुकर्रब नहीं हो सकता. मखलूक को डराने वाले, मखलूक पर हुकूमत करने की तमन्ना करने वाले खालिक के बागी हैं. मखलूक के लिए रहमत मुजस्सम खालिक के लिए खालिक की निगाह में खैरुल बशर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं. अल्लाह के तकर्रुब का सबूत मखलूक से मोहब्बत में पिन्हा है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम ज़िंदगी मखलूक से मोहब्बत की ज़िंदगी है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों से तो क्या, जानवरों, परिंदों, गर्ज़े की खुदा रब्बिकनी की पैदा की गई हर जी जान और बेजान शय से मोहब्बत फरमाई है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल याद इलाही से मामूर है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल खिदमत खल्क का दस्तूर है. 416-593-0003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM. मैं आपका होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी हूँ.

मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे। मैं अक्सर सोचता हूं फूल कब तक शरीके गिरियाए शबनम ना होंगे। दिलों की उलझने बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे बाहम ना होंगे। जमाने भर के गम या एक तेरा गम, ये गम होगा तो कितने गम ना होंगे। अगर तू इत्तफाकन मिल भी जाए, तेरी फुरकत के सदमे कम ना होंगे। हफीज उनसे मैं जितना बदगुमा हूं, वो मुझसे इस कदर बरहम ना होंगे। मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे।

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: SSR Auto Service, 921 Pape Avenue, Southeast Corner of Pape and Martimore. हर किस्म की गाड़ियों की जर्नल और इलेक्ट्रिकल रिपेयर के लिए तशरीफ लाइए। ऑयल चेंज, टायर चेंज, लाइट रिपेयर, ब्रेक्स, सस्पेंशन, मफलर सर्विस, इंजन सर्विसेज। इसके अलावा सेफ्टी इंस्पेक्शन, 3D लेजर अलाइनमेंट के साथ साथ न्यू और यूज्ड टायर्स भी अवेलेबल हैं। ड्राइव थ्रू मेंटेनेंस और नमाज की सहूलत भी। मियां अशरफ साहब या नबील अशरफ साहब से राब्ता कीजिए 416-466-8782, 416-466-8782। टोरंटो में 23 साल से 24/7 खुलने वाली वाहिद शॉप SSR ऑटो सर्विस, 921 पेप है।
3: अलकरम ज्वेलर्स, अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए। अलकरम ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के बेहतरीन सेट्स। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे। आज ही विजिट कीजिए अलकरम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। 9058280009 9058280009। यो लॉगिन हो alkaramjewelers.ca। अलकरम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
4: बारबेक्यू टुनाइट की दूसरी लोकेशन 5165 डिक्सी रोड, डिक्सी और एमको का इंटरसेक्शन, मिसिसागा में। 200 से ज्यादा लोगों की गुंजाइश, बड़ी पार्टीज भी आप अरेंज कर सकते हैं। बारबेक्यू आइटम्स, बिहारी कबाब, सीख कबाब, कड़ाही, बिरयानी, ताजा नान और बेशुमार डिशेज। जायका वही और खूबसूरत सेकंड लोकेशन। पार्टीज की बुकिंग या मालूमात के लिए कॉल कीजिए 9052829868। बारबेक्यू टुनाइट की सेकंड लोकेशन 5165 डिक्सी रोड, डिक्सी और एमको का इंटरसेक्शन, मिसिसागा में। 9052829866।
5: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
6: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: நம்பர்டிக்கோ கால் மிலாம்.
1: Talhavat 647-295-7861. Reconstruction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. Talhavat 647-295-7861.
0: To Talhavat ti ko call milan.
1: Talhavat 647-295-7861.
2: खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है आज ही मुझे कॉल करें आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है 416-570-0157
3: बहुत खुशबू आ रही है खाने में ऐसा लग रहा है जैसे घर के पिसे हुए मसालों से बना हो
4: अरे खुशबू कैसी नहीं होगी ये हांडी के मसालों का कमाल है जो चुन चुन के इकट्ठे किए गए हैं खास हमारे लिए ताकि ये लज्जत और स्वाद हमें मिल सके
5: हांडी मसाले बिल्कुल घर जैसा स्वाद
6: फॉर होलसेल इंक्वायरी कॉल 416-746-5550
7: अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो शहबाज अकबर उनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम आपको मुकम्मल कंसल्टेंसी फराहम करेंगे अगर आप रिफ्यूजी क्लेम करना चाहते हैं या इमिग्रेशन रिफ्यूजी बोर्ड में किसी भी किस्म के अपील करना चाहते हैं बिजनेस इमिग्रेशन अप्लाई करना हो स्किल्ड वर्कर क्लास हो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास स्टूडेंट वीजा या सुपर वीजा अप्लाई करना चाहते हो या फिर फैमिली स्पॉन्सरशिप तो हमारी एक्सपर्ट टीम आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेगी दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं ईस्ट में मार्कम एंड शेपर्ड वेस्ट में हाईवे 10 और स्टील्स का इंटरसेक्शन अभी कीजिए 416-855-9464 शहबाज अकबर साहब के रابطے के नंबर 416-855-9464 ग्रीन स्टार इमिग्रेशन कर्ज इंसान का ज़हनी सुकून छीन लेता है अगर आप कर्ज के बोझ से परेशान हैं तो ऑल डेट सॉल्यूशन के एम सिद्दीक से رابطہ कीजिए 416-671-0577 जीटी पर में चार लोकेशन से आपको सर्व करते हैं

0: केस सेटल होने के बाद लेते हैं। केस देखने के बाद मुकम्मल गारंटी के साथ आपको बताएंगे कि कितने फीसद तक कर्ज माफ हो सकता है और फिर सूद से पाक आसान अकसात में आप अदायगी कर सकेंगे। कलेक्शन कॉल आना हो जाएंगी बंद और आपकी परेशानियां हो जाएंगी खत्म। अभी एतमाद के साथ कॉल कीजिए 416-671-0577।
1: The best gourmet pizza with best prices, Pizza Pop, 3075 Ridgeway Drive, Mississauga, or visit pizzapop.ca. Family ke saath dine in karein ya take out. Bachchon aur badon sabhi ki pehli choice Pizza Pop. Laziz aur mazedar tandoori chicken pizza, cheese steak pizza, chicken shawarma pizza. Exclusive family offer: large tandoori chicken pizza, large cheese pizza, two dipping sauce, three cans of pop for $24.99 only. For more information and take out order, call 905-828-0985. It's 905-828-0985. Pizza Pop, 3075 Ridgeway Drive, Mississauga.
2: اپنے خوش کے لمحات کو یادگار بنائیں آئیکون ایونٹ سپیس میں شادی مہندی ریسپشن برتھ ڈے پارٹیز کارپوریٹ ایونٹس غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے تین خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں ان ہاؤس سٹیجنگ آڈیو ویژول سسٹم 10 پروجیکٹر سکرینز مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ بہت ہی کنوینئنٹ لوکیشن 6887 ڈکسی Road, Mississauga. Ample parking or close to highways. For more information and booking, call Mr. Alam 437-425-2500 or Brompton May Coins Manor Event Center 2 Auction Lane, Brompton. For more information, call 416-814-3600. Coins Manor Event Center.
3: Sirf mortgages. That's Rajiv Talwar, the mortgage superstar. Mortgage residential, low ya commercial. For customized mortgage solutions, choose Rajiv Talwar. Mushkil se mushkil mortgage ho, last minute deal ho, ya phir credit issues ho. Rajiv Talwar ka wasi ilm aur tajurba aapka kaam aasan kar dega. To yaad rakhiye, mortgage unse mat lijiye jo mortgage bhi karte hain, balki mortgage sirf unse lijiye jo mortgage hi karte hain. Call Rajiv Talwar of leading edge mortgage experts 905-819-1001. 905-819-1001. License number 12374.
4: याद रखें, अगर आप किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में चार्ज हो गए हैं या आपको कोई भी फैमिली लॉ का मसला है, जैसे कि प्रॉपर्टी डिवीजन, स्पाउसल सपोर्ट, चाइल्ड कस्टडी एंड एक्सेस, या आपका कोई सिविल लिटिगेशन का मामला है, कम्युनिटी के जाने पहचाने और तजुर्बेकार लॉयर ताहिर मजीद से राब्ता कीजिए 6478384773। कानूनी मामलात के लिए उनसे राब्ते कीजिए जो कानून को मुकम्मल तौर पर जानते हैं। फॉर ऑल योर लीगल मैटर्स कॉल ताहिर मजीद 6478384773।
5: विशाल त्रिवेदी, वही जाना पहचाना नाम, अब विशाल ही से लीजिए कमर्शियल इंश्योरेंस अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी पर। मोटेल एंड होटल, एनी फ्रेंचाइज शॉप, फूड रेस्टोरेंट, कन्वीनियंस स्टोर्स, हेल्थ एंड डेंटल क्लिनिक, फार्मेसीज, फ्लीट ट्रकिंग एंड वेयर हाउसेज, गैस स्टेशंस, स्ट्रिप प्लाजा एंड मोर। फॉर अमेजिंग डिस्काउंट विद प्रॉपर लायबिलिटी एंड इंश्योरेंस कवरेज, कॉल विशाल त्रिवेदी 6477679852 6477679852 दैट्स 6477679852।
6: जनाब विशाल त्रिवेदी साहब का नंबर आप नोट कर लें 6477679852। थोड़ी सी बचत आज की आपके लिए बहुत आसानियां ला सकती है। जब तक आप सेहतमंद हैं, यकीनन अल्लाह सबको सेहतमंद रखे, लेकिन बीमारी का पता नहीं चलता और यहाँ के हवाले से कहा जाता है कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो उम्र बढ़ने के साथ साथ लाजमी इंसान को हो जाती हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए ज़ाहिर है आपको इंश्योरेंस लेनी चाहिए और क्रिटिकल इंश्योरेंस लेनी चाहिए। विशाल त्रिवेदी साहब तकरीबन 2.5 से ज़्यादा अरसे से इंश्योरेंसेज इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं। वेरी एक्सपीरियंस, वेरी नॉलेजबल एडवाइज़र हैं और हमारे साथ आज के दिन मौजूद हुआ करते हैं। खुश आमदेद कहेंगे विशाल भाई, वेलकम यू इन वेरी पाकिस्तान टोरंटो।
7: थैंक यू सर जी, एंड रिगार्ड्स टू ऑल लिसनर्स, इट्स ऑलवेज प्लेजर टू बी विद यू।
6: थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। हम कोशिश करते हैं कि हमारे सुनने वालों को हम इन्फॉर्मेशन ज्यादा दें ताकि वो उनके काम आ सके। आज मैं चाहूंगा क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी के हवाले से बताइएगा कि वो किस तरह से इंडिविजुअल्स को और बिजनेस ओनर्स को हेल्प करती हैं।
7: अच्छा जी, एज वी नो दैट देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस होता है, कैश वैल्यू लाइफ इंश्योरेंस होता है, फिर डिसेबिलिटी इंश्योरेंस भी होता है। एक इंश्योरेंस होता है क्रिटिकल इलनेस लमसम बेनिफिट।
6: अच्छा,
7: तो क्रिटिकल इलनेस बेसिकली क्या है कि 25-26 क्रिटिकल इलनेसेस होती हैं जिनकी डेफिनेशंस हैं, मेजर वंस आर कैंसर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, बाईपास सर्जरी, यू नो, major organ transplant, many more, loss of eyesight. So ye 25-26 critical illness se agar hum diagnose hote hain, to what happens to us? The answer is, we will be going to hospital, taking care of ourselves. OHIP will cover.
6: Theek ho gaya.
7: That's it. Now, what happens if a person diagnosed with these conditions, in same time, they get $1 million, $500,000, $250,000, $100,000, tax-free?
6: Theek hai.
7: Agar ye policy kisi ke paas hoti hai, to basically, they will qualify to get a lump sum tax-free amount, whichever they choose. So basically, personally, I have $1 million critical illness policy. I am 50 plus. If something happens to those illnesses, I will get, after 30 days, a lump sum check of $1 million and the policy is closed. Mere kuch client hai jinhe heart attack hua, unko paisa mila, kisi ko colon cancer hua, unko paisa mila. End of the day, if someone diagnosed, why not to pay off our mortgage? Why not to pay off all those financial debts we have? And end of the day, take care of yourself. So, agar ek bande ko heart attack ho jata hai, kuch illness ho jati hai, they need some time to stay at home. Us case mein, work se bhi aapko ho sakta hai, 2-3,000, 5,000, jo bhi aapki disability wo milna shuru ho. But will it be a good idea to get a lump sum benefit on the top, which you qualify actually? So, lump sum benefit policy hai ye. Critical illness cover karti hai aur iska sabse bada jo fayda hai Arsha ji ki ye paisa aapko tax free milta hai jo aap kisi bhi purpose ke liye use kar sakte hain aap kuch bhi kar sakte hain iske saath mein so that money is yours
6: ji janab number note kijiye 6477679852 6477679852 aur zahir si baat hai jab aap sehatmand hain usi waqt ye policy lena jo hai aapke liye faydemand hai jab aap sehatmand ho us waqt thodi si bachat jo hai aur mere khayal mein agar aap bilkul sehatmand hain age kam hai aapki to phir to premium bhi bahut kam hoga iska
7: 100% Arsha ji main hamesha yahi bolta hu ki 23 years in insurance industry your money never buy you insurance your health buy you insurance So, अगर आपकी अच्छी हेल्थ है तो आप क्वालिफाई करते हैं इंश्योरेंस के लिए आप उनसे पूछिए जिनको कोई कंडीशन हो गई है दे आर नॉट एबल टू गेट इंश्योरेंस हाउ टफ इट इज सो व्हेन यू आर हेल्दी दैट इज द बेस्ट गोल्डन टाइम टू बाय लाइफ इंश्योरेंस और क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी
6: 6477679852 अच्छा इसको जब नेचुरल में क्लोज करते हैं तो 25 क्रिटिकल इलनेसेस ऐसी हैं अगर आपको वो हो जाती हैं और उसके बाद आपकी जितनी इंश्योरेंस आपने क्वार्टर मिलियन हाफ मिलियन वन मिलियन अगर आप डायग्नोज हो जाते हैं सेहत भी आ जाती है उसके फौरन बाद विद इन 30 डेज आपको पैसे मिल जाते हैं सही
7: 100% सो आपको टैक्स फ्री चेक मिलेगा कंपनी की तरफ से एंड यू नो एंड ऑफ द डे पॉलिसी क्लोज हो जाती है अच्छा जी मैं हमेशा यही कहना चाहता हूं कि एंड ऑफ द डे वी ऑल हैव सम डेट्स वी ऑल हैव फैमिली एंड साउथ एशियन बैकग्राउंड में सबसे बड़ी जो चैलेंज हमने देखी वो डायबिटीज बहुत कॉमन है कोलेस्ट्रॉल बहुत कॉमन है ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन है ये किस तरफ लीड करती है हमें ये लीड करती है हार्ट अटैक की तरफ बाईपास सर्जरी की तरफ वाल्व रिप्लेसमेंट की तरफ एंड नाउडेज वी सीइंग थायराइड कैंसर वेरी कॉमन फीमेल में हम ब्रेस्ट कैंसर वेरी कॉमन देख रहे हैं सो द एंड ऑफ द डे things are going up and diagnoses are rising so if someone doesn't have this kind of coverage they should always get educated on these policies
6: very right janab koi information chahiye ho abhi call kar le 6477679852 vishal tarvedi sahab ke rabte ka number hai 6477679852 vishal bhai thank you very much bahut shukriya aapka next week aap se baat karte hain thank you very much for your time
7: pleasure thank you
6: bahut shukriya vishal tarvedi sahab ka number note kare 6477 9852 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम 24 घंटे माइनस शायद रेडियो पाकिस्तान डॉट एफएम पे सुन सकते हैं हमारे टेलीविजन चैनल है टोरंटो 360 टीवी रियल स्टेट के वाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप तलहा भट्टी से रब्ता कीजिए 6472957861 घर खरीदना बेचना लीज करना साइन करना नए प्रोजेक्ट इन्वेस्ट करना हो कॉल कर लीजिए अपना ईमेल एड्रेस भी टेस्ट कर सकते हैं डेटाबेस में से ऐड कर लेंगे जो भी नया प्रोजेक्ट आएगा ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल आपको मिलती रहेगी डायरेक्ट कॉल कीजिए अपना ईमेल एड्रेस टेक्स्ट कर दीजिए तलहा भट्टी 6472957861 6472957861 ये चलेंगे आपको न्यूज की तरफ जो पेश करें जनाब जुबैर बिन साहब
8: You're listening to CMR FM 101.3.
9: न्यूज के लिए हमें तावन दिया है अंजुम कुरैशी साहबा ने
10: खुदा ना
9: करें अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने